0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: इस

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। दोस्तों, हम आपके कल्याण हेतु शिव पुराण सुनवा रहे हैं और यह है शिव पुराण। डॉक्टर लीना सिन्हा जी आपको सुनाएंगी। हम हमेशा ही डॉक्टर लीना सिन्हा जी को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। आज भी लीना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, जब भी आप आती हैं, बड़ा ही रोचक प्रसंग आप शिव पुराण में से सुनाती हैं। पिछले एपिसोड में आपने बृहस्पति, गुरु बृहस्पति और इंद्र का एक एपिसोड, जो भगवान शिव की परीक्षा लेने चले थे लेकिन परीक्षा में खुद ही फंस गए इंद्र, और गुरु बृहस्पति तो गुरु बृहस्पति ही थे, वो तो पहचान गए थे, तो उनकी कथा आपने सुनाई थी कि किस प्रकार से बृहस्पति ने वरदान पाया और इंद्र को भी शरणागत करके माफ़ी मंगवा के और उनको शिव के क्रोध से बचाया। इसके बाद क्या हुआ लीना जी, यह हम सुनना चाहते हैं कि गुरु बृहस्पति और इंद्र वहाँ सिर्फ परीक्षा लेने गए थे या उनका कुछ जाने का मकसद कुछ और था, वो हम जानना चाहते हैं
1: जी। तो भगवान शिव ने इंद्र को समझिए एक तरह से जीवन दान दिया। रुद्र संहिता के युद्ध खंड के 13वें अध्याय में हमने ये सब पढ़ा और सुना भी कि कैसे देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की जान बचाई शिव भगवान से, क्योंकि शिव को जब इंद्र नहीं पहचाने और उन्होंने वज्र भी निकाल लिया शिव को मारने के लिए, तो भगवान शिव ने अपना तृतीय नेत्र खोल दिया और उससे ज्वाला निकलने लगी, तो बृहस्पति भगवान उनको पहचान गए और डर गए और फिर उन्होंने प्रार्थना करके शिव की जान बचाई और उन्होंने कहा, हाँ, बृहस्पति ने इंद्र भगवान की जान बचाई शिव जी से। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी ये ज्योति जो है कहीं दूर डाल दें, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 14वां अध्याय शुरू हो रहा है। व्यास उवाच, सनत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमो अस्तुते श्रुते एम अद्भुता मे अद्य कथा संभोर महात्मना क्षिप्ते स्वतेजसी ब्रह्मन भाल नेत्र समुद्भवे लवनाम भसी किम ताता अभवत तत्र वदासु तत्। कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। आज मैंने भगवान शिव जी की यह आश्चर्यकारक कथा सुनी। हे तात, जब शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि को खारे समुद्र में डाल दिया तब क्या हुआ, उसे शीघ्र बताइए। सनत कुमार जी ने कहा कि श्रुतात महाप्राज्ञ शिवलीलाम महाद्भुताम यच्छ्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिना गतिम आपनुयात अथो शिवस्य तत्तेजो भाल नेत्र समुद्भवम क्षिप्तम च लवनाम्भोधौ सद्यो बालत्वमवाप ह तत्र वै सिंधु गंगायां सागरस्य च संगमे रुरोदो उच्चैः स वै बालः सर्वलोक भयंकरः। बालक था, क्रोध से उत्पन्न हुआ था, शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। तो कहते हैं कि हे महाबुद्धिमान तात, शिव जी की अद्भुत लीला को सुनो जिसे सुनकर भक्ति योगियों के स्थान को पा जाता है। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न उस तेज ने क्षार समुद्र में डालते ही बालक रूप धारण कर लिया। गंगा सागर तथा समुद्र के संगम स्थल पर बैठकर वह भयंकर बालक जोर से रोने लगा। उसके रोने के शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और उसकी आवाज से स्वर्ग तथा सत्य लोक बहरे हो गए। इतनी जोर से रोया क्योंकि रुद्र का अंश था, रुद्रांश था वह। तो वह बालक बहुत जोर से जब रोया तो पूरी धरती कांपने लगी और स्वर्ग लोक और सत्य लोक सब बहरे हो गए। बालस्य रोदने नैव सर्वे लोकाश्च तत्र सुः सर्वतो लोकपालाश्च विह्वलीकृत मानसा किं बहुक्तेन शिप विप्रेन्द्र चचार स चराचरम भुवनम निखिलम तात रोदनाथ शिव रोदनाथ शिशो विभो। अथ ते व्याकुला सर्वे देवा समुनयो द्रुतम पितामहम लोक गुरुम ब्रह्मानम शरणम ययो। कहते हैं कि उस बालक के रोने से सभी लोग भयभीत हो गए, चारों ओर लोकपाल भी घबराने लगे। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ है। उसके रोने के शब्द को सुनकर चर अचर सब कांपने लगे। उसके बाद देवता तथा मुनिजन व्याकुल होकर लोक गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहां इंद्र आदि देवता तथा मुनिगणों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर उनसे कहा। अब देखिए देवताओं ने क्या कहा। सब देवता भयभीत हो गए कि ये कौन आ गया भाई। लोकाधीश सुराधीश भयम न समुपस्थितम तम नाशय महायोगी जातो अयम यह अद्भुतो रव। कहते हैं कि महायोगी लोकाधीश सुराधीश इस अद्भुत शब्द के कारण जो भय उत्पन्न हुआ है उसे दूर कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने उनकी इन बातों को सुनकर चकित होकर यह क्या है इसे जानने के लिए वहां जाना चाहा। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्य लोक में उतर कर यह क्या हो रहा है इसे जानने के लिए पृथ्वी पर समुद्र तट पर गए। समस्त लोक के पितामह ब्रह्मा जी वहां आए तब तक उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी को अपने तट पर आए हुए देखकर देवता रूप उस समुद्र ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम कर उनकी गोद में बालक को रख दिया। तब आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, हे समुद्र, यह आश्चर्यकारक बालक किसका है, शीघ्र कहो। अब ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं क्योंकि शिव के अंश से उत्पन्न हुआ था वो बालक, तो ब्रह्मा जी ने तो लेख उस समय लिखा ही नहीं था उसका। तब वो कहते हैं कि ये बालक कौन है, क्या है, किसका है, ये तो बताओ। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्रह्मणो वाक्यम आकर्ण्य मुदित सागर तथा प्रत्युवाच प्रजेशम सनत्वा स्तुत्वा कृतांजलि। ब्रह्मा जी के वाक्य को सुनकर प्रसन्न होकर समुद्र ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर उनकी स्तुति की, तब उनसे कहा। अब समुद्र ने क्या कहा सुनिए। कहते हैं, भो भो ब्रह्मण मया प्राप्तो बालको अयम अजानता प्रभवम सिंधु गंगायाम कस्मात सर्वलोकप जात कर्मादि संस्कारान कुरुष्वास्य जगत गुरु जात कोक्त फलम सर्वम विधात वक्तुम अर्हसि। वो कहते हैं कि समुद्र ने तो बालक को क्या किया, ब्रह्मा जी के गोद में रख दिया था। अब समुद्र ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं इस बालक के संबंध में कुछ नहीं जानता। सब लोगों के स्वामी यह गंगा सागर के संग में सहसा प्रकट हुआ है। हे जगत गुरु, आप इस बालक के जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। हे विधाता, जातक संबंधी समस्त फल भी कहिए। आप ब्रह्मा जी से समुद्र कह रहे हैं क्योंकि जलंधर था नाम उसका, जल जिसके अंदर है तो जलंधर वो हुआ, और भगवान शिव की अग्नि थी जिस अग्नि को कोई शांत कर ही नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने समुद्र में डाल दिया कि समुद्र ही महा विशाल समुद्र ही इस अग्नि को शांत कर सकता है, इसलिए उन्होंने डाल दिया। लेकिन उस अग्नि ने बालक का रूप ले लिया और बालक जोर जोर से रोने लगा, और उसके रोने से दसों दिशाएं प्रकंपित होने लगी, और भयभीत देवगण जो है ब्रह्मा जी के साथ सागर तट पर पहुंचे, और सागर के हाथ में उन्होंने उनके गोद में उस बालक को देखा, और सागर ने ब्रह्मा जी के गोद में उस बालक को देखकर कहा कि आप इसका जात कर्म संस्कार कीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है यह बालक कहाँ से आया है, इसके पिता कौन है, इसका उत्पत्ति स्रोत क्या है। अब देखिए आगे क्या होता है। सनत कुमार जी ने कहा, समुद्र के इतना कहने पर समुद्र पुत्र वह बालक ब्रह्मा जी का गला पकड़कर बार बार उन्हें झकझोरने लगा। छोटा सा बालक और उन्हें झकझोरने लगा। समस्त लोगों को रचियता ब्रह्मा को इस प्रकार झकझोरने से उनकी आंखों से तत्काल आंसू गिरने लगे। किसी प्रकार उसके हाथों से अपना गला छुड़ाकर आदर के साथ उससे ब्रह्मा जी ने कहा। अब क्या कहा देखते हैं। कहते हैं, श्रुणु सागर वक्ष्यामि तवास्य तनयस्य हि जातकोक्त फलम सर्वं समाधान रतः खलु नेत्राभ्यां विधृतं यस्माद् अनेनैव जलं मम तस्मान् जलंधरेति ख्यातो नाम्ना भवत् असौ अधुने वैश्य तरुण सर्वशास्त्रार्थ पारग महाप्राक्रमो धीरो योद्धा च रण दुर्मद भविष्यति च गंभीरस्त्वं यथा समरे गुह सर्वजेता च संग्रामे सर्वसंपद विराजितः। वो कहते हैं कि हे समुद्र, तुम्हारे इस पुत्र के जातक के अनुसार मैं फल कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो, क्योंकि इसने मेरी आँखों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह अभी से तरुण है तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह पराक्रमी धीर योद्धा तथा युद्ध में इसे कोई दबा नहीं सकता। यह युद्ध में तुम्हारे समान गंभीर होगा जैसा युद्ध में कार्तिकेय है। युद्ध में यह सबको जीत लेगा। यह सब प्रकार से संपन्न होगा। यह बालक सभी दैत्यों का स्वामी होगा। यह विष्णु को भी जीत सकता है। यह कहीं भी हारेगा नहीं। रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई नहीं मार सकता। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है अंत में वहीं जाएगा। इसकी स्त्री पतिव्रता तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी। सर्वांग सुंदरी, रमणीय, मधुर भाषिनी तथा उत्तम चरित्र वाली होगी। अब उन्होंने तो भविष्य का लेख ही कह दिया कि ये, जबकि वो बालक तो उनका गला पकड़ लिया था, गला इतनी जोर से पकड़ा था कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उस आंसू को उसने धारण किया था, इसलिए उसका नाम उन्होंने जलंधर रख दिया और कहा कि इसकी पत्नी जो है सर्वांग सुंदरी होगी, पतिव्रता होगी और इसे विष्णु भी नहीं मार पाएंगे। यह रुद्र से ही मर सकता है और यह दैत्यों का अधिपति होगा, यानी दैत्यों का राजा होगा। अब कहते हैं सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर समुद्र से पूछकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने उसके भविष्य का लेख लिख दिया और उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं, अथ तद दर्शनोत्फुल्ल नयन सागर तदा तमात्मजम समादाय स्वगेहम अगमन मुदा अगमन मुदा अपोषयन महोपाय स्वबालम मुदितात्मक सर्वांग सुंदरम रम्य महाद्भुत तेजसम अथाम बुधि समाहुई कालनेमिम महासुरम वृंदाभि धा सुताम तस्य तद्भार्यार्थ आयाचत। अब तो ब्रह्मा जी ने लेख लिख दिया था, अब कहते हैं उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान भी हो गए। उस बालक को देखकर समुद्र अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि अपने पुत्र की समान मांग रहे थे। तो समुद्र प्रसन्न होकर उस अपने पुत्र को घर के भीतर ले गए। प्रसन्न होकर अपने बालक का पालन पोषण वह समुद्र करने लगा। वह भी सर्वांग सुंदर तथा परम तेजस्वी था। उसके बाद समुद्र ने कालनेमी नामक महान असुर को बुलाकर उसकी पुत्री वृंदा को अपने पुत्र की स्त्री के रूप में उससे मांगा। हे मुनि वीर, असुरों में श्रेष्ठ कालनेमी ने समुद्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। समुद्र पुत्र वीर जलंधर को उसने ब्राह्म विवाह विधि से अपनी कन्या दे दी। हे मुनि, उन दोनों के विवाह काल में महान उत्सव मनाया गया। उस समय नद नदियां तथा असुरों को प्रसन्नता हुई। वधू सहित अपने पुत्र को देखकर समुद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मणों, नट नर्तक तथा गायकों को पर्याप्त दान दिया। पाताल में रहने वाले जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित किया था, वे सभी भूमंडल में आकर निडर होकर उसके साथ रहने लगे। वे कालनेमी आदि असुर समुद्र पुत्र अंधकासुर को अपनी कन्या देकर बहुत प्रसन्न हुए और देवताओं को पराजित करने के लिए उसकी शरण में आए। वह महाबली समुद्र पुत्र जलंधर अति सुंदरी स्त्री को पाकर शुक्राचार्य के प्रभाव से अपनी प्रजा को अपने वश में कर लिया। कहते हैं कि शुक्राचार्य के प्रभाव से उसने समस्त राक्षसी प्रजा को अपने वश में कर लिया। किसने? जलंधर ने। तो इस तरह से जालंधर उत्पत्ति विवाह वर्णन नाम का 14वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 14वां अध्याय। अब 15वां अध्याय शुरू होता है और उसी क्रम में यह आगे बढ़ रहा है। पुराणों में बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ जो हैं ये हमें शिव जी के महान चरित्र को भी बताते हैं।
0: लीना जी, सच्ची घटनाएं हैं ये तो। शिव पुराण में से जितनी भी घटनाएं हैं सच्ची घटनाएं हैं तो ये तो जानने बहुत जरूरी है। हम कम से कम भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है,
1: बहुत ही जरूरी है।
0: हाँ जी,
1: कि हम जाने कि जलंधर कौन था, अंधकासुर कौन था, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विनाश हुआ, कैसे वह उद्भव को प्राप्त हुआ, तो ये सारी बातें हमें जाननी चाहिए। कि शिव के द्रोही ये राक्षस जब बने और समस्त राक्षसों की सेना लेकर के वे शिव की ओर ही बढ़े, तो किस तरह से शिव ने उनका अंत किया, यह सब बात भी हमें जाननी चाहिए कि शिव को क्या पसंद जी, है जी, और क्या ना पसंद जी,
0: और ये हमें अपने बच्चों को जैसे पहले परियों की कहानियां सुनाया करते थे, हमें ये वाली कथाएं इनको सुनानी चाहिए, क्योंकि कथा के रूप में सुनने से बच्चों को बहुत जल्दी याद होता है और उनको ज्ञान भी होता है, और अपनी संस्कृति का ज्ञान कहानियों द्वारा, इन कथाओं द्वारा सुनाना, ये बहुत ही श्रेष्ठ कर हो रहा उनके जीवन
1: के लिए। जैसे देखिए आजकल मैं देखती हूँ कि बाल हनुमान, हाँ, इस पर भी सीरियल आ रहा है, तो अच्छी बात है कि लोगों का मन इस ओर गया है, जो फिल्म बनाने वाले हैं, निर्माता निर्देशक ये सब हैं, उन लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि ऐसी चीजें हमें परोसनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश माएं क्या करती हैं, बच्चे नहीं खाते हैं तो टीवी खोल देती हैं कि चलो टीवी देखते रहो, और बच्चे भी टीवी देख करके प्रसन्न होते हैं और वो जो है खिला भी देती हैं, खाना खिला देती हैं, तो ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए छोटे बच्चों को, क्योंकि आँख पर भी असर पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ, तो ऐसे ऐसे सीरियल अवश्य बनने चाहिए जिससे कि बच्चों पर एक सुंदर सा प्रभाव पड़े कि अगर वो गलत मार्ग पर जाएंगे तो वो क्या दुर्गति को प्राप्त होंगे, और जब अच्छे मार्ग पर जाएंगे तब क्या पाएंगे। तो मैंने देखा है कि बाल हनुमान देख करके भी बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो शिव से संबंधित बातें जो हैं, जैसे जलंधर की कहानी है या अन्य कहानियां हैं, अभी ये हमने बहुत सारी कहानी बताई बीच बीच में, तो उन सारी कहानियों पर अलग अलग सीरियल बनाए जा सकते हैं, और उस सीरियल को, और वो सीरियल कौन, बच्चों वाला जो सीरियल कार्टून फिल्म होता है, तो कार्टून फिल्म को छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं।
0: एक एक कथा, छोटी छोटी कथाओं को सीरियल रूप में देकर बच्चों का ज्ञान भी बढ़ाया जा सकता है और उनका मनोरंजन भी हो सकता है, और वो देखकर जो चीज याद रखते हैं वो भूलते नहीं,
1: वो कभी भूलते नहीं है।
0: हाँ जी।
1: तो इससे भी जो है हम अपने परिवार निर्माण और व्यक्ति निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि भावना से ही संसार सजा है और भावना से ही सजता रहेगा, अगर दुर्भावना करेंगे तो यह जगत जो है खराब होता जाएगा, अगर सद्भावना करेंगे तो जगत सुंदर।
0: हाँ जी, हाँ जी, और इन सीरियल से उनमें संस्कार भी अच्छे हो जाएंगे
1: जी, जी।
0: बहुत अच्छे संस्कार पड़ेंगे, और अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा, अपने वेद पुराणों का ज्ञान होगा,
1: हाँ।
0: तो ये अगर ऐसे सीरियल बनते हैं तो बच्चे उनको बहुत शौक से देखते हैं, बैठकर देखेंगे, तो अनुरोध है सीरियल बनाने वाले।

0: से कि वो अपने वेदों के ऊपर ही, अपने पुराणों के ऊपर ही छोटे छोटे कथाओं के सीरियल रूप में इनको परोसें,
1: कार्टून
0: दे, हाँ बनाए और दे।
1: रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 15वां अध्याय जो है शुरू होता है। इस 15वें अध्याय में सनत कुमार जी क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो सनत कुमार जी कहते हैं, एकदा वारिधि सुतो वृंदापति रुदार्धि सभार्य संस्थितो वीरो असुर सर्वैः समन्वित तत्र आजगाम सुप्रीत सुवर्चा त्वथ भार्गव तेज पुंजो मूर्त मूर्त इव भाषयन सकला दिश। कहते हैं कि एक बार समुद्र पुत्र वृंदापति वीर जलंधर अपनी स्त्री तथा असुरों के साथ बैठा हुआ था। वहां प्रसन्न चित्त शक्तिशाली मूर्तिमान तेज स्वरूप दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भार्गव शुक्राचार्य आ गए। उन्हें आते हुए देखकर सभी असुरों ने तथा समुद्र पुत्र ने प्रसन्न होकर सादर उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर रमणीय आसन पर बैठे और वे असुर भी पहले की भांति बैठ गए। स्थिर तथा उत्तम शासन वाला समुद्र पुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ। उस दैत्यराज समुद्र पुत्र ने सामने बैठे सिर कटे राहु के संबंध में शीघ्र ही भार्गव से यह पूछा। अब देखिए क्या होता है कि जलंधर तो अपनी प्रजा के साथ बैठा था, लेकिन आ गए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो है वो जन्मजात द्रोही हैं, किसके, देवताओं के, खासकर भगवान विष्णु के, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो हमेशा देवताओं के पक्ष में रहते हैं, वो कभी भी असुर का साथ नहीं देते हैं, और अगर असुर उनसे वरदान मांगते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि असुर की दुर्गति ही दुर्गति होती है। जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला तो दैत्य जो है उसे लेकर के भाग गए थे, फिर दैत्यों के पास वो मोहिनी बन करके चले गए, फिर मोहिनी रूप में उन्होंने दैत्यों को भरमाया और अंततः क्या हुआ, देवताओं को बांटने लगे अमृत। उसमें एक दैत्य जो है स्वर भानु जो था वो राहु और के वो वहां बैठ गया जा करके, तो भगवान विष्णु ने उन्हें जब अमृत पिलाया लेकिन वो तब पहचान गए, पर तब तक एक बूंद अमृत उसके मुंह में चला गया था, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसे काट दिया, तो वो ही राहु और केतु बन गया। तो धर हो गया केतु और राहु हो गया मुख। आज जो नवग्रह हैं उन नवग्रहों में सबसे ज्यादा खुराफाती ग्रह कौन है, वही राहु और केतु। तो सबके जीवन में ये दशाएं लग जाती हैं, राहु की और केतु की। तो इसलिए कहते हैं कि दैत्य कभी भी देवताओं के सगे नहीं हो सकते। तो इन दैत्यों को मारने के लिए भगवान विष्णु हर तरह का उपक्रम रचते हैं, लेकिन भगवान शिव जो है वह भोलेनाथ हैं। अब जो दैत्य तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, उनको भगवान शिव क्या करते हैं, आराम से आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। अब वरदान देने के कारण वो दैत्य जो है बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, और उनका कहना है कि कर्म फल का प्रताप है ये, कर्म अगर उसने किया है तो, तपस्या का चाहे गोर कर लिया है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। बात भी सही है, क्योंकि ये संसार जो है मर्त्य लोक है, भोग लोक है, हम सब भी यहाँ भोग भोग नहीं आए हैं, अपना संस्कार काटने के लिए आए हैं, लेकिन हम मनुष्य भूल जाते हैं इन सब बातों को कि हम अपना संस्कार काटने के लिए आए हैं, इसलिए हम आस्था से दूर हो जाते हैं। आस्था से दूर होते हैं, स्वाध्याय से दूर होते हैं, सत्संग से दूर होते हैं, पुण्य कर्मों से दूर होते हैं, फिर ये भोग लोक जो है हमें फिर नए नए कुसंस्कारों में जोड़ देता है, फिर हम जन्म जन्मांतर लेते रहते हैं। तो यही क्रम चलता रहता है। तो दैत्य पुत्र जो था, दैत्य कौन था, जलंधर। तो जलंधर के पास कौन आए, शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य आए तो कुछ ना कुछ खुरापात तो करेंगे ही, क्योंकि वो दैत्यों के गुरु हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही शुक्राचार्य आए तो उनसे जलंधर ने पूछा कि ये राहु और केतु का क्या मामला है भाई, ये तो बताइए, क्योंकि वो राहु केतु के समय में तो था नहीं, बाद में आया था। तब सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार समुद्र पुत्र की बात को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर भार्गव ने उसे सही कथानक सुनाया। शुक्र ने कहा, अब देखो शुक्राचार्य तो कहता है ना कि चिरंजीव हैं, उन्होंने अमृत तो नहीं पाया लेकिन उन्होंने भगवान शिव से क्या मांग लिया, संजीवनी बूटी। मतलब कि मृत संजीवन औषधि उन्हें मिल गई कि जो मर गया है उसको आप संजीवनी जिलाइए और जिला सकते हैं। तो यह शुक्राचार्य को मिला था भगवान शिव से ही। वो कहते हैं शुक्राचार्य कि जलंधर महावीर सर्वासुर सहायक शृणु वृत्तांतम अखिलम यथावत कथयामी ते पुरा अवद ली वीरो विरोचन सुतो बलि हिरण्य कशिपोश्चैव प्रपत्रो धर्म वित्तम पराजित सुरास्तेन रमेशम शरणम ययु सवा सवा स्ववृत्तांतम आचक्षु सर्वार्थ साधका। वो कहते हैं कि सभी असुरों के सहायक महावीर जलंधर तुम सुनो, मैं संपूर्ण कथा तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु का प्रपत्र विरोचन का पुत्र महावीर धर्मात्मा राजा बलि हुआ था। जब उसने सभी देवों को हरा दिया तब वे स्वार्थी इंद्र आदि को लेकर विष्णु जी की शरण में जाकर अपनी बात कहने लगे। उनकी आज्ञा से छल कर्म में कुशल देवताओं ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए असुरों के साथ संधि कर ली। अमृत प्राप्ति के लिए विष्णु के सहायक देवताओं ने असुरों के साथ आदर पूर्वक समुद्र मंथन किया। तब दैत्यों के शत्रु उन देवताओं ने समुद्र से निकले हुए रत्न चुरा लिए और कपट से अमृत को पी गए। कौन पी गए? देवतागण। अमृत पान से बलवान उन इंद्र आदि देवताओं ने विष्णु जी की सहायता से असुरों को हरा दिया। इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने सभा में अमृत पीते हुए राहु का सिर काट दिया। अब सनत कुमार जी ने कहा, क्या कहा सनत कुमार जी ने? वो कहते हैं, एवं कविस्तस्य शिरश्छेदम राहो ससंश्च अमृतार्थे समुद्रस्य मंथनम देवकारितम रत्नोपहरणम चैव दैत्यानां च पराभवम दैवैर अमृतपानम च कृतम सर्वम च विस्तरात तदा कर्णे महावीरो अम्बुधि बालः प्रतापवान चुक्रोध क्रोध रक्ताक्ष स्वपितुर मंथनम तदा। कहते हैं कि इस प्रकार शक्र ने राहु के सिर कटने तथा देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन की कथा सुनाई। रत्नों की चोरी, दैत्यों की हार तथा देवताओं द्वारा अमृत पान, इनको विस्तार से सुनकर महावीर प्रतापी समुद्र पुत्र अपने पिता के मंथन की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ।
0: बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा आपने जलंधर के जन्म की और उसके यहाँ से जीवन की सुना रही हैं हमारे श्रोताओं को। लीना जी बहुत ही ज्ञानवर्धक है दोस्तों, सभी कथा नोट करें आप और इसको दोबारा ही घर पर पढ़ें। लीना जी क्योंकि अब समय हो चला है, हम एपिसोड को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद बंधु जी।
0: तो दोस्तों मुझे भी इजाज़त दीजिए क्योंकि मैं इस एपिसोड को आगे नहीं बढ़ा सकती, समय हो गया है। अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और

0: पर ही फोकस कर रहे हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो न हरिन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माने शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
0: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है के पी स्क्वायर एल एच बी पी, अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी, दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं

0: हैं। तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है, और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं, ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई है, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहां मेरा मेंटल फाइट है, जहां द्वंद है, जहां मैं कंफ्यूज हूं, जहां डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहां पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना, ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है, जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
3: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जनम बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति
0: स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से मन आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं। वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर मतलब जो इंद्रियां हैं अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी है, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार।

सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान, वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मालवशना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हम आपको रागलेखा दासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भर कर किया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मयाद युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता। आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्यवन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए और यक्षों से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों की तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए सरोवर में उतर पड़े। जब राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी शादि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया। भीम ने उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाएं। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। पत्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ भी कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र रास्ता चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासे से अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बद्री काशियों को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है, तो आगे जाना अनुमति नहीं थी।
0: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया। वो बोला, मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकस और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे। वो मशादी महर्षि गण स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर भयानक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस और भीमसेन गए थे उस और आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूल राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, हे रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस से ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को चोटे करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। जिस समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख कर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर अलग कर दिया।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं लागलिखा दासी जी से। अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा लागलिखा दासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लागलिखा दासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
1: जी। जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया है, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे, तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठाकर ले जाते पांडवों को। सातवें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहां उन्हें राजऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने शास्त्र में पहुंचकर परम धार्मिक राजऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 दिन रात-रात निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि तेरी तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृष्ण था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी पल्लव शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को नांगकर केवल परम सिद्ध देव ऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की पर्चियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यहीं निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। अब हम एक प्रसंग लेते हैं, भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशाल काय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाता गए महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था तो भी उस सर्प के चंगुल में फंस कर वे बेकाबू हो गए। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देख कर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर बोला, राजन मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मन और इंद्रियों को विजय प्राप्त करी
2: जी।
1: उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया, मैंने मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया, इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे उस अवस्था में पहुंचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के छठे भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज सुनो, इसमें सत्य दान क्षमा सुशीलता क्रूरता का अभाव तपस्या दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो पर भ्रमी है और सुख दुख से परे है, यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है, सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बोलचाल मैथुन मित्रवर्ती जन्म मरण ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं। ये जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वे शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। सर बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो, तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली बातें सुन लिया। अब तुम मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है? अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्व उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इसमें किसका महत्व अधिक है किसका कम? सर बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दाम बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो ये बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। विष्णु ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यम्भावी फल को कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम क्रोध लोभ हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही तरिया योनि में जन्म लेता है। फिर सत्कर्म का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी तिरिया योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द स्पर्श रूप रस और गन इसका आधार क्या है, इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि इंद्रिय और मन से युक्त होने को भोक्ता बताया है वही आत्मा या अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों क्या प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। युधिष्ठिर ने कहा, सर मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। विष्णु बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो। तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर ने कहा, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्य को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत हो गया था और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब सचेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में मैं जब स्वर्ग का राजा था दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था, इसने अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे सभी मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि इतनी शक्ति थी कि जिसकी और आंख उठाकर देखता उसका तेज छीन देता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरी पालकी धोई। इस अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त जब पालकी धो रहे थे, मैंने उन्हें लात मारी और तब एक क्रोध में भर कर उन्होंने कहा, अरे ओ सर तू नीचे गिर। तब मेरे राज्य लुप्त हो गए और मैं उत्तम विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर होकर नीचे मुख किए गिर रहा हूँ। अगस्त ने से याचना की, भगवान मैं प्रमाद व शिवेक शून्य हो गया था, उससे आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मैं शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो।

तो श्रोताओं आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ. प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आरजे साक्षी और रेडियो मानव रचना की पूरी टीम की ओर से. आज का ये जो दिन है ना, ये जो त्योहार जो है, ये देश भर में बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है. और इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है. और साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग सच्चे मन से व्रत रखते हैं. और इस व्रत को करने से भक्तों के जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, ऐसा देखिए कहा जाता है. और इस खास अवसर पर जो ब्रज भूमि है, इसमें बहुत ही खास रौनक देखने को मिलती है. और सिर्फ ब्रज भूमि नहीं, पूरे देश में, यानी कि अब तो विदेश में भी जन्माष्टमी का पर्व जो है ये मनाया जाता है. और इस दिन के लिए ब्रज के मंदिरों को सजाया भी जाता है. श्री कृष्ण उत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं. और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो जन्माष्टमी का त्योहार है, ये जो पर्व है ना, वो मथुरा और गोकुल में ना अलग अलग दिन मनाया जाता है. जी हाँ, आप सुन के थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा, लेकिन अब मैं बता दूं आपको. देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस पर्व को मथुरा और गोकुल में अलग अलग दिन ना, भाई क्या वजह है, क्यों मनाया जाता है? तो इसके लिए ना मैं आपको जरूर इसकी पूरी जानकारी दूंगी, लेकिन लेकिन लेकिन आज बहुत सारी होने वाली है बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सभी मना रहे हैं और पवित्र नगरी मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है. पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो कंस के कारागार में हुआ था, यानी कि आधी रात को हुआ था, उस जेल में हुआ था. और इसी वजह से मथुरा में एक दिन पहले धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का पर्व जो है ये मनाया जाता है. मथुरा में जो आधी रात है, यानी कि जब पूरे मिडनाइट हो जाता है, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा जो है वो की जाती है और महाअभिषेक किया जाता है. और वही देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशखबरी गोकुल वासियों को अलग सुबह मिली थी, तो इस वजह से गोकुल में जन्माष्टमी का पर्व अगले दिन सुबह से जो है वो मनाया जाता है. और अगले दिन मनाया जाता है कि जिस दिन खबर मिली थी उस दिन से, उस टाइम से जो है वो मनाया जाता है. और मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी कुछ और भी एक जानकारी है, जरूर आपको बताऊंगी. लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आपको ही मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस त्यौहार को हम मना रहे हैं. और साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जन्माष्टमी की आधी रात को श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण का दूध दही घी शहद और गंगा जल से अभिषेक जो है वो किया जाता है, यानी कि पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है. और इस दौरान शंख और घंटे बजाए जाते हैं और साथ ही साथ जो मंत्रोच्चारण जो है वो किया जाता है. इससे पूरा वातावरण जो है वो पूरा एनवायरमेंट जो है वो भक्तिमय हो जाता है. हर भक्त के मुंह से बस एक ही चीज जो है वो निकलती है, रात 12 बजे सबका यही कहना है कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. और साथ ही साथ एक और यहाँ पर चीज मैं ऐड करूंगी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सुनने को ये हमें मिलता है. और देखिए अलग अलग दिन अलग अलग सुबह गोकुल में जन्मोत्सव जो है ये मनाया जाता है, बड़े उत्साह के साथ ये मनाया जाता है. लोग ढोल नगाड़ों के साथ धुन पर नाचते हैं. मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है वो 4 सितंबर यानी कि आज ही के दिन जो है वो मनाया जाएगा, लेकिन गोकुल में ये मनाया जा रहा है कल यानी कि 5 सितंबर को मनाया जा रहा है. और मैं आपको बता दूं कि ये खुशी ये आनंद ही एक अलग ही लेवल पर है. और कई लोग ये कहते हैं कि भाई मथुरा वृंदावन में कब मनाई जा रही है लेकिन गोकुल में कब मनाई जा रही है ये हम इतना चर्चा नहीं करते हैं. तो गोकुल में मनाई जा रही है कल और बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन आज जो हम मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, कई सारे लोगों का उपवास है और बड़ी धूमधाम से ये मन रही है. अलग अलग जगहों पर आपको आज कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी देखने को आपको मिल जाएगी. श्री कृष्ण की झांकी आपको उनके बालपन से लेके और उनकी सारी जो लीलाएं हैं जो वो करते थे ये सारी आपको चीजें मिल जाएंगी. और कई जगहों पर इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पर लोग बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को जो है सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को मनाते हैं. और पूरा जो स्टोरी टेलिंग होता है वहां पर होता है, आप जाके वहां देख सकते हैं. और बहुत अच्छे से नाटक के जरिए सभी को जो है वो बताया जाता है, श्री कृष्ण की उनकी पूरी लीलाओं के बारे में दिखाया जाता है. तो बहुत ही आज का मजेदार दिन है. और आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये जरूर मुझे बताइएगा देखने के लिए इन लीलाओं को. फिलहाल कहीं मत जाइए, अभी फिलहाल एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें. इसी के साथ आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये जो अवसर है, ये जो दिन है, ये जो पर्व है, हम मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से हम मना रहे हैं. इसी के साथ आपको एक ना बात जो है वो बताती हूँ. हम श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं तो इसी के साथ ना आपको एक और बात मैं यहाँ बताती हूँ. देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु की साधना करने से सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है. भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में मौजूद सभी आभूषण गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन के आदर्शों का प्रतीक माना इन्हें जाता है. और इसके और एक और आपको बात मैं बताती हूँ, भगवान श्री कृष्ण के आभूषणों का क्या अर्थ है ये भी अब आज आपको बताती हूँ. तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि अगर हम यहाँ पर बांसुरी की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार बांसुरी के बिना बिल्कुल अधूरा माना जाता है. प्रभु की ये जो बांसुरी है ना, प्रभु को बांसुरी बहुत ही ज्यादा प्रिय है. जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी की जो मधुर धुन है, इससे गोपियां और पशु पक्षी मंत्रमुग्ध हो जाते थे. साथ ही प्रभु की बांसुरी जब वो बजाते थे तो देखिए, प्रभु की बांसुरी का ये संदेश वो हमें ये देती है कि अगर कोई व्यक्ति अहंकार और स्वार्थ को मिटा देता है तो प्रभु उसे जीवन में दिव्य आनंद का संगीत उसके जीवन में भर देते हैं. और अगर उनके वैजयंती माला की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती माला बहुत ही ज्यादा प्रिय है. श्री कृष्ण के श्रृंगार का मुख्य हिस्सा वैजयंती माला भी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माला राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को दी थी और इस माला को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इसे धारण करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है. तो वहीं पीले वस्त्र की अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए प्रभु को पीतांबर भी कहा जाता है. और इस शब्द का अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला. पीले वस्त्र जो है, पीले रंग के जो जो पीला रंग है, ये ज्ञान और

प्रकाश का प्रतीक माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाला जो है वो वाले जो है प्रकाश है, और इसीलिए पीले रंग के आभूषण जो है ये पहने जाते हैं, उनका जो श्रृंगार है वो पीले वस्त्र से जो है वो किया जाता है। तो उसी के साथ इनके और भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगी आभूषणों के बारे में, लेकिन अभी फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के आभूषणों की मैं बात कर रही हूँ, क्या क्या महत्व है ये सारी हम बातें कर रहे हैं। देखिए बाजूबंद की अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण बाजूबंद भी धारण करते हैं, जिसे जो है वो रंगदा नाम से भी जाना जाता है। बाजूबंद से भगवान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ती है, ऐसा माना जाता है कि बाजूबंद पहनने से नकारात्मक जो शक्तियां हैं उससे रक्षा होती है। तो वहीं कुंडल की बात करें तो इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को कुंडल बहुत ही प्रिय है। लड्डू गोपाल का अभिषेक करने से उनके इसके बाद उन्हें कुंडल भी पहनाए जाते हैं और उनके कुंडल जो है वो आकर्षण और दिव्यता को दर्शाते हैं। और आखिरी में आती है पायल, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पायल को श्रृंगार का जो विशेष हिस्सा माना जाता है। कान्हा जी की ये पायल मोह माया से ध्यान हटाकर मन को जो है वो परमात्मा के चरणों में एकाग्र करने का एक संकेत जो है वो देती है। तो देखिए ये सारे आभूषण ये श्री कृष्ण को जो है वो समर्पित जो है और उनको इस तरह से पहनाए जाते हैं, और इनके पीछे का क्या महत्व है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो मैंने आपको बताया, और लोग जो है उनकी मान्यताओं के अनुसार। चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला एक छोटे से ब्रेक की इजाजत का, तो आप कहीं मत जाइए और साथ ही मुझे ये बताइएगा कि आज शाम का क्या प्लान है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आज दोपहर का क्या प्लान है, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078, और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए मैं आपको बता दूं कि आज ना हमारी बातें तो हैं वो चल रही हैं, और आज जो है वो फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे वाले दिन आपके लिए खास जानकारी लेकर के आ जाती हूँ। अच्छा, अभी हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए आपकी सेहत पर भी बहुत सारी बातें आपकी लेकर के आती हूँ ताकि आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। और देखिए चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो और आपका प्लान, क्योंकि कई सारे लोगों का प्लान है अलग अलग जगहों पर जाने का, आप मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं, जरूर जाइए, लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है, आजकल H1N1 बहुत ज्यादा फैला हुआ है, सीजनल फ्लू जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो ऐसे में आपको अपनी सेहत का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल जो है वो रखना है, और आप अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि ये फ्लू जो है चपेट में आपको ले सकता है। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बाहर मत जाइए, और अगर बाहर जा रहे हैं बच्चे, बूढ़े लोग या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो मैं खासकर एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं चाहे आपकी तबीयत ठीक हो, लेकिन आपको मास्क जरूर पहनना है, और आपको हर किसी से 6 फीट की दूरी आपको बनाए रखनी है ताकि कोई भी फ्लू आप जो है अपने अंदर ना लें, यानी कि सीजनल फ्लू जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है वो फैल रहा है, कॉन्टैक्ट में आने से फैल रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये बनने नहीं देना है, दूरी बनाए रखनी है, और साथ ही साथ H1N1 ये जो है मैं कहूंगी खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको ये बहुत बुरी तरह से परेशान कर सकता है, लोग इससे काफी ज्यादा बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं, और इसे बिल्कुल भी आप देखिए लापरवाह मत होइए इसको लेकर। और H1N1 अगर किसी को भी है तो आप भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, आप अगर जा रहे हैं तो मास्क जरूर आपको पहननी है। और साथ ही देखिए इसके लक्षणों की अगर बात करें, सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूलना, सीने में दर्द होना या फिर भ्रम की स्थिति या बेहोशी होना, और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, खांसी का लगातार बढ़ना या बुखार का कम ना होना, और साथ ही अगर कोई भी ऐसे आपको लक्षण नजर आ रहे हैं तुरंत डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन आप ना करें। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि खुद से दवाई लेनी या केमिस्ट के पास जाके दवाई लेनी शुरू कर देते हैं, बल्कि आपको नहीं करना है। हर किसी की बॉडी हर सॉल्ट पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसीलिए मैं ये जरूर कहूंगी कि आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और सही ट्रीटमेंट लें, बिना आप दवाइयों के डॉक्टर के लिखी आप अपने आप से कोई दवाई ना लें। चलिए इसी के साथ अब कुछ और भी बातें होने वाली है हमारे साथ आकर के जुड़ने वाली है आज हमारी एक एक्सपर्ट जो की बात करने वाली है बच्चों की हेल्थ की, क्योंकि हमारी सीरीज जो है वो चल रही है जिसे मैं लेकर आती हूँ वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे, और इस पे हम बहुत सारी बातें करते हैं, और आज हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। तो देखिए कौन है, और साथ ही आज बच्चों के दांतों की बात की सेहत की बात होने वाली है तो क्या आज का टॉपिक है, ये सारी बातें मैं करूंगी इस सीरीज में, लेकिन अभी फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel love.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है मंडे का दिन और मंडे वाले दिन आज साक्षी आपके साथ ढेर सारी बातें मैं लेकर के आ गई हूं। और देखिए, हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया, हमने सेलिब्रेट किया है देखिए अच्छे से, बहुत धूमधाम से। देखिए त्योहारों का सीजन है ना, त्योहारों के सीजन में ना क्या होता है ना कि बच्चे बड़ा मीठा खाते हैं। हम सभी खाते हैं, बच्चे क्या खाते हैं, हम सभी खाते हैं। अब होता यह है कि जब हम इतना मीठा खाते हैं ना, दांतों का तो ख्याल रखना पड़ेगा, सेहत का ध्यान हम रखते हैं, लेकिन दांत जो है वो भी हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है। दांतों की अगर बात करें तो देखिए इस पर अब कुछ सवाल जो है वो जो पेरेंट्स हैं उनके आते हैं कि हमारे बच्चों की दांतों की सेहत के बारे में साक्षी बात की। और इसी खास बात पर देखिए मैं एक बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के आ गई। सेगमेंट का नाम है स्पार्कलिंग स्माइल्स। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी आज की बहुत ही खास एक्सपर्ट, जो कि हमारे साथ पिछले जो हमारा एपिसोड था यानी कि फ्राइडे के दिन भी हमारे साथ जुड़ी थी। एक बार फिर से हमारे साथ हमारी आज की एक्सपर्ट जो है वो जुड़ गई हैं, और इनका नाम है डॉक्टर मधुलिका श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर मानव रचना डेंटल कॉलेज से। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में।
1: या थैंक यू सो मच साक्षी।
0: डॉक्टर, आज भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक बार फिर से पहले तो आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना में, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमारी इतनी सारी बातें हुई, कई सारे पेरेंट्स का सवाल जो है वो आया है कि डॉक्टर माधुलिका से प्लीज़ आप पूछें सवाल जो है, वो सारे सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। लेकिन उससे पहले वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेगमेंट में।
1: ओके, थैंक यू सो मच साक्षी फॉर कॉलिंग मी अगेन।
0: जी तो डॉक्टर, हमारा जो पहला सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या रूट कैनाल, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, रूट कैनाल को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें, ये होता क्या है? और हम ये तो सुनते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं एक टाइम के बाद हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा दर्द है या पेन है, रूट कैनाल करने की ज़रूरत है, लेकिन ये होता है तब जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चों में भी क्या रूट कैनाल की ज़रूरत होती है? तो ये दोनों सवालों का आप जवाब जो है आपको फटाफट से देना है।
1: हाँ जी बिल्कुल साक्षी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस के लिए भी। ये पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे जो क्लिनिक और हमारे कॉलेज के डिपार्टमेंट में आते हैं कि मैम ये तो मिल्क टूथ है तो वैसे भी गिरना ही है, फिर रूट कैनाल क्यों करना है? तो मैं यहाँ सबको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मिल्क टूथ को प्री मेच्योरली रिमूव कर देना हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। लोग सोचते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं कि रूट कैनाल क्यों ही कराना है, इसको निकलवा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बच्चे के दांत में बहुत गहरी कैविटी है, मिल्क टूथ के है, जिसकी वजह से उसके अंदर की नसों में, जिसको हम नर्व इन्फेक्शन या वो इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका है, मतलब कि अब सिर्फ रेस्टोरेशन से, जो टूथ कलर रेस्टोरेशन बच्चों के कर देते हैं हम जस्ट फॉर द टूथ डिके, उससे काम नहीं चलता है, तो इसका मतलब है कि अब वो दर्द बता रहा है, यानी कि इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका है। तो उन बच्चों में हमें रूट कैनाल करना ही पड़ता है टू सेव दैट टूथ। तो ऐसे केसेस में हम कुछ टाइम, जैसे कि मुंह में रहता ही है दांत, तो हम पल्प थेरेपी, जो बच्चों में रूट कैनाल होता है उसको हम पल्पेक्टमी कहते हैं, जिसे कॉमनली बेबी टूथ का रूट कैनाल कह सकते हैं। ठीक है मैम, तो इसका पर्पस सिर्फ टूथ को बचाना नहीं है बल्कि इन्फेक्शन और पेन को कंट्रोल करना भी है, और जो कि मदद करता है हमारा च्यूइंग में बच्चों के, और परमानेंट टूथ के लिए स्पेस भी प्रिजर्व करता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेगमेंट में आपको बताया भी था कि हमेशा बच्चों के दांत में दर्द है तो उसका इलाज ये नहीं होता है कि बस दांत निकलवा दो। तो दांतों को सेव करना फॉर द टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका सबसे सही तरीका है, अगर वो सिर्फ रेस्टोर नहीं हो सकता है तो उसका हम रूट कैनाल कराएं बच्चों में।
0: जी देखिए, बहुत सारी बातें हमारी चल रही हैं हमारी आज की एक्सपर्ट से, और भी कुछ सवाल हैं और ज़रूर इनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: उठता तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत ही खास सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं बच्चों के दांतों की और उनके सेहत की, और सेगमेंट का नाम है स्पार्कलिंग स्माइल्स। डॉक्टर मधुलिका आज हमारे साथ जुड़ी हुई है मानव रचना डेंटल कॉलेज से। मैम, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही थी, तो मेरा अगला सवाल है, जो दूध के दांत हैं उन पर क्राउन की ज़रूरत कब पड़ती है, और ये क्राउन सबसे पहले तो ये है क्या वो हमें बताइए, स्पेशली रूट कनाल जैसे की बात करी है या ट्रीटमेंट के बाद अगर बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, इस प्रोसेस के बारे में बताइए।
3: हाँ जी साक्षी, बिल्कुल। सो पेरेंट्स को कभी कभी सरप्राइज होता है आकर कि मिल्क टूथ पर क्राउन, मैम ये कैसे है सर? बट यस, क्राउन्स आर वेरी यूजफुल इन चिल्ड्रन। अगर मिल्क टूथ में बहुत ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है
2: जी,
3: या जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो रूट कैनाल जिसको कि पल्पेक्टमी कहते हैं या पल्पोटमी है, उसके बाद टूथ हमारा बहुत ही वीक हो जाता है, तो सिंपल फिलिंग समटाइम्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है, ठीक है। तो उस केस में, ऐसे केसेस में स्पेशली जबकि वो बैक टीथ हैं, हम यूजुअली स्टेनलेस स्टील क्राउन यूज करते हैं, और आप इसे इसे टूथ का एक प्रोटेक्टिव कैप भी समझ सकती हैं, राइट। सो क्राउन टूथ को फर्दर ब्रेक होने से प्रोटेक्ट करता है और फंक्शन उसके रिस्टोर करता है और ट्रीटमेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, मीन्स वो खाने में भी मदद कर रहा है, और इतनी जल्दी खाली हमने सिर्फ उसको टूथ मटीरियल से ही रेस्टोर नहीं किया है बल्कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ क्राउन दिया है। सो क्राउन लगाना सिर्फ टूथ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं है, इट इज मेनली अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द टूथ अंटिल इट नेचुरली एक्सफोलिएट्स।
2: जी जी, देखिए क्राउनिंग की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर दांतों पे कैप की भी बात, इसे हम कैप कह सकते हैं, और इसकी ज़रूरत जो है ये पड़ती है बच्चों में भी। तो इसीलिए अगर कभी भी आपको लगता है कि दांतों में दर्द है बच्चे के और बच्चा जो है ज़बरदस्ती जो है आप वो खाना खा रहा है और उसको दर्द भी हो रहा है, परेशान है, तो आप ये मत सोचिए कि वो दांत निकल जाएगा। देखिए कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत होती है, लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं होती है, डॉक्टर के पास डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है और तभी ट्रीटमेंट जो सही ट्रीटमेंट है वो मिल सकता है। अब बहुत सारी हमारी बातें हो रही हैं और डॉक्टर मधुलिका जो है वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर मधुलिका, मेरा अगला सवाल आपसे ज़रूर रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगी जिसके बाद और भी बहुत सारी होंगी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड। See you.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूं। और आज हमारा स्पेशल सेगमेंट जो है वो चल रहा है, सेगमेंट का नाम है स्पार्कलिंग स्माइल्स। आज मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर मधुलिका श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर मानव रचना डेंटल कॉलेज से। बहुत सारी मैम आपसे बातें हो रही हैं और बच्चों के दांतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, रूट कैनाल या फिर क्राउनिंग के कैपिंग के बारे में भी बात करी है मैंने। अब मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ कि अगर बच्चे का परमानेंट जो टूथ है वो कम्प्लीटली नॉकआउट हो जाए तो पेरेंट्स को तुरंत क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए?
1: हाँ जी साक्षी, तो ये जो टूथ ट्रॉमा है, डेंटल ट्रॉमा, सो ये एक ट्रू डेंटल इमरजेंसी हम कह सकते हैं। अगर बच्चे का परमानेंट टूथ कम्प्लीटली नॉकआउट हो गया है तो पेरेंट्स को पैनिक नहीं करना चाहिए सबसे पहले, एंड टाइमली टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए उन्हें। सबसे पहले उन्हें क्या करना है कि टूथ को क्राउन, यानी जो पार्ट माउथ में दिखता है उसे क्राउन कहते हैं, सिर्फ उसे पकड़ें, रूट को टच नहीं करना है। और अगर टूथ डर्टी है, मान लीजिए कोई बच्चा खेलते हुए गिर गया है और दांत बाहर आ गया है, तो अगर वो डर्टी है तो जेंटली सिर्फ वाटर से रिंस कर सकते हैं, बट स्क्रब नहीं करना है और रूट को डिसइंफेक्ट भी नहीं करना है आपको खुद से। आइडियली टूथ को जितना जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए, एंड इफ इमीडिएट रीप्लांटेशन, हम इसको रीप्लांटेशन कहते हैं क्योंकि वो बच्चे का परमानेंट दांत है, तो ऐसे केसेस में हम रीप्लांट करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है तो टूथ को ड्राई बिल्कुल नहीं होने देना है। घर में अगर हो गया है तो आप दूध यानी मिल्क को, एक सुटेबल टूथ प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन है, उसमें रखकर डेंटिस्ट के पास इमीडिएटली जा सकते हैं
0: जी।
1: और सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉक्ड आउट प्राइमरी और मिल्क टूथ को पेरेंट्स खुद से रीम्प्लांट नहीं करना चाहिए क्योंकि इट कैन डैमेज द डेवलपिंग परमानेंट टूथ अंडरनेथ। तो हम परमानेंट की तो बात कर रहे हैं कि उसको ले जाना चाहिए, लेकिन अगर प्राइमरी टूथ है तो हम उसको रीम्प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, मतलब मिल्क टूथ को। सो एक बात हमेशा याद रखें कि परमानेंट टूथ, और अगर वो नॉक्ड आउट है तो हैंडल विद द क्राउन, कीप इट मॉइस्ट एंड रीच द डेंटिस्ट इमीडिएटली बिकॉज एवरी मिनट मैटर्स।
0: बिल्कुल, देखिए बातें हमारी चल रही हैं, और अगर देखिए होता यह है कि हम सोचते हैं कि कोई अच्छी जगह अगर हमें पता हो या डॉक्टर के पास हमें कंसल्ट करना है तो कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कौन से डेंटिस्ट के पास जाएं, हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप यही सोच रहे हैं तो आप मानव रचना डेंटल कॉलेज जो है वो आ सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत सारी मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी जो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, जो कि बाहर भी यूज़ होते हैं और अब इंडिया में भी यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर वो मौजूद हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको सभी तरह के ट्रीटमेंट जो हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, बड़ों से रिलेटेड हो, बुज़ुर्गों से रिलेटेड हो, सारे ट्रीटमेंट, सारी जो सलाह है वो एक्सपर्ट गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और इनफैक्ट पॉकेट पर आपके ज़्यादा दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अगर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेनी है तो फटाफट से आप मानव रचना डेंटल कॉलेज आ सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पर आके आप अपना कार्ड बनवाइए और आके सीधा डॉक्टर से मिलिए। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, और अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर के आइए ताकि उनको सही ट्रीटमेंट मिल सके, सही सलाह दांतों के लिए, स्वास्थ्य को उनके दांतों के वो मिल सके। मैम, मैं आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल जो है वो जानना चाहूँगी, क्या वो खास संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं?
1: हाँ जी, तो बिल्कुल साक्षी, तो मेरा सिंपली पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है कि मिल्क टीथ टेम्परेरी ज़रूर हैं बट दे आर नॉट अनइम्पॉर्टेंट, और डेंटल इमरजेंसी में अर्ली एक्शन कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन द लाइफ्स। थैंक यू सो मच।
0: चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है अब इजाज़त लेने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर मधुलिका, आप हमारे रेडियो स्टेशन आए, इतनी सारी जानकारी दी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
1: या सेम हियर साक्षी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
0: चलिए इसी के साथ अब वक्त लेते चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आगे होंगी और भी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, और अपने दांतों की सेहत पर ध्यान दीजिए, खुश रहिए। और देखिए हमारे दांत जो है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी ना हमारे दांतों की वजह से आता है। अगर दांत नहीं होंगे मुँह में तो आपको ना मतलब हंसने में, बात करने में ना थोड़ी कठिनाई आएगी, तो इसीलिए अपने दांतों की सेहत बनाए रखिए और बस हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel life.

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. इसी के साथ मैं लेकर के आ गई हूँ बड़ा ही खास आपके लिए प्रोग्राम और साथ ही सेगमेंट स्पार्कलिंग स्माइल में. आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े और साथ ही चलिए इसी के साथ आपको बता दूं, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है. ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और साथ ही आपको देखते हैं आपको डाउनलोड करना है, जिसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर ऊपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप को और कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, इंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और बहुत सारी होती है बातें। इसी के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत सारी आज हमने बातें करी हैं किस तरह से आप इस दिन को मना रहे हैं। बस मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है, मास्क आप जरूर पहनिए और 6 फीट की दूरी आपको बनाए रखनी है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, कल मिलूंगी आपसे, होंगी ढेर सारी बातें और आपके लिए खास रेसिपीज लेकर के आऊंगी। सैटरडे का दिन है और चलिए हम बात करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एज नॉलेज पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा गंभीर विषय है, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है डायबिटीज बड़ी होकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले आती है और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है किडनी को।

0: किडनी वैसे तो ईश्वर ने हमें दो दी हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसी एक में भी आ जाए तो भी काफी संभल के चलना पड़ता है। और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो आगे जाकर बहुत गंभीर बीमारियां दे जाती हैं। अब डायबिटीज और किडनी का क्या कनेक्शन है, या फिर डायबिटीज के बाद आपको कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कुछ सवाल और बहुत सारे जवाब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष महाजन, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से, जिनसे आज हम पूछेंगे ऐसे ही कुछ सवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका रेडियो मानव रचना में।
1: नमस्कार, ये मेरा दूसरा विजिट है मानव रचना का। मैं मानव रचना को हार्दिक मतलब थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं जन कल्याण के लिए लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकूँ।
0: जी, तो सर सबसे पहले हम बात करें डायबिटीज़ और किडनी की, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जब काफ़ी बढ़ जाती है तब जाकर सीरियसनेस आती है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो सिर्फ यही जानना चाहूँगी, डायबिटीज़ और किडनी आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं?
1: पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है भारत वर्ल्ड का कैपिटल है डायबिटीज में, 75 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज है, और बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी जो है उनके 67% जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके कंट्रोल रहते नहीं है डायबिटीज़, दवा खाने के बावजूद भी। बहुत लोग तो दवा भी नहीं खाते, उनको पता नहीं चलता। और अगर लंबे समय तक डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हमारे किडनी के जो माइक्रोस्कोपिक वेजल्स हैं और फिल्टरिंग यूनिट से उसमें डैमेज और प्रेशर बनने लगता है, जिससे कि किडनी की खराबी स्टार्ट हो जाती है।
0: जी।
1: और सबसे पहला लक्षण जब स्टार्ट होता है वो यूरिन में प्रोटीन की लीकेज होना स्टार्ट होता है। और इस ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि लक्षण जल्दी नहीं आते, काफ़ी समय अनकंट्रोल डायबिटीज के काफ़ी समय के बाद लक्षण आते हैं।
0: जी,
1: तब तक 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो गया होता है।
0: जी बिल्कुल, यही चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, किडनी डैमेज, वैसे तो हमारे पास दो किडनी होती हैं, लेकिन अगर एक डैमेज होती है तो घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरी पर भी कब असर पड़ जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर एक पेशेंट पहचाने कैसे कि उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, खासतौर पर से वो पेशेंट जो डायबिटिक है, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2।
1: हाँ, मैं आपने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ का नाम लिया, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले टाइप 1 की बात करूँगा। टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट को साल में 5 साल में एक बार एक जांच होता है, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, और उसकी जांच ज़रूर करवाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूरिन में प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाता है।
0: जी।
1: और काफ़ी सालों तक ये रहता है, उसके बाद कुछ लक्षण आते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में सारे मरीजों में साल में एक बार यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो और EGFR एक टेस्ट होता है, जिसमें किडनी कितना परसेंटेज काम करता है उसमें हमें पता चलता है कि किडनी डैमेज हमारी हो रही है नहीं हो रही है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपने KFT का जांच कराया, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, लंबे समय तक डायबिटीज़ है आपको, तो आपके किडनी डैमेज नहीं हो रहे हैं। क्रिएटिनिन जो 1.0 से 1.1 जब तक होता है तब तक आपके 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो गए। तो जो पहला लक्षण जो हमें देखने को मिलता है वो पेशाब में प्रोटीन आना, तो ये जांचों में ही पता चलता है, और EGFR एक जांच होता है, तो ये सबसे पहला होता है। बाकी जो पैर में सूजन, चेहरे में सूजन ये, और पेशाब कम होना या बहुत ज़्यादा होना, ये सब थोड़ा सा बाद में ये डेवलप करता है। लेकिन इसलिए अगर किसी को डायबिटीज है तो साल में एक बार USER की जांच और EGFR की जांच जरूर करवाएं।
0: जी बिल्कुल, अब ये टेस्ट क्या है डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन अभी जो वक्त है वो एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, और अपने सवाल पूछ सकते हैं आप 8010781077।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, नॉलेज पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज और किडनी के बारे में, यानी किडनी प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज के कारण होती है। लेकिन डायबिटीज का लेवल क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बता सकते हैं कि किडनी में कहीं कोई समस्या चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष महाजन। बहुत सारी बातें सर आपसे हम जान रहे हैं और आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि किडनी में प्रॉब्लम होती है पर पता नहीं चलती है, काफ़ी देर बाद पता चलती है, वो भी जब आप टेस्ट कराते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्रेटिनिन जो हम KFT वगैरह कराते हैं उसमें कुछ नहीं आता है,
1: स्टार्टिंग इनिशियल फेज में नहीं आता।
0: जी, इनिशियल फेज में नहीं आता है, यानी अगर किडनी खराब होनी शुरू हो रही है और आपने KFT कराया तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा अगर वो KFT नॉर्मल दिखा रहा है। लेकिन यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कुछ टेस्ट के नाम बताए थे, UACR यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ये मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि ये कब कब कराने चाहिए, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, क्या कुछ डिजिट्स जो होती हैं, क्योंकि आम इंसान को नहीं समझ में आता है जब टेस्ट आते हैं, और कब कब करानी चाहिए किसी को।

0: डायबिटीज है सिर्फ उसको करानी चाहिए, जिसको डायबिटीज नहीं है उसको भी कराना चाहिए।
1: हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। जिनको डायबिटीज है, हाँ ये बात मैं जरूर बोलूंगा, हर किसी डायबिटिक पेशेंट के किडनी नहीं खराब होते। जिनके लंबे समय तक जिनका डायबिटीज है और जिनके डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं है, उनमें चांसेस हाई हो जाते हैं। डायबिटीज खुद है वो एक रिस्क फैक्टर है। इसके साथ एक और रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो हाइपरटेंशन। बहुत सारे मरीज, डायबिटिक मरीज को ऐसा भी देखा गया है कि उनको बीपी का भी इश्यू होता है। अगर ये दोनों नहीं कंट्रोल होते हैं तो दो रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं किडनी डैमेज होने के, जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स और हमारे जो फिल्टरिंग यूनिट्स किडनी के जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उससे प्रेशर बढ़ता है। और जो दो जांच जो मैंने बताया, EGFR और USER, एक दो और कंडीशंस ऐसे होते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है, सिर्फ बीपी भी है तो उसमें भी प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। एक और कंडीशन होती है जब बच्चे अब किसी भी उम्र के में हो जाता है, कंडीशन बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें अंदर किसी भी कारणवश ऑटोइम्यून कारण हो या इन्फेक्शन के कारण हो या किसी और कारण हो या हेरिडिटरी भी, तो उसमें प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो साल में एक बार टाइप 2 डायबिटीज के स्पेशली पेशेंट जो होते हैं या हाइपरटेंसिव भी हैं, तो साल में एक बार USER की जांच कराएं और इसकी जो वैल्यू 0.3 से कम होनी चाहिए। अगर इसे ऊपर है तो आपकी प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो गई है। दूसरा, टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको 5 साल में एक बार स्क्रीनिंग कराना बिल्कुल जरूरी है। हालांकि ये टाइप 1 टाइप 2 की तो हम बात कर ही रहे, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा कि अगर आपको ये डिटेक्टेड नहीं भी है तो एक आम इंसान को साल में एक बार USER की जरूर जांच कराए, क्योंकि मेजॉरिटी जो इंसान जो पॉपुलेशन है इंडिया में उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटिक है भी कि नहीं। तो शायद वो ये जांच कराए तो उनको पता चलेगा कि तुमको 2-3 साल पहले से डायबिटिक है, उनको पता ही नहीं क्योंकि सिम्टम्स तो आते नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन इससे पता चल जाता है कि डायबिटीज भी है या बीपी भी है और इनके प्रोटीन की लीकेज भी, किडनी का डैमेज भी स्टार्ट हो गया। तो कुछ हद तक अगर हम इस जाँचों पर अगर नज़र रखते हैं तो कुछ हद तक हम किडनी के डैमेज होने का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे डायबिटीज़ के सिम्टम्स जो जनरली देखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बहुत ज़्यादा अचानक से भूख लगना और वेट कम होना, एकदम से आपका वेट कम हो रहा है तो भी ये सतर्क होने वाली बात है। क्या किडनी के भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स कहीं कुछ कंफ्यूज कर सकते हैं किसी को?
1: हाँ जी बिल्कुल, अगर आपको डायबिटीज है, जैसे कि मैंने बोला अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है काफ़ी सालों से, तो पेशाब आपके फ्रॉथी होना और बार बार अगर यूरिन फ्रॉथी हो रहा है, उसमें झाग आ रहा है, तो आप ये अनुमान कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो गई है। दूसरा, पेशाब कम होना या ज़्यादा होना, पैरों में सूजन होना या चेहरे में सूजन होना, फेशियल पफिनेस जिसको हम बोलते हैं, प्लस लेथार्जी महसूस करना, बहुत आलस बनाना, नींद बहुत आना, लेथार्जी होना, कमजोरी महसूस करना, क्योंकि अगर किडनी अगर डैमेज होने लगता है तो आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जो किडनी जो फिल्टर करती है वो जमा होने लगते हैं, उल्टी उल्टी जैसा महसूस या भूख कम लगना,
0: कम भूख लगना।
1: अगर ये सब सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आप जरूर एक नियर बाई नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और इन जाँचों पर नजर रखें, EGFR हो गया, USER हो गया, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है या आपको बीपी है, तो इन दोनों का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें।
0: जी,
1: अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग भी बंद रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग रहें।
0: जी, बीपी की बात आपने कही है तो बीपी के बारे में भी हम जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज ही हो गया है और बहुत सारे लोगों को होता चला जा रहा है। सो डायबिटीज और बीपी दोनों ही कहीं ना कहीं किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनकी जांच करना, इन पर नजर रखना ये भी जरूरी है। सो कैसे आप कर सकते हैं, क्या इनकी सही जो मात्रा है वो होनी चाहिए या फिर क्या रीडिंग्स होनी चाहिए, ये जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा के साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल. नॉलेज पार्टनर है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातें बहुत सारी डायबिटीज किडनी प्रॉब्लम्स और हाइपरटेंशन के बारे में चल रही हैं. ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बड़ी प्रॉब्लम्स ला सकती हैं. यानी अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो किडनी पर इफेक्ट हो सकता है अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है. कौन से टेस्ट कराने चाहिए ये तो हमें पता लग गया है, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है तो किन बातों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि डायबिटीज प्लस ब्लड प्रेशर, चीनी मना है और यहाँ पर नमक भी कम करना है, तो पेशेंट वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है. तो ऐसी कुछ बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष महाजन, जो कि जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं. इनसे हम ऐसे ही कुछ सवाल पूछ रहे हैं. डॉक्टर साहब, डायबिटीज तो एक पेशेंट के लिए अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज के लेवल्स अप एंड डाउन होने लगते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाए, तो यहाँ पर चीनी बंद है, उधर से आप मसालेदार नहीं खा सकते, नमक कम करना पड़ेगा आपको और लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये दोनों चीज़ें खासतौर पर से अब बीपी की बात हम कर रहे हैं, सो बीपी कैसे किडनी को इफेक्ट कर सकता है?
1: सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज, हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है उनका टेस्ट जो है वो नमक के प्रति बहुत ज़्यादा है. महात्मा गांधी ने भी सॉल्ट मूवमेंट किया था और बचपन से ही जो हमारा जो टेस्ट जो बर्ड्स जो डेवलप है वो हाई सॉल्ट का ही टेस्ट बर्ड्स डेवलप्ड है. और मेजॉरिटी इंडियन, जैसे कि मैंने बताया 67% लोग के डायबिटीज भी नहीं करना, बहुत लोगों को डायबिटीज का पता भी नहीं होता. वैसे सेम ब्लड प्रेशर में कहते हैं अब नॉर्मल हो गया, 130-140 भी अगर बीपी पेशेंट को है सिस्टोलिक तो वो बोलता है कि नहीं हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन ये अब नॉर्मल है. और ये काफ़ी समय तक अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो किडनी के जो फिल्टरिंग यूनिट्स है उसमें ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है. और उसमें भी एक कंडीशन हम बोलते हैं, अगर लंबे समय तक बीपी नहीं कंट्रोल है तो आपके किडनी के तो फिल्टरिंग यूनिट्स डैमेज हो ही रहे हैं और यूरिन में प्रोटीन के भी लीकेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि हम एक कंडीशन बोलेंगे हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी. अगर किसी मरीज में ये दोनों है तो मतलब एक तो रिस्क फैक्टर है या दूसरा भी है डबल रिस्क फैक्टर, मतलब ड्यूअल हिट टू द किडनी, तो किडनी का जो डैमेज होने का जो प्रक्रिया होता है वो डबल स्पीड में हो जाता
0: है, बढ़ जाती है,
1: स्पीड बढ़ जाती है इसमें. तो इसमें बस दो चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे, नमक कम से कम मात्रा लें, सेंधा नमक का, अगर आपको नमक का ही शौक है तो एक सेंधा नमक का एक कंट्रोल्ड मात्रा में आप उसका इस्तेमाल करें. और रही बात डायबिटीज़ की, आपने बोला सही बात बोला, लोगों को मीठा खाने का भी बड़ा शौक है. आजकल अच्छे अच्छे स्वीटनर्स आ गए हैं जो शुगर फ्री होते हैं, स्टीविया हो गया, शुगर फ्री हो गया, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके टेस्ट बड बहुत ज़्यादा क्रेविंग करता है तो
0: जी.
1: और इनफैक्ट आजकल तो चॉकलेट्स भी कुछ ऐसे ऐसे मार्केट आ गए हैं जो कि शुगर फ्री आ गए. अगर आपको क्रेविंग होती है जो डायबिटिक पेशेंट में देखा गया है, तो आप लिमिटेड मात्रा में आप शुगर फ्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर इन दोनों का आप लिमिटेड तरीके से करते हैं, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज और ये आपको अगर बीपी अगर इसको बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, 130 से नीचे अगर आप बीपी रखते हैं 120/80, और HbA1c का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, किसी पेशेंट में हम इंडिविजुअलाइज करते हैं, लेस देन 6 होना चाहिए, किसी में 7 तक हम ले जाते हैं. अगर आपका HbA1c 6-7 के बीच में है बेस्ड ऑन पेशेंट टू पेशेंट प्रोफाइल अगर कंट्रोल रहते हैं तो बहुत हद तक आप किडनी के डैमेज से बच सकते हैं और उसका प्रिवेंशन को रख सकते हैं. जैसा कि मैंने बोला, हर बीपी के पेशेंट और हर डायबिटीज के पेशेंट का किडनी डैमेज नहीं होता, अगर आप कंट्रोल करते हैं तो सब ठीक रहता है.
0: जी जी, तो यही मैं जानना चाहती हूँ. अब बीपी की बात अगर हम करें तो क्या रीडिंग्स आनी चाहिए? 120/80 नॉर्मल कही जाती है. 120/80
1: मैं इसको बड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लेकर चलता हूँ, 120/80 इंटरनेशनल गाइडलाइन यही बात बोलता है
0: जी.
1: लेकिन हमारे इंडियन जो पॉपुलेशन है, जैसे कि मैंने टेस्ट बर्ड की भी बात करें, मेजॉरिटी जो बीपी के भी पेशेंट है उसमें 70% जो बीपी के पेशेंट है उनके बीपी ही नहीं कंट्रोल होते, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क,
0: दवाई खाने के बाद भी नहीं.
1: और तीसरी चीज क्या है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है और खान पान की आदतें भी खराब है, बाहर का खाना, जंक फूड, जैसे कि आपने देखे होंगे इतने सारे जंक फूड मार्केट में अवेलेबल है, लोग जंक फूड्स खाते हैं, सॉल्ट का मात्रा बहुत हाई होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है सब, और स्मोकिंग वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है, डाइट्री हो गया, एक्सरसाइज नहीं करना होगा, और 70% इंडियन पॉपुलेशन आर स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है. अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखें, प्राइमरी चीज़ों पे, तो आप सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या टर्सरी प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं अगेंस्ट द किडनी।
0: जी, यानी डायबिटीज़ के साथ साथ बीपी को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या नॉर्मल लेवल्स होने चाहिए? खासतौर पर से मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जो इंसुलिन लगा रहे हैं फिर भी 200 के पार कई बार जो उनकी डायबिटीज़ लेवल है, जो शुगर लेवल्स है वो इतना दिखाता है, क्या वो खतरे में है? क्योंकि इंसुलिन की डोजेज आप डॉक्टर के अनुसार ही सेट करते हैं, खुद ज़्यादा बढ़ा घटा नहीं पाते हैं।
1: ये बात आपने सही बताया, इंसुलिन तो बहुत वंडरफुल चीज़ है शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत हो जाते हैं, और ख़ासकर एल्डरली पॉपुलेशन में कभी वो खाना कम खाएंगे कभी ज़्यादा खाएंगे। अगर उन्होंने एक स्पेसिफाइड यूनिट बताया गया है ले लिया तो हाइपोग्लाइसीमिया, वो जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है बहुत डेंजरस होता है, ब्रेन पर भी वो असर करता है। तो जनरली मैं अपने पेशेंट में मैं बहुत स्ट्रिक्ट ये लेकर नहीं चलता कि लेस देन 6 HbA1c होना चाहिए, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन बोलता है फास्टिंग 100, खाना खाने के बाद 140। एल्डरली पॉपुलेशन में या CKD पेशेंट में मैं +20 या +40 का मैं डिफरेंस लेकर चलता हूँ। अगर 180 भी है इंसुलिन लेने के बाद तो वो ठीक है, क्योंकि मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन का वो हाइपोग्लाइसीमिया है, तो मेरे को उससे पेशेंट को बचा, तो +40 का मैं एक डिफरेंस लेकर चलता। अगर 180 है गाइडलाइन 140 बोलता, 180 है तो ठीक है। तो एल्डरली पॉपुलेशन में 40 या +20 पेशेंट प्रोफाइल वाइज का डिफरेंस लेके चलता हूँ, स्पेशली वो पेशेंट जो इंसुलिन में।
0: बिल्कुल, इंसुलिन वाले पेशेंट्स का थोड़ा सा ध्यान इस तरीके से रखा जाता है, क्योंकि कहीं अगर बहुत कम शुगर लेवल्स हो गए, 70 से नीचे हो गए, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डॉक्टर, बहुत सारे लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर से एल्डरली की बात हम कर रहे हैं, और एल्डरली के घुटनों में बहुत दर्द होता है, कभी बैक में दर्द हो रहा है, या कभी वैसे ही बॉडी में पेन्स रहते हैं। सो ऐसे में बहुत एक कॉमन आदत होती है हमारे देश में कि आप एक इब्रूफेन या कोई भी ऐसा पेन किलर ले लें, और धीरे धीरे धीरे ये आदत ज़्यादा हो जाती है, ये कैसे किडनी डैमेज में रोल प्ले करती है?
1: ओवर यूज ऑफ एनी मेडिकेशन, किसी भी मेडिसिन का अगर आप ओवर यूज करते हैं तो उसके तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं किडनी के लिए स्पेशली जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID, जैसे कि आपने एक नाम बोला आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये सब जो मेडिकेशन होते हैं ये किडनी को डैमेज करता है। अगर आपने डॉक्टर के सुपरविजन में, अगर उनके प्रिस्क्रिप्शन में एक लिमिटेड मात्रा में लिया, ओकेजनली लिया, तो ये किडनी को जल्दी नहीं डैमेज करते। लेकिन अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में OTC ओवर द काउंटर, ये मेडिसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल है, किसी को सर दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, वो जाते हैं मेडिकल शॉप में, ये मेडिसिन उठाते हैं और ये सुबह शाम खाते हैं, डॉक्टर से ये परामर्श नहीं लेते। तो मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगा, अगर स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या नहीं भी है, बीपी भी है, अगर किसी तरह का दर्द हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, और पेन किलर बिना उनके परामर्श करना लें, क्योंकि जो NSAIDs ड्रग होते हैं, पेन किलर्स जो होते हैं, वो किडनी को डैमेज करते हैं। अब बहुत सारे मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं जिन्होंने सिर्फ 5 दिन ही लगातार पेन किलर लिए, उनकी किडनी डैमेज हो गई है,
0: यानी ऑलरेडी वो उस कगार पर थी, उस वर्ज पर थी कि वो डैमेज हो सकती है,
1: डैमेज हो सकते हैं NSAIDs किडनी को। ये बहुत बड़ा NSAIDs जो ड्रग होते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं, वो किडनी को डैमेज बहुत हद तक करते हैं। 20-30% ऐसे पेशेंट आते हैं OPD में जो कि पेन किलर्स वाले होते हैं, जिनके सीरम क्रिएटिनिन बड़े होते हैं, EGFR कम होता है। जब मैं उनसे सवाल करता हूँ तो पता चलता है कि वो पेन किलर्स ले रहे थे पिछले 2 महीने से या 1 महीने से। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि पेन किलर्स बिना डॉक्टर के परामर्श के आप ना लें।
0: बिल्कुल बिना डॉक्टर की सलाह के आप, वैसे तो देखिए कोई भी दवाई ना लें, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप हाइपरटेंसिव हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम हेल्थ में है, सो बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई दवाइयां ना लें। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी पेन किलर लेनी पड़ती है तो वो भी डॉक्टर से पूछ कर लें, क्योंकि पेन किलर अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो नुकसान बहुत गहरा होता है। बहुत सी बातें और भी जारी रहेंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, प्रोग्राम का नाम है ऑल इज़ वेल, और ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और इस पॉडकास्ट को RJ दीक्षा के फोल्डर में जाकर डॉक्टर मनीष महाजन के साथ कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जिसे इस जानकारी की बेहद ज़रूरत हो। बहुत सी बातें और भी, लेकिन वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल. नॉलेज पार्टनर है SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद और बातें चलनी है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती हैं. लेकिन क्या ये किडनी रिवर्स हो सकती है प्रॉब्लम्स में, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि दो किडनीज हैं, क्या पहले एक ख़राब होती है या दोनों एक साथ भी ख़राब हो सकती हैं? क्या इन्हें वापस ठीक किया जा सकता है? क्या ज़्यादा पानी पीने से किडनी की प्रॉब्लम्स वाकई सॉल्व हो जाती हैं? ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी आते होंगे. इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनीष महाजन, शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट. सर, बहुत सिंपल सी बात होती है, जब किडनी की बात होती है तो लोग कहते हैं पानी पियो, बहुत पानी पियो. किडनी स्टोन होता है तो भी कहते हैं पानी पियो. किडनी रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आता है तो भी कहते हैं पानी पियो. अब कितना पानी पीना चाहिए और क्या ये पानी वाकई मदद करता है?
1: हाँ, नॉर्म डिपेंड करता है पानी का इंटेककितना होना चाहिए पेशेंट वाइज पेशेंट. अगर किडनी का पेशेंट है कोई तो उसमें पानी का मात्रा कितना, उनका EGFR कितना, किडनी काम कर रहा है उसके हिसाब से पेशेंट वाइज पेशेंट हम डिसाइड करते हैं. और अगर किडनी का पेशेंट नहीं है, अगर डायबिटिक भी है या नॉन डायबिटिक भी है या BP का भी पेशेंट है लेकिन किडनी में कोई असर नहीं है
0: जी.
1: तो जनरल एक पॉपुलेशन में 200 ml का एक ग्लास, 10 ग्लास मतलब 2 लीटर मेल के लिए मिनिमम होना चाहिए और फीमेल के लिए 200 ml का ग्लास, 12 ग्लास कम से कम,
0: ज्यादा होने चाहिए मतलब
1: दो से ढाई लीटर मिनिमम एक फीमेल को इतना पानी पीना चाहिए. क्योंकि किडनी भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कि न्यूट्रिशन चाहिए होता है. किडनी बोलता है भाई मेरे को 2 से 2.5 लीटर पानी दो काम करने के लिए.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर उससे कम आप देते हो तो किडनी फिर क्या होता है कि हाइपो फंक्शन हम बोलेंगे, किडनी की जो क्षमता है वो उससे कम काम करता है तो फिर किडनी में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो 2 से 2.5 लीटर मेल हो या फीमेल मिनिमम क्वांटिटी पानी आपको लेना चाहिए कि आपका किडनी एक अच्छे से काम करे. और अगर किडनी का पेशेंट है तो डिपेंड करता है कि उसकी किडनी कितनी काम करे तो उसके हिसाब से हम पानी का मात्रा डिसाइड करते हैं
0: जी. डॉक्टर साहब, क्या किडनी पेशेंट्स को प्यास भी बहुत लगती है जैसे शुगर के पेशेंट्स को प्यास बहुत लगती है? अब किडनी अगर इफेक्ट हो रही है तो प्यास लगेगी क्या?
1: जी, ये तो विधि का विधान है. जो डायबिटिक है उनको मीठे की क्रेविंग होती है, जिनको बीपी है वो नमक ज़्यादा खाते हैं. तो सेम जो किडनी या गुर्दे के जो पेशेंट हैं उनको प्यास और उनको पानी पीने की बहुत क्रेविंग होती है. तो इसलिए हम अपने सारे किडनी के पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके असेस करके हम इनको बताते हैं कि आपको 800 ml 24 घंटे में लेना है या 1 लीटर लेना है या 1.5 लीटर लेना है. हम अपने प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं कि आपके लिए इतना मात्रा ही पानी आपको लेना चाहिए. क्योंकि अगर आप 1.5 लीटर ले रहे हैं उतना पानी अगर निकल रहा है किडनी के माध्यम से तो आपको उतना ही पानी लेना है.
0: डॉक्टर साहब, क्या डिहाइड्रेशन या बहुत ज़्यादा गर्मी में स्वेटिंग होना ये भी कहीं ना कहीं किडनी को इफेक्ट कर सकती है? क्योंकि आपकी बॉडी से पानी निकलता रहता है, आप जब गर्मी में जाते हैं तो एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है. आजकल तो वैसे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो क्या इसमें भी किडनी पे कोई असर डलता है?
1: अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है तो आप बिल्कुल हाइड्रेशन मेंटेन रखें. और डिहाइड्रेशन का एक और कॉज होता है लूज मोशन या डायरिया भी होना, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मात्रा में पानी निकल जाता है. तो इसमें एक कंडीशन आता है प्री रीना ले के आई, मतलब जब आप एडमिट होते हैं डायरिया लेकर या डिहाइड्रेशन का किसी भी कॉज को लेकर, तो उसमें हम क्रिएटिनिन की जांच जब हम कराते हैं तो कभी कभी क्रिएटिनिन 4 या 5 हमें मिला होता है. तो उसमें हम कुछ नहीं करते, हम एसेस करते कि कितने लीटर इनका पानी निकल गया होता है. तो फिर हम पेशेंट को हाइड्रेशन देते हैं और उस वक्त पेशेंट बहुत टेंशन में होता है, उसको लगता है कि उसकी किडनी परमानेंट डैमेज हो गई है. लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है. हमें पता है कॉज कि डिहाइड्रेशन कॉज है तो हम उनको रिहाइड्रेट कर देते हैं. तो रिहाइड्रेट करने से 3-4 दिनों में वो किडनी का फंक्शन वो वापस आ जाता है और सेरम क्रिएटिनिन लेवल या EGFR जो गिरे होते हैं वो फिर वापस आके नॉर्मल में आ जाता है.
0: ओके डॉक्टर साहब, एक और आजकल बहुत ट्रेंड चल गया हाई प्रोटीन डाइट का. आप रील्स जितनी भी देखते हैं वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, और प्रोटीन कुछ हद तक ज़रूरी भी है. हम इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की मात्रा वैसे ही बहुत कम होती है. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, क्या ये प्रोटीन नेगेटिव असर डाल सकता है किडनी पर?
1: प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन डायबिटिक किडनी के जो पेशेंट होते हैं उसमें एक्सेसिव प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती. किडनी में ऑलरेडी हाई प्रेशर होता है और उनके फिल्टरिंग यूनिट्स ऑलरेडी डैमेज होने स्टार्ट हो गए होते हैं। अगर हम हाई प्रोटीन लेते हैं तो वो किडनी के जो फिल्टरिंग यूनिट्स या प्रेशर को और बढ़ाता है, जिससे किडनी का डैमेज और स्पीड अप हो जाता है। तो डायबिटिक किडनी पेशेंट अगर वो नॉन डायलिसिस में है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है डायबिटीज़ का, तो उनको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन वो ले सकते हैं। और अगर वो डायबिटिक अगर वो किडनी के पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट है, तो उनको 1.2 टू 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सारे प्रोटीन अच्छे नहीं होते, आप बिल्कुल लेबल देखें, एक ब्रांडेड ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन आते हैं जिम वाले हों चाहे ऐसे भी मार्केट में, उसमें लेड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि किडनी को डैमेज करते हैं। और तीसरी चीज़, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छा है। और प्रोटीन का जो इंटेक है वो पेशेंट वाइज पेशेंट ही आप इंडिविजुअलाइज करें। एक्स्ट्रा लेते हैं किडनी में प्रेशर बढ़ाता है, जो कि किडनी को ऑलरेडी वो डैमेज
0: कर सकता है। जी सर, चलते चलते आखिरी बात सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको सुन रहे होंगे तो मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे लिवर प्रॉब्लम्स वापस ठीक होने लग जाती हैं, लिवर अगर फैटी लिवर है तो नॉर्मल होने लग जाता है, किडनी हमारे पास दो हैं, किडनी क्या एक एक करके डैमेज होती है या एक साथ डैमेज हो सकती है, और अगर डैमेज हो गई है कुछ हद तक तो क्या इसको शुरुआती दौर में रिवर्स किया जा सकता है?
1: और जैसे कि एक मैंने अभी बताया, डिहाइड्रेशन एक कॉज होता है, ऐसे अगर कोई टेम्प्ररी कॉज होते हैं, अगर किडनी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें EGFR कुछ टेम्प्ररी में कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कारण पता है कि किडनी में अगर स्टोन के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम हो रही है, UTI अगर हो रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस अगर हो रहा है, या कोई ऑटोइम्यून हो रहा है, तो अगर कारण को पता है बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। और किसी एक किडनी में भी डैमेज हो सकता है और दूसरे किडनी में भी हो सकता है, लेकिन जो डायलिसिस के जो पेशेंट या किसी के किडनी का डैमेज होना है, तो बहुत सारे पेशेंट में दोनों एक साथ डैमेज हो जाते हैं।
0: okay.
1: और वो पेशेंट डायलिसिस में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता कि उनके किडनी नहीं है या डैमेज है, एक किडनी डैमेज है, तो एक किडनी में पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से बिता सकते हैं, सावधानियों के साथ, डॉक्टर

में एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ और कुछ नई प्रॉब्लम्स के बारे में विस्तार से करेंगे डिस्कशन। फिलहाल इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ, दिस इज दीक्षा।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आप सभी को पता है ये एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। न सिर्फ जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, लेकिन आपको पता लगेगा कि दुनिया के कोने कोने में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आज भी मानवता को जिंदा रखा हुआ है। आज के ऐसे युग में जहां हम कहते हैं कि लोग अपनी इंसानियत भूलते जा रहे हैं, वहां इस मानवता को जिंदा रखते हुए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और साथ के साथ इंडिविजुअल्स के लिए ढेर सारे काम करने वाले ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए इस प्रोग्राम के बाद जल प्रहरी। आप ही देख रहे हैं कि आज के जमाने में पानी कितना ज्यादा स्केयरसिटी में आ गया है। मतलब अपने आप में एक ऐसा रिसोर्स हो गया है जिसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तो कहलाते भी हैं जल प्रहरी। तो आज जल प्रहरी के जो सीईओ हैं अनिल सागर जी हमारे साथ हैं और करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। मैं रेडियो के सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूं, और आप खुद बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत सारे काम अच्छे काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि हम सब मिल करके थोड़ा थोड़ा भी अच्छा करें, और अच्छा कर पाए ना कर पाए कम से कम बुरा ना होने दें ये भी कोशिश कर लें तो बहुत बड़ी बात है।
0: वाकई बहुत खूबसूरत बात कही अनिल जी आपने। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, जल प्रहरी, समझ में आता है कि आप प्रहरी बन गए हैं। वैसे तो हमारे अगर देखा जाए तो थल सेना, जल सेना और साथ के साथ हमारी वायु सेना अलग अलग किस्म के प्रहरी बन रहे हैं, बट सही मायने में तो जल के प्रहरी बनना भी जरूरी हो गया है। तो मुझे बताइए इसकी शुरुआत कब हुई, कैसी और इसके पीछे की क्या कहानी है।
1: देखिये, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, और एक दिन हम लोग अपने क्लब में बैठे हुए थे, हमने देखा कि बहुत सारे लोग पानी पी करके छोड़ देते हैं आधा गिलास। हमारी सोसाइटी में ना एक ऐसा माना जाता है कि अगर फूड को प्लेट में छोड़ देंगे, पानी को या कोक को या कोई भी ड्रिंक अगर हम थोड़ा छोड़ देंगे तो इट मींस दैट वी आर रिच, वी आर यू नो इन अ डिफरेंट स्वैग। तो वो स्वैग नहीं है। हमने जब वो देखा तो हमने तीन गिलास को मिलाया और वो पूरा एक गिलास पानी बन गया। सो वी थॉट यार ये पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो डेलिब्रेटली जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में भी हो सकता है कर रहे हो। तो हमें लगा कि इस पे कुछ काम किया जाए। हमने ये बात तब के जो जल संसाधन मंत्री थे उनको बताई और उनसे कहा कि हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और बोला कि ये काम तो हमें करना चाहिए, आप करना चाहते, वेरी गुड। तो खैर, हमने संसाधन सेक्रेटरी जो थे उनसे मुलाकात की, उनको बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, बोला वेरी गुड, आप लोग करिए। हमने लगभग, मैं और हमारी टीम, हमारे कुछ मित्र, हमने पूरे देश में अलग अलग जा करके लोगों को ढूंढा, देखा वो कैसे काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, हम जब राजस्थान के एक गांव में गए, हमें पता चला, हमें लोगों ने बताया कि एक लेडी का की शादी हुई, और शादी के जब वो आए तो पता चला कि वहाँ पानी नहीं है, और थोड़े दिन बाद उसे पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो एक डकैत है, क्राइम करता है, और वो घर से चला गया। अब उसके पास कोई साधन नहीं था, उसने क्या किया कि अपने गांव में जो पानी का सोर्स था, पानी की जो बावड़ी थी, तालाब था, उसको जिंदा किया और वहां पर खेती की। आठ दस साल बाद जब उसका हस्बैंड आया और उसने देखा कि उसके गांव में खेती हो रही है, जहां चंबल की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर कभी कुछ भी नहीं होता था, डकैती क्राइम ही एक साधन था, तो उसने तय किया कि नहीं यार, अब तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। एंड ही क्विट डकैती। आज की तारीख में वो पूरा इलाका बहुत ही अच्छे से ग्रीन है, वहां पर खेती हो रही है, वहां पर लोग हैप्पी हैं। वो खुद जो डकैत था उसको भी गवर्नमेंट ने जो भी लॉस थे उसमें पनिशमेंट के बाद कुछ छूट दे दी, और आज वो दे आर वेरी हैप्पी। तो ऐसे लोग हैं जो हमने ढूंढते, और उनको हमने जो नाम दिया, क्योंकि वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो जो रक्षा करता है वो प्रहरी है, और वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो इसलिए उनको हमने हम सब ने एक नाम दिया, जल प्रहरी, और इस तरह से शुरुआत हो गई।
0: वाओ, सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी। और इनफैक्ट जल प्रहरी तो हम सबको बनने की जरूरत है। आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि पानी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, और हम कहते रहते हैं कि 3/4 हमारा जो अर्थ है ये पानी है और हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी, लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि चाहे अंडरग्राउंड वाटर की बात करूं, या फिर मैं रिवर्स और पॉन्ड्स की बात करूं, पानी हर जगह काफी कम है, तो इसे बचाना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे अनिल जी से करेंगे ढेर सारी बात। टिल देन फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ RJ भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO है जल प्रहरी। जी हाँ, जल प्रहरी एक बहुत ही खास इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में पानी को बचाने के अलग अलग तरीके कोशिश की जाती है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। अनिल जी, अब अगला सवाल, और वो सवाल बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि पानी को कंजर्व करना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसकी तरफ बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये काम इंडिविजुअल्स का नहीं है, जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इंडिविजुअल अप्रोच से ही हम पानी को सही ढंग से बचा पाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन की कोशिश करते हैं?
1: बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या हुआ कि जब 2019 में हम पहला जल प्रहरी किया तो बहुत सारे लोगों का हौसला जो था वो बहुत बढ़ गया, उनके भीतर बड़ा उत्साह था, बहुत सारी जगह उनकी न्यूज पब्लिसिटी हुई। फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना के टाइम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सभी को टारगेट्स दिए हुए, सभी डैम्स को, कि आपको ये अमृत सरोवर बनाने हैं, ये इनको रिवाइव करना है। अब ऐसे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें फोन किया कि आप लोगों ने जो जल प्रहरी किया था तो हमें कोई ऐसा बंदा बताइए ना, कि क्योंकि तब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे, लेबर घरों में थी, तो प्रोसेस नहीं काम कर रहा था, गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। एंड दैट IAS ऑफिसर वर वेरी स्मार्ट, ही सेड कि वो काम हम करना चाहते हैं, हम वाटर अथॉरिटी को रिजुविनेट करवाना चाहते हैं। तो हमने एक दो जो जल प्रहरी थे उनका कॉन्टैक्ट दिया और वो उन्होंने एक वाटर बॉडी को रिजुविनेट करवाया। आपको जान करके अच्छा लगेगा, हमारे सभी श्रोताओं को ये बात सुननी चाहिए बड़े ध्यान से। क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो प्रोजेक्ट करीबन 30-35 लाख रुपए का बताया गया। जब जल प्रहरी को बुलाया गया और उससे पूछा कि तुम इस तालाब को बना सकते हो, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बना सकते। बोले कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने बताया कि आप हम 50 लोग हैं, लेकिन अभी कोरोना में तो 7-8 लोग आ पाएंगे, और आप यहाँ पर हमारे लिए खाने का और रहने का अरेंजमेंट करवा दो, और 20 लीटर तेल लगेगा JCB मशीन से, इतने दिन JCB मशीन काम करेगी, और कुल मिला के करीबन 30-35 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो जब जूनियर ऑफिसर ने ये सब सुना और उसने सीनियर ऑफिसर को बताया, तो सीनियर ऑफिसर ने हाथ करके कहा कि या तो ये लोग फ्रॉड है या फिर ये वास्तव में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है, कोई नहीं, एक रिस्क लेते हैं। एंड वो रिस्क लिया उसने, और उस रिस्क को लेने के बाद वो वाटर बॉडी 7 डे में वो वाटर बॉडी तैयार हो गई, एंड ह्यूज वाटर बॉडी, अच्छी वाटर बॉडी वो तैयार हो गई। थोड़े दिन बाद जब बारिश आई तो उसमें पानी भी आ गया। जब पानी आ गया तो जो सीनियर ऑफिसर था वो उसको देखने गया, उसने देखा और जो जूनियर ऑफिसर्स ने बताया कि ये कुल 37 हजार रुपए में तैयार हुई है, तो सब ने उनके लिए क्लैपिंग की। सो दीज टाइप ऑफ स्टोरीज आवे, ऐसे ये लोग पानी की रक्षा करते हैं। या आप यकीन मानिए, हम कोई भी क्या बैंक में बिना पैसा रख करके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं? भावना जी, आप कर सकती हैं?
0: वाकई नहीं।
1: तो हम पानी कैसे यूज कर रहे हैं? ये तो हमारा जो डिपॉजिट है हम उसे सिर्फ विड्रॉ कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, एक दिन सोच लीजिए कि अगर सुबह आपको पानी ना मिले तो क्या होगा। बस श्रोता से, हर लिसनर से मेरा एक ही सवाल है, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर, मॉर्निंग में अगर आपको पानी नहीं मिला तो क्या होगा? इसलिए आज से विड्रॉल के साथ साथ डिपॉजिट भी शुरू कीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स ले लीजिए, उसी से बहुत भला हो सकता है। आप कर सकते हैं, आप करते हैं, आप जाने अनजाने पानी खराब भी करते हैं और जाने अनजाने आप पानी बचाते भी हैं। तो बस उसका प्रहरी बनना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा।
0: नहीं बड़ा, ये तो बहुत जरूरी है। हम सब जब तक पानी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक के लिए आप ये सोचिए कि अभी हम ये कहते हैं कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो रेड मार्क है, और पूरा दिल्ली NCR भी मैं अगर कहूँ तो इसी एरिया में आता है, लेकिन क्या हम इसको रिवाइव कर सकते हैं? एक्चुअली यस, पॉन्डमैन ने तो ये प्रूव किया हुआ है। भाई रमेश जी तो हमेशा ये कहते हैं कि आप मुझे एक जगह दीजिए और लाइए आपके पॉन्ड्स को, मैं वापस रिवाइव कर दूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरत यह है कि क्या हम कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हैं और हम कॉन्शियसली सोसाइटी में जी रहे हैं, या आप एक मोबाइल फोन की जिंदगी जी रहे हैं, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना, और वापस लौट कर यही आना। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी. मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO है जल प्रहरी. अनिल जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम ना एक मोबाइल फोन जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ जो भी मोबाइल में दिखता है, सोशल मीडिया पर दिखता है, हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम इससे बिल्कुल
1: अनजान है.
0: एक्चुअली अनजान है. सो एक बड़ा जरूरी सवाल, इतनी अवेयरनेस है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, सरकार से लेकर इंडिविजुअल्स तक, हर कोई यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई पानी को बचाइए, कंजर्व करिए, लेकिन उसके बाद भी ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच नहीं पाती है. आप लोग इस अवेयरनेस को कैसे पहुंचा रहे हैं जन जन तक?
1: देखिए, हम लोग जो है हर बार हम जब जलरी का आयोजन करते हैं उससे पहले पूरे साल घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, और खासतौर से हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं. जैसे लास्ट ईयर जब 2025 का हमने जल प्रहरी आयोजित किया तो हमारे साथ सिंगानिया यूनिवर्सिटी थी. सिंगानिया यूनिवर्सिटी के डीसी मनोज कुमार जी, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया. हमारे साथ गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल था, उनकी जो प्रिंसिपल थी इत्तफाक से, वो फरीदाबाद भी रहती हैं, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया. और इन बच्चों को हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, जिन प्रहरियों से उनका इंटरेक्शन कराते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो आखिर कर कैसे रहे हैं. आप यकीन मानिए, आपने देखा होगा एक ये जो आजकल शादियों के टाइम आपने बैंड वाले देखे होंगे,

0: एक जल प्रहरी है वो बैंड का बैंड बाजा बजाता है. अब आप सोचिए वो कैसे जल प्रहरी हो सकता है. बट यू नो व्हाट ही डू, जिस दिन उसके पास काम नहीं होता है वो अपनी साइकिल लेता है. वो गरीब है, बहुत गरीब है, साइकिल लेता है और उसमें कुछ नल टोटियां प्लास्टिक की या लोहे की डाल लेता है और वो लेकर के निकल जाता है. जो पब्लिक जो टूटी लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, वो उनमें से पानी टपकता है, वो उनको चेंज कर देता है. सो कैन यू बिलीव दिस, एक आदमी जो खुद बेचारा 200-500 रुपए कमाता है दिहाड़ी और वो महीने में 1,500 रुपए इस तरीके से खर्च करके जल प्रहरी बन.
1: वंडरफुल.
0: तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी ये चाह ले कि मुझे ये करना है तो वो फिर किसी भी अवेयरनेस और किसी भी उसकी उसको जरूरत नहीं होती है. ये आयर, ये लाइट, ये मन में जो मानवता की राह पर जो चलेगा, जो जो एक बीज हमारे अंदर रोपित होता है. हमने ये सब कहानियां सुनी हुई है दादाजी से, नानी से और इवन मोबाइल फोन में भी अगर हम उसको भी देख के अलर्ट हो जाए. बिकॉज लोग कहते हैं हमारा शरीर जो है वो 2/3 वाटर है. आपने सुना होगा कि जब हमारे बॉडी में इन दिनों में खासतौर से जब हम ह्यूमिडिटी है तो वी फील अनकंफर्टेबल. किस लिए? बिकॉज पानी खो रहा है. जैसे ही हम पानी पी लेते हैं हम खो जाते हैं. तो जब हम बॉडी के पानी की रक्षा करते हैं, हम उसके प्रहरी हैं, तो हमें समाज के पानी की भी रक्षा करना चाहिए.
1: वाकई भाई बड़ी खूबसूरत सी कहानी. और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम करने वालों को ना तो एक्नॉलेज कर रहे हैं ना उन पर ध्यान दे रहे हैं और पानी को बर्बाद कर रहे हैं ये सोचकर कि ये तो हमारे पास अबंडेंस में है. बहुत सारे लोग अक्सर ना जब कभी भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो लोग मुझे मैसेज करके ये कहते हैं कि अरे मैडम आप हमेशा पानी पानी की बात करते हैं, बट क्या आपको पता नहीं है कि हमारे सागर में या फिर कहना चाहिए हमारे ओशंस में इतना पानी है, जब कभी भी चाहेंगे इसे रिफाइन करेंगे नमक भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा. लेकिन ना लोगों को शायद आज भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो पोर्टेबल वाटर है जिसे पिया जा सकता है उस पानी में और हमारे समुद्र के पानी में बहुत डिफरेंस है. और इसीलिए हमें जरूरत है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है या फिर जो पानी है जो हमें हमारे नदियों से मिल रहा है, जो हमें हमारे तालाबों से मिल रहा है, उस सारे पानी को हमें कंजर्व करने की जरूरत है. इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हर इंसान इसे रियलाइज करे. हम वीडियोस देखते हैं, हम अलग अलग किस्म के कहना चाहिए कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं. अब ये अप्लाई कैसे करना चाहिए या हर इंसान या हर इंडिविजुअल को इसे कैसे अपनाना चाहिए करेंगे इसके बारे में बात. छुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लव.

0: पर।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो नवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो नवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जिनके साथ, वो है अनिल सागर जी और सीईओ है जल प्रहरी। जल प्रहरी एक बहुत खास संस्था है, न सिर्फ जल को बचाने के बारे में बात करती है लेकिन आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि इस जल को बचाइए क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही कल है। बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स हैं जो हम सुनते हैं लेकिन क्या हम इन पर अमल करते हैं? उसी दिन करते हैं ना जिस दिन पानी नहीं आता है। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी मुझे बताइए, हर इंसान इंडिविजुअली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है?
2: देखिए, अभी आप बता रहे थे कि पानी की प्रॉब्लम जो कोस्टल एरियाज है, हमारे एक जलप्रहरी है अनिरुद्ध तोड़कर, अब वो महाराष्ट्र से है
1: जी।
2: ग्राउंड वाटर सोर्स पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, जितने अब हम बड़े हैरान होते थे, सबसे ज्यादा जो केसेस थे वो महाराष्ट्र से हमारे पास आते थे जलप्रहरी के, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हमने देखा कि महाराष्ट्र में वास्तव में बहुत पानी का दोहन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, जबकि वहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, कोस्टल एरिया है वहाँ पर, इसके बावजूद पानी की कमी है। आपको जान करके हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, इसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, इसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है। आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है? मुझे लगता है जो हमारे लिसनर्स हैं वो उनको याद आ जाएगा। आप अगर मान लीजिए दिल्ली में हैं या गुड़गांव में हैं या फरीदाबाद में हैं, तो आपने देखा होगा किसी गाँव के साथ में एक पौंड था, तालाब था, वो तालाब लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर कूड़ा डाल करके, मलबा डाल करके, और आपने उस पर कुछ नहीं किया। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जब सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है आज की तारीख में आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, आपका फोन, और मुझे लगता है आपके पास आरजे भावना है। आप आरजे भावना को बताएं कि आपके इलाके में ये वाटर बॉडी है और वो उसको ऐसे लोग किल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है और हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको काम करने देने का माहौल बनने की जरूरत है, उन लोगों को हेल्प करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब पहले से बहुत जागरूक तो हुए हैं लोग। मैंने अभी तक किसी भी गांव में जहां मैं गया हूं ये नहीं सुना कि किसी ने तालाब को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हों, और जो आदमी एफर्ट्स करता है वही जल प्रहरी होता है, और वो उसको सब पूरे गांव वाले लोग पागल कहते हैं, क्योंकि गांव वालों की नजर में तालाब जो है उसको कब्जा करके, उस पॉन्ड को फिल करके उस पर मकान बनाने का या प्लॉट बेचने का साधन है, लेकिन नहीं, वो भूल रहे हैं वो उनकी लाइफ लाइन है। आप सोचो अगर यमुना दिल्ली और NCR में ना हो तो पानी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम इन छोटे छोटे पॉन्ड्स को रिचार्ज नहीं करेंगे तो पानी कैसे मिलेगा? तो इसलिए मुझे लगता है भावना कि पानी को लेकर के हमें बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है, और इसमें अपने एक एक छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं। आप पानी को वेस्ट ना होने दें। मैं बताता हूँ, मेरी पत्नी तो इस अभियान से जुड़ी हुई है, उन्होंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो 3 बार चलाने के, 4 बार चलती है और 4 बार फ्रेश वाटर लेती है। उन्होंने उसको पानी को बचाने के लिए सेमी ऑटोमेटिक बना के काम करती है ताकि उसका पानी वेस्ट ना हो। तो मुझे लगता है एक होम मेकर ये कर सकती हैं कि वो पानी वेस्ट ना हो उसका ध्यान रख सकती हैं, बच्चे फ्लश करते टाइम ध्यान रख सकते हैं, अननेसेसरी पानी गिर रहा हो स्कूल कॉलेज में तो एटलीस्ट वो मैनेजमेंट को बोल करके उस टैप को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो या कहीं खुला हुआ है टैप तो उसको बंद कर सकते हैं। बहुत सारे साधन है, और अगर फिर भी ना मिले कोई साधन तो जल प्रहरी को संपर्क करें या फिर भावना, आरजे भावना को संपर्क करें, हम बताएंगे।
1: वाकई बहुत सारे तरीके हैं पानी को बचाने के, और खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट हमेशा एक ही रहती है कि भाई अगर आपके घर में आरओ है और उससे फिल्टर हुआ पानी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भाई आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं, उस पानी को जरूर बचाइए। जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं अनिल जी के साथ, अनिल सागर जी जो कि सीईओ हैं जल प्रहरी। अनिल जी, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सुनने में बहुत आसान लगता है कि चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं वाटर कंजर्वेशन के? हम पानी को क्यों नहीं सही तरीके से बचा पा रहे हैं? एक चैलेंज जो मुझे नजर आया है इतने सालों में, माइंडसेट। आप मुझे बताइए बाकी क्या चैलेंजेस हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है लालच
0: जी।
1: दूसरा चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही, क्योंकि सामने जिसके घर के सामने पॉन्ड है उसको ये लालच है कि मैं इसको खत्म करके और अपना प्लॉट बड़ा कर लूं। ब्यूरोक्रेसी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब पॉन्ड बनाता है तो उसकी कैपेसिटी, उसके बहुत सारे जो टेक्निकल पहलू होते हैं वो उसे उतना अच्छे से नहीं पता होते हैं, तो कई बार वहां पर जो

0: प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको काम करने से रोकता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, कई बारी फंड्स की प्रॉब्लम होती है। मजेदार बात ये है कि भावना, आप पानी का बिजनेस करें तो आपके पास फंड्स की कभी कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन आप पानी बचाने का काम करें तो आपको पैसे बहुत मुश्किल से मिलेंगे और फंड्स की बहुत क्राइसिस होती है। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी जो बात आपने कही है, माइंडसेट। जब तक हम अब छोटी सी गाड़ी लेते हैं जो कि कुछ लाख की होती है, उसमें कोई स्क्रैच मार जाए तो हम डरने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चीज हमारी जिंदगी छीन सकती है, वाटर, पानी, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं अरे छोड़ो, खत्म हो गया, कोई नहीं, 20 लीटर वाली दूसरी बॉटल मंगवा लेंगे, या 100 रुपए की ये ले लेंगे, या 50 रुपए की हम ये मंगवा लेंगे। बट मुझे लगता है नहीं, आप अगर पानी बचाने के एफर्ट्स शुरू करेंगे तो छोटे छोटे स्टेप्स शुरू करेंगे, आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा।
1: और इसमें एक चीज आप जरूर जोड़ सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है और लोग ये सोचते हैं कि ये इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता, या इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, या फिर एक बहुत बड़ी अमाउंट लग जाएगी और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो अकेले मेरे करने से क्या होगा, ये तो सरकार की या फिर प्रशासन का काम है। ये एक बहुत गलत सोच है। इंडिविजुअली आप अपने घर की यूनिट से शुरू करते हुए इंस्टीट्यूशंस तक, ऑफिस तक, जितना ज्यादा पानी बचा सकते हैं, और खासतौर पर वो जल जो आपको डायरेक्टली आसमान से मिलता है और जो कि सड़कों को फ्लड कर देता है, कहीं किसी शहर को वेनिस बना देता है, तो कहीं देखिए तो किसी किसी शहर को पूरी के पूरी तरीके से डुबो देता है। लेकिन इस पानी को अगर आप न सिर्फ जमीन में जाने दें तो ये
0: माँ की गोद में उतार दें,
1: एग्जैक्टली, तो ये आपके अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा और आपकी वाटर बॉडीज को भी रिचार्ज करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके बारे में आप जरूर न सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं, और समय समय पर हम आपको हमारे प्रोग्राम्स में तो ये बताते ही रहते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव वेस्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि सीईओ हैं जल प्रहरी। अनिल जी, वैसे तो आप अपने काम में काफी व्यस्त रहते होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका खास इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के बारे में जब लोग सुन रहे हैं तो न सिर्फ उन्हें अच्छा लग रहा है, आई एम डैम श्योर कि वो बहुत मोटिवेट भी हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपके इस इनिशिएटिव के साथ क्या कोई जुड़ सकता है और क्या इसे रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आसपास पानी कैसे बचा सकता है, एक जल प्रहरी कैसे बन सकता है?
1: देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही कहा, एक बहुत ही सरल तरीका है। आपके घर के आसपास जहां भी आप एक ऐसा पिट बना सकते हैं घर के सामने, जहां आप अपनी छत से पानी को धरती माँ की गोद में उतार सकते हैं, वो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये संभव नहीं, आपके इलाके में कोई भी बोरवेल है वो डेड है, तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इलाके में अगर कोई छोटा सा तालाब है और वो गंदा है, तो एक दिन आइए ना, एक दिन आउटिंग करते हैं, तालाब के साथ बातें करते हैं, तालाब को जिंदा करते हैं। यकीन मानिए, तालाब जिंदा होगा तो आप खुद मुस्कुराएंगे और देखेंगे कि बहुत अच्छा हो गया है। आपके इलाके में कोई नहर है, छोटी नदी है, उसमें कोई कचरा डालता है, आप उसे रोकिए, हाथ जोड़कर रोकिए। अगर नहीं मानता है तो आप उठा दीजिए वो कचरा। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार दो बार करने के बाद लोग वहां पर डालना बंद कर देंगे। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप पानी को बचाने को लेकर के अपने सोशल मीडिया पर भी बहुत बात कर सकते हैं। आप कहीं पानी वेस्ट होते हुए देखते हैं तो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, और आपको जहां भी लगता है आप जल प्रहरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डाल सकते हैं। हम जरूर, हमारे जल प्रहरी इन सब कामों में बहुत तेजी से सक्रिय हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हमारे लोग काम करते हैं और सरकार के लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले से बहुत चीजें बदली हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि काम करने वाले 1,500-1,00,000 होंगे, लेकिन जो खराब कर रहे हैं, यूं कहें कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करोड़ों हैं। तो वो करोड़ों हाथ अगर जुड़ जाएंगे खराब ना होने, तो भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस सिर्फ खुद से ईमानदार होने की जरूरत है, पानी के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि प्रकृति और पानी रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे। हमने कोरोना में ये सब देख लिया है कि पानी कितना जरूरी था, हमारा प्रकृति कितनी जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा।
0: बिल्कुल भाई, बहुत ही खास तरीके से हमें अनिल जी ने बताया है कि हम कितनी इम्पोर्टेंट जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन्हें यूं ही एक्सप्लॉइट करते रहे तो एक दिन हमारे पास होंगे ही नहीं, और फिर हम जिएंगे कैसे? तो उसके लिए जरूरी ये है कि आज से ही हम इन्हें कंजर्व करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगा कि लिसनर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं, वो ये याद कर लें कि अगर पानी नहीं होगा स्विमिंग पूल नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो बहुत सी किताएं बदल जाएंगी। बहुत पहले कबीर ने कह दिया था कि बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो न मोती रहेगा, न मानस रहेगा, और ना बर्गर और पिज्जा के लिए चून यानी आटा होगा, फ्लोर होगा, मुद्दा होगा। तो चाहे आप पिज्जा बनाए या बर्गर या कुछ भी, एक रोटी बनाए या चावल बनाए, कुछ भी बनाए, आपको पानी चाहिए, और अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज, आज के बाद भी जल प्रहरी, सेव वाटर एंड सेव वाटर बॉडीज आल्सो।
0: एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी और उन्हें मोटिवेट किया जल प्रहरी बनने के लिए।
1: थैंक यू भावना, और मैं आपसे भी प्लेज चाहूंगा कि आप भी हमारे इस मुहिम में शामिल हैं और एक्टिवली इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे, हम साथ साथ मिलकर चलते रहे मानवता की राह पर।
0: वाकई दोस्तों, मैं तो बन गई हूँ जल प्रहरी, क्या आप बनेंगे मेरे साथ? और अगर हाँ किया है तो बस जुड़ जाइए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, पर तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सुनते रहेंगे अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन। फील गुड, फील लव।

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna, 107.8 FM.
1: Hello friends and welcome to Radio Manav Rachna 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम। और मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ। सशक्त महिलाओं से मिलवाने का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी महिलाओं की कहानियाँ सुनाती हूँ जिन्होंने सशक्तिकरण का मार्ग चुना है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर नुपुर माथुर। डॉक्टर नुपुर माथुर एक MBBS डॉक्टर हैं और सेवा की राह पर इस तरीके से चल रही हैं कि क्या कहने। ना सिर्फ ये जो गरीब लोग होते हैं या हमें कहना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उनके लिए सलाह लेकर जाती हैं, एडवाइस लेकर जाती हैं और अपनी प्रैक्टिस लेकर जाती हैं, लेकिन साथ के साथ उन्हें सेहत का एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा देने की कोशिश कर रही हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनका स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: हाँ, नमस्ते भावना जी, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा विशेष है नहीं मुझ में जितना आपने बताया है, बट स्टिल आई थिंक।
1: तो डॉक्टर नुपुर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, आप उसे कैसे डिफाइन करते हैं?
2: हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। महिला सशक्तिकरण शायद हर व्यक्ति सोच में एक अलग अर्थ रखता है, और जैसा कि हम सोचते हैं, एक आम आदमी ये सोचता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ पैसे से रिलेटेड है या महिला काम कर रही है या नौकरी कर रही है उससे रिलेटेड है। मेरी समझ में ऐसा नहीं है। सशक्तिकरण से अगर आप वैसे अर्थ ले तो महिला शक्ति, देखिए शक्ति तो महिला में होती है, नारी शक्ति का हमारे में तो हमेशा से रहा है, तो उस शक्ति को थोड़ा सा एक सही अर्थ देने को शायद सशक्तिकरण कहा जा सकता है। और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में हर जगह पर स्त्री ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, तो सशक्तिकरण इस माध्यम से हम देखें तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक स्वयं की जो भावना है जो नारी में होनी चाहिए, उस भावना को लेकर कुछ भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने देश के लिए जो भी कार्य वो करना चाहे उसको हम नारी सशक्तिकरण कह सकते हैं।
1: हालांकि
2: हाँ, एक बड़े तौर पे देखा जाए अगर किसी देश के लिए या विश्व के लिए तो यही देखा जा सकता है कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कमा सकती हैं। पर अगर इंडिविजुअल अप्रोच देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही रिलेट किया जाना चाहिए।
1: वाकई बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नुपुर आपने। और मैं ये कहती हूँ महिला सशक्तिकरण महिलाओं के लिए वो आजादी है जिससे वो अपना जीवन जी सकती हैं, क्योंकि परेशानी है कि महिलाएं अपना जीवन नहीं जी पा रही हैं। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर एक लंबे समय तक बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाती रहती हैं। दोस्तों, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM पर हम सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर से। डॉक्टर नुपुर की वैसे तो पर्सनल प्रैक्टिस है, लेकिन पर्सनल प्रैक्टिस में ये इतनी सारी महिलाओं की मदद करती हैं कि क्या कहने। भाई मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि महिलाएं जो है ना वो अपनी बीमारियों को छुपाती रहती हैं, और जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं होता ना वो बाहर डॉक्टर के पास तो जाती ही नहीं है। आज हमारे साथ डॉक्टर नुपुर हैं, आई एम श्योर इस बात से तो वो बिल्कुल अग्री करती हैं। डॉक्टर नुपुर मुझे बताइए ना कि आज के टाइम की महिलाओं का क्या खास चैलेंज है।
1: हाँ, ये बात आपने सही कही है कि महिलाएं नहीं आती हैं आसानी से डॉक्टर्स के पास। इसका एक कारण जो ये है कि हमारे जो लोअर मिडिल क्लास या इवन जो लोअर क्लास है उसमें इतनी विजिलेंस नहीं है। लगता है कि एक छोटी सी बीमारी है ठीक हो जाएगी, पर एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है वो है कि पैसों की कमी होती है। जो लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए और जो बिल्कुल ही लोअर क्लास है उसमें पैसों की काफ़ी कमी होती है। तो हमेशा महिलाओं का पहला प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, उनको पहले आगे रखें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इसका इलाज करा दें। फिर एजुकेशन है जिसमें आजकल काफ़ी पैसा चला जाता है, तो उसमें वो अपना योगदान दे देती हैं और उनकी बीमारी थोड़ा पीछे रह जाती है। और एक दूसरा कारण यह है कि कुछ हद तक औरतें अपनी बात बहुत आसानी से नहीं कह पाती हैं सबसे, ख़ासतौर से जो अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं उसके साथ उनके पति का कोई बहुत विशेष योगदान नहीं होता है और इस तरह से वो पीछे रह जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों मैं तो महिलाओं से हमेशा से ये बात कहती हूँ, इतनी सारी महिलाएं फिलहाल मुझे सुन रही हैं, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगी, जीवन तो आपका है और इस जीवन का ख्याल रखना भी आप ही का काम है। तो अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो आप अपने जीवन को सुखमय कैसे बना पाएंगी। जरूरी है कि अपनी खुशियों पर भी ध्यान दें। जहां पूरे परिवार के लिए काम करती हैं, पूरे परिवार की खुशियों का ध्यान रखती हैं, वहां अपने आप को भी प्रायोरिटाइज जरूर करें। जुड़े रहे रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइक।

0: और भी समाज को ऐसा लगा कि एक एमबीबीएस डॉक्टर की अपनी अलग पहचान है, तो फिर मैंने वही परस्यू कर लिया। और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड का एक क्लिनिक था तो मैं उसके साथ ही जुड़ गई, और फिर बस तब से शायद चली रही है गाड़ी।
1: वाओ, बट भाई देखिए, ये एक बहुत एम्पावरिंग सी जर्नी है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, ये बहुत सारी महिलाएं नहीं ले पाती हैं, और आपने ये डिसीजन लिया। लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि आज आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आज जब आप उनके इलाज करती हैं, आज जब आप उनके पास जाती हैं, उन्हें सलाह देती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके जीवन को टच कर रही हैं और उनके जीवन को बदलकर उनके जीवन को और भी खुशमय बना रही हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। दोस्तों, वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। ढेर सारे लोगों से हम बात करते हैं, जब डॉक्टर्स की बारी आती है ना, तो मन में हमेशा ये फीलिंग होती है कि ये वो लोग हैं जो हमें दर्द से बाहर निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर में हम भगवान का रूप तो देखते ही हैं, और आज हम बिल्कुल कहना चाहिए कि भगवान स्वरूप डॉक्टर नुपुर माथुर से बात कर रहे हैं। ये जिस तरीके का काम कर रही है ना, दरअसल मानवता की सच्ची सेवा है। आज भी ऐसे जमाने में जहां पर कि आपको डॉक्टरी सलाह फ्री में नहीं मिलती है या बहुत कम कॉस्ट में नहीं मिलती है, ये आज भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए इस तरीके की प्रैक्टिस करती हैं। और इनफैक्ट मेरे इस पूरे इंटरव्यू के बाद ये वहीं जाने वाली हैं। डॉक्टर नुपुर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम ना जेंडर इक्वालिटी की बड़ी बात करते हैं, और अगर मैं डॉक्टरी लाइन में देखूं तो वहां तो फिर भी इक्वालिटी है, क्योंकि देखिए महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, बीमार तो सब पड़ते हैं, तो डॉक्टर तो आपको हर जेंडर के चाहिए। लेकिन बाकी सारे एरियाज में अगर आप देखें तो इम्बैलेंस है, तो क्या इस इक्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं?
1: हाँ, लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में काफी हद तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कहा जाए तो उत्थान नहीं हो पा रहा है। मगर अब बहुत सा नजरिया सब लोगों का बदल गया है। डॉक्टरी में तो आपने अभी देखा होगा कि शायद ज्यादातर डॉक्टर्स हर फील्ड में फीमेल्स हैं, और इवन जो पहले इवन हम जब पढ़ रहे थे तब भी ऐसा था कि जो सोचा करते थे कि गायनी डिपार्टमेंट में इसमें मेल्स नहीं होंगे तो वहाँ पर मेल्स भी होते थे। तो डॉक्टरी में तो ये समानता है, मतलब मेल्स और फीमेल्स में इतना कोई अंतर नहीं रहा है। पर और फील्ड में देखा जाता है कि इंजीनियरिंग में जो क्रूड वाली इंजीनियरिंग होती है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें थोड़ा सा लगता है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं। लेकिन थोड़ा पीछे से अगर देखा जाए, अच्छी तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हो या उनके मम्मी पापा अच्छी तरह समझा दें, तो शायद हर फील्ड में, और इंडिया में तो आजकल देखिए कहाँ कहाँ लड़कियाँ पहुँच गई हैं। तो ये कहना कि समानता नहीं है, यह भी गलत होगा। थोड़ा सा उसमें अंदर से, अपने अंदर से कुछ एक भावना सी चाहिए कि हम यह काम कर सकते हैं, तो काफी हद तक सरलता से पहुंच जाती हैं स्त्रियां।
0: वाकई, तो भाई देखिए, इस बात की हम खुशी मना सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। जहां पर एक जमाने में महिलाएं होती ही नहीं थी, वहां अब हम महिलाओं को देख पा रहे हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये जेंडर इक्वालिटी तब आएगी जब महिलाओं के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी आएगा, क्योंकि अगला सवाल बड़ा दिल को छूने वाला है। हर महिला जब इस सवाल को सुनती है ना, तो कहीं ना कहीं वो इस सवाल से रेजोनेट करती है और सोचती है इसका सोल्यूशन क्या मेरी जिंदगी पर फिट होगा या नहीं। तो पूछने वाली हूँ ये अगला सवाल डॉक्टर नुपुर माथुर से, पर आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज उतनी ही प्यारी लेकिन सीजन्ड डॉक्टर डॉक्टर नुपुर माथुर जी से मैं बात कर रही हूँ। बड़ा सौभाग्य है, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर नुपुर, जब कभी भी महिलाओं की बात होती है, मतलब मैं अक्रॉस पूरे भारत की बात करूं या ग्लोब की बात करूं, तो हमेशा से ये माना गया है कि जो महिला है ना वो घर की केयर टेकर है और नर्चरर है, और ये जो रोल्स हैं मुझे लगता है कि बहुत जमाने से डिफाइन कर दिए गए हैं। ऐसा होता है कि एक अगर महिला अपना करियर बना भी रही है या बना भी चुकी है, तो जैसे ही जीवन का वो पड़ाव आता है जहां बच्चे आते हैं और आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी केयर के लिए हमेशा एक महिला को अपने करियर का त्याग करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज करिए, आप ब्रेक ले लीजिए या आप कुछ और करिए। तो मुझे बताइए कि क्या इसमें बैलेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि कहीं किसी भी महिला के करियर के लिए एक पुरुष ने कहीं कोई त्याग दिया हो।
1: नहीं नहीं, ये तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आजकल तो पुरुष वर्ग बहुत साथ देता है और बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी यंग, बिल्कुल यंग अभी आगे बढ़ रही हैं, और जब फैमिली में आती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी एक अच्छा प्रमोशन होने वाला है, साथ में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो देर आर मैनी, अब तो अपर क्लास में तो हैं पर लोअर क्लास में भी देर आर मैनी मेल मेंबर्स हु रेस्पेक्ट देम एंड हु ऑप्ट फॉर लीव फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट टू कंपनसेट फॉर द फीमेल पार्टनर। सो इट्स नॉट एज सच, बट हाँ, डिफिकल्टीज आर ऑलवेज देयर। द मेन थिंग इज दैट इन लॉज एंड हूएवर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द फैमिली शुड बी कंपैशनेट फॉर द गर्ल। सो आई थिंक इतना नहीं है।

0: रहता जरूर है। और अगर स्त्री कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए थोड़ा बहुत कर भी रही है, कुछ फॉरगो करना पड़ रहा है उसको, अपना प्रमोशन या कुछ अपने आवर्स जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसकी ग्रोथ के लिए, तो शायद मन में एक ऐसा मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर रहता है कि हमने वो नहीं करा लेकिन कुछ उससे बढ़कर कर दिया। तो ये मेरा मानना है।
1: वाकई बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर नुपुर, और शायद मुझे लगता है कि यही मातृत्व कहलाता भी है। तो इसीलिए एक माँ का जो दर्जा है वो सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि माँ बनने के बाद वो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने समाज के माइंडसेट को और भी बदल सकते हैं, थोड़ा सा महिलाओं के लिए रिस्पेक्टफुल बना सकते हैं।
0: रिस्पेक्टफुल बनाना बहुत जरूरी है। वो शायद मुझे लगता है कि पुरुष वर्ग में एक स्कूलिंग के टाइम से जो मैनर्स और रिस्पेक्ट फीमेल्स के प्रति इम्बाइब हो जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल में ये शिक्षा नहीं दी जाती है, कई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है, मगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को, जो बॉयज होते हैं उनको ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आपको अपने साथ वाली जो भी आपकी लाइफ पार्टनर होगी के लिए, मैंने देखा है मदर्स के लिए भी कई लोगों में वो रिस्पेक्ट नहीं होता है जो होना चाहिए, जो और कंट्रीज में होता है मेल्स में। तो वो उसमें अगर थोड़ा सा हम बेसिक लेवल से अगर अच्छी एजुकेशन दे दें तो शायद काफी हद तक ये समस्या खत्म हो सकती है।
1: और इस समस्या को खत्म करने के लिए मैं तो ये कहूंगी कि शुरुआत घर से हो सकती है, और घर में फिर कौन, माँ, महिला। तो भाई अगर महिलाएं चाहें तो वाकई बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है। दोस्तों वक्त है एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर माथुर से। डॉक्टर नुपुर, अब एक बड़ा अहम सवाल, आपने ना अपने पूरे जीवन के पन्ने खोले, आपने बहुत सारी शिक्षा हमें दी, साथ के साथ ही बताया कि चीजें बदल रही हैं और कुछ जो चीजें बदलनी है उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन सामंजस्य बिठाकर। तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी सभी को आप?
1: खास मैसेज तो यही है कि स्त्रियों को लगे रहना पड़ेगा, अपना एक अलग स्थान तो बनाना पड़ेगा और परिवार के साथ सामंजस्य बिठा के शायद यह काम करना ज्यादा आसान होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो स्थान आपका परिवार आपको नहीं देगा, जरूर देगा। थोड़ा सा बस हौसला बनाए रखें और उस तरफ अपने प्रयत्न जारी रखें।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये जो समाज है ये तभी बदलेगा जब आप और मैं बदलने वाले हों, जब हम अपनी सोच को बदल दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नुपुर, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू भावना जी।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लव।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूँ प्रांका और लेकर के आ चुकी हूँ प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में, जहाँ मैं आप लोगों के पास में होती हूँ, आपसे ढेर सारी बातें के साथ साथ सुनाती हूँ प्यारे प्यारे से गाने और आपके मैसेज जो मेरे पास में आने शुरू हो गए हैं। बस ऐसे ही मैसेज आप भेजते रहें, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई गाना आपको इंजॉय करना है, आप मुझे 8010781078 पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं तो बात करूँ ही, लेकिन साथ में आप भी बातें करें, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले आपको नंबर देती हूँ ताकि आप अपनी बातें हम तक पहुँचा दें। और आप मुझे कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार बिजी होने के चलते हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो उसके लिए आप हमें दिल से माफ़ कर दीजिएगा और समझ जाइएगा कि अभी हम बड़ा बिजी हैं, आप तुरंत मैसेज कर दीजिए। और आप जब मैसेज करेंगे तो ना केवल हम आपकी बातों का जवाब देंगे बल्कि आप के फरमाइश के गाने भी आपको सुनाएंगे, तो बस आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम शुरू हो गया है तो चलिए गाना आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम में आपको बताने वाली हूँ कि आज के इस खास प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं पहले गाना। रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ढेर सारे हैक्स एंड फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ, ये क्योंकि बहुत ही खास और हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे काम को आसान करते हैं। और हमेशा क्योंकि आज का वक्त जो है हम काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे में जहां हम स्मार्ट चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं कुछ स्मार्ट हैक्स भी हैं जो हमारे काम को बेहद आसान कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही हैक्स और फैक्ट्स लेकर के आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, क्योंकि हम अपने हर दिन की जिंदगी में काम करते करते कहीं ना कहीं हमारे जहन में हमारे मन के अंदर एक ख्याल रहता है कि क्या ये काम कम हो सकते हैं या इन कामों से हमें थोड़ा सा वक्त मिल सकता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये हैक्स लेकर के आती हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए और बताऊंगी थोड़ी सी देर में, और साथ ही सुना रही हूँ आपको गाने। तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रेश 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं कुछ स्मार्ट हैक्स आपको बताऊंगी। भाई आज है सैटरडे और आज के इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं और किचन के बारे में मैं ज़्यादा आज के प्रोग्राम में आपसे बात करती हूँ, क्योंकि किचन का काम ना अपने आप में इतना सारा होता है कि अगर आप एक बार किचन में गए और आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर जो भी काम किया, करते करते आपको इतना टाइम हो जाएगा कि आपको सिर्फ इतना ही वक्त मिलेगा कि आपने नाश्ता करना है और उसके बाद फिर से लंच की तैयारी हो जाती है, क्योंकि काम बहुत सारा हो जाता है। अब ऐसे में हमें चाहिए होती है हेल्प, तो देखिए अगर घर में बाकी सदस्य हैं तो ज़रूर हेल्प करते होंगे, है ना। और अगर हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई और नहीं है हेल्प कराने वाला, तो यहाँ पर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए घर में जो भी किचन में उस वक्त काम कर रहा है तो सब मिलके उनका हाथ बटाएं, ताकि वो व्यक्ति जो किचन में खाना बना रहा है वो भी फ्री हो जाए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि करने वाला सिर्फ एक ही होता है किचन में काम, ना तो अब क्या करें। तो ऐसे में हैक्स काम आते हैं और इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस सैटरडे, हर सैटरडे आप लोगों के लिए हैक्स लेकर के आती हूँ। चलिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे ना बड़ी तकलीफ होती है, और वो है मिक्सी। अच्छा, मिक्सी से तकलीफ तब हो जाती है जब मिक्सी ख़राब हो जाती है, जार के ब्लेड घिस जाते हैं, किसी भी यूज़ में नहीं आ पाते हैं। तब ऐसे में क्या होता है, अब यही दिमाग में रहता है कि अब हमें नई मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, है ना। और मशीन बाहर ख़रीदना मतलब अपना खर्चा करवाना, राइट। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो वेट करते हैं कि छुट्टी आए तो हम मिक्सी वाले के पास लेकर के जाएं इसे ठीक कराने के लिए, इसके जो ब्लेड है उसको चेंज करवाएं, अब उसमें भी खर्च है ना। तो एक बार जो मैं कहने वाली हूँ उसको आप ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, आपको मिक्सी लेनी है, उसमें जार लगाना है, जार में कुछ डालना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ डालनी है और वो है सॉल्ट। जी हाँ, जो वाइट सॉल्ट होता है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, आपको ढेर सारा जो जार है मिक्सी का जिसमें ब्लेड है, राइट, उसमें आप डाल दीजिए और फिर आप खूब सारा नमक डाल करके इसको चला दीजिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको नमक को पीसना है। अब इससे क्या होगा, आप देखेंगे जैसे ही आपने नमक पीसा उसके बाद ब्लेड जो है वो काफ़ी हद तक काम करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्लेड होते हैं उसकी धार को एकदम शार्प करने का ये तरीका, आप ये से नुस्खा कह सकते हैं, ये एक बेहतरीन सा नुस्खा है। तो आप इसे करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कितना वर्क किया। बट मैंने अपने घर में किया था तो मुझे तो बड़ा सही लगा। अगर आप हफ्ते में एक बार ऐसे ही नमक को मिक्सी में डाल करके पीस देते हैं तो उससे आपके ब्लेड शार्प रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी और मिक्सी में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से आप मनी सेविंग कर सकते हैं और साथ के साथ ये हैक्स आप अपने किचन में इस्तेमाल करके आप किचन को और भी ज़्यादा यू नो स्मार्ट बना सकते हैं। अब मैंने आपको ये वाला हैक बताया, एक और बहुत ही गजब का हैक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस प्रोग्राम में, और इसके साथ ही सुनाने वाली हूँ गाने जो कि हैं बेहद खूबसूरत। तो चलिए दो गाने एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है एवरग्रीन लम्हे। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स। और किचन की बात हम कर रहे हैं क्योंकि किचन का काम ज़्यादा होता है, किचन में वो सारी चीज़ें जो अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग है उसको हम कैसे कम टाइम में कर सकते हैं या उससे काम हल्का कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और आपको हैक्स बताती हूँ। साथ ही बाहर जो खाने का अब ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक घर में हो गया है, यानी कि पहले हम बाहर जाकर एंजॉय करते थे लेकिन अब वही चीज़ें घर में भी हम बनाकर एंजॉय कर पाते हैं। फिर

चाहे कुछ भी फास्ट फूड हो या कोई भी ऐसा खाना जो आप बाहर पहले इंजॉय करते थे, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है कि अच्छा इसको ऐसे बनाना है या इस तरह से इसको बनाकर तैयार करना है, वो फिर हम घर पर ट्राई करते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ जो एक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जब कोई चीज़ हम घर पर बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम घर में क्या डाल रहे हैं, किस तरह के इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही हम जब भी छुट्टी पर होते हैं यानी कि वीकेंड होता है, तो या तो राजमा या कढ़ी खाने का मन करता है, या फिर दाल मखनी और उसके साथ में तंदूरी नान हो जाए तो ओहो क्या कहने, है ना। नान जो है घर में आजकल काफ़ी बनाने लगे हैं लोग। पहले का वक्त होता था कि लोगों को पता नहीं होता था कि कैसे बनाना है, सिर्फ कुछ एक लोग ही जानते थे बनाना, लेकिन आज के टाइम पर अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो भी नान बना सकते हैं। और ये तरीका तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। तंदूरी नान के लिए तंदूर का इस्तेमाल पहले किया जाता था, लेकिन अब घर में भी आप बना सकते हैं। आप उल्टे तवे पर सेक कर तंदूरी नान बना सकते हैं, जी हाँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको तंदूरी नान कैसे बनानी, बल्कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप नान बनाने जा रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, जैसे होता है कि रिलेटिव कोई आ गए हैं, या फिर एकदम से इंस्टेंट कुछ खाने का मन हुआ, दाल मखनी तंदूरी नान या कुछ तंदूरी नान के साथ कुछ खाने का मन हुआ और टाइम उतना है नहीं, प्लान एकदम से बना है ना, तो इंस्टेंट नान बनाने के लिए आपको क्या करना है, आटा जब आप उसका गूंथे उसमें बेकिंग पाउडर की जगह इनो जो है आप वो डाल दीजिए, इनो सॉल्ट जो होता है, इससे नान का आटा जल्दी तैयार हो जाएगा और नान बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, वही वाला टेस्ट आपको आने वाला है, जो कि बहुत ही यम्मी ऑसम टेस्ट होगा। तो ये आप करके देखिएगा, अभी तक आप जैसे भी नान बनाते थे आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, आटा वाकई में बड़ा सॉफ्ट गूंथेगा और उसकी नान भी काफ़ी अच्छी बनेगी। ऐसे ही स्मार्ट हैक्स आपके लिए अभी और हैं, साथ के साथ चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में आपको मैं बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स, और किचन से जुड़े ये जो हैक्स हैं जो वाकई में काम को काफ़ी आसान कर देते हैं, ऐसे ही आपका एक और काम आसान कराई देती हूं। अच्छा, कुकर में खाना बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा कम वक्त लगता है, और ये भी एक तरह से हमारे ही लिए सही है ना कि कम समय में खाना बन रहा है। लेकिन क्या होता है, दिक्कत तब बहुत ज़्यादा हो जाती है जब अचानक से हमें पता लगता है समय हमारे पास कम है खाना बनाने के लिए, और एकदम से हम किचन में गए हैं और कुकर जैसी देखा, और कुकर पहले तो ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जब नोटिस किया तो कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अब आपने ऐसे तैसे एडजस्टमेंट किया और आपने रबड़ लगा करके खाना चढ़ा दिया, कोई दाल या जो भी आपको बनाना है वो आपने चढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है, दाल के अंदर का जो कुकर के अंदर जो दाल है उसमें पानी है, वो पानी सारा बाहर झलक रहा है क्योंकि रबड़ ढीली है। अब क्या करें, अब एकदम से भागना पड़ेगा मार्केट की तरफ। तो कई बार होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता या दुकान काफ़ी दूर होती है, अब क्या करें उसके लिए। तो यहीं पर अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो काम आ जाए, यही तो स्मार्ट हैक है, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। अगर कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है तो आप उसको लीजिए और फ्रीजर में डाल दीजिए, जहाँ बर्फ रखी हो बस वहीं कोने में आप रख दीजिए और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आप एकदम तैयार रहिए, बिल्कुल रेडी रखिए, यहाँ तक कि आप जो खाना है उसको इतना जो आपने खाना चढ़ाने के लिए कुकर में डाला हुआ है सामान उसको आप इतना गर्म कर लें कि वो उबालने वाली स्टेज पर आ जाए। अब तुरंत आप रबड़ निकालिए फ्रीजर से और उसको लगा दीजिए कुकर के ढक्कन पे, और तुरंत आप उसको बंद कर दीजिए, सीटी तुरंत लग जाएगी और आपका खाना आसानी से पक जाएगा और कुकर के जो रबड़ है वो आपको परेशान भी नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका खाना तो बन जाएगा बट ये सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए रबड़ तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका वो खाना उस टाइम समय पर कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होता है ना कि आप कोई काम होगा तो वो वीकेंड में होगा क्योंकि छुट्टी मिलती है भाई, और छुट्टी में ही फिर सारे काम जो बचे होते हैं वो निपटाने पड़ते हैं ना। तो अब अगर बीच में ही यानी कि वीकडेज में ही अगर ऐसा हो गया है और वीकेंड का आप इस्तेमाल करें तो इस तरह से भी आप चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं, है ना। कितना स्मार्ट तरीका चीज़ों को ठीक करने का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और बताती हूँ, सुबह के वक्त में हम सभी चाहते हैं कि कुछ हल्का हेल्दी टेस्टी हो, है ना। अब इसमें देखो, अगर मैं रेसिपी डिश की बात करूं कि सुबह सुबह क्या होना चाहिए जो हेल्दी है, कुछ खाने में जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होना चाहिए, तो कई लोगों के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती हैं। लेकिन पोहा जो है वो सबको पसंद आता है ना, पोहा, क्योंकि जल्दी बन जाता है और ये काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। और उसी वक्त आपको कुछ ऐसा करना है जिससे इसे बनाने में बहुत कम वक्त लगेगा और काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। देखिए, जब भी आप पोहा बनाने जा रहे हैं ना, तो उसमें भिगोने के बाद स्टीम करके आप इसे बनाएं। स्टीम करने से पोहा नरम और मुलायम रहता है और अपनी शेप में रहता है और बनाने में भी काफ़ी कम समय लगता है। तो अब आप स्टीम करके पोहा बनाइए, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये आप करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा 8010781078। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव वृक्ष 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आपको स्मार्ट हैक्स और टिप्स दे रही हूं. तो हैक्स पर तो बहुत सारी बातें कर ली, अब बात कर लेते हैं अपनी यानी कि हमारी सेहत की. दादी नानी के नुस्खे बड़े ही कमाल के होते हैं. दादी जी नानी जी हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें बता जाती हैं जो कि पूरी ज़िंदगी काम आने वाली होती हैं. ऐसे ही कुछ नुस्खे आप लोगों के लिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि हैं बेहद कमाल के. अच्छा, पानी में नींबू निचोड़ कर पीने से हमारा फैट लॉस होता है ना, और शरीर में फुर्ती आती है. तो हम सभी जानते हैं कितने लोग वेट लॉस के लिए गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पीते हैं ताकि बॉडी डिटॉक्स हो और उनका पेट सही रहे, और साथ के साथ स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. वेट लॉस तो होता ही उससे, है ना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी जो नहाने वाला पानी है जिससे आप थोड़ी देर में नहाने वाले हैं, आप अगर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और उससे आप नहाएं तो स्किन सॉफ्ट रहती है, काफी ज्यादा चिकनी हो जाती है. जी हाँ, क्या ये आपको पता था? ये भी दादी नानी का नुस्खा है जो कि मुझे लगता है ये तो जरूर ट्राई करना चाहिए. भाई स्किन सॉफ्ट तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन मुलायम रहे और टेक्सचर बड़ा स्मूथ रहे. तो बस यही वाली चीज मुझे लगता है कि हम लोगों को अप्लाई कर ही लेनी चाहिए, और इससे कोई नुकसान भी नहीं है. दादी नानी का नुस्खा है, आराम से इस्तेमाल कीजिए. और नींबू पानी तो हम पीते ही है, तो अब नहाने के पानी में भी हल्का सा नींबू निचोड़ करके क्यों ना इस नुस्खे को आजमाया जाए, है ना. तो ये नुस्खा जब आप आजमाएं तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा. कुछ दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा. रेडियो मानव वृक्ष 107.8 FM पर, और साथ के साथ नंबर आप ले लीजिए 8010781078, ये हमारा नंबर है. चलिए अब आपको अगला नुस्खा बताती हूँ, और अगला नुस्खा भी हमारी दादी नानी का ही है. काले खजूर जो होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, है ना. क्या आप जानते हैं काले खजूर जो है वो खाने से कमर मजबूत होती है, और इससे कमर दर्द जो कि बहुत जल्दी आज के टाइम पे लोगों को होने लगा है. कमर में दर्द रहता है और ठीक से चला भी नहीं जाता. कई बार तो मैंने देखा है कि एक एज के बाद कमर दर्द इतना रहता है कि बहुत परेशान रहते हैं, और कई लोग तो झुक कर चलते हैं क्योंकि वो ठीक से कमर सपोर्ट ही नहीं कर पाती उनको, है ना. तो काले खजूर खाने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया होते हैं और कमर को और हड्डी को मजबूत करते हैं. तो मुझे तो लगता है, अब देखो दादी नानी का नुस्खा है और खजूर खानी भी चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं खजूर कितनी हेल्दी होते हैं हमारे लिए. तो काले खजूर आप अपने घर पे ला के रख लीजिए, और जब भी मन करे, हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं खाइएगा. और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो आप एक या दो से ज़्यादा मत लीजिएगा. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हेल्दी है तो इसको छोड़िएगा नहीं, ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा. रेडियो मानव वृक्ष 107.8 FM पर दादी नानी के नुस्खे अभी और बहुत सारे हैं जो मुझे आपको बताने हैं. लेकिन उससे पहले चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना. रेडियो मानव वृक्ष 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और मैंने आपको किचन हैक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई और अब मैं आपको बता रही हूँ दादी नानी के बेहतरीन नुस्खे, जो कि इसमें से कितने सारे नुस्खे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इन नुस्खों को आप कितना अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में। तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ अप्लाई तो हम नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं यही तो चाहती हूँ कि ये जो नुस्खे हैं जो हम सब जानते हैं इसको हम अप्लाई भी करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो जो फ़ायदा जो पहले के लोग उठाया करते थे वो हम भी उठा पाएँ। इतनी नायाब चीज़ हमारे बुज़ुर्ग बता कर गए हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम के ज़रिए से अगर कुछ लोग भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं तो देखो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। तो अगला नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, और ये भी हम सभी जानते हैं कि जो कच्चा प्याज है वो खाना चाहिए, कच्चा प्याज या सब्जी में डाल करके इसको हमें खाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है और गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है। और आपने घर में अगर बड़े हैं आपके तो आपने उनको देखा होगा कि जब भी वो लू में बाहर निकलते हैं तो अपने साथ में प्याज की एक गांठ यानी कि छोटी प्याज अपने साथ ज़रूर रखते हैं या फिर बैग में रखते हैं, और प्याज का सेवन ज़्यादा कर देते हैं लू के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर। वो क्यों होता है? क्योंकि ये लू से बचाता है, प्याज लू से बचाने में बहुत ही कारगर साबित होती है। इसलिए ऐसा आपने अपने बड़ों को भी डेफिनेटली करते देखा ही होगा, है ना। क्या आप जानते हैं कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बचाता है? जी हाँ, इसलिए प्याज का इस्तेमाल जो है हमें करना ही चाहिए अपनी डाइट में, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और बस यही मैं चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, दादी नानी के नुस्खों को एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ। वहीं मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि नींद नहीं आ पाती है आजकल, काफ़ी दिक्कत होती है, और हम अगर मोबाइल ना भी चलाएं तो भी एक प्रॉब्लम रहती है, जरी सी आँख लगती है तो फिर से आँख खुल जाती है और उसके बाद हम कई कई घंटों तक जागते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात पता है कब होती है? जब अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमें ऑफिस के लिए निकलना है। छुट्टी के टाइम पर तो फिर भी एक दिमाग में ये रहता है कि अगले दिन कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे समय निकाल के, लेकिन अगर अगला दिन वर्किंग है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये भी दादी नानी का घरेलू नुस्खा है, अगर नींद नहीं आ रही है तो हल्का सा नींबू चाट लीजिए, कहते हैं कि नींद अच्छी आ जाती है। तो मैंने तो ये अभी तक नहीं आजमाया क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाती हूँ बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप उनमें से हैं जिनको नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है आप ये कीजिए। और ये जो नुस्खा है आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना, नंबर हमारा 8010781078। तो देखा, हमारे जो समाधान हैं वो घर में ही हैं, लेकिन घर में समाधान होने के बावजूद हमें नहीं पता, क्योंकि हम दादी नानी के नुस्खों से अब काफ़ी दूर हो चुके हैं और जो पास है भी वो सिर्फ अपने तक ही सीमित है, क्योंकि आज के बच्चे ना उनको पता है और ना वो इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं, है ना। समय के की कमी है या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिस वजह से वो ध्यान ही नहीं रख पाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समाधान घर में ही मौजूद है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में बता रही हूँ आपको दादी माँ नानी माँ के नुस्खे। ऐसा ही एक नुस्खा आपको बताती हूँ और ये उनके लिए है जिनको खट्टी डकारी बहुत आती है। आज के टाइम पर हमारा खान पान इस तरह से हो गया है कि अगर हम अपनी भूख से ज़रा सा भी ऊपर खा लें तो हमें खट्टी डकारी आने लगती है, या कुछ तेल मसाले वाला ज़्यादा खा लें तो हमें ये दिक्कत होती है, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि सब चीज़ ठीक है, खाना भी हमारा हल्का है, लेकिन उसके बाद भी खट्टी डकारों की जो समस्या है कई लोगों के साथ में ये रहती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको इन सारी चीज़ों को करते हुए, यानी कि खाना खाते वक्त या तेल मसाला थोड़ा ज़्यादा खा लिया तब ऐसे हो जाता है, या फिर आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ की कि आपको खट्टी डकारे सिंपल खाने से भी हो जाती है, तो दादी नानी जी कहती थी कि अगर आप एक चुटकी भर जीरा खा लें तो खट्टी डकारे आना बंद हो जाएगी। तो ये आप करके देखिए। वैसे सौंफ के लिए भी कहते हैं कि सौंफ जो है वो खट्टी डकारों को ख़त्म करता है, पेट को ठंडा करता है, लेकिन ज़ीरा वाला जो है ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। ज़ीरा अगर आप एक चुटकी थोड़ा सा, मतलब आप ज़ीरा अगर आप खा लेते हैं और आपको ये दिक्कत हो रही है तो दिक्कत कहते हैं ठीक हो जाएगी। तो आपके साथ अब ये प्रॉब्लम हो तो आप ज़ीरा को बिल्कुल मत भूलना, याद रखना, और इसको खाना, और फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी खट्टी डकारें थोड़ी देर में जा चुकी हैं। तो है ना कितना कमाल का ये नुस्खा। ऐसे ही सेंधा नमक खाने की हिदायत हमेशा दी जाती है, क्योंकि सेंधा नमक जो है वो अच्छा होता है खाने में डालने के लिए। वही क्या आप जानते हैं कि सेंधा नमक शरीर के दर्द को कम करता है? जी हाँ, आपने सिकाई करते हुए तो सुना ही होगा, और आप करते भी होंगे, देखा भी होगा आपने सिकाई करते हुए कि गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके खूब सारा अगर आप अपने पैर डाल देते हैं तो ये काफ़ी अच्छी सिकाई हो जाती है पैरों की। आपके जो पेन होते हैं वो चले जाते हैं, आपके पैर में है, जॉइंट्स में है, तो वो गर्म पानी में सेंधा नमक डालने से दर्द गायब हो जाता है। ऐसे ही आप अगर इसको खाने में से इसका सेवन करते हैं तो ये कमाल का फ़ायदा जो है देता है बाकी नमक के मुकाबले। तो कैसा लगा ये नुस्खा, है ना कमाल का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, और ये उनके लिए है जिनको पेट में गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जी हाँ, अगर आपको भी दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहती है तो आप पहली चीज़ तो कम खाएं, और सबसे बड़ी चीज़ खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको जो गैस की प्रॉब्लम है या और जो प्रॉब्लम खाने के बाद होती है वो धीरे धीरे चली जाएगी। क्योंकि खाना खा के कई बार क्या होता है कि हम बैठे रह जाते हैं और बैठने से ही काम ख़राब हो जाता है, इसलिए खाना खाने के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद वॉक करनी चाहिए, वॉक करने के लिए कहा जाता है। तो आप धीरे धीरे धीरे वॉक कीजिए, या खाना खाने के आधे घंटे बाद आप वॉक शुरू करें। और वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद होता है, तो वज्रासन में आप ज़रूर बैठें। इससे खाना ना केवल डाइजेस्ट होगा बल्कि आपको जो ये प्रॉब्लम है जो आपके खाने के बाद शुरू होती है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। कुछ और चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है

प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, जहाँ आपको न केवल मैंने किचन हैक्स बताए बल्कि दादी नानी के ढेर सारे नुस्खे भी बताए। जी हाँ, तो चलिए अगला नुस्खा आपको बताती हूँ। और हमेशा आपने सुना होगा कि हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, है ना। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जोड़ों में दर्द होने की शिकायत हो जाती है, इससे खांसी जुकाम की समस्या हो जाती है, इसलिए रात में हमें दही नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप किसी खाने में डाल रहे हो ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी नुकसान होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप दही को रात में अवॉइड करें। और अगर आपका बहुत दही खाने का मन कर ही रहा है, तो आप अपने मन को समझा लें कि अगर आप खाएंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो अगर आप सेंसिटिव हैं और दही आपको बहुत अच्छी लगती है, तो पूरे दिन खाइए, लेकिन रात में पूरी तरह से दही को अवॉइड कीजिए। जी हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ मानी जाती है, लेकिन रात में आप अवॉइड कर दीजिए। वहीं खाना खाने के तुरंत बाद कहते हैं कि कई बार हम सभी को ही क्रेविंग हो जाती है चाय पीने की, और कई बार तो रात में भी बड़ी क्रेविंग होती है चाय पीने की, लेकिन चाय नहीं पीनी चाहिए। इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता और पेट में सड़ने लगता है, और ऐसा हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं। इसीलिए रात में चाय पीने की हिदायत नहीं दी जाती है। कोई नहीं कहता कि रात में चाय पीनी चाहिए, लेकिन चाय, जो चाय लवर है ना, उनकी क्रेविंग रात में ही सबसे ज़्यादा होती है, जब ऐसे कुछ थॉट चल रहे हैं दिमाग में, या कोई बात चल रही है, या कुछ भी ऐसा जो कि हमारे मन का हो रहा है, तो उस टाइम पर बातें करते करते चाय का प्याला मिल जाए, आह क्या कहना। अच्छा, मैं भी उनमें से एक हूँ जिनको चाय जो है बहुत अच्छी लगती है। मेरे को भी बहुत पसंद है चाय पीना, लेकिन रात में तो मैं भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरी दादी जी कहती है रात में चाय नहीं पीनी चाहिए बेटा, इससे एसिडिटी हो जाती है और बहुत शरीर को नुकसान होता है। तो मैंने तो ये सालों पहले समझ लिया था, तो आप भी समझ जाइए और चाय पीना रात में बंद कर दीजिए। तो है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कही हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, जो मुझे लगता है कि बहुत ही औसम बात हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोल गए, वो हमेशा कहते हैं कम बोलने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज़ होता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। कम बोलने वाला व्यक्ति, उसका मान भी होता है और आपका दिमाग तेज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा बात करने वाले जो लोग हैं ना, उनको लोग सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। जी हाँ, और अगर आप कम बोलते हैं तो लोग आपको सीरियसली सुनते भी हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने शरीर पर काम कर रहे हैं। तो भाई, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, हमेशा कम बोलना चाहिए, और जब भी बोले अच्छा बोले, प्यार से बोले, सम्मान के साथ बोले, शब्दों को ध्यान में रखकर बोले, है ना। कितनी बढ़िया बात जो हमारे बुज़ुर्ग कह गए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ढेर सारी बातें मैंने आपसे की, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा है 8010781078। तो चलिए इंजॉय करते हैं अगला गाना। मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रेडियो मानवशना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक खुशहाल खैरियत से होंगे। अगर अपना हालचाल हम लोग बताएं और जस्ट इन केस अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां भी सब ठीक है। बाकी ये शो हमारा होता है स्टार्टअप बेस्ड एक शो। इसमें हम लोग बात करते हैं ओवरऑल एक पूरे प्रोसेस की। हम लोग एक इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ब्रांड की तरफ चलते हैं। पूरा एक प्रोसेस यहाँ पर आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, सो दैट कि आप ज्यादा फेमिलियर हो सके उस एक चीज से, आपको प्रोसेस के बारे में पता लगे, फाउंडर्स के बारे में पता लगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडस्ट्री को आप थोड़ा समझ पाए। सो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या जस्ट इन केस इफ यू आर स्टडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, तो उसमें आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि इट टेल्स यू अबाउट एंटायर थिंग ऑफ दैट इंडस्ट्री। सो या दैट्स हाउ दिस शो इज रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ साथ साथ आपको ये भी पता लगता है कि भैया कौन कौन वो लोग हैं जिनकी बदौलत आज हम ये बात बोल पाते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। करेंगे डिस्कशन कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री में डील करती है, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद शो में आगे बात होगी। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन US डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 20%, जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजी सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मालवशना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज़ जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफ़ी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज़ हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज़ हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मींस हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी

कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर, क्योंकि उस टाइम पर ये हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक यू नो डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या कोविड 19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, यूपीआई, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड कोविड 19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहाँ पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन अश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील दैट।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का वो इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। Tier 2 and Tier 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है।

0: तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइव।

आशा करता हूँ अभी तक इंडस्ट्री को समझ गए हैं, म्यूजिकल वाइब पसंद आ रही है। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। आज का हमारा ब्रांड है जो फिनटेक में डील करता है, उसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक इंडिया का लीडिंग कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर न्यू एज डिजिटली नेटिव जो बिजनेसेस हैं, जैसे ई कॉमर्स ब्रांड्स हो गए या D2C जो ब्रांड्स होते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर स्टार्टअप्स हो गए, उनको एम्पावर करता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो कंपनी, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SaaS बुलाते हैं, वो ब्रांड्स हैं, या इनफैक्ट किसी का अगर रेस्टोरेंट भी है, उनको एम्पावर करने का काम करता है ये वाला एक प्लेटफॉर्म। 2020 में ये ब्रांड स्टार्ट हुआ वेलोसिटी, और ये जो है हेल्प करता है, मतलब इट हेल्प्स इन सो मेनी वेज, लाइक इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन डिल्यूटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, मीनिंग आपको जो है कैपिटल मिल जाएगी विदाउट इवन गिविंग अप द इक्विटी। यानी कि जो शार्क टैंक में हमने देखा है कि इतने प्रतिशत इक्विटी के बदले इतना पैसा मिलेगा, तो इक्विटी दिए बिना भी आप यहां से फंड रेज कर सकते हैं। सो या दिस इज द फाइनेंशियल पार्टनर। आई मीन टाइम बहुत चेंज हो चुका है, अभी कितने सारे ऐसे स्टार्टअप आ गए हैं जो काम ये करते हैं कि बाकी स्टार्टअप्स को एम्पावर करता है। सो थिंग्स हैव शिफ्टेड अ लॉट डिफरेंटली, और ये काफ़ी अमेजिंग पार्ट भी है कि हम लोग काफ़ी नए नए इनोवेटिव तरीके जो हैं वो लेकर के आ गए हैं। आई मीन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। यहाँ पर 400 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन हुआ है इकलौते 2024 के फेस्टिव सीजन में। ब्रांड्स लाइक Amazon, Flipkart एंड क्विक कॉमर्स जाइंट्स लाइक Blinkit, ये बहुत तेजी से और बहुत फास्ट पेस तरीके से जो है ग्रो कर रहे हैं। सो दे हैव रेज $30.3 million इन फंडिंग एंड आर ट्रस्टेड बाई ओवर 4,000 ब्रांड्स। That's what makes this brand so special, because ये empower करता है बाकी other startups को, empower करता है बाकी तमाम brands को जो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। Even if you are not willing to give the equity, you can still raise the money, क्योंकि ये flexible है यहाँ पर, और काफ़ी सारे models इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। So it's an interesting part कि इंडिया में हमने ऐसे brands भी बनाए हैं जो बाकी brands को uplift कर रहे हैं और उनको scale up करने में मदद कर रहे हैं। So yeah, this is Velocity। On this note लेंगे एक musical break, उसके बाद अपने show में आगे बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम आपको

फील गुड फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मेरा नाम है सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। हम जिस ब्रांड की आज बात कर रहे हैं उसका नाम है वेलोसिटी। ये ब्रांड स्टार्ट हुआ 2020 में। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन की वजह से बंद थी अपने घरों में, और इंडिया का जो ई कॉमर्स है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। मतलब लिटरली इट वॉज बूमिंग, ये टाइम था वो। D2C ब्रांड्स जो हैं वो लिटरली लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी निकल के आ रहे थे, और इतने सारे ब्रांड्स हमने स्टार्ट होते हुए देखे। लेकिन एक कैच है यहाँ पर कि जब आप कोई बिजनेस चलाते हो, कोई स्टार्टअप चलाते हो, सो यू नीड कैपिटल, राइट? यू नीड कैश। ट्रेडिशनल बैंक्स की अगर आप बात करेंगे बहुत स्लो प्रोसेस होता है वेंचर कैपिटल, वहां पर आपको इक्विटी देनी होती है, स्टेक पे लगानी होती है। बट यहाँ पर स्टार्ट हुई ये कंपनी जिसका नाम है वेलोसिटी, बेंगलुरु में स्टार्ट हुई, और यहाँ पर एग्जैक्टली इसी एक प्रॉब्लम को, इसी प्रॉब्लम पार्ट को फिक्स करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया ये ब्रांड इस मिशन के तौर पर, लेट्स एम्पावर द अदर स्टार्टअप्स एंड उनकी चिंता को थोड़ा कम करते हैं। सो ये जो है रिवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग इन्होंने देनी स्टार्ट कर दी। एक ऐसा मॉडल जहां पर जो रीपेमेंट है वो आपकी बिजनेस की सेल्स से जुड़ी हुई है, दैट मींस ग्रो बिग पे फास्टर, ठीक है? ये इनका एक कोर फंडामेंटल था और ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। आई डोंट नो आप में से कितने से लोग हैं जिनका स्टार्टअप है या जो फेमिलियर हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम से, बट इफ यू आर द वन देन आपको पता होगा कि कितना क्रूशियल हो जाती हैं ये सारी चीजें। आई मीन टेक योर टाइम, अगर कोई भी ऐसा स्लो डाउन कोई प्रोसेस हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि सेल अच्छी नहीं हो रही है, सो यू शुड टेक योर टाइम। जब से ये जो है स्टार्ट हुआ है, जब से इसको लॉन्च किया गया है, तब से इसने लिटरली बहुत एक्सपेंड किया है। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स में इन्होंने जो है पैसा दिया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो AI पावर टूल्स बना रहे हैं। मतलब उस टाइम पर मैं बोलूंगा दैट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, बट उस टाइम से ये एम्पावर करते आ रहे हैं। सो इट बिकेम काइंड ऑफ अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ। सो ये है हमारी आज की कंपनी वेलोसिटी। आशा करता हूँ अभी तक ओवरव्यू आपको मिल गया है, कैसे स्टार्ट हुई, कहानी क्या है, कब स्टार्ट हुई, ये सब आप जान पाए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या वो आइडिया था। तो कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं था, बट हाँ बहुत छोटे से ये बात समझ में आ गई कि यार स्टार्टअप्स को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम ग्रो भी कर रहे हैं, एक तरफ हमारे यहाँ पर पूरी वेव आई हुई है, बट एट द सेम टाइम भैया बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने थे। तो यहाँ पर इन्होंने ये सब करना शुरू किया और स्टार्टअप्स को अपलिफ्ट करना शुरू किया। सो ऐसे करके ये प्लेटफॉर्म जो है खड़ा हुआ और आज की रेट पे काफी अच्छा खासा नाम है वेलोसिटी का, खासतौर पे जब आती है बात ई कॉमर्स ग्रोथ के ऊपर। तो ये है हमारी आज की कंपनी। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव, आशा करता हूँ ये म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शो का लेकर चलेंगे। बात करते हैं फाउंडर्स की। भैया कौन है वो शार्प माइंड्स, कौन है वो ब्रिलियंट माइंड्स जिनके दिमाग में आइडिया आया? तो वो तीन नाम है, अभिरूप मेधेकर, अतुल खिचारिया एंड सौरभ स्वरूप। पहला नाम लेते हैं अभिरूप मेधेकर, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेलोसिटी। पुणे के रहने वाले हैं, मतलब ही इज द विजनरी फोर्स बिहाइंड वेलोसिटी। इन्होंने प्रीवियसली काफी काम किया है, जैसे कि मैकिन्जी कंसल्टेंट एंड साथ साथ एलिवेशन कैपिटल। दैट मींस कि फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से समझते हैं, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझते हैं। इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप कह सकते हैं फ्रंट रो की सीट मिल गई इन्हें इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। अगर आप इनकी बात करते हैं क्या विजन है इनका, सो ही सो एम्बिशियस। अपना इंडिया में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना है, बाकी ब्रांड्स को जो है अपलिफ्ट करना है। तो ये है इनका एक अल्टीमेट ड्रीम जो ये अभी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर अगर हम बात करें, 2024 में एक टेक एंड इनोवेशन सबमिट हुआ था, वहां पर उन्होंने बात बोली थी कि AI का बहुत बड़ा रोल है इनकी बिजनेस ग्रोथ में। ठीक है, जहां पर इन्होंने मैकिन्जी में जब काम किया तो वहां पर इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो है सीखा था, और उसके बाद AI जब दुनिया में आया तो उसके बाद दोनों तीनों चीजों को इन्होंने मिला दिया वहां पर, एंड दैट्स हाउ दे आर ग्रोइंग। सो ये है वेलोसिटी के CEO मिस्टर अभिरूप मेधेकर। दूसरा नाम आता है अतुल खिचारिया। अतुल इज द ऑपरेशनल बैकबोन ऑफ वेलोसिटी। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, इनके होम टाउन के बारे में, बट इनका एक्सपीरियंस एज अ फाउंडर बहुत कुछ बताता है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए। इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है

ई कॉमर्स कह रहा, मैं किसी प्लेटफॉर्म की बात करें, टेक्निकल जो इंसान होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. ही इज एग्जैक्टली द सेम पर्सन. ही इज ऑल्सो फ्रॉम बेंगलुरु स्टार्टअप सीन. ही इज द टेक विजार्ड. लिटरली जो वेलोसिटी का यही इनोवेशन है जिस डेटा सेट पर उसको ट्रेन किया जाता है, जो भी चेंजेस की जरूरत होती है वो सब ये करते हैं. इन्होंने पास्ट में भी जो है काफी टेक सॉल्यूशन जो हैं बिल्ड किए हैं, स्केल किए हैं. एंड ही इज रियली पैशनेट अबाउट यूजिंग AI, मतलब यहाँ पर नए बेंचमार्क सेट करने की. इन्हें एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ड्रीम लगा लीजिए या एक विश लगा लीजिए, बट इन्हें ये करना है और इनको बहुत मजा आता है. तो यहाँ पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने काफी सारे ऐसे टूल्स बनाए हैं जो AI का क्वालिटी चेक भी करते हैं. मतलब नॉट जस्ट AI यूजिंग, सिंपली AI का क्वालिटी चेक भी किया जाता है. AI पावर्ड क्रेडिट एनालिस्ट जो है वो भी यहाँ पर इन्होंने बनाया है. सो दीज आर द ब्रिलियंट माइंड्स जो अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, अलग अलग विजन लेकर आते हैं, बट सेम पेज पर जब आते हैं, एक ड्रीम के लिए काम करते हैं, एक ब्रांड के लिए काम करते हैं, सो इवेंचुअली वो बड़ा बनता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ वेलोसिटी. फिलहाल इसी नोट पर हम लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहे हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और इस वक्त आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्गदर्शन 107.8 एफएम के साथ। अभी ये वेलोसिटी के की ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? पहला है ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी। इंडिया का जो D2C एंड ई कॉमर्स मार्केट है, ये 2030 तक $250 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। दैट मींस कि जो भैया D2C ब्रांड्स हैं वो और तेजी से ग्रो करेंगे और निकल के आएंगे नए प्लेयर। दैट मींस सबको फंडिंग की जरूरत होगी, तो वहां पर ये ब्रांड आ जाता है। और अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ पर, एक पूरा दौर चल रहा है स्टार्टअप्स का। इसके बाद आता है AI एंड डेटा इनोवेशन। यहाँ पर AI पावर्ड क्रेडिट एनालिसिस एक टूल है इनके पास, जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है वानी AI। ठीक है, जो यहाँ पर फाइनेंसिस को आपके थोड़ा फास्ट और स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करता है, डील करता है, जो एनालाइज करता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है अगर फाइनेंस जो है यहाँ पर दिया जाता है तो। तीसरा भैया, किसी भी ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए जरूरी होता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद कि आपको स्ट्रांग फंडिंग मिले। सेम इन्हीं के साथ है, तो इनके पास भी अच्छी खासी एक फंडिंग है, लेट्स नॉट गो देयर। फोर्थ आता है फाउंडर सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि फाउंडर्स जो हैं वो खुद टीम बिल्ड करते हैं, खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो खुद से नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे होते हैं, और खुद बहुत पैशनेट है इस एक चीज़ को लेकर, तो वो ये चीज़ इवेंचुअली एक बहुत बड़ी USP बन जाती है। तो उसके बाद इनका जो मेन फोकस होता है, दैट इज़ द फिफ्थ की ड्राइवर, और वो होता है कि 2024 में जो इन्होंने 400 करोड़ रुपए फेस्टिव सीजन में एलोकेट किया, उससे काफ़ी ब्रांड्स जो हैं उन्होंने ग्रो किया, काफ़ी पीक सेल साइकिल देखी, ब्रांड्स ने बूस्ट किया उनकी इन्वेंट्री, उनकी मार्केटिंग, हर एक चीज पर अच्छा खासा स्पेंड हुआ। और ये इन्होंने अब यहां से आप कह सकते हैं कि फेस्टिव फोकस्ड एक तरीके से एक साइकिल बनानी शुरू करी है। दैट्स व्हाट मेक्स दिस ब्रांड सो स्पेशल। सो या, दीज आर द की ड्राइवर्स, और आप कह सकते हैं कि जो इस ब्रांड को बहुत खास बनाते हैं, ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड वेलोसिटी। सो हाँ, ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक मास्टर क्लास है। अगर आप अभी भी ये कहते हैं कि सारी इंडस्ट्रीज फुल हैं, कहीं पर कोई गैप नहीं है, देन यू शुड रीड दिस स्टोरी ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर तीन ऐसे लोग जिनको इतनी क्लटर्ड मार्केट में, इतना ज़्यादा क्योटिक मार्केट में भी एक गैप नज़र आ गया, जहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहे हैं, उन्हें उसके बावजूद एक और प्रॉब्लम नज़र आई कि भैया ये नहीं देना चाहते इक्विटी और उनको जल्दी चाहिए, तो क्या किया जाए सर? सो दे इन्वेंटेड टूल्स लाइक वानी AI, जिससे क्रेडिट एनालिसिस हो पाए और जल्दी जो है लोन डिस्पर्स हो जाए। आशा करता हूँ अब इतना जो शो आपको बताया है, इतनी जो इंडस्ट्री आपको बताई है, आप लोग समझ पाए हैं। फिलहाल इसी नोट पर इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज RJ सागर साइनिंग ऑफ।

0: सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: बोल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। देखिए, ये शो अगर आप रेगुलर सुनते हैं तो आपको पता होगा अच्छे से कि यहाँ पर हम बहुत सारी स्पेशल बातें करते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर एक मेहमान होते हैं जिनके साथ हम कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ, उनकी एक्सपर्टीज से निकाल करके कुछ स्किल्स आप लोगों तक हम कन्वे कर पाए। आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है और मैं कहूँगा कि मेरे दिल के बहुत करीब होता है ये टॉपिक, एंड दिस इज अबाउट राइटिंग। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं इशप्रीत सिंह। इशप्रीत फरीदाबाद से एक आर्टिस्ट हैं। इशप्रीत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर आपको ये जानना है कि इशप्रीत कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं तो मैं आपको दो चीज़ें रेकमेंड करूंगा। एक साल गाना है, आप स्पॉटिफाई पे जाइए, आप साल डालेंगे इशप्रीत सिंह करके, वो गाना आपको ज़रूर सुनाई देगा। आई एम डैम श्योर आपने से कुछ लोगों ने ज़रूर उसको सुना होगा, बहुत खूबसूरत गाना है। दूसरा, अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए सो यू शुड वॉच HR 51, जो कि स्टेज के ऊपर मौजूद है, एक मूवी जो फरीदाबाद की भाषा को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद की कहानी को कहती है और फरीदाबाद में रियल जो इश्यूज हैं चलता है जो उन्होंने यहाँ पर उसको हाईलाइट किया गया है वहाँ पर। यू शुड चेक इट आउट। आज हम इशप्रीत से बात करेंगे अबाउट राइटिंग। इसके दो तीन सेगमेंट्स मैं जरूर बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज एग्जैक्टली होता क्या है, किसको हम राइटिंग बोलते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स को लिखा कैसे जाता है। सेकेंड, अगर आप खुद राइटर बनना चाहते हैं आपको कैसे स्टार्ट करना होगा। थर्ड, अगर आपको काम ढूंढना है राइटिंग में, हाउ यू शुड अप्रोच पीपल, हाउ यू शुड पिच योर स्क्रिप्ट टू समवन, अगर आप किसी को काम पिच करना चाहते हो तो। बट ये सब बातें होंगी, पहले लेकिन इशप्रीत का स्वागत करेंगे। सो हाय इशप्रीत, वेलकम टू आवर शो।
2: हाय सागर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर।
1: इट्स एन ऑनर टू हैव यू हेयर एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव एन आर्टिस्ट हेयर इन दिस स्टूडियो, एंड आई एम ग्लैड कि आप यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं।
2: शुक्रिया भाई, बिल्कुल।
1: सबसे पहले मैं आपके मुँह आपकी जुबानी जानना चाहूँगा, प्लीज आप बताइए कि आप क्या करते हो, क्या डोमेन है आपका?
2: भाई मेरा डोमेन एक्चुअली बैकग्राउंड मेरा स्ट्रेंजली लॉ का है। और उसकी कहानी ये है कि मैं 12th स्टैंडर्ड में था, बोर्ड की परीक्षाएं अभी ख़त्म हुई थी, एंड एक बार मैं अपने पेरेंट्स को स्कूल लेके गया उनको बताने कि मैं इंग्लिश ऑनर्स परस्यू करना चाहता हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ। और फिर वो मेरे इंग्लिश टीचर से मिले और मेरे इंग्लिश टीचर ने आयरोनिकली खुद ही बोल दिया कि ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है, मेरी तरह बनना है क्या, ज्यादा से ज्यादा 30,000 की नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे इंग्लिश टीचर ने ही मुझे एक तरीके से मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा डिलेमा में डाल दिया कि ये फीजेबल ऑप्शन नहीं है, मतलब करियर वाइज ल्यूक्रेटिव नहीं है लिटरेचर को परस्यू करना। तो मेरे पेरेंट्स भी कहते कि लिटरेचर तो कभी भी आप पढ़ सकते हो, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वैसे भी लिटरेचर को कभी इतना एज अ सब्जेक्ट तवज्जो नहीं दी गई, स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी सम काइंड ऑफ अ टर्शरी थिंग, कि आप ये साइड बाय साइड पढ़ते रहो, ये कोई मेन स्ट्रीम काम नहीं होता, नौकरी ढूंढो पहले। तो मैं कंफ्यूज था क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही टारगेट था कि लिटरेचर पढ़ूंगा और लिटरेचर पढ़ाऊंगा, बस कोई मेरे आर्टिस्टिक एम्बिशंस भी नहीं थे उस समय स्कूल में। तो फिर मेरे दो दोस्त लॉ परस्यू करने वाले थे, पर उन्होंने कहा कि अब तू कुछ समझ तो आ नहीं रहा तुझे, तुझे करना क्या लाइफ में, तो तुम्हारे साथ कोचिंग ले ले और सिलेक्शन हो गया तो लॉ स्कूल चला जाइए। एंड समहाउ उन दोनों का उस समय नहीं हुआ और मैं लॉ स्कूल चला गया, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया।
1: ओह वाओ।
2: हाँ, और सिम्बायसिस लॉ स्कूल में चला गया फिर 5 साल के लिए, नोएडा। पुणे भी हो गया था बट पुणे एक तो काफ़ी दूर था घर से, और बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि नोएडा में रहूँगा तो दिल्ली आना जाना लगा रहेगा और मैं नाटकों की दुनिया और उससे जुड़ा रहूँगा समहाउ, क्योंकि मेरे को मैंने बताया कि पढ़ना बहुत पसंद था और पढ़ने में नाटक भी आते हैं, वो भी लिटरेचर का एक पार्ट है। तो मैं 5 साल लॉ स्कूल में बिताए और मैं 5 साल मंडी हाउस आता जाता रहता था, वर्कशॉप्स करता था, नाटक देखता था। तो एक तरीके से आप ये कह लो मैं डबल लाइफ जी रहा था, एक साथ मैं लॉ कर रहा था और एक साथ मैं अपना लिटरेचर की पढ़ाई जो मैं नहीं कर पाया प्रोफेशनली या फिर ये कह लो अकेडमिकली, वो मैंने सिंसियरली खुद से की अलग से। और फिर करते करते लॉ की पढ़ाई चलती रही, साथ साथ मैं लिखता गया। यूजुअली मेरे मेरा परफॉर्मेंस का बैकग्राउंड है, मैं परफॉर्म करता था, और फिर अचानक एक दिन मेरे किसी दोस्त ने बोला कि तू लिखता तो है ही, पहले मैं कविताएं लिखता था, तो उसने कहा कि कविताएं गाने भी तो बन सकती हैं, और मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं था अनलेस एंड अंटिल उसने बोला कि कविताएं क्या है, म्यूजिक तो कविताओं में भी होता है, तो एक बार ट्राई कर कि इसको कंपोज करवा। तो मैंने किसी से कंपोज करवाने की बजाय खुद ही कोशिश की गुनगुनाने की, और एक धुन मिली, मैंने ही धुन सोची, और मैंने एक हमारी शहर का लड़का है रोहित निगम, वेरी टैलेंटेड सिंगर, मैंने उसको इंस्टा पे अप्रोच किया, मैंने बोला भाई मैं लिखता हूँ, जबकि मेरा पहला गाना था वो, बट मैंने पोर्ट्रे ऐसे किया कि मैं राइटर हूँ इस लिखता हूँ। तो मैंने वो उसको घर पे बुलाया, मैंने वो धुन सुनाई, मैंने वो कविता गा के सुनाई, और वो मैंने गाने की तरह कभी ट्रीट नहीं की थी। हम स्टूडियो दोनों फर्स्ट टाइम गए, वो रिकॉर्ड हुआ लगभग 15 से 20 मिनट में, और वो गाना पहचान म्यूजिक करके एक लेबल है, उन्होंने पिक किया, और वो मेरा पहला ही गाना था। एंड ओवर अ वीक ही उसके मतलब मिलियंस स्ट्रीम चले गए, और मेरी लाइफ मतलब वहां से कम्प्लीटली चेंज हो गई, आप ये कह सकते हो।
1: कौन सा गाना था?
2: सजना।
1: ओके
2: हाँ,
1: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। ये आपका जो राइटिंग का सफर चला, आपने लॉ के बारे में बताया, ये सब ठीक है। और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे मध्यवर्गीय परिवारों की कहानी भी यही होती है सिमिलर, कि हम एक चीज बहुत मुश्किल होता है कि जो इंसान पिक कर पाए वो कर पाता है
2: जी।
1: हमें साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ करते रहना होता है दाल रोटी के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, राइटिंग एक कितना फिजिबल ऑप्शन है अभी तो, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंसड हो, और अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस टाइम सोच रहा है कि मुझे राइटर बनना है, आपके हिसाब से कितना फिजिबल है वो, अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पर इसको देखूँ तो?
2: मैं ऑनेस्टली किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, पर ऑनेस्ट ट्रूथ, गॉड्स ट्रूथ जिसे बोलते हैं, वो यही है कि गुरबत का काम है राइटिंग इनिशियल डेज में, और ख़ासकर हमारे देश में। आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो लोग यूजुअली क्या बोल के फिल्म देखने जाते हैं, कि सलमान की फिल्म आ रही है, शाहरुख की फिल्म आ रही है, एज इफ उन्होंने ही वो डायरेक्ट किया और उन्होंने ही वो लिखी है। इन कंपेरिजन टू वेस्ट, वेस्ट जब वेस्ट में लोग क्या बोलते हैं कि नोलन की फिल्म आ रही है, स्कॉर्सेज़ी की फिल्म आ रही है, इससे आपको क्या पता चलता है कि कोई फेस को ज़्यादा तवज्जो देता है और कोई फेस के पीछे जिसने वो पूरा काम किया उसको ज़्यादा तवज्जो देता है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी कंट्री थोड़ी स्टार ऑब्सेस्ड कंट्री है, जो स्क्रीन पे आता है हमें मतलब ग्लैमर से ऑब्सेस्ड है हम, मे बी यहाँ तो हमारी रियल लाइफ बहुत डल है और बोरिंग है, हम फंसे रहते हैं, तो हमें ये देखने लोग बहुत पसंद है, लेकिन जो असली काम जाता है बिहाइंड द स्क्रीन उसको हमारा कंट्री अप्रिशिएट नहीं करता आज भी। आप किसी भी को पूछोगे कि किसी ने ये फिल्म लिखी, किसने डायरेक्ट की, तो हमें नाम नहीं पता होंगे, तो ये सैड रियलिटी है। तो आपको राइटिंग वाकई ही पसंद होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें एक्टिंग जैसा आरओआई नहीं है। इसमें आपको फेस करना पड़ेगा ये रियलिटी कि मैं करता रहूंगा एंड मे बी मैं पूरी लाइफ रिकॉग्नाइज ना हूं। तो अगर आप रेडी हो उस चीज के लिए, गुर्बत के लिए, और ख्याति आपको नहीं मिलेगी, तो आप जाओ इसमें, फिर आप अच्छे राइटर भी बनोगे, क्योंकि आप किसी के लिए नहीं लिख रहे फिर।
1: बहुत सुंदर। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि डोंट चेज द फेम, आपको मिले ना मिले वो सब्जेक्टिव चीज हो सकती है, मिल भी सकता नहीं मिल सकता। पॉइंट ये है कि आपको राइटिंग से अगर प्यार है और आप इस चीज के लिए तैयार हो कि बस मैं दाल चावल का जुगाड़ अपना कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, तो इशप्रीत कह रहे हैं कि शायद एक सही विकल्प हो सकता है। पर अगर आप सिंगल इस थॉट के साथ जा रहे हो कि दौलत शौहरत कमाऊंगा तो राइटर बन जाता हूँ, वो कह रहे हैं कि वो एक गलत अप्रोच हो जाती है, ना आपकी राइटिंग में निखर के आएगा वो, ना वो चीज वैसे मिल।
2: और मैं रेफरेंस भी आपको देता हूँ, आप देखो चेखव था, एंटन चेखव, रशियन राइटर, काफ्का था, ठीक है, काफ्का बैरिस्टर था, लॉ पढ़ी हुई थी काफ्का ने, चेखव मेडिसिन का स्टूडेंट था, तो चेखव डॉक्टर था, काफ्का बैरिस्टर था, तो सबने अपना दिन का काम पकड़ रखा था और रात को राइटिंग छोड़ रखी थी। तो आप अपने दिन के लिए वही दाल चावल ढूंढो और रात के लिए आप अपनी कलम पकड़ो।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑलराइट, ऑन दिस नोट लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो कंटिन्यू करेंगे। इसलिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग राइटिंग की बात कर रहे हैं। आगे फर्दर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कैसे लिखना होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें समझ पाएं कि एक फिल्म लिखना, एक वेब सीरीज लिखना, एक गाना लिखना, एक कविता लिखना, कोई स्केच लिखना, इनकी अप्रोचेज क्या होती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील

0: वेलकम बैक अगेन। आई एम सेइंग अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो स्पीड से आपको कहनी है या मुझसे कहनी है, कोई फीडबैक हो सकता है हमारे लिए, कोई प्यारा सा मैसेज हो सकता है, तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल इसी नोट पर शो को कंटिन्यू करेंगे। शो का नाम वॉइस ऑफ यूथ, आज के हमारे मेहमान है इशप्रीत सिंह। इशप्रीत, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, मैं राइटिंग को थोड़ा समझना चाहता हूँ सिंपल शब्दों में। बहुत सारे लोग उस पार जो हमारी आवाज सुन रहे हैं उनको नहीं पता है टेक्निकल चीजें राइटिंग की। पहले तो मुझे बताइए कि राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक राइटर जो है लिखता है। सब्जेक्टिव हो सकता है, उसमें आप अपना बता सकते हैं प्लीज।
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये जानने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कॉलिंग कहाँ से आती है, कि आप राइटर हो भी या नहीं हो।
0: हाँ,
1: मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि राइटर शायद वो लोग बनते हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत इनकम्प्लीट महसूस करते हैं और हर दिन खत्म होते ही उन्हें लगता है कि ये दिन सही से नहीं जी पाए, तो वो उस दिन को दोबारा जीना चाहते हैं। अब वो कैसे जिए, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, वो निकल चुका है, तो मे बी आप लिखकर उस चीज को रिक्रिएट कर सकते हो। तो मुझे लगता है टेक्निक राइटिंग की कोई नहीं है, आप चाहे जितनी वर्कशॉप्स कर लो या कोर्सेज ले लो, वो आपको कभी राइटर नहीं बना पाएंगे। मुझे दो चीजें लगती हैं, एक तो रीडिंग और एक लिविंग। मतलब कि आप हर तरीके की चीजें पढ़ो, साहित्य से लेके जो घटिया मैगजीन्स होती हैं, इरोटिका भी पढ़ो और रशियन लिटरेचर भी पढ़ो। मतलब सबसे ऊंचे स्तर का लिटरेचर पढ़ो और सबसे निचले स्तर का लिटरेचर पढ़ो, उससे आपको हर तरीके की चीज़ पता चलेगी। जो दुनिया आपने नहीं भी जी है, आप वो दुनिया भी जी लोगे कि अच्छा 18वीं शताब्दी में रूस ऐसा था, लैटिन अमेरिका ऐसा था, चे गुवारा पॉलिटिक्स में क्यों गया जबकि वो तो मेडिसिन का स्टूडेंट था, उसके लिए आपको मोटरसाइकिल डायरीज पढ़नी पड़ेगी। तो आप समझोगे कि लोग कैसे बदलते हैं, जगहें कैसे बदलती हैं, हिस्ट्री आप समझोगे, ज्योग्राफी आप समझोगे। तो राइटिंग सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हमारे लॉ की फील्ड में भी बोलते हैं नेवर स्टडी अ थिंग इन साइलोस, वैक्यूम में मत पढ़ो किसी चीज़ को। तो आप पढ़ो इतना कि आपको पूरा परिवेश समझ आए हर चीज़ का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। और दूसरा, आधा दिन आप पढ़ो और आधा दिन आप बाहर निकल के दुनिया के साथ इंटरेक्ट करो, क्योंकि सिर्फ किताबी बातें कभी आपकी राइटिंग में ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जब तक आप ज़मीन पर उतर के ज़मीनी लोगों के साथ बातचीत नहीं करोगे। जिसे हम कहते हैं ना कैबिन आर्म चेयर राइटिंग, एसी में बैठ के कभी अच्छी राइटिंग नहीं होगी। इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि एसी में लिखना ख़राब है, आपको बाहर धूल धक्कड़ खाओ फिर बेशक आके एसी में लिखो, लेकिन आप बाहर निकलो। तो आप, मेरे लिए तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, रीडिंग, ट्रैवलिंग और टॉकिंग विद पीपल। ये तीन चीज़ें कोई भी इंसान पूरे शिद्दत के साथ अगर कर रहा है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली लिखने का मन करेगा, क्योंकि जब आप इतनी दुनिया देख लेते हो, जब आप इतनी किताबें पढ़ लेते हो, कहीं ना कहीं एक डिज़ायर आ जाती है कि मुझे अब अपनी वर्ल्ड के बारे में भी दुनिया को बताना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है या मैंने क्या सीखा इस जीवन में। और जैसे विनोद कुमार शुक्ल नहीं बोलते कि इतिहास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हर इंसान अपना इतिहास लिखने लग जाए, तो हर इंसान को अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है राइटिंग प्रोफेशनली किसी को सीख नहीं भी नहीं करनी चाहिए, तो बेटर पर्सन बनने के लिए लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको अपने बारे में।
0: सो मिसिंग। अगर मैं बात करना चाहूँ, अपने पसंदीदा गाने की बात करना चाहूँगा मैं, साल की,
1: जी
0: क्या थॉट था, कैसे कैसे उस गाने को लिखा,
1: साल
0: प्रोसेस क्या था उस गाने का?
1: साल का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था। साल गाना जो है, मैं उस समय लॉ स्कूल में था, अपने ग्रेजुएशन कर रहा था LLB, और उस समय मुझे एक लड़की पसंद थी, और समहाउ लास्ट इयर्स रह गए थे लॉ स्कूल के, और मैं बहुत इंट्रोवर्टेड और शाय इंसान हूँ इन जनरल भी अपनी लाइफ में, तो मैं कभी एक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और तब तक ट्रेन निकल जाती है और फिर बाद में ये गाने रह जाते हैं। तो वो था कि कैसे, जो उसका कोरस है गाने का, कि पहले दिन देखा दिल हार गए, दूसरे दिन देखा, कि आप दो दिन किसी से प्यार में पड़ते हो और उसमें आपके कितने साल चले जाते हैं, वो उसका कंसेप्ट था। कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई पसंद आया, आपको कोई पसंद आता है, एक या दो दिन में ही आ जाता है पहली नज़र में, जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, बट कितना लंबा जाता है वो पर्सन आपकी लाइफ में रहता भी नहीं है और फिर भी आप सालों साल उसकी इमेज लेके चलते हो। तो इस थॉट पर लिखा था वो गाना।
0: वाह यार।
1: हाँ, कि मतलब इट इज अ मैटर ऑफ वन और टू डेज बट इट परसिस्ट फॉर इयर्स एंड इयर्स अपनी इमेजिनेशन में, और आप होते भी नहीं हो उस पर्सन के साथ। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग लगता है वो इस थॉट से।
0: आई थिंक अगर इस पॉइंट से अगर आप देखते हो ना चीजों को, तो मेरे को ऐसा लगता है राइटिंग इज अ ब्लेसिंग।
1: हाँ,
0: या फिर क्या को क्या बना देते हो, हाउ यू एक्सप्रेस। जैसे अभी आपने ये चीज बताई तो होता हम सबके साथ है कि एक इंसान को कभी देखा और शायद अपने आखिरी के 70-80 की एज में भी हम उस चेहरे को याद कर रहे होंगे, धुंधला सा वो कहीं याद होगा, ठीक है, सबके पास ये थॉट होता है, बट ये शब्द नहीं होते हमारे पास कि कितने साल निकाल दिए उन दो दिनों के चक्कर।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और HR 51 का प्रोसेस मैं जानना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट तो ठीक है, आपको लगा कि फरीदाबाद की आवाज़ बनना चाहिए, फरीदाबाद की कोई कहानी है जो आई नहीं उसको कहना चाहिए, बट एक फिल्म लिखना बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: तो वो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे लिखा, ड्राफ्ट कैसे होते हैं, स्टोरी होती है, स्क्रीन प्ले होता है, थोड़ा मुझे टेक्निकल वे में अगर आप समझा सके इसको।
1: टेक्निकल वे में सिंपल है कि लोग कंफ्यूज करते हैं कि स्टोरी स्क्रीन प्ले सेम चीज है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। और मोस्टली आपने क्रेडिट्स में देखा भी होगा कि डायलॉग का क्रेडिट किसी और को दिया जाता है, स्क्रीन प्ले का किसी और को दिया जाता है, और स्टोरी का किसी और को दिया जाता है। जैसे इस केस में HR 51 में तीनों चीजें मेरी थी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। तो स्क्रीन प्ले ये है कि व्हाट इज प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या क्या प्ले हो रहा है, मतलब छोटे से छोटा एक्शन भी कि ईशप्रीत अब पानी का ग्लास पीने वाला है, तो इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन भी स्क्रीन प्ले में जाती है कि ईशप्रीत इज गोइंग टू पिक अप अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक स्क्रीन राइटर को ये भी लिखना होगा। डायलॉग इज अ डिफरेंट थिंग, डायलॉग है वार्तालाप, बस शब्दों का आदान प्रदान कि दो लोगों में क्या वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तू मेरे पास बैठा है, हाँ मैं तेरे पास बैठा हूँ, तेरे साथ बैठा हूँ, ये डायलॉग हो गया। उसके अलावा डायलॉग राइटर कभी भी स्क्रीन पे क्या चल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता कि अब ये गाड़ी ऑन करेगा, अब ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगी। तो डायलॉग ये हो गया, स्क्रीन प्ले अलग हो गया, स्टोरी हो गया ओवरऑल कहानी। अब जो कमर्शियल सीन में जो स्ट्रक्चर चलता है स्क्रीन प्लेस का, वो यूजुअली अमेरिकन स्टाइल का होता है, विच इज़ द 3-act स्ट्रक्चर, Act 1, Act 2, Act 3, क्योंकि लोग यूजुअली उसी से ग्रिप होते हैं। एक्ट वन में आप अपना प्रेमाइस सेट करते हो कि क्या दुनिया है, और एक्ट वन खत्म होते होते आपको कोई एक ऐसी सिचुएशन डालनी होती है कि अब यहाँ से कहानी पलटने वाली है, कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है। एक्ट टू में आप आते हो, अब वो सब कुछ दिखता है जो उसके साथ बुरा होने वाला है। एक्ट थ्री में आप क्लाइमैक्स लिखते हो कि अब ये बचेगा या ये डूबेगा। तो इस तरीके से मोस्टली कहानियां जो कमर्शियल सीन में लिखी जाती हैं वो इस 3-act स्ट्रक्चर पे लिखी जाती हैं। और HR 51 के लिए भी मैंने यही फॉलो किया था, क्योंकि एक कमर्शियल OTT प्लेटफॉर्म है, इंडी प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता था। तो यही है कि आप 3 हिस्सों में बांटो कहानी को, आप अपने वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाओ, वर्ल्ड में होता क्या है वो एक्ट टू में दिखाओ, और थर्ड में ये वर्ल्ड बचेगा या नहीं, सिंपल।
0: तो क्या उसको बोल सकते हैं बिगनिंग मिडल एंड?
1: Yes, beginning, middle, end.
0: तो act one, act two, act three, same चीज़।
1: जी, जी।
0: Beginning, middle, end।
1: हाँ जी।
0: तो अपनी कहानी को establish करो, problem establish करो।
1: Yes।
0: Beginning में।
1: हाँ।
0: Middle में उसको जितना आप peak पे ले जा सकते हो उसको ले जाओ, क्या चल रहा है।
1: हाँ।
0: और end में आप उसको conclude करते हो।
1: जी।
0: कि क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अधूरा हुआ, जो हुआ। So amazing, so amazing।
1: Screen writing की किताबें भी हैं बहुत सारी, जैसे एक Save the Cat बहुत popular किताब है, वो लोग पढ़ सकते हैं, तो वो brilliant किताब है, Save the Cat।
0: ठीक है, ठीक है। और अगर मैं गाने की बात करूं, गाने का तरीका क्या होता है, गाने कैसे लिखे जाते हैं?
1: गाना इंटायरली डिफरेंट है एक फिल्म से, एक कहानी से और एक नाटक से, क्योंकि गाने का स्ट्रक्चर भी होता है, मुखड़ा, अंतरा, ये सब, वर्स, कोरस जिसे बोलते हैं, लेकिन गाना जैसे फिल्मों के लिए क्या है कि आप और फिल्में देख सकते हो, उनसे सीख के आप अपना प्लॉट लिख सकते हो। गाना इंटायरली फीलिंग के बेस पे वर्क करता है। म्यूजिक को लेके मेरा ये टेक है कि म्यूजिक अगर आप रेफरेंस पे बना रहे हो कि आज ये गाना हिट हुआ, अब हम इस सैंपल पे एक और गाना बनाते हैं, मुझे नहीं लगता वो वर्क करता है, या मेरे लिए तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करता। म्यूजिक उसी का अच्छा होगा जो चीज़ें दिल से फील करता है, जिसकी मेलेडी दिल से निकलती है और जो सारी चीज़ें पर्सनली फील करता है, वो अच्छा म्यूजिक बनता है। और म्यूजिक में कभी भी मैंने आज तक की अपनी डिस्कोग्राफी में किसी भी गाने के लिए कोई रेफरेंस नहीं सुना है कि मैं लिरिक्स के लिए या कॉम्पोजिशन के लिए किसी दूसरे सोर्स पर रिलाय करूं। म्यूजिक के लिए मैं इंटायरली अपनी फीलिंग्स पे और इंट्यूशन पे डिपेंड करता हूं, और जो मुझे आता है वो मैं लिखता हूं, और यूजुअली मैं मेलेडी के साथ ही लिखता हूं। एक धुन होती है, मैं उस पर हम करता हूं, और उस हमिंग पे मैं शब्द डालता हूं।
0: आपने गाना लिखा, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी धुन में ठीक है जा भी रहा है, बट अगर मीटर फिट नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, ये राइम नहीं हो पा रहा, राइम का तो खैर चलो गुलजार साहब ने वो खत्म ही कर दिया कि जरूरी नहीं है, लेकिन मीटर फिर भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि सुर आप

0: कैसे अलाइन करते हो?
1: तो सागर भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक जो मेरा पर्सनल काम है उसमें कभी मुझे आज तक मीटर या इन सब टेक्निकल चीज़ों की दिक्कत नहीं आई। उसका कारण यह है कि पहले मैं अपना काम कविता की तरह लिखता हूँ, फिर स्टूडियो में हम जाते हैं, लैरी होता है मोस्टली, और लैरी इतना क्रिएटिव स्पेस रखता है कि हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं कि या तो वो इस तरीके की मेलोडी या इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन कर देगा कि वो फिट आ जाए, नहीं तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि शब्दों को घुसाना है या फिर टेक्निकली उसको साउंड करवाना है। फीलिंग्स पे चलते हैं मेरे पर्सनल काम। लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ घोस्ट राइटिंग भी करता हूँ, घोस्ट राइटिंग भी मैं अपनी ऑडियंस को बता देते हैं। घोस्ट राइटिंग वो होती है कि जहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो काम करना पड़ता है। उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडियो आप जाते हो, प्रोड्यूसर आपके सामने ऑन द स्पॉट बीट प्ले करता है और आपको वहीं पर गाना लिखना होता है। तो उतना आपको अपना कान पक्का करना होता है कि आप बीट का टेम्पो और बीपीएम समझ सको, बीट पर मिनट, कि अच्छा टक टक टक इसमें 4 शब्द आएंगे, टक टक टक टक टक इसमें 6 शब्द आएंगे, उस हिसाब से वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो पैसों वाला काम जब होता है कि मुझे किसी ने हायर किया है, तो वहां पर मैं फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए कॉर्नर कर देता हूँ, वहां पर टेक्निक पे चलते हैं। लेकिन जो पर्सनल काम जितने भी होते हैं वो इंटायरली फीलिंग्स और इंट्यूशन पे ही होते हैं।
0: ओके, नाटक कैसे लिखे जाते हैं?
1: नाटक का भी बिल्कुल फिल्म, और क्योंकि आप देखो हर राइटिंग राइटिंग लगता है कि लिखना कितनी सिंपल क्रिया है, नहीं है, आसान क्रिया लगती है लिखना, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर फॉर्मेट अलग अलग चीज़ एक्सपेक्ट करता है। नाटक जो है, नाटक थोड़े से सिमिलर हैं इस मामले में कहानियों, प्रोज और फिल्म से। नाटक के लिए आपको बड़े बड़े आप प्ले राइट्स को पढ़ो, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर समझो। बहुत सारे प्लेज ऐसे रहते हैं कि जिनमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, सोलिलोलोकीज होती हैं, स्टेज पे कैरेक्टर जा रहा है और बस अपने से बात कर रहे हैं और कोई नहीं है स्टेज पे और ऑडियंस से बात कर रहे हैं, मोनोलॉग्स हैं। कुछ प्ले होते हैं जिसमें कास्ट बहुत बड़ी होती है, जैसे शेक्सपियर के नाटक आप देख लो, कॉमेडी ऑफ एरर्स या फिर जूलियस सीजर, इतनी ज़्यादा कास्ट है, कैरेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है नाटक अगर किसी को लिखने हैं ना तो वो हैवी लिटरेचर पढ़े, जैसे महाभारत सबको रेफर करनी चाहिए, चाहे वो फिल्म का राइटर बनना चाहता है या नाटक के लिए। तो मैं खासकर बोल रहा हूँ, महाभारत एक ऐसी चीज़ है कि महाभारत में मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसे कोई भी लिटरेचर लिखा गया जो महाभारत से ग्रेटर है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर आर्क, इन टर्म्स ऑफ प्लॉट ट्विस्ट, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन नेचर। सारी चीज़ें जितनी भी एक ह्यूमन नेचर में होती हैं वो सारी महाभारत में है। महाभारत एक सिंगल बाइबल जैसे बोलते हैं ना, राइटर की बाइबल हो सकती है महाभारत। तो नाटक के लिए अब यही है कि आप हर कैरेक्टर की आर्क को समझो कि हर कहानी के अंत तक जितने किरदार आपके नाटक में हैं, खासकर मुख्य मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट या जो साइड सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, वो जर्नी जब तक नाटक की ख़त्म हो रही है तो एंड तक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनकी स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितने उनमें परिवर्तन आया है। अगर आपके नाटक में या किसी भी कहानी में शुरुआत से लेकर अंत तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखी है तो इसका मतलब वो कहानी कहने लायक थी ही नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है।
0: नहीं, दैट सो अमेजिंग क्योंकि कोई पॉइंट भी नहीं है उसका कि कुछ जियोगे नहीं आप।
1: बिल्कुल,
0: जीने के लिए यात्रा जरूरी होती है और यात्रा यही होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट वो पहुंचे और फॉर्मेट वही काम करता है। और मुझे लगता है कि दुनिया में मोटा मोटे तो कुछ 8-10 ही कहानियां हैं जो अभी तक चली आ रही हैं, उन्हीं पे पूरी दुनिया का सिनेमा टिका हुआ है कि लड़का लड़की मिलते हैं, या तो उन्हें घर वाले मानते हैं या तो नहीं मानते हैं, या तो शादी होगी या तो नहीं होगी, या तो ग्रीड होगा कुछ बीच में, बस उसी में क्या नया आप ट्रीट कर सकते हो, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क।
1: क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है सागर भाई कि इमोशंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री सेम ही रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो नहीं कही जा चुकी, बस आप उसको हर नए समकालीन परिवेश में कैसे दोबारा से कह सकते हो बेहतर तरीके से, क्योंकि इमोशंस वही रहने वाले
0: हैं। मैंने प्ले पढ़ा था आषाढ़ का एक दिन,
1: बहुत सुंदर नाटक है मोहन राकेश का।
0: मैं उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स कंसीडर करता हूँ अगर मुझे कोई नाटकों के बारे में पूछेगा तो। मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड, ये दो मेरे फेवरेट राइटर्स हैं। एंड आषाढ़ का एक दिन में जब वो आप विरह वाला वो सीन देखते हो, मैं बहुत कम ऐसा हुआ है कि शायद पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ,
1: कालिदास का
0: और वो जब कालिदास आके अपना पूरा किस्सा बता रहे हैं कि मैं वापस आना चाहता था पर मैं क्यों नहीं आ सका, पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मेरी आंखों से टप टप टप टप आंसू गिर रहे हैं और मैं उस पूरे प्रसंग को पढ़ रहा हूँ। वो इतना सुंदर लम्हा था मेरे लिए कि ये क्या जी रहा हूँ यार मैं जिंदगी। तो विरह तो वहां से चला आ रहा है,
1: बिल्कुल,
0: कालिदास के टाइम से,
1: बिल्कुल,
0: और आज तक भी वो विरह है, आज तक भी उस पर कहानियां कहीं जा रही है, तो वो सेम रहेगा, वही प्रेम, वही विरह, वही जुदाई, वही मिलन, ये चलता रहता है। बहरहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। और अब ये थोड़ा सा धंधे वंदे की बात करेंगे, कहीं से आप लोगों ने लिख लिया है, स्पीड की बात सुनकर आपने एक्ट वन एक्ट टू एक्ट थ्री लिखना शुरू कर भी दिया है, तो उसको पिच कैसे करोगे, काम कैसे लाना होता है, ये डिस्कस करेंगे अभी। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: Once again, welcome back. I'm RJ Sagar, show voice of youth. हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर इशप्रीत सिंह और यहाँ पर हम लोग राइटिंग की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने मोटा मोटी इशप्रीत को समझाया है वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। हमने तमाम चीज़ें जानी है, हमने जानने की कोशिश करी है एट द सेम टाइम कि अलग अलग फॉर्मेट्स को कैसे अप्रोच करना होता है, कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी को फिल्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कविता को गाना कैसे बनाया जाता है, नाटक कैसे लिखा जाता है, इंस्पिरेशन कहां से ली जाती है, राइटर किसको बनना चाहिए, रियलिटी चेक क्या होता है, ये तमाम सवाल अभी तक हम डीकोड कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं आपके काम धाम की कि अगर आपने लिखना शुरू कर दिया है या आपने पूरी एक स्क्रिप्ट लिख ली है उसको आप अप्रोच कैसे करोगे। इशप्रीत, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे। एक राइटर ने एक कहानी लिख ली है
1: जी,
0: उसको लग रहा है कि उसने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स अभी बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी यात्रा शुरू होती है एक दूसरी कि उसको बेचना है, सही लोगों तक पहुंचाना है। क्या प्रोसेस होता है, कैसे अपनी कहानी को पिच करना होता है, क्या प्लेटफॉर्म है कोई या कैसे होता है?
1: इसका अगर आपको वाकई प्रैक्टिकल आंसर चाहिए किसी बिगिनिंग राइटर के लिए तो उसका सिंपल सा आंसर है बेशर्मी। पिचिंग में, पिच करने के लिए कि आपने आप अपनी नाटक, फिल्म, कविता, गाने, जो भी आपका फॉर्मेट है उसको बिल्कुल सभ्यता के साथ लिखो और पिच करो बेशर्मी के साथ। बेशर्मी से मेरा मतलब ये है कि आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपके पास क्या बचता है कि आप जितने ऑफिसेस, जितने प्रोडक्शन हाउसेस, जितने म्यूजिक लेबल्स, उन सबकी आप लिस्ट का एक प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, अब आपको कोल्ड ईमेल्स भेजने हैं, ठीक है, एक सेम सैम्पल मैसेज तैयार करो सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए और वो धड़ाधड़ आप भेजते रहो। ना जाने कौन सा ऑफिस आपके लिए या कौन सा प्रोडक्शन हाउस कल डोर खुल जाए। तो वही एक ट्रिक है, क्योंकि मेरा कोई भी, मेरी पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इंजीनियर्स का है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का है, और मैं एक ब्लैक शीप हूँ जिसने ये प्रोफेशन चूज किया है, तो मेरे लिए तो कोई कनेक्शन या कोई रेफरेंसेस थे नहीं। तो मेरी अभी तक तो यही अप्रोच चली है कि मैंने यही प्रिंटआउट्स या फिर ये कह लो लिस्ट निकाली और मैंने सबको अपना काम भेजा। और मोस्टली अगर आपने काम अच्छा किया है ना सागर भाई, तो अगर आप 100 जगह भेज रहे हो तो कोई ना कोई एक आपको पिक कर लेगा। ऐसा मुझे प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस में मैंने पाया है कि अभी भी इतनी खराब दुनिया नहीं हुई है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और 100 में से एक डोर भी ना खुले आपके लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने काम पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि मे बी माई वर्क इज सो बैड। तो एक तो आप आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी रखो अपने साथ, अपने साथ ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आप इसमें पेशेंस रखो। पेशेंस दूसरा नंबर सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आपका 2-3 साल तक भी कुछ नहीं बन रहा है, आप अपनी राइटिंग मत स्टॉप करो। आप एटलीस्ट 10-12 स्क्रिप्ट्स अपने पास लिख कर रखो या फिर 10-12 कविताएं, गाने, आपके पास अपना एक स्टॉक हो कि जब कभी मुझे मंडी में जाना पड़े तो मैं इसको बेच पाऊं। अगर आप खाली हो, आपका स्टॉक ही खाली है, एक स्क्रिप्ट आपकी कभी चली भी गई, आपके पास बाद में ऑफर करने के लिए कुछ हो ही ना, तो राइटर्स के लिए यही एक एडवाइस है कि आप मटेरियल अबंडेंस में रखो कि कोई भी सोर्स आए वो आपको उठा ले और उसके लायक आपके पास काम हो। तो एक तो पिचिंग अपनी कोल्ड रखो, सबको काम भेजो और शर्म मत करो काम मांगने में, या और नए लोगों से मिलो। और सिर्फ राइटर्स राइटर्स से ना मिले, राइटर्स राइटर्स को छोड़ के सबसे मिले।
0: हाँ, क्योंकि वो भी इवेंचुअली काम ढूंढ रहा होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो पहले अपनी दुकान के बारे में सोचेगा।
1: बिल्कुल, बिजनेसमैन से मिलो।
0: हाँ,
1: आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आर्ट्स के शौकीन होते हैं। मतलब बड़े वकील हो गए, बड़े जजेस हो गए।
0: हाँ,
1: जितने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, आपको पता है रोमन एम्पायर के टाइम पे प्रोस्टिट्यूट्स और आर्टिस्ट सबसे लो दर्जे के माने जाते थे कि ये तो सर्कस है ना, इसको तो एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, और थ्रोन पे बैठ के या फिर ऊपर बालकनीज पे बैठ के देखते थे राजा या उनके जो आपके ये सब फेलो मैन होते हैं। तो आज भी वही है, देखते आर्टिस्ट को आज भी वैसे ही है। तो इसीलिए आप बड़े लोगों के साथ उठो बैठो आर्टिस्ट को छोड़ के, क्योंकि आर्टिस्ट मोस्टली जब आर्टिस्ट के साथ ही बैठने लग जाते हैं ना तो वो एक बबल में चले जाते हैं, प्योरिस्ट बन जाते हैं कि हम सारे तो बहुत कुछ एक नेक काम कर रहे हैं और हमें तवज्जो, फिर वो एक पिटी होल है, सेल्फ पिटी में जाते हैं। फिर आर्टिस्ट जब 4 आर्टिस्ट एक साथ बैठ के अपना करियर डिस्कस करते हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को आइसोलेशन में रहना चाहिए और आर्टिस्ट को छोड़ के सबसे इंटरेक्ट करना चाहिए। आर्टिस्ट के साथ तब मिलो जब आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, वरना सिर्फ आप आर्ट की बातें करोगे, आपके पास बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं होगी, इकोनॉमिक्स की कोई नॉलेज नहीं होगी, वर्ल्ड कैसे रन करता है, यू विल बी अनअवेयर अबाउट इट।
0: हाँ इधर देश और फिर रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर्स को बहुत माना जाता था, तो उनको थोड़ी तवज्जो दी जाती थी, या तो एक आर्टिस्ट ऐसा ग्लैडिएटर बन के दिखा दे
1: हाँ।
0: कि मैं कुछ ऐसा लेके आ रहा हूँ,
1: बिल्कुल,
0: तो शायद वो हो सकता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बोली ग्लैडिएटर्स वाली, क्योंकि मैं और मेरा एक और फेलो फ्रेंड है अंकुर हुड्डा, तो हम दोनों राइटर्स हैं, तो हम दोनों अक्सर ये बात करते हैं मजाक में कि पुराने राइटर्स को देख लो, चाहे वो हिंदी के हों वेस्ट के हो, या हमेशा इतने ऐसे स्किनी से और इतने मतलब कमजोर से क्यों, फीबल से क्यों दिखते हैं कि गुर्बत में। और ये एक तो इमेज भी राइटर्स की ऐसी है कि ये वैसे ही होगा, तो थोड़ा बदलना चाहिए राइटर्स को भी। आप फिजिकली फिट रहो, जिसे कहते हैं ना वॉरियर राइटर बनो तो बेहतर है।
0: हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मुझे मेरे थिएटर कोच थे तुषार भैया, उन्होंने बात बोली थी कि हमारा माइंडसेट भी वही था कि थिएटर करेंगे यार ऐसे जिंदगी कटेगी, मंडी हाउस जाते थे, अच्छा लगता था, वो रोमांटिसाइज करते हैं ना चीजों को। सो ही सेड कि तुम्हारे दिमाग में कूड़ा डाला किसने,
1: exactly.
0: कि एक राइटर बैठ के 10 रुपए के कुल्लड़ में चाय पिएगा, हाँ। कुर्ता पहने, हाँ। एक राइटर अच्छा लुई वितोन के कपड़े पहन के स्टारबक्स में बैठ के क्यों नहीं लिख सकता,
1: बिल्कुल,
0: या एक एक्टर स्टारबक्स में क्यों नहीं बैठ सकता, दैट शुड बी द क्वेश्चन,
1: राइट,
0: कि तुम थिएटर वालों को इतना रोमांटिसाइज, गरीबी को रोमांटिसाइज काहे कर रहे हो,
1: एग्जैक्टली,
0: क्योंकि तुम जो एग्जांपल सेट करोगे आगे उन्हीं को वही मिलेगा ना,
1: बिल्कुल।
0: सो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मुझे किस्सा भी याद आ रहा है सलीम जावेद

0: नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये परस्यू करूंगा।
1: हाँ, रिजिड नहीं हो सकता।
0: हाँ
1: चलिए, ओके लेट्स टेक इट दिस वे। आप बोल रहे हो कि प्रोडक्शन हाउसेस के मुझे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर निकालने पड़ेंगे, मुझे फिर राइटिंग वहाँ पे पिच करनी है। मान कर चलो मेरी एक स्क्रिप्ट है जो मैं 100 पेज में लिखी है मैंने, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के पास इतना टाइम तो नहीं होगा, 100 पेज पड़ेगा। मैं कैसे वो स्क्रिप्ट वो इमोशन कन्वे करूँगा, मतलब व्हाट्स द प्रोसेस?
0: तो वेब सीरीज अगर आप लिख रहे हो, अगर आपका वेब सीरीज पिच करने का मन है, तो एक शो बाइबल टर्म है, शो बाइबल, विच इज लाइक 1 पेजर या 2 पेजर आप अपना एक बना लेते हो कि क्या प्लॉट है, मेजर चीजें क्या आपकी उसमें है, जिस्ट बता दे जो आपकी वेब सीरीज की। तो शो बाइबल आप प्रिपेयर करते हो वेब सीरीज के लिए। फिल्म्स के लिए हो गया सिनॉप्सिस, ठीक है, जिसे हम कहानियों के लिए समरी बोलते हैं। फिल्म के लिए हम यूजुअली बोलते हैं समरी, सिनॉप्सिस। और लॉग लाइन एक टर्म है, लॉग लाइन बहुत जरूरी होती है। बेशक आपने 100 पेज लिख लिए हैं, लेकिन अगर आपकी लॉग लाइन इज बेसिकली 1 लाइन दैट डिस्क्राइब्स द एंटायर फिल्म, कि सुरेश 24 ईयर ओल्ड टेक्स अ कैब लेट एट नाइट एंड ट्रबल इंस्यूज, तो आपने एक्साइट भी कर दिया, आपने बता भी दिया कि सुबह 4 बजे सुरेश ने गाड़ी पकड़ी और अब पता नहीं आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो लोग एक लाइन पढ़कर फिल्म देखने आ जाते हैं। तो मैं ये राइटर्स को समझाना चाह रहा हूँ कि नो मैटर आपकी 100-150 की स्क्रिप्ट कितनी पेजेस की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपका सिनॉप्सिस पावरफुल नहीं है, अगर आपका लॉग लाइन पावरफुल नहीं है, तो मे बी प्रोडक्शन हाउसेस देखे भी ना आपका फोल्डर खोल के।
1: स्क्रिप्ट अगर अच्छी है और सिनॉप्सिस उसको लिखने नहीं आते हैं, तो सिनॉप्सिस में क्या क्या एलिमेंट्स डालने होते हैं, क्या ध्यान में रखना होता है?
0: रेफरेंसेस, आप जितनी आपको फिल्में पसंद है जो आपने अब तक देखी है, वो सबकी लिस्ट बनाओ, IMDB पे जाओ, और उसका जब आप IMDB वो फिल्म का नाम लिखोगे तो वो लॉग लाइन खुद ब खुद नीचे लिखी आती है। आप कम से कम 100 फिल्मों की लॉग लाइन्स पढ़ डालो, गॉडफादर की पढ़ डालो, टैक्सी ड्राइवर की पढ़ डालो, रेजिंग बुल की देख लो कि ऐसा क्या था इन्होंने जो लिखा हुआ था, और आपको कुछ ना कुछ कैप्टिवेटिंग मिल जाएगा। तो जिसको नहीं भी आती वो बाकी फिल्मों का सहारा ले, बाकी फिल्मों से सीखे कि इन्होंने अपनी समरी कैसे लिखी, सिनॉप्सिस कैसे लिखा, लॉग लाइन कैसे लिखा, एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया। और आप जिस नेचर की फिल्म लिख रहे हैं उसकी आपको 10 फिल्में वैसी और मिल जाएंगी, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा।
1: ऑलराइट, सो अमेजिंग। तो ये तो बात यहाँ पर क्लियर होती है कि राइटिंग को कैसे पिच करना होता है। प्रश्न ये भी उठता है कि आपने कुछ लिखा, आपने काम कहीं पर भेजा, आपने लेकिन कहीं पर कॉपीराइट रजिस्टर नहीं कराया, किसी ने उसको उठा लिया, आपने जहाँ आइडिया भेजा, ये भी डर होता है ना कि वो एग्जैक्ट उस थॉट को उठा के लिखने लगे या भेजने लगे, कोई और राइटर उस पे काम करने लगे, शूट होने लगे, इस केस में राइटर क्या कुछ कर सकता है?
0: इसमें देखिए दो चीजें हैं, कॉपीराइट लॉ में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडिया और एक्सप्रेशन। आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी बोलते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में। तो लीगल सिस्टम में आइडियाज की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज अभी यहाँ बैठकर मुझे कोई आइडिया सुनाया कि मैं इस फिल्म के बारे में सोच रहा हूँ, अब मैं उस आइडिया की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ और मैं आगे किसी को भेज देता हूँ और उस पर वो फिल्म बना देता है, आप इसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने मुझे अपना आइडिया सुनाया था और आइडिया लीगली कवर्ड नहीं होता। एक्सप्रेशन कोर्ट्स रिकग्नाइज करते हैं, जो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक्सप्रेशन को तवज्जो देता है कि अगर यही आपने मेरे को लिख कर, आइडिया मतलब जो दिमाग में है, कागजी घोड़ा जो हवा में है, अभी घोड़ा दिख नहीं रहा है, और एक्सप्रेशन मतलब घोड़ा जब दिखने लग जाए। तो जब आप मुझे पेपर पे लिखकर अगर आपने मुझे कुछ हैंडओवर किया है या मुझे कोई ईमेल भेजी है कि ये मेरा ड्राफ्ट है और ये मैं कहीं आगे भेज देता हूँ, तो अगर ये चीज़ मैंने कॉपीराइट नहीं भी करवाई हुई, ये फिर भी कॉपीराइट वायलेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं उसी पे आप क्लेम कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी वो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अब तो मैं क्लेम नहीं कुछ कर पाऊंगा मैं कि मेरा लीगल वायलेशन हुआ है क्योंकि मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवा रखा था। अगर आपने एक्सप्रेशन की फॉर्म में किसी को सेंड किया है, एक्सप्रेशन से मेरा मतलब कोई डॉक्यूमेंट हो, वो आप लीगली उसका डिफेंस ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कॉपीराइट सिर्फ रजिस्टर्ड चीज़ों का ही होता है, बट बेटर ये है कि आप रजिस्टर कॉपीराइट करवा लें क्योंकि उससे आपको एक लीगल टेनेसिटी मिलती है कि देखो ये मेरे कॉपीराइट की वेबसाइट पर जाकर मैंने इसको रजिस्टर करवाया है और ये हर तरीके से मतलब परिपक्व है लीगली। इससे आपको आपका एडवोकेट भी बेटर पोजीशन में खुद को पाएगा डिफेंड करने के लिए आपको।
1: ऑलराइट,
0: जब आपको कॉपीराइट ऑफिस से ही आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो फिर तो वो विक्ट्री है ना, क्लियर लीगल विक्ट्री है फिर।
1: हाँ, फिर तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं।
0: दूसरी चीज में थोड़ा सा चीजें डाइसी हो जाती हैं जब आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके से, अब तो AI भी आ गया है, राइटर्स के लिए तो अब आफत आने वाली है क्योंकि किसी भी तरीके

0: आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो बेटर है कि आप कॉपीराइट करवा ही लें।
1: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। पांच ऐसी किताबें बताइए जो हर एक इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, स्पेशली अगर किसी को राइटर बनना है तो।
0: क्योंकि हम अपनी ऑडियंस इंडिया में है तो हिंदी की किताबें कवर करना तो जरूरी है।
1: हाँ, जरूर।
0: तो मेरे फेवरेट ऑथर हैं निर्मल वर्मा, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, और उनकी कोई ऐसी एक भी किताब नहीं है जो मैंने ना पढ़ी हो, और इवन बार बार पढ़ी है। तो एक तो अभी एक ही उपन्यास बताऊंगा उनका, अंतिमारण्य, वो सबको पढ़ना चाहिए, सबको, अंतिमारण्य, ये एक उपन्यास हो गया। उसके अलावा वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय, बहुत भारी किताब है, बहुत हैवी किताब है, और लेकिन पढ़नी सबको चाहिए। मतलब रूस की एक तरीके से सबसे अकम्प्लिश्ड वर्क है, कैरेक्टर आर्क से लेके प्लॉट ट्विस्ट से लेके फैमिली फ्लो चार्ट, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। राइटिंग का आपका कोर्स है वॉर एंड पीस। तो अंतिमारण्य, वॉर एंड पीस, फिर आपको पढ़नी चाहिए जॉन पॉल सात्र को पढ़ना चाहिए आपको। जॉन पॉल सात्र की एक किताब है द एज ऑफ रीजन, वो पढ़नी चाहिए। तीन किताबें हो गई। चौथा दोस्तोवस्की पढ़ना चाहिए, फिर से रशियन लिटरेचर। क्राइम एंड पनिशमेंट आपकी बाइबल बन सकती है, क्राइम एंड पनिशमेंट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किताब है। और चार किताबें, और पांचवा ऑथर मेरा फेवरेट ऑथर है हर्मन हेस।
1: ओके।
0: ये एक जर्मन स्विस ऑथर है जिन्होंने दोनों विश्व युद्ध देखे, वर्ल्ड वॉर वन और टू, और उनसे परेशान होकर मेंटली हर तरीके से स्विट्जरलैंड चले गए थे छोड़कर, और इनकी एक बहुत ही सुंदर किताब है सिद्धार्थ, सिद्धार्था।
1: हाँ, I've heard about this book. हाँ,
0: मैं इनकी सारी, इनकी तीन किताबें पढ़ चुका हूँ, सिद्धार्था, स्टेपन वुल्फ और डेमियन। हर्मन हेस कमाल के ऑथर हैं। तो पांच किताबें हो गई, अंतिमारण्य, वॉर एंड पीस, क्राइम एंड पनिशमेंट, एज ऑफ रीजन और सिद्धार्था।
1: सिद्धार्था का टेक अवे क्या है?
0: सिद्धार्था का टेक अवे राइटर्स के लिए बेस्ट है। सिद्धार्था का टेक अवे है कि सिद्धार्था जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल में, वो गौतम बुद्ध से मिल लेता है लेकिन उनका फॉलोअर नहीं बनता।
1: ओके।
0: और वो चुनता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा और अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। तो वो कुछ समय के लिए उनके सानिध्य में रहता है और छोड़ देता है। सिद्धार्था एक वो किताब है कि जिसमें सिद्धार्था नाम का लड़का
1: गौतम बुद्ध से मिलता है
0: लेकिन उनका भक्त नहीं बनता,
1: और नाम सिद्धार्थ है,
0: और नाम सिद्धार्थ है, और वो जीवन में सारी फॉलीज और वाइसेस परस्यू करता है, सारे पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, सब कुछ करता है ये समझने के लिए कि मुझे किस तरीके की जिंदगी चाहिए अपने लिए।
1: सो अमेजिंग। आई एम डन विद माय क्वेश्चंस सुप्रीत। हालांकि टॉपिक एक ऐसा है, और क्योंकि मैं पर्सनल बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ इस टॉपिक में, तो कई घंटों तक भी ये शो चल सकता है, बट क्योंकि समय की हमारे पास एक सीमा है तो मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
0: नहीं सागर भाई, यू आर अ वंडरफुल होस्ट, और बहुत ही अच्छा लगा दिल से आपसे बात करके, एंड आई वुड लाइक टू कम अगेन।
1: श्योर मैन, डेफिनेटली विल डू द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों, जितना जॉय मुझे यहाँ मिला स्टूडियो में बैठ करके, जितना मज़ा मुझे आया आयुषप्रीत के सामने बैठ करके, उतना आप तक हम कन्वे कर पाए होंगे, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होती है। तो बहुत बहुत ही सुंदर इंसान है आयुषप्रीत, बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत सुंदर गाने, कविताएँ और फिल्में लिखते हैं। इसके अलावा बहुत ही सुंदर, सभ्य और हम्बल एक पर्सन जिसको हम बोलेंगे वो हैं। कि मैंने सिंपली इनको बोला कि यार आओगे आपके साथ एक शो करना है रेडियो पर, इससे ठीक है भाई मैं आऊँगा, और वो आज यहाँ पर आ भी गए जब उन्हें टाइम मिला, और बहुत इत्मीनान से इन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो अगर आपने नहीं देखा है, HR 51 स्टेज के ऊपर मौजूद है, जाकर के प्लीज़ चेक करिए, आयुषप्रीत का काम है। इसके अलावा मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा आपको साल नाम का गाना, अभी जाकर के स्पॉटिफाई, यूट्यूब, जहाँ आपका मन करे आयुषप्रीत सिंह का, वो ज़रूर सुनिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जैसा मौसम है आपके चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर आएगी। सो थैंक यू सो मच आयुषप्रीत कमिंग हियर, इट मींस अ लॉट।
0: थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच।
1: ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आप सभी को पता है ये एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। न सिर्फ जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, लेकिन आपको पता लगेगा कि दुनिया के कोने कोने में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आज भी मानवता को जिंदा रखा हुआ है। आज के ऐसे युग में जहां हम कहते हैं कि लोग अपनी इंसानियत भूलते जा रहे हैं, वहां इस मानवता को जिंदा रखते हुए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और साथ के साथ इंडिविजुअल्स के लिए ढेर सारे काम करने वाले ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए इस प्रोग्राम के बाद जल प्रहरी। आप ही देख रहे हैं कि आज के जमाने में पानी कितना ज्यादा स्केयरसिटी में आ गया है, मतलब अपने आप में एक ऐसा रिसोर्स हो गया है जिसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तो कहलाते भी हैं जल प्रहरी। तो आज जल प्रहरी के जो सीईओ हैं अनिल सागर जी हमारे साथ हैं और करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, मैं रेडियो के सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूँ और आप खुद बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत सारे काम अच्छे काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि हम सब मिल करके थोड़ा थोड़ा भी अच्छा करें, और अच्छा कर पाए ना कर पाए कम से कम बुरा ना होने दें ये भी कोशिश कर ले तो बहुत बड़ी बात है।
1: वाकई बहुत खूबसूरत बात कही अनिल जी आपने। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, जल प्रहरी, समझ में आता है कि आप प्रहरी बन गए हैं। वैसे तो हमारे अगर देखा जाए तो थल सेना, जल सेना और साथ के साथ हमारी वायु सेना अलग अलग किस्म के प्रहरी बन रहे हैं, बट सही मायने में तो जल के प्रहरी बनना भी जरूरी हो गया है। तो मुझे बताइए इसकी शुरुआत कब हुई, कैसी और इसके पीछे की क्या कहानी है?
2: देखिए मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक दिन हम लोग अपने क्लब में बैठे हुए थे, हमने देखा कि बहुत सारे लोग पानी पी करके छोड़ देते हैं आधा गिलास। हमारी सोसाइटी में ना एक ऐसा माना जाता है कि अगर फूड को प्लेट में छोड़ देंगे, पानी को या कोक को या कोई भी ड्रिंक अगर हम थोड़ा छोड़ देंगे तो इट मींस दैट वी आर रिच, वी आर यू नो इन अ डिफरेंट स्वैग। तो वो स्वैग नहीं है। हमने जब वो देखा तो हमने तीन गिलास को मिलाया और वो पूरा एक गिलास पानी बन गया। सो वी थॉट यार ये पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा ऐसा नहीं कि वो डेलिब्रेटली जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में भी हो सकता है कर रहे हो। तो हमें लगा कि इस पे कुछ काम किया जाए। हमने ये बात तब के जो जल संसाधन मंत्री थे उनको बताई और उनसे कहा कि हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और बोला कि ये काम तो हमें करना चाहिए, आप करना चाहते वेरी गुड। तो खैर हमने संसाधन सेक्रेटरी जो थे उनसे मुलाकात की, उनको बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, बोला वेरी गुड आप लोग करिए। हमने लगभग मैं और हमारी टीम, हमारे कुछ मित्र, हमने पूरे देश में अलग अलग जाकर के लोगों को ढूंढा, देखा वो कैसे काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, हम जब राजस्थान के एक गांव में गए हमें पता चला, हमें लोगों ने बताया कि एक लेडी का की शादी हुई और शादी के जब वो आए तो पता चला कि वहाँ पानी नहीं है, और थोड़े दिन बाद उसे पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो एक डकैत है, क्राइम करता है, और वो घर से चला गया। अब उसके पास कोई साधन नहीं था, उसने क्या किया कि अपने गांव में जो पानी का सोर्स था, पानी की जो बावड़ी थी, तालाब था, उसको जिंदा किया और वहां पर खेती की। 8-10 साल बाद जब उसका हस्बैंड आया और उसने देखा कि उसके गांव में खेती हो रही है, जहां चंबल की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर कभी कुछ भी नहीं होता था, डकैती क्राइम ही एक साधन था, तो उसने तय किया कि नहीं यार अब तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। एंड ही डिसाइडेड एंड ही क्विट डकैती। आज की तारीख में वो पूरा इलाका बहुत ही अच्छे से ग्रीन है, वहां पर खेती हो रही है, वहां पर लोग हैप्पी हैं। वो खुद जो डकैत था उसको भी गवर्नमेंट ने जो भी लॉस थे उसमें पनिशमेंट के बाद कुछ छूट दे दी और आज वो दे आर वेरी हैप्पी। तो ऐसे लोग हैं जो हमने ढूंढते और उनको हमने जो नाम दिया, क्योंकि वो पानी की रक्षा कर रहे थे तो जो रक्षा करता है वो प्रहरी है, और वो पानी की रक्षा कर रहे थे तो इसलिए उनको हमने हम सब ने एक नाम दिया जल प्रहरी, और इस तरह से शुरुआत हो गई।
1: वाओ सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी, और इनफैक्ट जल प्रहरी तो हम सबको बनने की जरूरत है। आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि पानी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, और हम कहते रहते हैं कि 3/4 हमारा जो अर्थ है ये पानी है और हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि चाहे अंडरग्राउंड वाटर की बात करूं या फिर मैं रिवर्स और पॉन्ड्स की बात करूं, पानी हर जगह काफी कम है, तो इसे बचाना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे अनिल जी से करेंगे ढेर सारी बात। टिल देन फील गुड फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO हैं जल प्रहरी। जी हाँ, जल प्रहरी एक बहुत ही खास इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में पानी को बचाने के अलग अलग तरीके कोशिश की जाती है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। अनिल जी, अब अगला सवाल, और वो सवाल बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि पानी को कंजर्व करना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसकी तरफ बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये काम इंडिविजुअल्स का नहीं है, जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इंडिविजुअल अप्रोच से ही हम पानी को सही ढंग से बचा पाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन की कोशिश करते हैं?
1: बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या हुआ कि जब 2019 में हम पहला जल प्रहरी किया तो बहुत सारे लोगों का हौसला जो था वो बहुत बढ़ गया, उनके भीतर बड़ा उत्साह था, बहुत सारी जगह उनकी न्यूज पब्लिसिटी हुई। फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना के टाइम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सभी को टारगेट्स दिए हुए, सभी डैम्स को, कि आपको ये अमृत सरोवर बनाने हैं, ये इनको रिवाइव करना है। अब ऐसे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें फोन किया कि आप लोगों ने जो जल प्रहरी किया था तो हमें कोई ऐसा बंदा बताइए ना, कि क्योंकि तब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे, लेबर घरों में थी, तो प्रोसेस नहीं काम कर रहा था, गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। एंड दैट IAS ऑफिसर वर वेरी स्मार्ट, ही सेड कि वो काम हम करना चाहते हैं, हम वाटर अथॉरिटी को रिजुविनेट करवाना चाहते हैं। तो हमने एक दो जो जल प्रहरी थे उनका कॉन्टैक्ट दिया और वो उन्होंने एक वाटर बॉडी को रिजुविनेट करवाया। आपको जान करके अच्छा लगेगा, हमारे सभी श्रोताओं को ये बात सुननी चाहिए बड़े ध्यान से। क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो प्रोजेक्ट करीबन 30-35 लाख रुपए का बताया गया। जब जल प्रहरी को बुलाया गया और उससे पूछा कि तुम इस तालाब को बना सकते हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बना सकते। बोले कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने बताया कि आप हम 50 लोग हैं, लेकिन अभी कोरोना में तो 7-8 लोग आ पाएंगे, और आप यहाँ पर हमारे लिए खाने का और रहने का अरेंजमेंट करवा दो, और 20 लीटर तेल लगेगा JCB मशीन से, इतने दिन JCB मशीन काम करेगी, और कुल मिला के करीबन 30-35 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो जब जूनियर ऑफिसर ने ये सब सुना और उसने सीनियर ऑफिसर को बताया, तो सीनियर ऑफिसर ने हंस करके कहा कि या तो ये लोग फ्रॉड हैं या फिर ये वास्तव में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है, कोई नहीं, एक रिस्क लेते हैं। एंड वो रिस्क लिया उसने, और उस रिस्क को लेने के बाद वो वाटर बॉडी 7 डे में वो वाटर बॉडी तैयार हो गई, एंड ह्यूज वाटर बॉडी, अच्छी वाटर बॉडी वो तैयार हो गई। थोड़े दिन बाद जब बारिश आई तो उसमें पानी भी आ गया। जब पानी आ गया तो जो सीनियर ऑफिसर था वो उसको देखने गया, उसने देखा और जो जूनियर ऑफिसर्स ने बताया कि ये कुल 37 हजार रुपए में तैयार हुई है, तो सब ने उनके लिए क्लैपिंग की। सो दीज टाइप ऑफ स्टोरीज आ रहे हैं, ऐसे ये लोग पानी की रक्षा करते हैं। या आप यकीन मानिए, हम कोई भी क्या बैंक में बिना पैसा रख करके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं? भावना जी, आप कर सकती हैं?
0: वाकई नहीं।
1: तो हम पानी कैसे यूज कर रहे हैं? ये तो हमारा जो डिपॉजिट है हम उसे सिर्फ विड्रॉ कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, एक दिन सोच लीजिए कि अगर सुबह आपको पानी ना मिले तो क्या होगा। बस श्रोता से, हर लिसनर से मेरा एक ही सवाल है, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर, मॉर्निंग में अगर आपको पानी नहीं मिला तो क्या होगा? इसलिए आज से विड्रॉल के साथ साथ डिपॉजिट भी शुरू कीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स ले लीजिए, उसी से बहुत भला हो सकता है। आप कर सकते हैं, आप करते हैं, आप जाने अनजाने पानी खराब भी करते हैं और जाने अनजाने आप पानी बचाते भी हैं। तो बस उसका प्रहरी बनना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा।
0: नहीं बड़ा, ये तो बहुत जरूरी है। हम सब जब तक पानी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक के लिए आप ये सोचिए कि अभी हम ये कहते हैं कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो रेड मार्क है, और पूरा दिल्ली NCR भी मैं अगर कहूँ तो इसी एरिया में आता है, लेकिन क्या हम इसको रिवाइव कर सकते हैं? एक्चुअली यस, पॉन्डमैन ने तो ये प्रूव किया हुआ है। भाई रमेश जी तो हमेशा ये कहते हैं कि आप मुझे एक जगह दीजिए और लाइए आपके पॉन्ड्स को, मैं वापस रिवाइव कर दूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरत ये है कि क्या हम कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हैं और हम कॉन्शियसली सोसाइटी में जी रहे हैं, या आप एक मोबाइल फोन की जिंदगी जी रहे हैं, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी सुना रही हूं आपको एक प्यारा सा गाना, और वापस लौट कर यही आना। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO है जल प्रहरी। अनिल जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम ना एक मोबाइल फोन जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ जो भी मोबाइल में दिखता है, सोशल मीडिया पर दिखता है, हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमारे आसपास क्या हो रहा है हम इससे बिल्कुल
1: अनजान है,
0: एक्चुअली अनजान है। सो एक बड़ा जरूरी सवाल, इतनी अवेयरनेस है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, सरकार से लेकर इंडिविजुअल्स तक, हर कोई यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई पानी को बचाइए, कंजर्व करिए, लेकिन उसके बाद भी ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। आप लोग इस अवेयरनेस को कैसे पहुंचा रहे हैं जन जन तक?
1: देखिए, हम लोग जो है हर बार हम जब जल रही का आयोजन करते हैं उससे पहले पूरे साल घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, और खासतौर से हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब 2025 का हमने जल प्रहरी आयोजित किया तो हमारे साथ सिंगानिया यूनिवर्सिटी थी, सिंगानिया यूनिवर्सिटी के डीसी मनोज कुमार जी, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया। हमारे साथ गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल था, उनकी जो प्रिंसिपल थी, इत्तेफाक से वो फरीदाबाद भी रहती हैं, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया, और इन बच्चों को हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, जिन प्रहरियों से उनका इंटरेक्शन कराते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो आखिर कर कैसे रहे हैं। आप यकीन मानिए, आपने देखा होगा एक ये जो आजकल शादियों के टाइम आपने बैंड वाले देखे होंगे, हमारा एक जल प्रहरी है वो बैंड का बैंड बाजा बजाता है। अब आप सोचिए वो कैसे जल प्रहरी हो सकता है, बट यू नो व्हाट ही डू, जिस दिन उसके पास काम नहीं होता है वो अपनी साइकिल लेता है, वो गरीब है, बहुत गरीब है, साइकिल लेता है और उसमें कुछ नल टोटियां प्लास्टिक की या लोहे की डाल लेता है और वो लेकर के निकल जाता है। जो पब्लिक जो टूटी लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, वो उनमें से पानी टपकता है, वो उनको चेंज कर देता है। सो कैन यू बिलीव दिस, एक आदमी जो खुद बेचारा 200-500 रुपए कमाता है दिहाड़ी, और वो महीने में 1500 रुपए इस तरीके से खर्च करके जल प्रहरी बना।
0: वंडरफुल।
1: तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई भी आदमी ये चाह ले कि मुझे ये करना है, तो वो फिर किसी भी अवेयरनेस और किसी भी उसकी उसको जरूरत नहीं होती है। ये फायर, ये लाइट, ये मन में जो मानवता की राह पर जो चले का जो एक बीज हमारे अंदर रोपित होता है। हमने ये सब कहानियां सुनी हुई है दादाजी से, नानी से, और इवन मोबाइल फोन में भी अगर हम उसको भी देख के अलर्ट हो जाएं, बिकॉज लोग कहते हैं हमारा शरीर जो है वो 2/3 वाटर है। आपने सुना होगा कि जब हमारे बॉडी में इन दिनों में खासतौर से जब हम ह्यूमिडिटी है तो वी फील अनकंफर्टेबल, किस लिए? बिकॉज पानी खो रहा है। जैसे ही हम पानी पी लेते हैं हम खो जाते हैं। तो जब हम बॉडी के पानी की रक्षा करते हैं, हम उसके प्रहरी हैं, तो हमें समाज के पानी की भी रक्षा करना चाहिए।
0: वाकई भाई, बड़ी खूबसूरत सी कहानी, और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम करने वालों को ना तो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ना उन पर ध्यान दे रहे हैं, और पानी को बर्बाद कर रहे हैं ये सोचकर कि ये तो हमारे पास अबंडेंस में है। बहुत सारे लोग अक्सर ना जब कभी भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो लोग मुझे मैसेज करके ये कहते हैं कि अरे मैडम, आप हमेशा पानी पानी की बात करते हैं, बट क्या आपको पता नहीं है कि हमारे सागर में, या फिर कहना चाहिए हमारे ओशंस में इतना पानी है, जब कभी भी चाहेंगे इसे रिफाइन करेंगे, नमक भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। लेकिन ना लोगों को शायद आज भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो पोर्टेबल वाटर है, जिसे पिया जा सकता है, उस पानी में और हमारे समुद्र के पानी में बहुत डिफरेंस है, और इसीलिए हमें जरूरत है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, या फिर जो पानी है जो हमें हमारे नदियों से मिल रहा है, जो हमें हमारे तालाबों से मिल रहा है, उस सारे पानी को हमें कंजर्व करने की जरूरत है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हर इंसान इसे रियलाइज करें। हम वीडियोस देखते हैं, हम अलग अलग किस्म के कहना चाहिए कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना चाहिए, या हर इंसान या हर इंडिविजुअल को इसे कैसे अपनाना चाहिए, करेंगे इसके बारे में बात। छुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: Welcome back, friends. आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मनोरंजन 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, A Step Towards Humanity. मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जिनके साथ, वो है अनिल सागर जी और CEO है जल प्रहरी. जल प्रहरी एक बहुत खास संस्था है, न सिर्फ जल को बचाने के बारे में बात करती है लेकिन आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि इस जल को बचाइए क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही कल है. बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स हैं जो हम सुनते हैं लेकिन क्या हम इन पर अमल करते हैं? उसी दिन करते हैं ना जिस दिन पानी नहीं आता है. हमारे साथ अनिल जी हैं. अनिल जी, मुझे बताइए हर इंसान इंडिविजुअली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है?
1: देखिए, अभी आप बता रहे थे कि पानी की प्रॉब्लम जो कोस्टल एरियाज है, हमारे एक जलप्रहरी है अनिरुद्ध तोड़कर, अब वो महाराष्ट्र से है. ग्राउंड वाटर सोर्स पे उन्होंने बहुत सारा काम किया. जितने अब हम बड़े हैरान होते थे, सबसे ज्यादा जो केसेस थे वो महाराष्ट्र से हमारे पास आते थे जल प्रहरी के, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन. हमने देखा कि महाराष्ट्र में वास्तव में बहुत पानी का दोहन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, जबकि वहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, कोस्टल एरिया है वहाँ पर, इसके बावजूद पानी की कमी है. आपको जान करके हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, इसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है. बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, इसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है. आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है? मुझे लगता है जो हमारे लिसनर्स हैं वो उनको याद आ जाएगा. आप अगर मान लीजिए दिल्ली में हैं या गुड़गांव में हैं या फरीदाबाद में हैं, तो आपने देखा होगा किसी गाँव के साथ में एक पॉन्ड था, तालाब था, वो तालाब लोगों ने कब्जा किया, उस पर कूड़ा डाल करके, मलबा डाल करके, और आपने उस पर कुछ नहीं किया. अब आप ये कह सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जब सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है आज की तारीख में आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, आपका फोन, और मुझे लगता है आपके पास आरजे भावना है. आप आरजे भावना को बताएं कि आपके इलाके में ये वाटर बॉडी है और वो उसको ऐसे लोग किल कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है और हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको काम करने देने का माहौल बनने की जरूरत है, उन लोगों को हेल्प करने की जरूरत है. और मुझे लगता है कि अब पहले से बहुत जागरूक तो हुए हैं लोग. मैंने अभी तक किसी भी गांव में जहां मैं गया हूं ये नहीं सुना कि किसी ने तालाब को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हों. और जो आदमी एफर्ट्स करता है वही जल प्रहरी होता है, और वो उसको सब पूरे गांव वाले लोग पागल कहते हैं, क्योंकि गांव वालों की नजर में तालाब जो है उसको कब्जा करके, उस पॉन्ड को फिल करके, उस पर मकान बनाने का या प्लॉट बेचने का साधन है. लेकिन नहीं, वो भूल रहे हैं, वो उनकी लाइफ लाइन है. आप सोचो अगर यमुना दिल्ली और NCR में ना हो तो पानी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. अगर हम इन छोटे छोटे पॉन्ड्स को रिचार्ज नहीं करेंगे तो पानी कैसे मिलेगा? तो इसलिए मुझे लगता है भावना कि पानी को लेकर के हमें बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है, और इसमें अपने एक एक छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं. आप पानी को वेस्ट ना होने दें. मैं बताता हूँ, मेरी पत्नी तो इस अभियान से जुड़ी हुई है. उन्होंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो 3 बार चलाने के, 4 बार चलती है और 4 बार फ्रेश वाटर लेती है. उन्होंने उसको पानी को बचाने के लिए सेमी ऑटोमेटिक बना के काम करती है ताकि उसका पानी वेस्ट ना हो. तो मुझे लगता है एक होम मेकर ये कर सकती हैं कि वो पानी वेस्ट ना हो उसका ध्यान रख सकती हैं, बच्चे फ्लश करते टाइम ध्यान रख सकते हैं, अननेसेसरी पानी गिर रहा हो स्कूल कॉलेज में तो एटलीस्ट वो मैनेजमेंट को बोल करके उस टैप को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो या कहीं खुला हुआ है टैप तो उसको बंद कर सकते हैं. बहुत सारे साधन है, और अगर फिर भी ना मिले कोई साधन तो जल प्रहरी को संपर्क करें या फिर भावना, आरजे भावना को संपर्क करें, हम बताएंगे.
0: वाकई बहुत सारे तरीके हैं पानी को बचाने के, और खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट हमेशा एक ही रहती है कि भाई अगर आपके घर में आरओ है और उससे फिल्टर हुआ पानी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भाई आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं. उस पानी को जरूर बचाइए. जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं अनिल जी के साथ, अनिल सागर जी जो कि सीईओ हैं जल प्रहरी। अनिल जी, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सुनने में बहुत आसान लगता है कि चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं वाटर कंजर्वेशन के? हम पानी को क्यों नहीं सही तरीके से बचा पा रहे हैं? एक चैलेंज जो मुझे नजर आया है इतने सालों में, माइंडसेट। आप मुझे बताइए बाकी क्या चैलेंजेस हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है लालच
0: जी।
1: दूसरा चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही, क्योंकि सामने जिसके घर के सामने पॉन्ड है उसको ये लालच है कि मैं इसको खत्म करके और अपना प्लॉट बड़ा कर लूं। ब्यूरोक्रेसी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब पॉन्ड बनाता है तो उसकी कैपेसिटी, उसके बहुत सारे जो टेक्निकल पहलू होते हैं वो उसे उतना अच्छे से नहीं पता होते हैं, तो कई बार वहां पर जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको काम करने से रोकता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। कई बार फंड्स की प्रॉब्लम होती है। मजेदार बात ये है कि भावना, आप पानी का बिजनेस करें तो आपके पास फंड्स की कभी कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन आप पानी बचाने का काम करें तो आपको पैसे बहुत मुश्किल से मिलेंगे और फंड्स की बहुत क्राइसिस होती है। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी जो बात आपने कही है, माइंडसेट। जब तक हम छोटी सी गाड़ी लेते हैं जो कि कुछ लाख की होती है, उसमें कोई स्क्रैच मार जाए तो हम डरने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं।

0: जाएगी और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो अकेले मेरे करने से क्या होगा, ये तो सरकार की या फिर प्रशासन का काम है। ये एक बहुत गलत सोच है। इंडिविजुअली आप अपने घर की यूनिट से शुरू करते हुए इंस्टीट्यूशंस तक, ऑफिसेस तक जितना ज्यादा पानी बचा सकते हैं, और खास तौर पर वो जल जो आपको डायरेक्टली आसमान से मिलता है और जो कि सड़कों को फ्लड कर देता है, कहीं किसी शहर को वेनिस बना देता है, तो कहीं देखिए तो किसी किसी शहर को पूरी की पूरी तरीके से डुबो देता है। लेकिन इस पानी को अगर आप न सिर्फ जमीन में जाने दें तो ये
1: माँ की गोद में उतार दें,
0: एग्जैक्टली, तो ये आपके अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा और आपकी वाटर बॉडीज को भी रिचार्ज करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके बारे में आप जरूर न सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं और समय समय पर हम आपको हमारे प्रोग्राम्स में तो ये बताते ही रहते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि सीईओ हैं जल प्रहरी। अनिल जी, वैसे तो आप अपने काम में काफी व्यस्त रहते होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका खास इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के बारे में जब लोग सुन रहे हैं तो न सिर्फ उन्हें अच्छा लग रहा है, आई एम डैम श्योर कि वो बहुत मोटिवेट भी हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपके इस इनिशिएटिव के साथ क्या कोई जुड़ सकता है और क्या इसे रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आसपास पानी कैसे बचा सकता है, एक जल प्रहरी कैसे बन सकता है?
1: ठीक है, सबसे पहले तो बिल्कुल अपने सही का रहन एक बहुत ही सरल तरीका है। आपके घर के आसपास जहां भी आप एक ऐसा पिट बना सकते हैं घर के सामने, जहां आप अपनी छत से पानी को धरती माँ की गोद में उतार सकते हैं, वो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये संभव नहीं, आपके इलाके में कोई भी बोरवेल है वो डेड है, तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इलाके में अगर कोई छोटा सा तालाब है और वो गंदा है, तो एक दिन आइए ना, एक दिन आउटिंग करते हैं, तालाब के साथ बातें करते हैं, तालाब को जिंदा करते हैं। यकीन मानिए, तालाब जिंदा होगा तो आप खुद मुस्कुराएंगे और देखेंगे कि बहुत अच्छा हो गया है। आपके इलाके में कोई नहर है, छोटी नदी है, उसमें कोई कचरा डालता है, आप उसे रोकिए, हाथ जोड़कर रोकिए। अगर नहीं मानता है तो आप उठा दीजिए वो कचरा। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार दो बार करने के बाद लोग वहां पर डालना बंद कर देंगे। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप पानी को बचाने को लेकर के अपने सोशल मीडिया पर भी बहुत बात कर सकते हैं। आप कहीं पानी वेस्ट होते हुए देखते हैं तो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, और आपको जहां भी लगता है आप जल प्रहरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डाल सकते हैं। हम जरूर, हमारे जल प्रहरी इन सब कामों में बहुत तेजी से सक्रिय हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हमारे लोग काम करते हैं और सरकार के लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले से बहुत चीजें बदली हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि काम करने वाले 1,500-1,00,000 होंगे, लेकिन जो खराब कर रहे हैं, यूं कहें कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करोड़ों हैं। तो वो करोड़ों हाथ अगर जुड़ जाएंगे खराब ना होने, तो भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस सिर्फ खुद से ईमानदार होने की जरूरत है, पानी के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि प्रकृति और पानी रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे। हमने कोरोना में ये सब देख लिया है कि पानी कितना जरूरी था, हमारा प्रकृति कितनी जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा।
0: बिल्कुल भाई, बहुत ही खास तरीके से हमें अनिल जी ने बताया है कि हम कितनी इम्पोर्टेंट जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन्हें यूं ही एक्सप्लॉइट करते रहे तो एक दिन हमारे पास होंगे ही नहीं, और फिर हम जिएंगे कैसे? तो उसके लिए जरूरी ये है कि आज से ही हम इन्हें कंजर्व करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगा कि लिसनर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं, वो ये याद कर लें कि अगर पानी नहीं होगा स्विमिंग पूल नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो बहुत विधाएं बदल जाएंगी। बहुत पहले कबीर ने कह दिया था कि बिन पानी सा सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस सून। तो ना मोती रहेगा ना मानस रहेगा, और ना बर्गर और पिज्जा के लिए चून यानी आटा होगा, फ्लोर होगा, मुद्दा होगा। तो चाहे आप पिज्जा बनाएं या बर्गर या कुछ भी, एक रोटी बनाएं या चावल बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपको पानी चाहिए, और अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज, आज के बाद भी जल प्रहरी, सेव वाटर, एंड सेव वाटर बॉडीज आल्सो।
0: एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी और उन्हें मोटिवेट किया जल प्रहरी बनने के लिए।
1: थैंक यू भावना, और मैं आपसे भी प्लेज चाहूंगा कि आप भी हमारे इस मुहिम में शामिल हैं और एक्टिवली इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे, हम साथ साथ मिलकर चलते रहे मानवता की राह पर।
0: वाकई दोस्तों, मैं तो बन गई हूँ जल प्रहरी, क्या आप बनेंगे मेरे साथ? और अगर हाँ किया है तो बस जुड़ जाइए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, बट तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सुनते रहेंगे अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन। फील गुड, फील लव।

दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम हुई यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। सशक्त महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी से हम बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी सीख डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, आप सभी को पता है कि ऐसा कार्यक्रम है, ना सिर्फ ये मेरे दिल के करीब है लेकिन साथ के साथ ये हमारे रेडियो मानव रचना 107.8 FM का सबसे लंबा चलता हुआ कार्यक्रम है। सो एक लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम में मैं आपको अलग अलग महिलाओं से मिलवाने की कोशिश करती हूँ। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो जिंदगी में ढेर सारी शिक्षा दे चुकी हैं, यानी एक एजुकेशनिस्ट हैं। आज हम आशा गाबा जी के साथ हैं और ये एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर रही हैं और आजकल ये मध्यस्थ दर्शन के साथ जुड़ी हुई हैं एज अ मेंबर। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: आशा जी, कार्यक्रम का नाम है विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। सबसे पहला सवाल हर महिला से इस कार्यक्रम में इस लंबे समय से मैं ये पूछती आ रही हूँ कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप किसे सशक्तिकरण मानती हैं तो क्या कहेंगे आप?
2: जी, वास्तव में महिला सशक्तिकरण का जो अर्थ है वो है महिलाओं को शिक्षा, अधिकार, अवसर, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना
0: जी,
2: ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्राप्त कर सकें और विशेषकर स्वयं को एक मानव के रूप में पहचान सकें, क्योंकि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जिस दिन वे स्वयं को मानव होने के रूप में, अपने अस्तित्व को एक मानव के रूप में पहचान जाएंगी, वे जागरूक हो पाएंगी और सशक्तिकरण के लिए वो स्वयं को परिवार में ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र स्तर पर योगदान कर पाएंगी, मेरा ऐसा मानना है।
0: भाई देखिए, मैं ना हमेशा से कहती आई हूँ कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण चाहिए तो वो पहला कदम आपके अपने परिवार से होता है, वो पहला कदम आप ही के अपने आप का होना चाहिए। सशक्तिकरण कोई और दे नहीं सकता है आपको, सशक्तिकरण आपको खुद महसूस करना है। और आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि वो महिला सशक्त है जो ना सिर्फ अपने डिसीजंस ले पा रही है, अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी पा रही है, लेकिन इसमें गुड बैड अगली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या आपने कोई निर्णय लिया, क्या आपने अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद लिया, और अगर लिया तो क्या आप उस पर अडिग रह सकी, क्या आपने वो डिसीजन एड्रेस किया, या आप सिर्फ दूसरों की दी हुई एक बनाई हुई लकीर पर चलती आ रही हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो मैं उस महिला को सशक्त मानती हूँ जो अपनी ज़िंदगी की लकीरें खुद खींचती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये बहुत ही प्यारा सा एपिसोड। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलाती हूँ। आज तो एक एजुकेशनिस्ट से मिलवा रही हूँ भाई, ज्ञान का भंडार होती है और मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला अगर एजुकेशनिस्ट है ना, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ना सिर्फ वो अपने परिवार को शिक्षित करती हैं, लेकिन समाज को शिक्षित करने में एक बड़ा अहम हिस्सा निभाती हैं। आशा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक सीनियर एजुकेशनिस्ट रही हैं, लेक्चरर ये रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आजकल मध्यस्थ दर्शन से ये स्पिरिचुअलिटी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हैं और साथ के साथ उसे लोगों को महसूस कराने की भी कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं इनकी सशक्तिकरण की जर्नी से। सो आशा जी, आप जब एक टीचर लेक्चरर थी, सो आप बहुत सारे ऐसे बच्चियों से मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिली होंगी जिनकी जिंदगी में बहुत सारी उलझने होंगी, बहुत सारी बार वो आपके पास भी आए होंगे। मैं अगर आप ही की अपनी जर्नी के बारे में पूछूं, सो क्या कभी जिंदगी में कोई एक ऐसा कदम उठाया, कोई ऐसा डिसीशन लिया जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि आप सशक्त हैं और आपने अपने लिए कोई अपने जीवन का डिसीशन लिया है?
1: मैंने 36 इयर्स की जॉब की है एज ए प्राइमरी टीचर। मैंने जॉब को स्टार्ट किया और जॉब के साथ साथ मैंने मास्टर्स किया हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री में और बीएड एमएड भी किया। तो क्वालिफिकेशन से मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मैं उस स्कूल में जब बच्चियां छोटे छोटे बच्चे आते थे उनके साथ भी काम किया, फिर मिडिल क्लास के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए काम किया, फिर एज ए लेक्चरर मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों के साथ भी काम किया। तो जहाँ तक आपने समस्या की बात कही है, तो बच्चियों की बहुत समस्याएं होती हैं। आप ये देखिए कि छोटे बच्चे जब उनको पीरियड्स होते हैं तब उनकी जो हालत होती है बहुत ख़राब होती है, वो घर में कई बार बता भी नहीं पाती
0: जी।
1: और स्कूल में उनको दिक्कत होती है, फिर छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कर देना, 8th 9th में पढ़ती हैं और उनके पेरेंट्स उन पर दबाव बनाते हैं कि तुम मैरिज कर लो, आगे उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिन जो बच्चे जो है मेरे फ्री पीरियड में आकर मुझसे डिस्कस करते थे
0: जी।
1: तो मैं उन बच्चों को जिनकी भी समस्याएं होती थी तो मैं उनको अलग से एड्रेस करती थी। जैसा कि एक बच्ची ने एक बार कहा मुझे कि वो 8th क्लास में पढ़ती थी कि मैडम मेरा पढ़ने का बड़ा मन है पर मेरे फादर मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह की समस्याओं को जब मैंने देखा तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया कि उनकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, गेम्स में बहुत अच्छी है, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, तो आप इस बच्ची को मेरे कहने पर मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप उसे पढ़ने दें। तो ये बात उनको पेरेंट्स को समझ आई और मैंने कहा देखना भविष्य में ये एक बहुत अच्छी शिक्षिका बनेगी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो 15-20 साल पहले कही गई मेरी बात मुझे आज भी याद आती है और मैं गदगद हो जाती हूँ कि उन पेरेंट्स ने मेरी बात मानी और वो आज एक टीचर के रूप में मेरे सामने और आज तक भी जुड़ी हुई है।
0: वाओ
1: जी।
0: सो देखिए, एज एन एजुकेशनिस्ट अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास एक मौका होता है कि आप स्टूडेंट्स को उनके जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मजेदार चीज ये है कि आप उनके जीवन को एक बड़ी अच्छी राह दे सकते हैं अपनी छोटी सी सलाह से, एक छोटी सी सीख से। और ये इख्तियार अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ परिवार के सदस्यों के पास होता है और आप आज के जमाने में किसी से सलाह लेते नहीं है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एजुकेशनिस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। और सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं बच्चियों की, तो आई थिंक इससे अच्छा खूबसूरत सा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुना रही आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं आशा गाबा जी से। आशा जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले सशक्तिकरण की बात की थी, सो आप अगर अपनी पर्सनल जर्नी से कुछ बताना चाहती हैं तो क्या कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में जब जब मैंने कोशिश किया तो मैंने कुछ नए मुकाम हासिल किए। जैसे मैंने हैप्पीनेस करिकुलम में अपना कंट्रीब्यूशन किया, मैं हैप्पीनेस टीम की कोर मेंबर भी थी, एज ए मेंटरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर मेरी मुझे समझ बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। वहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई, स्टोरीज बनाई, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई और इसके साथ साथ टीचर्स को भी कराई। प्रिंसिपल्स के साथ भी हमारा जो है एज ए फैसिलिटेटर मैंने काम किया है, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, सबके साथ। तो मेरा एक लंबी जर्नी जो रही है सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रही है, टीचर्स के साथ एज ए फैसिलिटेटर, प्रिंसिपल और एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ भी हमें डिस्कशन करने का मौका मिला है। तो उसमें हमने इस जर्नी में जो मैंने गहराई से मुझे समझने का मौका मिला, तो मैं जो है मैं ये सोचती हूँ कि वो जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो हमें जो है थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की भी ज़रूरत है, और एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव करने हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अगर लाया जाए तो बच्चे और जो बड़े नागरिक हैं वो एक देश के लिए बहुत बड़ा यूथ जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है, तो मेरा इसमें विश्वास है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर जब मैंने काम किया तो बहुत ही अच्छे अनुभव हुए मुझे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और वो मेरे साथ, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैंने वीआरएस ले लिया है और उसके बाद भी मेरे साथ बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं और इस मेरी यात्रा में मेरे मतलब साथ हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
0: आशा जी, अब एक अहम सवाल। आपने खुशियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस फैलाने की आपने कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि महिलाओं का जो सरनेम है वो है चैलेंज। सो बच्ची से लेकर और एक बुजुर्ग महिला तक हमें बड़े सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रोज जिंदगी पुरुषों के लिए कम चैलेंजिंग होती है, महिलाओं के लिए ज्यादा होती है, लेकिन हर एरा में ना हमारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस प्रकार के चैलेंजेस आजकल की महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी एक्चुअली क्या है कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए जो चैलेंजेस हैं हमारे ज़िंदगी में हमें जो है अवसर लेके आते हैं, तो वो अवसर के रूप में अगर चुनौतियों को स्वीकार किया जाए तो महिलाएं उनसे अपनी यात्रा को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, बौद्धिकता के लेवल पे आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम काजी महिलाएं हैं, जैसे उनका सुरक्षा और उत्पीड़न की समस्या रहती है ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों पर, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसके अलावा उन्हें सामाजिक रूढ़ियों का, तो जो समाज परिवार उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो उनको लेके महिलाएं कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं, वो उनके अपेक्षाओं के नीचे दबकर रह जाती हैं और वास्तव में जो एक स्वतंत्रता जो है उनकी प्रभावित होती है। तो एक नेतृत्व और अवसर उनको अगर मिल जाए तो उच्च पद पर भी वो जा सकती हैं, जो कि कुछ महिलाएं जा भी रही हैं। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत जो है मैटर करता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ पाए। तो ऐसा है कि इस तरह की समस्याओं से क्या करते हैं कि गिव अप भी कर देती हैं लेडीज। तो गिव अप करने से क्या होता है, तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ही, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगी तो जरूर ही वो जो है विजय हासिल करेंगी, मेरा ये मानना है।
0: बिल्कुल भाई, तो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ साथ आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं। सो फोकस करिए कि आपका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो समाज का माइंडसेट, और अगर हम उसे बदल पाएं, क्योंकि हम उसका आधा हिस्सा तो हैं ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ एक और गाना, और आप अपने प्यारे रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहना। फील गुड, फील लाइव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, आज की हमारी गेस्ट हैं आशा गाबा जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर रही हैं और मध्यस्थ दर्शन के साथ ये लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अब मैं बात करती हूँ आजकल के जमाने की फास्ट पेस्ड लाइफ के रिश्तों की। आप भी मानती हैं आशा जी कि जिंदगी भागदौड़ भरी है और ऐसे में कुछ पीछे छूट रहा है, और सबसे ज्यादा जो पीछे छूट रहा है वो है हमारे रिश्ते। इन्हें कैसे बैलेंस किया जा सकता है?
1: अगर आप कहें तो मैं एक लाइन में यही कहूंगी कि सुविधा संग्रह की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस सुविधा संग्रह को अगर थोड़ा सा माइन्यूटली देखा जाए तो नीड और डिजायर्स, इनके डिफरेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखा जाए तो नीड्स हमारी 6 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। तो हम अनलिमिटेड डिजायर्स की तरफ जब भागते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है। बेसिकली हम मुड़ के देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, फिर होता तो कुछ और ही है।
0: वाकई
1: है ना। तो ये है कि तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स भी उठा सकते हैं, जैसा कि पर्पस क्या है। हमें पर्पसफुल लाइफ अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी कहीं नहीं डगमगाती है, तो ये देखने की जरूरत है। और संवाद की स्थिति बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायलॉग जो है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ फोन, जो गैजेट्स हैं इसमें हम इतने डूबे भीगे घिरे हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। हमारा टाइम रील देखने में ही कितना निकल जाता है। तो ये जो आजकल के मुद्दे हैं उसमें हमें जांचने की जरूरत है कि 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और उस वक्त हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, क्या हमने जो सुबह प्लान बनाया वो सक्सेसफुल करने के लिए हम वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये बहुत बारीकी वाले मुद्दे हैं और इन पर जो है देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि परिवार में मतभेद तो होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। तो उन मतभेदों को आपसी डिस्कशन से सुलझाया जा सकता है, उसकी तरफ भी बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि सेल्फ केयर, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। तो हमारा अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति जो जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है क्या हम वो पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जहां तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, खुद को जाँचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
0: सो दोस्तों, ये जानने की बहुत जरूरत है कि सबसे पहले तो आजकल के जमाने में हम रिश्तों को बैलेंस कर कैसे रहे हैं। मानते तो हैं कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पर उस बैलेंस को क्या हम बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आशा जी ने, एंड डेफिनेटली अगर इन्हें फॉलो किया जाए और इन्हें असेस किया जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, feel like.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आज हम आशा जी से ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आशा गाबा जी आज की हमारी गेस्ट हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर हैं। और अब आशा जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में। देखिए भाई, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, सो जेंडर इक्वालिटी की बात तो करनी बहुत जरूरी है। हम ये बात करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है कि दोनों जेंडर बिल्कुल समान होते हैं और उन्हें समानता मिलनी चाहिए, लेकिन समाज में, घर में और सोच में अगर हम देखें तो तीनों जगह ये इक्वालिटी कहीं नहीं मिल रही है। सो ये इक्वालिटी पाई कैसे जा सकती है?
1: खुद पर काम करके
0: जी।
1: तो मैं तो यही बात कहूंगी कि

0: जो बात कह रही हूँ वो आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम उस उत्पीड़न से, उन घटनाओं से खुद पीड़ित हो रहे हैं, या फिर हम उस उत्पीड़न समस्या से दूर होकर अपने जो पर्पसफुल लाइफ है उस पर फोकस कर रहे हैं। घटनाएं तो आती जाती रहेंगी, घटनाओं के बारे में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बाहर हैं। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऐसे हमें सभी समझदार तो मिलेंगे नहीं।
1: वाकई
0: तो जहां पर हमें अगर ऐसे व्यक्तित्व से टकराव होता है जहां पर कि मन खराब हो, है ना, लैंगिक असमानता तो है ही, जेंडर इक्वेलिटी तो है ही, अब लेबर का ही काम कर रहे हैं अगर मेल और फीमेल तो सैलरी भी डिफरेंट
1: जी,
0: है ना। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि हम समाज सुधार के लिए बाद में देखें, पहले खुद को देखें, अपने परिवार को देखें, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ही हम मन से जब खुश होते हैं अपने परिवार में, हम खुद खुश रहते हैं, खुश होके हम काम करते हैं, तो वो खुशी हमारे परिवार तक जाती है और कई घटनाएं जिनको हम एड्रेस ना भी करना चाहें वो अपने आप सुलझ जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम समस्या पर फोकस करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके हम अगर उन घटनाओं को ठीक करने के लिए कोशिश ना करें पहले, तो सबसे पहले अपने घर परिवार में खुद खुश रहें, परिवार में सब खुशियां बटोरें और खुशियां दें, क्योंकि जितनी हम खुशियां बांटेंगे उतने ही हमारे परिवार वाले खुश रहेंगे।
1: वाकई,
0: है ना।
1: सो भाई ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, एंड आई थिंक आई टोटली अग्री कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम पूरे समाज को बदलें, अगर शुरुआत हम अपने घरों से करते हैं तो डेफिनेटली ये चेंज हम महसूस कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आशा गाबा जी आज हमारे साथ हैं। आशा जी एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट रही हैं, बहुत सारे जीवन को इन्होंने बदलने की कोशिश की है और अब जीवन के इस पड़ाव पर ये मध्यस्थ दर्शन का ना सिर्फ अध्ययन कर रही हैं लेकिन इस पर बेस्ड लोगों की जिंदगियों को बदलने की भी कोशिश कर रही हैं। आशा जी, आज के जमाने में जहां पर हमारे पास इतनी सारी एडवाइस है, ऐसे जीवन में आप मुझे बताइए, आप मध्यस्थ दर्शन के बेसिस पर सभी को क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: जी, तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगी, स्वयं को एक मानव के रूप में पहचाने
0: जी।
1: मन स्वस्थता पर ध्यान दें, शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान दें। 99.9% हमारी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसी से हमारी बॉडी और दूसरी चीजें गवर्न होती हैं।
0: yes.
1: तो मेरा ये मानना है कि भ्रम और अंधविश्वास में ना जिएं, फैक्ट्स और फिक्शन में अंतर को समझें, बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। 24/7 हम कैसे खुश रह सकते हैं इस पर ध्यान दें। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता अगर होगी तो वर्तमान से विरोध बना ही रहेगा, इसलिए खुद में उस विरोध को पनपने ना दें और खुद की योग्यता बढ़ाएं, पात्रता बढ़ाएं। सोचना, बोलना और करना तीनों में हार्मनी होनी जरूरी है। इसी हार्मनी से ही हम जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। मन में आवेश, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अगर होंगे, विचारों में हट धर्मिता होगी, अभिमान और अहंकार होगा बुद्धि में, तो हम इन पूर्व स्मृतियों, पूर्व मान्यताओं को देखकर हम जी नहीं पाएंगे। तो समझना क्या है हमें, हमें जागृति पथ पर अग्रसर होना है, भ्रमित मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा और समझदार होने पर ही, समझदार मानव होने पर ही महिलाएं परिवार और समाज में अपनी भागीदारी अच्छे से निभा पाएंगी। कंपटीशन और कंपैरिजन की बजाय कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ें, अपनेपन का विस्तार पर ध्यान दें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वाकई मतलब देखिए ना कि हम जब कभी भी बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं लाइफ अनहैप्पी होती तब है ना जब हम कम्पीट करने लग जाते हैं, जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन ही खत्म कर दें सो ऑटोमेटिकली आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल है और ज्यादा खुश है। तहे दिल से धन्यवाद आशा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, आपका तहे दिल से। और सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, थैंक यू।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।
2: ज्वाला समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला ये मेरा वादा है। ज्वाला

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका और लेकर के आ चुकी हूँ प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में, जहाँ मैं आप लोगों के पास में होती हूँ, आपसे ढेर सारी बातें के साथ साथ सुनाती हूँ प्यारे प्यारे से गाने और आपके मैसेज जो मेरे पास में आने शुरू हो गए हैं। बस ऐसे ही मैसेज आप भेजते रहें, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई गाना आपको इंजॉय करना है, आप मुझे 8010781078 पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं तो बात करूँ ही, लेकिन साथ में आप भी बातें करें, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले आपको नंबर देती हूँ ताकि आप अपनी बातें हम तक पहुँचा दें। और आप मुझे कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार बिजी होने के चलते हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो उसके लिए आप हमें दिल से माफ़ कर दीजिएगा और समझ जाइएगा कि अभी हम बड़ा बिजी हैं, आप तुरंत मैसेज कर दीजिए। और आप जब मैसेज करेंगे तो ना केवल हम आपकी बातों का जवाब देंगे बल्कि आप के फरमाइश के गाने भी आपको सुनाएंगे। तो बस आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम शुरू हो गया है तो चलिए गाना आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम में आपको बताने वाली हूँ कि आज के इस खास प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं पहले गाना। रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ढेर सारे हैक्स एंड फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ, ये क्योंकि बहुत ही खास और हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे काम को आसान करते हैं। और हमेशा क्योंकि आज का वक्त जो है हम काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे में जहां हम स्मार्ट चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं कुछ स्मार्ट हैक्स भी हैं जो हमारे काम को बेहद आसान कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही हैक्स और फैक्ट्स लेकर के आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, क्योंकि हम अपने हर दिन की जिंदगी में काम करते करते कहीं ना कहीं हमारे जहन में हमारे मन के अंदर एक ख्याल रहता है कि क्या ये काम कम हो सकते हैं या इन कामों से हमें थोड़ा सा वक्त मिल सकता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये हैक्स लेकर के आती हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए और बताऊंगी थोड़ी सी देर में, और साथ ही सुना रही हूँ आपको गाने। तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रेश 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं कुछ स्मार्ट हैक्स आपको बताऊंगी। भाई आज है सैटरडे और आज के इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं और किचन के बारे में मैं ज़्यादा आज के प्रोग्राम में आपसे बात करती हूँ, क्योंकि किचन का काम ना अपने आप में इतना सारा होता है कि अगर आप एक बार किचन में गए और आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर जो भी काम किया, करते करते आपको इतना टाइम हो जाएगा कि आपको सिर्फ इतना ही वक्त मिलेगा कि आपने नाश्ता करना है और उसके बाद फिर से लंच की तैयारी हो जाती है, क्योंकि काम बहुत सारा हो जाता है। अब ऐसे में हमें चाहिए होती है हेल्प, तो देखिए अगर घर में बाकी सदस्य हैं तो ज़रूर हेल्प करते होंगे, है ना। और अगर हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई और नहीं है हेल्प कराने वाला, तो यहाँ पर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए घर में जो भी किचन में उस वक्त काम कर रहा है तो सब मिलके उनका हाथ बटाएं, ताकि वो व्यक्ति जो किचन में खाना बना रहा है वो भी फ्री हो जाए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि करने वाला सिर्फ एक ही होता है किचन में काम, ना तो अब क्या करें। तो ऐसे में हैक्स काम आते हैं और इसलिए मैं आप लोगों के लिए सैटरडे, हर सैटरडे आप लोगों के लिए हैक्स लेकर के आती हूँ। चलिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे ना बड़ी तकलीफ होती है, और वो है मिक्सी। अच्छा, मिक्सी से तकलीफ तब हो जाती है जब मिक्सी ख़राब हो जाती है, जार के ब्लेड घिस जाते हैं, किसी भी यूज़ में नहीं आ पाते हैं। तब ऐसे में क्या होता है, अब यही दिमाग में रहता है कि अब हमें नई मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, है ना। और मशीन बाहर ख़रीदना मतलब अपना खर्चा करवाना, राइट। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो वेट करते हैं कि छुट्टी आए तो हम मिक्सी वाले के पास लेकर के जाएं इसे ठीक कराने के लिए, इसके जो ब्लेड हैं उसको चेंज करवाएं, अब उसमें भी खर्चा है ना। तो एक बार जो मैं कहने वाली हूँ उसको आप ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, आपको मिक्सी लेनी है, उसमें जार लगाना है, जार में कुछ डालना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ डालनी है और वो है सॉल्ट। जी हाँ, जो वाइट सॉल्ट होता है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, आपको ढेर सारा जो जार है मिक्सी का जिसमें ब्लेड है, राइट, उसमें आप डाल दीजिए और फिर आप खूब सारा नमक डाल करके इसको चला दीजिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको नमक को पीसना है। अब इससे क्या होगा, आप देखेंगे जैसे ही आपने नमक पीसा उसके बाद ब्लेड जो है वो काफ़ी हद तक काम करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्लेड होते हैं उसकी धार को एकदम शार्प करने का ये तरीका, आप ये से नुस्खा कह सकते हैं, ये एक बेहतरीन सा नुस्खा है। तो आप इसे करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कितना वर्क किया। बट मैंने अपने घर में किया था तो मुझे तो बड़ा सही लगा। अगर आप हफ्ते में एक बार ऐसे ही नमक को मिक्सी में डाल करके पीस देते हैं तो उससे आपके ब्लेड शार्प रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी और मिक्सी में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से आप मनी सेविंग कर सकते हैं और साथ के साथ ये हैक्स आप अपने किचन में इस्तेमाल करके आप किचन को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। अब मैंने आपको ये वाला हैक बताया, एक और बहुत ही गजब का हैक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस प्रोग्राम में, और इसके साथ ही सुनाने वाली हूँ गाने जो कि हैं बेहद खूबसूरत। तो चलिए दो गाने एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

मैं हूं प्रांगा आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है एवरग्रीन लम्हे। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स। और किचन की बात हम कर रहे हैं क्योंकि किचन का काम ज़्यादा होता है, किचन में वो सारी चीज़ें जो अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग है उसको हम कैसे कम टाइम में कर सकते हैं या उससे काम हल्का कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और आपको हैक्स बताती हूँ। साथ ही बाहर जो खाने का अब ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक घर में हो गया है, यानी कि पहले हम बाहर जाकर एंजॉय करते थे लेकिन अब वही चीज़ें घर में भी हम बनाकर एंजॉय कर पाते हैं। फिर चाहे कुछ भी फास्ट फूड हो या कोई भी ऐसा खाना जो आप बाहर पहले एंजॉय करते थे, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है कि अच्छा इसको ऐसे बनाना है या इस तरह से इसको बनाकर तैयार करना है, वो फिर हम घर पर ट्राई करते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो एक काफ़ी अच्छी है क्योंकि जब कोई चीज़ हम घर पे बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम घर में क्या डाल रहे हैं, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही हम जब भी छुट्टी पर होते हैं यानी कि वीकेंड होता है तो या तो राजमा या कढ़ी खाने का मन करता है या फिर दाल मखनी और उसके साथ में तंदूरी नान हो जाए तो ओहो क्या कहने, है ना। नान जो है घर में आजकल काफ़ी बनाने लगे हैं लोग। पहले का वक्त होता था कि लोगों को पता नहीं होता था कि कैसे बनाना है, सिर्फ कुछ एक लोग ही जानते थे बनाना, लेकिन आज के टाइम पर अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो भी नान बना सकते हैं। और ये तरीका तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। तंदूरी नान के लिए तंदूर का इस्तेमाल पहले किया जाता था लेकिन अब घर में भी आप बना सकते हैं, आप उल्टे तवे पर सेक कर तंदूरी नान बना सकते हैं जी हाँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको तंदूरी नान कैसे बनानी, बल्कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप नान बनाने जा रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, जैसे होता है कि रिलेटिव कोई आ गए हैं या फिर एकदम से इंस्टेंट कुछ खाने का मन हुआ, दाल मखनी तंदूरी नान या कुछ तंदूरी नान के साथ कुछ खाने का मन हुआ और टाइम उतना है नहीं, प्लान एकदम से बना है ना, तो इंस्टेंट नान बनाने के लिए आपको क्या करना है, आटा जब आप उसका गूंथे उसमें बेकिंग पाउडर की जगह इनो जो है आप वो डाल दीजिए, इनो सॉल्ट जो होता है, इससे नान का आटा जल्दी तैयार हो जाएगा और नान बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना वही वाला टेस्ट आपको आने वाला है, जो कि बहुत ही यम्मी ऑसम टेस्ट होगा। तो ये आप करके देखिएगा, अभी तक आप जैसे भी नान बनाते थे आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, आटा वाकई में बड़ा सॉफ्ट गूंथेगा और उसकी नान भी काफ़ी अच्छी बनेगी। ऐसे ही स्मार्ट हैक्स आपके लिए अभी और हैं, साथ के साथ चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: जरा ओढ़ो हो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कन छोड़ो।
1: मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में आपको मैं बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स, और किचन से जुड़े ये जो हैक्स हैं जो वाकई में काम को काफ़ी आसान कर देते हैं। ऐसे ही आपका एक और काम आसान कराई देती हूँ। अच्छा, कुकर में खाना बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा कम वक्त लगता है, और ये भी एक तरह से हमारे ही लिए सही है ना कि कम समय में खाना बन रहा है। लेकिन क्या होता है, दिक्कत तब बहुत ज़्यादा हो जाती है जब अचानक से हमें पता लगता है समय हमारे पास कम है खाना बनाने के लिए, और एकदम से हम किचन में गए हैं और कुकर जैसी देखा, और कुकर पहले तो ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जब नोटिस किया तो कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अब आपने ऐसे तैसे एडजस्टमेंट किया और आपने रबड़ लगा करके खाना चढ़ा दिया, कोई दाल या जो भी आपको बनाना है वो आपने चढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है, दाल के अंदर का जो कुकर के अंदर जो दाल है उसमें पानी है, वो पानी सारा बाहर झलक रहा है क्योंकि रबड़ ढीली है। अब क्या करें, अब एकदम से भागना पड़ेगा मार्केट की तरफ। तो कई बार होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता या दुकान काफ़ी दूर होती है, अब क्या करें उसके लिए। तो यहीं पर अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो काम आ जाए, यही तो स्मार्ट हैक है, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। अगर कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है तो आप उसको लीजिए और फ्रीजर में डाल दीजिए, जहाँ बर्फ़ रखी हो बस वहीं कोने में आप रख दीजिए, और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आप एकदम तैयार रहिए, बिल्कुल रेडी रखिए, यहाँ तक कि आप जो खाना है उसको इतना, जो आपने खाना चढ़ाने के लिए कुकर में डाला हुआ है सामान, उसको आप इतना गर्म कर लें कि वो उबालने वाली स्टेज पर आ जाए। अब तुरंत आप रबड़ निकालिए फ्रीजर से और उसको लगा दीजिए कुकर के ढक्कन पे, और तुरंत तुरंत आप उसको बंद कर दीजिए, सीटी तुरंत लग जाएगी और आपका खाना आसानी से पक जाएगा, और कुकर के जो रबड़ है वो आपको परेशान भी नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका खाना तो बन जाएगा बट ये सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए रबड़ तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका वो खाना उस टाइम समय पर कम्प्लीट ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होता है ना कि आप कोई काम होगा तो वो वीकेंड में होगा क्योंकि छुट्टी मिलती है भाई, और छुट्टी में ही फिर सारे काम जो बचे होते हैं वो निपटाने पड़ते हैं ना। तो अब अगर बीच में ही यानी कि वीकडेज में ही अगर ऐसा हो गया है और वीकेंड का आप इस्तेमाल करें, तो इस तरह से भी आप चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं, है ना। कितना स्मार्ट तरीका चीज़ों को ठीक करने का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और बताती हूँ। सुबह के वक्त में हम सभी चाहते हैं कि कुछ हल्का हेल्दी टेस्टी हो, है ना। अब इसमें देखो, अगर मैं रेसिपी डिश की बात करूं कि सुबह सुबह क्या होना चाहिए जो हेल्दी है, कुछ खाने में जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होना चाहिए, तो कई लोगों के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती हैं। लेकिन पोहा जो है वो सबको पसंद आता है ना। पोहा क्योंकि जल्दी बन जाता है और ये काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। और उसी वक्त आपको कुछ ऐसा करना है जिससे इसे बनाने में बहुत कम वक्त लगेगा और काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। देखिए, जब भी आप पोहा बनाने जा रहे हैं ना, तो उसमें भिगोने के बाद स्टीम करके आप इसे बनाएं। स्टीम करने से पोहा नरम और मुलायम रहता है और अपनी शेप में रहता है, और बनाने में भी काफ़ी कम समय लगता है। तो अब आप स्टीम करके पोहा बनाइए, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये आप करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा 8010781078। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानवरश 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आपको स्मार्ट हैक्स और टिप्स दे रही हूं. तो हैक्स पर तो बहुत सारी बातें कर ली, अब बात कर लेते हैं अपनी यानी कि हमारी सेहत की. दादी नानी के नुस्खे बड़े ही कमाल के होते हैं. दादी जी नानी जी हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें बता जाती हैं जो कि पूरी ज़िंदगी काम आने वाली होती हैं. ऐसे ही कुछ नुस्खे आप लोगों के लिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि हैं बेहद कमाल के. अच्छा, पानी में नींबू निचोड़कर पीने से हमारा फैट लॉस होता है ना, और शरीर में फुर्ती आती है. तो हम सभी जानते हैं कितने लोग वेट लॉस के लिए गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पीते हैं ताकि बॉडी डिटॉक्स हो और उनका पेट सही रहे और साथ के साथ स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. वेट लॉस तो होता ही उससे, है ना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी जो नहाने वाला पानी है जिससे आप थोड़ी देर में नहाने वाले हैं, आप अगर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और उससे आप नहाएं तो स्किन सॉफ्ट रहती है, काफ़ी ज़्यादा चिकनी हो जाती है. जी हाँ, क्या ये आपको पता था? ये भी दादी नानी का नुस्खा है जो कि मुझे लगता है ये तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. भाई स्किन सॉफ्ट तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन मुलायम रहे और टेक्सचर बड़ा स्मूथ रहे. तो बस यही वाली चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों को अप्लाई कर ही लेनी चाहिए और इससे कोई नुकसान भी नहीं है. दादी नानी का नुस्खा है, आराम से इस्तेमाल कीजिए. और नींबू पानी तो हम पीते ही हैं, तो अब नहाने के पानी में भी हल्का सा नींबू निचोड़ करके क्यों ना इस नुस्खे को आजमाया जाए, है ना. तो ये नुस्खा जब आप आजमाएं तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा. कुछ दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. और साथ के साथ नंबर आप ले लीजिए 8010781078, ये हमारा नंबर है. चलिए अब आपको अगला नुस्खा बताती हूँ. और अगला नुस्खा भी हमारी दादी नानी का ही है. काले खजूर जो होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं और काफी हेल्दी भी होते हैं, है ना. क्या आप जानते हैं काले खजूर जो है वो खाने से कमर मजबूत होती है और इससे कमर दर्द जो कि बहुत जल्दी आज के टाइम पे लोगों को होने लगा है. कमर में दर्द रहता है और ठीक से चला भी नहीं जाता. कई बार तो मैंने देखा है कि एक एज के बाद कमर दर्द इतना रहता है कि बहुत परेशान रहते हैं और कई लोग तो झुक कर चलते क्योंकि वो ठीक से कमर सपोर्ट ही नहीं कर पाती उनको, है ना. तो काले खजूर खाने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया होते हैं और कमर को और हड्डी को मजबूत करते हैं. तो मुझे तो लगता है अब देखो दादी नानी का नुस्खा है और खजूर खानी भी चाहिए. ये तो हम सभी जानते हैं खजूर कितनी हेल्दी होते हैं हमारे लिए. तो काले खजूर आप अपने घर पे ला के रख लीजिए और जब भी मन करे, हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं खाइएगा. और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो आप एक या दो से ज़्यादा मत लीजिएगा. लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हेल्दी है तो इसको छोड़िएगा नहीं, ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर दादी नानी के नुस्खे अभी और बहुत सारे हैं जो मुझे आपको बताने हैं. लेकिन उससे पहले चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

प्रेम मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ. और मैंने आपको किचन हैक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई और अब मैं आपको बता रही हूँ दादी नानी के बेहतरीन नुस्खे, जो कि इसमें से कितने सारे नुस्खे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इन नुस्खों को आप कितना अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में. तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ अप्लाई तो हम नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं यही तो चाहती हूँ कि ये जो नुस्खे हैं जो हम सब जानते हैं इसको हम अप्लाई भी करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो जो फ़ायदा जो पहले के लोग उठाया करते थे वो हम भी उठा पाएँ. इतनी नायाब चीज़ हमारे बुज़ुर्ग बता कर गए हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं. तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम के ज़रिए से अगर कुछ लोग भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं तो देखो कितनी अच्छी बात होगी, है ना. तो अगला नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, और ये भी हम सभी जानते हैं कि जो कच्चा प्याज है वो खाना चाहिए. कच्चा प्याज या सब्जी में डाल करके इसको हमें खाना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है और गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है. और आपने घर में अगर बड़े हैं आपके तो आपने उनको देखा होगा कि जब भी वो लू में बाहर निकलते हैं तो अपने साथ में प्याज की एक गांठ यानी कि छोटी प्याज अपने साथ ज़रूर रखते हैं या फिर बैग में रखते हैं, और प्याज का सेवन ज़्यादा कर देते हैं लू के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर. वो क्यों होता है? क्योंकि ये लू से बचाता है. प्याज लू से बचाने में बहुत ही कारगर साबित होती है, इसलिए ऐसा आपने अपने बड़ों को भी डेफिनेटली करते देखा ही होगा, है ना. क्या आप जानते हैं कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बचाता है? जी हाँ, इसलिए प्याज का इस्तेमाल जो है हमें करना ही चाहिए अपनी डाइट में. ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बस यही मैं चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, दादी नानी के नुस्खों को एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ. वहीं मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि नींद नहीं आ पाती है आजकल, काफ़ी दिक्कत होती है, और हम अगर मोबाइल ना भी चलाएं तो भी एक प्रॉब्लम रहती है, जरी सी आँख लगती है तो फिर से आँख खुल जाती है और उसके बाद हम कई कई घंटों तक जागते रहते हैं. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात पता है कब होती है? जब अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमें ऑफिस के लिए निकलना है. छुट्टी के टाइम पर तो फिर भी एक दिमाग में ये रहता है कि अगले दिन कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे समय निकाल के, लेकिन अगर अगला दिन वर्किंग है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है. अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये भी दादी नानी का घरेलू नुस्खा है. अगर नींद नहीं आ रही है तो हल्का सा नींबू चाट लीजिए, कहते हैं कि नींद अच्छी आ जाती है. तो मैंने तो ये अभी तक नहीं आजमाया क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाती हूँ बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप उनमें से हैं जिनको नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है आप ये कीजिए. और ये जो नुस्खा है आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना. नंबर हमारा 8010781078. तो देखा, हमारे जो समाधान है वो घर में ही है, लेकिन घर में समाधान होने के बावजूद हमें नहीं पता, क्योंकि हम दादी नानी के नुस्खों से अब काफ़ी दूर हो चुके हैं और जो पास है भी वो सिर्फ अपने तक ही सीमित है, क्योंकि आज के बच्चे ना उनको पता है और ना वो इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं, है ना. समय क्या की कमी है या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिस वजह से वो ध्यान ही नहीं रख पाते हैं. लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समाधान घर में ही मौजूद है. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रियंका आपके साथ.

मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में बता रही हूँ आपको दादी माँ नानी माँ के नुस्खे। ऐसा ही एक नुस्खा आपको बताती हूँ और ये उनके लिए है जिनको खट्टी डकारी बहुत आती है। आज के टाइम पर हमारा खान पान इस तरह से हो गया है कि अगर हम अपनी भूख से ज़रा सा भी ऊपर खा लें तो हमें खट्टी डकारी आने लगती है, या कुछ तेल मसाले वाला ज़्यादा खा लें तो हमें ये दिक्कत होती है, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि सब चीज़ ठीक है, खाना भी हमारा हल्का है, लेकिन उसके बाद भी खट्टी डकारों की जो समस्या है कई लोगों के साथ में ये रहती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको इन सारी चीज़ों को करते हुए, यानी कि खाना खाते वक्त या तेल मसाला थोड़ा ज़्यादा खा लिया तब ऐसे हो जाता है, या फिर आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ की कि आपको खट्टी डकारें सिंपल खाने से भी हो जाती है, तो दादी नानी जी कहती थी कि अगर आप एक चुटकी भर जीरा खा लें तो खट्टी डकारे आना बंद हो जाएगी। तो ये आप करके देखिए। वैसे सौंफ के लिए भी कहते हैं कि सौंफ जो है वो खट्टी डकारों को ख़त्म करता है, पेट को ठंडा करता है, लेकिन ज़ीरा वाला जो है ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। ज़ीरा अगर आप एक चुटकी थोड़ा सा, मतलब आप ज़ीरा अगर आप खा लेते हैं और आपको ये दिक्कत हो रही है तो दिक्कत कहते हैं ठीक हो जाएगी। तो आपके साथ अब ये प्रॉब्लम हो तो आप ज़ीरा को बिल्कुल मत भूलना, याद रखना और इसको खाना, और फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी खट्टी डकारे थोड़ी देर में जा चुकी हैं। तो है ना कितना कमाल का ये नुस्खा। ऐसे ही सेंधा नमक खाने की हिदायत हमेशा दी जाती है, क्योंकि सेंधा नमक जो है वो अच्छा होता है खाना खाने में डालने के लिए। वहीं क्या आप जानते हैं कि सेंधा नमक शरीर के दर्द को कम करता है? जी हाँ, आपने सिकाई करते हुए तो सुना ही होगा और आप करते भी होंगे, देखा भी होगा आपने सिकाई करते हुए कि गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके खूब सारा अगर आप अपने पैर डाल देते हैं तो ये काफ़ी अच्छी सिकाई हो जाती है पैरों की। आपके जो पेन होते हैं वो चले जाते हैं, आपके पैर में है, जॉइंट्स में है, तो वो गर्म पानी में सेंधा नमक डालने से दर्द गायब हो जाता है। ऐसे ही आप अगर इसको खाने में से इसका सेवन करते हैं तो ये कमाल का फ़ायदा जो है देता है बाकी नमक के मुकाबले। तो कैसा लगा ये नुस्खा, है ना कमाल का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, और ये उनके लिए है जिनको पेट में गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जी हाँ, अगर आपको भी दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहती है तो आप पहली चीज़ तो कम खाएं, और सबसे बड़ी चीज़ खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको जो गैस की प्रॉब्लम है या और जो प्रॉब्लम खाने के बाद होती है वो धीरे धीरे चली जाएगी। क्योंकि खाना खा के कई बार क्या होता है कि हम बैठे रह जाते हैं और बैठने से ही काम ख़राब हो जाता है, इसलिए खाना खाने के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद वॉक करनी चाहिए, वॉक करने के लिए कहा जाता है। तो आप धीरे धीरे धीरे वॉक कीजिए, या खाना खाने के आधे घंटे बाद आप वॉक शुरू करें। और वज्रासन ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद होता है, तो वज्रासन में आप ज़रूर बैठें। इससे खाना ना केवल डाइजेस्ट होगा बल्कि आपको जो ये प्रॉब्लम है जो आपके खाने के बाद शुरू होती है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। कुछ और चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ प्रांग।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें मैं आपसे कर रही हूं, जहां आपको न केवल मैंने किचन हैक्स बताए बल्कि दादी नानी के ढेर सारे नुस्खे भी बताए। जी हाँ, तो चलिए अगला नुस्खा आपको बताती हूँ। और हमेशा आपने सुना होगा कि हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, है ना। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जोड़ों में दर्द होने की शिकायत हो जाती है, इससे खांसी जुकाम की समस्या हो जाती है, इसलिए रात में हमें दही नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप किसी खाने में डाल रहे हो ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी नुकसान होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप दही को रात में अवॉइड करें। और अगर आपका बहुत दही खाने का मन कर ही रहा है, तो आप अपने मन को समझा लें कि अगर आप खाएंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो अगर आप सेंसिटिव हैं और दही आपको बहुत अच्छी लगती है, तो पूरे दिन खाइए, लेकिन रात में पूरी तरह से दही को अवॉइड कीजिए। जी हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ मानी जाती है, लेकिन रात में आप अवॉइड कर दीजिए। वहीं खाना खाने के तुरंत बाद कहते हैं कि कई बार हम सभी को ही क्रेविंग हो जाती है चाय पीने की, और कई बार तो रात में भी बड़ी क्रेविंग होती है चाय पीने की, लेकिन चाय नहीं पीनी चाहिए। इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता और पेट में सड़ने लगता है, और ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। इसीलिए रात में चाय पीने की हिदायत नहीं दी जाती है। कोई नहीं कहता कि रात में चाय पीनी चाहिए, लेकिन चाय जो चाय लवर है ना, उनकी क्रेविंग रात में ही सबसे ज़्यादा होती है। जब ऐसे कुछ थॉट चल रहे हैं दिमाग में, या कोई बात चल रही है, या कुछ भी ऐसा जो कि हमारे मन का हो रहा है, तो उस टाइम पर बातें करते करते चाय का प्याला मिल जाए, आहा क्या कहना। अच्छा, मैं भी उनमें से एक हूँ जिनको चाय जो है बहुत अच्छी लगती है। मेरे को भी बहुत पसंद है चाय पीना, लेकिन रात में तो मैं भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरी दादी जी कहती है रात में चाय नहीं पीनी चाहिए बेटा, इससे एसिडिटी हो जाती है और बहुत शरीर को नुकसान होता है। तो मैंने तो ये सालों पहले समझ लिया था, तो आप भी समझ जाइए और चाय पीना रात में बंद कर दीजिए। तो है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही हैं। और एक चीज़ और बताऊँ जो मुझे लगता है कि बहुत ही औसम बात हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए। वो हमेशा कहते हैं कम बोलने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। कम बोलने वाला व्यक्ति, उसका मान भी होता है और आपका दिमाग तेज होता है, क्योंकि ज़्यादा बात करने वाले जो लोग हैं ना, उनको लोग सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। जी हाँ, और अगर आप कम बोलते हैं तो लोग आपको सीरियसली सुनते भी हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने शरीर पर काम कर रहे हैं। तो भाई, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। हमेशा कम बोलना चाहिए, और जब भी बोले अच्छा बोले, प्यार से बोले, सम्मान के साथ बोले, शब्दों को ध्यान में रखकर बोले।

है ना, कितनी बढ़िया बात जो हमारे बुजुर्ग कह गए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ढेर सारी बातें मैंने आपसे की, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा है 8010781078। तो चलिए इंजॉय करते हैं अगला गाना। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है कवि लीलाधर जगूड़ी के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे जिक्र किया था उनकी कुछ कविताओं का, जैसे उनकी कुछ बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं के शीर्षक हैं, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद और ईश्वर की अध्यक्षता में। ये ऐसे बेहतरीन संग्रह जगूड़ी ने दिए, पर उन्हें समझने वाला समाज ना मिला। उनकी कविताओं को लेकर भरोसेमंद टीकाओं का अभाव है। कदाचित ये कारण हो कि वो बहुत ही पेचीदा, जटिल और बहुस्तरीय अनुभवों के कवि हैं, जिन्हें समझना कठिन है। उनकी कविताएं एक बार में ही पूरा नहीं खुलती, जितना हम उन्हें समझने का दावा करते हैं उतना ही अबोध वो हमें घोषित करती हैं। यूं तो हर अच्छी कविता की विशेषता यही है कि वो बार बार पढ़ी जाकर भी नई की नई बनी रहे, उसकी भाषा संवेदना हर बार ताजा लगे। जगूड़ी की कविताओं में ये खूबी है, वो अपने प्रतीकों, बिंबों, उपमानों, उत्प्रेक्षाओं को मैला और बासी नहीं होने देते। यही वजह है कि पेड़ और बच्चे के प्रतीक और बिंब से रची उनकी अनेक कविताएं ऊब का निर्माण नहीं करती हैं, वो रोमांचित कर देने वाली अनुभूति और प्रतीति कराती हुई एक रास्ता का भंजन करती हैं। उनकी कुछ कविताओं का जिक्र आपसे करूंगा, उनकी जिंदगी की बात करूंगा, उनके लेखन की बात करूंगा, उनके संघर्ष की बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है लीलाधर जगूड़ी के बारे में। उनकी कविताओं की अगर बात करें तो एक कविता है, उसका आखिरी हिस्सा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो लिखते हैं, जड़ों के सत्संग से लौटकर मौसम के सामूहिक कीर्तन में हिल रहे थे पेड़, या पेड़ कविता का ये अंश। उसकी आंखों में अनेक इच्छाओं के कोमल सिर हैं, जिन्हें जब वो निकालेगा तो बचपन की मस्ती में हवा, रोशनी और सारे आकाश को दूध की तरह पी जाएगा। आओ और मुझे सिर ऊंचा किए हुए उससे ज्यादा जूझता हुआ, उससे ज्यादा आत्मनिर्भर कोई आदमी बताओ, जो अपनी जड़ें फैलाकर मिट्टी को खराब होने से बचा रहा हो। दोस्तों, वो जीवन से ही नहीं, पौराणिक संदर्भों तक से आधुनिक चेतना को खंगालते हैं और राजनीति, धर्म, साहित्य, अर्थतंत्र और बाजार के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को एक कवि की तरह आंकते हैं। जितनी सुंदरता से उन्होंने छोटी कविताओं को रचा, उससे भी ज्यादा सुंदर उन्होंने लंबी कविताओं की भी रचना की है। उन रचनाओं का भी जिक्र होगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, लीलाधर जगुड़ी ने जितनी सुंदर छोटी कविताओं की रचना की है, उनसे भी ज्यादा सुंदर उन्होंने लंबी कविताओं को भी रचा है। और अगर कहा जाए कि लंबी कविताओं के तो वो जैसे बेहद लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। बलदेव खटिक के अनेक मंचन हुए। कविता के रंगमंच को विकसित करने में इस या इन जैसी तमाम कविताओं की अपनी भूमिका है। एक रचना है जिसका शीर्षक है महाकाव्य के बिना, यानी महाकाव्य के बिना में संकलित तमाम लंबी कविताएं इस बात का परिचायक हैं कि ये कविताएं रचनात्मकता का परिणाम है। लंबी कविताओं की थ्योरी रचने के बजाय उन्होंने कविताओं में ही उसकी सैद्धांतिकी और निर्मिति के बीज बोए हैं। यूं तो वो लंबे कविताओं के विस्तार में जितनी बौद्धिकता और तार्किकता के साथ वो कथ के विराट फलक पर खेलते हैं, उनकी छोटी कविताएं भी उतनी ही प्राणवान और संवेदना सिक्त लगती हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर फहीम के साथ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था लीलाधर के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, यूं तो वो लंबी कविताओं के विस्तार में जितनी बौद्धिकता और तार्किकता के साथ वो विराट फलक पर खेलते हैं, उनकी छोटी कविताएं भी उतनी ही प्राणवान हैं और संवेदना सिक्त लगती हैं। इसका एक उदाहरण उनकी लिखी कविता के एक भाग को सुना करके देना चाहता हूँ। वो लिखते हैं, जब उसने कहा कि अब सोना नहीं मिलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अगर वो ये कहता कि अब नमक नहीं मिलेगा तो शायद मैं रो पड़ता। दोस्तों, ये कवि के सरोकारों को जताने वाली कविता है। एक उनकी कविता है जिसका शीर्षक है, भय भी शक्ति देता है। भय भी शक्ति देता की दर्जनों कविताएं आधुनिक अर्थतंत्र, बाजारवाद और भूमंडलीकरण की अगत आहट को लेकर लिखी गई थीं, जब उदारीकरण और भूमंडलीकरण की रचनाएं भी शुरू नहीं हुई थीं, और अब उनके नवीनतम संग्रह यानी खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। उसको देखें तो ये संग्रह ना तो पुराने संग्रहों की झूठन से रचा गया है, ना पुराने अनुभवों का नवीन विस्तार है। यहाँ पुरानी सारी प्रविधियों को अलग रखते हुए सर्वथा नए ढंग से बात कहने की कोशिश है। फूलों की खेती और उदासी प्राचीन भारतीय संस्कृति को अंतिम बुके, 100 गलियों वाला बाजार, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, और कर्ज के बाद नींद ऐसी कविताएं हैं जो जगुड़ी जैसे कवि के भीतर बसे समाजशास्त्री, अर्थचिंतक और मनोविशेषक से रूबरू कराती हैं। इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, लीलाधर ने जिस तरह की कविताओं को रचा है उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जगूड़ी जैसे कवि के भीतर बसे समाजशास्त्री, अर्थचिंतक और मनोविशेषक से रूबरू कराती हैं उनकी कविताएं। कवि आज केवल कल्पना जगत का प्राणी नहीं रहा, उसे भी जगत गति व्याप्ति है। बिना सांसारिक हुए जीवन की विविधताओं, विशिष्टताओं और व्याधियों से परिचित नहीं हुआ जा सकता। कवि तथा तथ्य के गान के लिए नहीं बना है, वो तुके और अंत्यानुप्रास भिड़ाने वाला प्राणी भी नहीं है। सूखे समाज में लहरें पैदा करने वाली विज्ञापन टीम पर उसकी पैनी नजर है। विज्ञापन जैसा समाज बना रहे हैं, जैसी आक्रामकता और मोहक शब्द जाल से वो हमारी जीवन शैली में घुसपैठ कर रहे हैं, जगूड़ी की उस पर पैनी नजर है और वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। जो समाज में बुराइयां हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। पर दोस्तों, इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, उन सब का जिक्र आपसे करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
2: दोस्तों, लीलाधर के बारे में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सूखे समाज में लहरें पैदा करने वाली विज्ञापन टीम पर उनकी पैनी नजर है। विज्ञापन जैसा समाज बना रहे हैं, जैसी आक्रामकता और मोहक शब्द जाल से वो हमारी जीवन शैली में घुसपैठ कर रहे हैं, जगोड़ी की उस पर पैनी नजर है। शुद्ध कविता की खोज का ये समय नहीं रहा। कविता में आज का समय बोलना चाहिए, आज का वैश्विक परिदृश्य बोलना चाहिए, कविता में आज के बदलाव को लक्षित किया जाना चाहिए। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आजकल कविता से जिंदगी का जो खमीर है ना, जिंदगी का खमीर गायब होता चला जा रहा है। जगुड़ी को चिंता इस बात की है, वो बदलाव, विकास, आधुनिकता, तकनीक, आविष्कार और किसी भी वैचारिक नवाचार का विरोध नहीं करते, उसकी पूरी नोटिस लेते हैं। चारवाक ने भले ही इसकी संस्तुति की हो, पहले कर्ज लेना बुरा माना जाता था, अभावग्रस्तता चल सकती थी, ऋणग्रस्तता नहीं। आज कर्ज तरक्की का, आर्थिक विकास का परिचायक है, इसलिए हर जगह कर्ज और कमाई ढूंढते अत्याधुनिक मनुष्य तक के मिजाज की पड़ताल जगुड़ी करते हैं। कर्ज के बाद नींद कविता में आधुनिक अर्थतंत्र की आवाज सुन पड़ती है। सरस्वती पर उनकी कुछ बेहतरीन कविताएं जैसे ईश्वर की अध्यक्षता में और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। दोस्तों, आज जिस तरह लोगों ने अपने हितों के लिए सरस्वती का दुरुपयोग किया है, जगुड़ी उसे एक सुव्यवस्थित रूपक में बदलते हुए इस प्रवृत्ति की पड़ताल करते हैं। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। देखिए दोस्तों, लीलाधर जगुड़ी की कविता ना तो पारंपरिक कविता की लीक और लय पर चलती है, ना आजमाए हुए बिंब प्रतीकों का अवलंब ग्रहण करती है। ये कवित्व विवेक के अपने खोजे रचे प्रतिमानों और सौंदर्य धाई मानदंडों पर टिकी है। रीति, रस, छंद और अलंकरण के दिखावटी सौष्टभ से परे ये आधुनिक जनजीवन में खिलती प्रवृत्तियों, उदारताओं, मिथ्या मान्यताओं, व्याधियों, किंवदंतियों, क्रूरताओं का खाका खींचती हैं। इसमें बरते गए शब्द आधुनिकता के स्वप्न और संघर्ष की पारस्परिक रगड़ से उपजे हैं। पर्यावरण को ये कविताएं चिंताओं और सरोकारों के नए धरातल से देखती हैं। इनमें सब कुछ के लुट जाने का और लुटते हुए को बचा लेने का हाहाकार, शोर और रोर नहीं है, बल्कि क्रूरताओं और हिंसा के चितेरों को ये कविताएं चेतावनियां नहीं देती, क्योंकि ये जानती हैं कि ये काम कवि का नहीं, व्यवस्था और प्रशासन का है। जिस तरह प्रशासन और कानून के जिम्मे एक स्वच्छ नागरिक पर्यावरण का निर्माण है, इन कविताओं का काम नागरिकता के विरुद्ध होते पर्यावरण की शिनाख्त है और जगुड़ी ये काम संजीदगी से अंजाम देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। देखिए दोस्तों, मानवीय क्रूरताओं का रंगमंच बनती हुई दुनिया की शिनाख्त केवल और केवल कवि ही कर सकता है। अगर पूछा जाए कि जगोड़ी ने हिंदी कविता को क्या दिया है, तो ये सहज ही कहा जा सकता है कि उन्होंने कविता को भाषा और अनुभव के जितने झटके दिए हैं, ऐसा वो खुद भी कहते हैं, उतने ही अर्थपूर्ण मुहावरे और सुभाषित भी। बात बात पर ऐसे उदाहरण जो मायकोविस्की जैसे क्रांतिकारी कवियों की कविताओं में देखने को मिलते हैं। समकालीनता का शोर इन दिनों हिंदी कविता में सबसे ज्यादा है, पर सच्ची समकालीनता जगोड़ी जैसे कवियों के यहाँ ही पाई जाती है। वो समकालीन कवि ही नहीं बल्कि समकालीनता के कवि हैं। जगोड़ी ने लिखा है, एक अच्छी कविता कर्म, विचार शैली और सौंदर्य का संपूर्ण विलयन अपने में लिए होती है। कविता का लक्ष्य किसी अनुभव की तत्काल अदायगी नहीं है, वो जीवन अनुभवों का उपार्जन है। ऐसा कहना है लीलाधर जगोड़ी का। लेकिन दोस्तों, लीलाधर जगोड़ी का और भी बहुत कुछ कहना है, और वो क्या क्या कहना है आज के एपिसोड में तो संभव नहीं है। अगले एपिसोड में इनके बारे में और भी बातें आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ खरबूजे की खेती के बारे में। अब एक प्रश्न जहन में आता है कि भाई, खरबूजे की खेती ही क्यों की जाए, क्या फायदा है इसमें? मैं आपको बताना चाहता हूँ, खरबूजा एक कद्दू वर्गीय फसल है जो बेल के रूप में बढ़ती है और बहुत कम समय में तैयार भी हो जाती है। रबी फसलों की कटाई के बाद जब खेत खाली हो जाते हैं, तब जायद सीजन में इसकी खेती करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में इसकी मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से बाजार में अच्छे दाम मिल जाते हैं। एक हेक्टेयर में इसकी खेती से लगभग 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे किसान एक सीजन में लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा बीज और कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी किसानों के लिए अतिरिक्त लाभ का अवसर प्रदान करती है। तो किसान भाइयों, खरबूजे के बारे में कुछ और जरूरी बातें हैं जो आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, आज बात हो रही है खरबूजे के बारे में। देखिए, खरबूजा एक स्वादिष्ट और मीठा फल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिसे सीधे खाने के अलावा सलाद और जूस के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसमें लगभग 90% पानी होता है, जो शरीर को गर्मी में ठंडक और ऊर्जा देता है। इसके साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं, बीज भी अत्यंत पौष्टिक होते हैं, जिनमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, वसा भी होती है, कैल्शियम भी होता है, आयरन और जिंक भी होता है, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इनका उपयोग स्नैक्स और इसके अलावा बहुत सारी जो औषधियां होती हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अतिरिक्त आय का एक स्रोत बन जाता है। तो इस स्रोत का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूजे की खेती को करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जैसे हर फसल की एक किस्म होती है जो उन्नत होती है, ऐसे ही खरबूजे की भी कुछ किस्में हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अच्छी पैदावार कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी किस्में हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी किस्में हैं जो खरबूजे की अच्छी पैदावार दे सकती हैं। देखिए, खरबूजे की अच्छी पैदावार के लिए सही किस्म का चयन बेहद जरूरी होता है। कुछ प्रमुख किस्में हैं जैसे पूसा शरबती, गुलाबी रंग का छिलका और मीठा गूदा, एक बेल पर 4 से 5 फल आ जाते हैं। एक किस्म है पंजाब सुनहरी, इसका हल्के पीले रंग का फल होता है, ज्यादा वजन और अच्छी उपज देता है। एक किस्म है जिसका नाम है पूसा मधुरस, गोल आकार गहरे रंग का फल, 5 से लेके 6 फल प्रति बेल। और एक किस्म है IVMM3, धारीदार और बहुत ही मीठा फल इस किस्म से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक किस्म और है जो जानी जाती है हरा मधु के नाम से, बड़े आकार और मोटे गूदे वाला फल इस पर आता है और स्वादिष्ट भी बहुत होता है। तो किसान भाइयों, इन किस्मों का चयन क्षेत्र और जलवायु के अनुसार करना चाहिए ताकि अधिक उत्पादन आपको मिल सके। अब एक और प्रश्न है कि मिट्टी और जलवायु और समय क्या होना चाहिए, तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि अगर हम खरबूजे की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। खरबूजे की खेती के लिए हल्की रेतीली और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। जायद सीजन यानी फरवरी से अप्रैल के बीच इसकी बुवाई करना सर्वोत्तम माना जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है, जबकि पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए 30 से 45 डिग्री तापमान आदर्श रहता है। इसके अलावा खरबूजे के खेत की तैयारी कैसे करें वो भी सुन लीजिए। देखिए किसान भाइयों, खरबूजे की खेती से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद सिंचाई करके मिट्टी को नरम किया जाता है और कुछ दिनों के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बनाया जाता है। फिर क्यारियां या नालियां तैयार करके उनमें जैविक और रासायनिक खाद मिलाई जाती है और अच्छी तैयारी से पौधों की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से किसान भाइयों, मिट्टी, जलवायु, समय और खरबूजे की जो तैयारी है, इन बातों का ध्यान रखकर हम खरबूजे की खेती को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें हम कैसे उर्वरक का ध्यान रखें, क्योंकि उर्वरक प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, आप बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। देखिए, अच्छे उत्पादन के लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग आवश्यक है। प्रति हेक्टेयर 200 से लेके 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। इसके अलावा 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए। पौधों में फूल आने के समय लगभग 20 किलोग्राम यूरिया देना फायदेमंद होता है, जिससे फल का जो विकास होता है ना, वो विकास बेहतर होता चला जाता है। अब बुवाई की बात करें कि बुवाई की विधि क्या होना चाहिए और सिंचाई कैसे करें, तो देखिए, खरबूजे की खेती बीज या पौध दोनों तरीकों से की जा सकती है। एक हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। बुवाई के समय पौधों के बीच लगभग 2 फीट की दूरी रखनी चाहिए और बीजों को क्यारियों या नालियों में बोया जा सकता है। और अगर सिंचाई की बात करें तो शुरुआती अवस्था में सप्ताह में 1 से 2 बार पानी देना जरूरी होता है। गर्मी में नियमित सिंचाई करनी चाहिए, जबकि बारिश के मौसम में आवश्यकता के अनुसार पानी देना पर्याप्त होता है। तो ये तो हो गई बुवाई की बात, सिंचाई की बात। अब करेंगे बात फसल की कटाई और तुड़ाई की, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, खरबूजे के बारे में बात हो रही है और मैंने इसी से संबंधित बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, लेकिन जब ये आप खेती करते हैं तो सवाल आता है कि कितनी लागत लगती है, उससे कितना मुनाफा होता है, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हेक्टेयर में खरबूजे की खेती का कुल खर्च बीज, खाद, मजदूरी और कीटनाशकों सहित लगभग 20 से 30 हजार रुपए तक आ सकता है। वहीं उत्पादन 200 से लेकर 250 क्विंटल तक होता है। अगर बाजार में कीमत 15 से 30 रुपए प्रति किलो मिले तो किसान 2.5 से 4 लाख रुपए तक की आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, खरबूजे के बीज भी एक अतिरिक्त आय का स्रोत हैं। लगभग 6 क्विंटल बीज उत्पादन से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं, जिससे कुल मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से किसान भाइयों, खरबूजे के अलावा आप उसके बीज का भी अच्छे से इस्तेमाल करके एक अतिरिक्त कमाई का स्रोत बना सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, मैंने आपसे बात की है आज खरबूजे की फसल के बारे में। अब वक्त जाने का हो रहा है, लेकिन जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ, खरबूजे की खेती कम समय में अधिक लाभ देने वाली एक बेहतरीन फसल है। अगर किसान भाई आप सही तकनीक और उन्नत किस्मों और संतुलित उर्वरक प्रबंधन का पालन करें तो आप लोग इससे शानदार आय अर्जित कर सकते हैं। गर्मियों में इसकी बढ़ती मांग और सरकार की सहायता योजनाएं इसे और भी लाभदायक बनाती हैं। इसलिए जो किसान भाई खाली पड़ी जमीन का सही उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए खरबूजे की खेती एक उत्कृष्ट विकल्प साबित हो सकती है। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत्याकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रेडियो मानवश्रम 107.8 FM जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक खुशहाल खैरियत से होंगे। अगर अपना हालचाल हम लोग बताएं और जस्ट इन केस अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ भी सब ठीक है। बाकी ये शो हमारा होता है स्टार्टअप बेस्ड एक शो। इसमें हम लोग बात करते हैं ओवरऑल एक पूरे प्रोसेस की। हम लोग एक इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ब्रांड की तरफ चलते हैं। पूरा एक प्रोसेस यहाँ पर आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं सो दैट कि आप ज्यादा फेमिलियर हो सके उस एक चीज से, आपको प्रोसेस के बारे में पता लगे, फाउंडर्स के बारे में पता लगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंडस्ट्री को आप थोड़ा समझ पाए। सो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या जस्ट इन केस इफ यू आर स्टडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, तो उसमें आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि इट टेल्स यू अबाउट एंटायर थिंग ऑफ दैट इंडस्ट्री। सो या दैट्स हाउ दिस शो इज रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ साथ साथ आपको ये भी पता लगता है कि भैया कौन कौन वो लोग हैं जिनकी बदौलत आज हम ये बात बोल पाते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। करेंगे डिस्कशन कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री में डील करती है, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद शो में आगे बात होगी। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर USA एंड UK। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड $100 बिलियन, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, $150 बिलियन तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी है अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, यूपीआई एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है यूपीआई के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहाँ के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गाँव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहाँ के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टेक्स से भी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात। हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, यूपीआई, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहाँ पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शन होती रहे, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील बैड।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। उसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो RBI के इनिशिएटिव है, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। Tier 2 and Tier 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान

मैं हूँ आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

आशा करता हूँ अभी तक इंडस्ट्री को समझ गए हैं, म्यूजिकल भाई पसंद आ रही है बिना किसी देरी के। शो को आगे लेकर चलेंगे। आज का हमारा ब्रांड है जो फिनटेक में डील करता है, उसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक इंडिया का लीडिंग कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर न्यू एज डिजिटली नेटिव जो बिजनेसेस हैं, जैसे ई कॉमर्स ब्रांड्स हो गए या D2C जो ब्रांड्स होते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर स्टार्टअप्स हो गए, उनको एम्पावर करता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो कंपनी, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SaaS बुलाते हैं, वो ब्रांड्स हैं, या इनफैक्ट किसी का अगर रेस्टोरेंट भी है, उनको एम्पावर करने का काम करता है ये वाला एक प्लेटफॉर्म। 2020 में ये ब्रांड स्टार्ट हुआ वेलोसिटी, और ये जो है हेल्प करता है, मतलब इट हेल्प्स इन सो मेनी वेज, लाइक इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन डिल्यूटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, मीनिंग आपको जो है कैपिटल मिल जाएगी विदाउट इवन गिविंग अप द इक्विटी। यानी कि जो शार्क टैंक में हमने देखा है कि इतने प्रतिशत इक्विटी के बदले इतना पैसा मिलेगा, तो इक्विटी दिए बिना भी आप यहां से फंड रेज कर सकते हैं। सो या दिस इज द फाइनेंशियल पार्टनर। आई मीन टाइम बहुत चेंज हो चुका है, अभी कितने सारे ऐसे स्टार्टअप आ गए हैं जो काम ये करते हैं कि बाकी स्टार्टअप्स को एम्पावर करता है। सो थिंग्स हैव शिफ्टेड अ लॉट डिफरेंटली, और ये काफ़ी अमेजिंग पार्ट भी है कि हम लोग काफ़ी नए नए इनोवेटिव तरीके जो हैं वो लेकर के आ गए हैं। आई मीन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। यहाँ पर 400 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन हुआ है इकलौते 2024 के फेस्टिव सीजन में। ब्रांड्स लाइक Amazon, Flipkart एंड क्विक कॉमर्स जाइंट्स लाइक Blinkit, ये बहुत तेजी से और बहुत फास्ट पेस तरीके से जो है ग्रो कर रहे हैं। सो दे हैव रेज 30.3 million US dollars इन फंडिंग एंड आर ट्रस्टेड बाय ओवर 4,000 ब्रांड्स। दैट्स व्हाट मेक्स दिस ब्रांड सो स्पेशल, बिकॉज ये एम्पावर करता है बाकी अदर स्टार्टअप्स को, एम्पावर करता है बाकी तमाम ब्रांड्स को जो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। इवन इफ यू आर नॉट विलिंग टू गिव द इक्विटी, यू कैन स्टिल रेज द मनी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, और काफी सारे मॉडल्स इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट कि इंडिया में हमने ऐसे ब्रांड्स भी बनाए हैं जो बाकी ब्रांड्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं और उनको स्केल अप करने में मदद कर रहे हैं। सो या दिस इज वेलोसिटी। ऑन दिस नोट लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम आपको बताएंगे हाउ इट स्टार्टेड, हु आर द फाउंडर।

फील गुड फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मेरा नाम है सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। हम जिस ब्रांड की आज बात कर रहे हैं उसका नाम है वेलोसिटी। ये ब्रांड स्टार्ट हुआ 2020 में। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन की वजह से बंद थी अपने घरों में, और इंडिया का जो ई कॉमर्स है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। मतलब लिटरली इट वॉज बूमिंग। ये टाइम था वो D2C ब्रांड्स जो हैं वो लिटरली लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी निकल के आ रहे थे, और इतने सारे ब्रांड्स हमने स्टार्ट होते हुए देखे। लेकिन एक कैच है यहाँ पर कि जब आप कोई बिजनेस चलाते हो, कोई स्टार्टअप चलाते हो, सो यू नीड कैपिटल, राइट? यू नीड कैश। ट्रेडिशनल बैंक्स की अगर आप बात करेंगे बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वेंचर कैपिटल, वहां पर आपको इक्विटी देनी होती है, स्टेक पे लगानी होती है। बट यहां पर स्टार्ट हुई ये कंपनी जिसका नाम है वेलोसिटी, बेंगलुरु में स्टार्ट हुई, और यहाँ पर एग्जैक्टली इसी एक प्रॉब्लम को, इसी प्रॉब्लम पार्ट को फिक्स करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया ये ब्रांड इस मिशन के तौर पर। लेट्स एम्पावर द अदर स्टार्टअप्स एंड उनकी चिंता को थोड़ा कम करते हैं। सो ये जो है रिवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग इन्होंने देनी स्टार्ट कर दी। एक ऐसा मॉडल जहां पर जो रीपेमेंट है वो आपकी बिजनेस की सेल्स से जुड़ी हुई है। दैट मींस ग्रो बिग पे फास्टर, ठीक है? ये इनका एक कोर फंडामेंटल था और ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। आई डोंट नो आप में से कितने से लोग हैं जिनका स्टार्टअप है, जो फेमिलियर हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम से, बट इफ यू आर द वन देन आपको पता होगा कि कितना क्रूशियल हो जाती हैं ये सारी चीजें। आई मीन टेक योर टाइम। अगर कोई भी ऐसा स्लो डाउन कोई प्रोसेस हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि सेल अच्छी नहीं हो रही है, सो यू शुड टेक योर टाइम। जब से ये जो है स्टार्ट हुआ है, जब से इसको लॉन्च किया गया है, तब से इसने लिटरली बहुत एक्सपेंड किया है। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स में इन्होंने जो है पैसा दिया। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो AI पावर टूल्स बना रहे हैं, मतलब उस टाइम पर मैं बोलूंगा दैट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, बट उस टाइम से ये एम्पावर करते आ रहे हैं। सो इट बिकेम काइंड ऑफ अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ। सो ये है हमारी आज की कंपनी वेलोसिटी। आशा करता हूँ अभी तक ओवरव्यू आपको मिल गया है, कैसे स्टार्ट हुई, कहानी क्या है, कब स्टार्ट हुई, ये सब आप जान पाए हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या वो आइडिया था। तो कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं था, बट हाँ बहुत छोटे से ये बात समझ में आ गई कि यार स्टार्टअप्स को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम ग्रो भी कर रहे हैं, एक तरफ हमारे यहाँ पर पूरी वेव आई हुई है, बट एट द सेम टाइम भैया बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने थे। तो यहां पर इन्होंने ये सब करना शुरू किया और स्टार्टअप्स को अपलिफ्ट करना शुरू किया। सो ऐसे करके ये प्लेटफॉर्म जो है खड़ा हुआ और आज की रेट में काफी अच्छा खासा नाम है वेलोसिटी का, खासतौर पे जब आती है बात ई कॉमर्स ग्रोथ के ऊपर। तो ये है हमारी आज की कंपनी। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव, आशा करता हूँ ये म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। बात करते हैं फाउंडर्स की। भैया कौन है वो शार्प माइंड्स, कौन है वो ब्रिलियंट माइंड्स जिनके दिमाग में आइडिया आया? तो वो तीन नाम है, अभिरूप मेधेकर, अतुल खिचारिया एंड सौरभ स्वरूप। पहला नाम लेते हैं अभिरूप मेधेकर, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेलोसिटी। पुणे के रहने वाले हैं, मतलब ही इज द विजनरी फोर्स बिहाइंड वेलोसिटी। इन्होंने प्रीवियसली काफी काम किया है, जैसे कि मैकिन्जी कंसल्टेंट एंड साथ साथ एलिवेशन कैपिटल। दैट मींस कि फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से समझते हैं, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझते हैं। इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप कह सकते हैं फ्रंट रो की सीट मिल गई इन्हें इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। अगर आप इनकी बात करते हैं क्या विजन है इनका, सो ही सो एम्बिशियस। अपना इंडिया में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना है, बाकी ब्रांड्स को जो है अपलिफ्ट करना है। तो ये है इनका एक अल्टीमेट ड्रीम जो ये अभी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर अगर हम बात करें, 2024 में एक टेक एंड इनोवेशन सबमिट हुआ था, वहां पर उन्होंने बात बोली थी कि AI का बहुत बड़ा रोल है इनकी बिजनेस ग्रोथ में। ठीक है, जहां पर इन्होंने मैकिन्जी में जब काम किया तो वहां पर इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो है सीखा था, और उसके बाद AI जब दुनिया में आया तो उसके बाद दोनों तीनों चीजों को इन्होंने मिला दिया वहां पर, एंड दैट्स हाउ दे आर ग्रोइंग। सो ये है वेलोसिटी के CEO मिस्टर अभिरूप मेडेकर। दूसरा नाम आता है अतुल खिचारिया। अतुल इज द ऑपरेशनल बैकबोन ऑफ वेलोसिटी। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, इनके होम टाउन के बारे में, बट इनका एक्सपीरियंस एज अ फाउंडर बहुत कुछ बताता है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए। इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है,

जिम्मेदारी होती है. ही इज एग्जैक्टली द सेम पर्सन. ही इज ऑल्सो फ्रॉम बेंगलुरु स्टार्टअप सीन. ही इज द टेक विजार्ड. लिटरली जो वेलोसिटी का AI इनोवेशन है, जिस डेटा सेट पर उसको ट्रेन किया जाता है, जो भी चेंजेस की जरूरत होती है, वो सब ये करते हैं. इन्होंने पास्ट में भी जो है काफी टेक सॉल्यूशंस जो हैं बिल्ड किए हैं, स्केल किए हैं, एंड ही इज रियली पैशनेट अबाउट यूजिंग AI. मतलब यहाँ पर नए बेंचमार्क सेट करने की, इन्हें एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ड्रीम लगा लीजिए या एक विश लगा लीजिए, बट इन्हें ये करना है और इनको बहुत मजा आता है. तो यहाँ पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने काफी सारे ऐसे टूल्स बनाए हैं जो AI का क्वालिटी चेक भी करते हैं. मतलब नॉट जस्ट AI यूजिंग, सिंपली AI का क्वालिटी चेक भी किया जाता है. AI पावर्ड क्रेडिट एनालिस्ट जो है वो भी यहाँ पर इन्होंने बनाया है. सो दीज आर द ब्रिलियंट माइंड्स जो अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, अलग अलग विजन लेकर आते हैं, बट सेम पेज पर जब आते हैं, एक ड्रीम के लिए काम करते हैं, एक ब्रांड के लिए काम करते हैं, सो इवेंचुअली वो बड़ा बनता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ वेलोसिटी. और फिलहाल इसी नोट पर हम लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहे हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और इस वक्त आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के साथ। अभी ये वेलोसिटी के की ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? पहला है ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी। इंडिया का जो D2C एंड ई कॉमर्स मार्केट है, ये 2030 तक $250 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। दैट मींस कि जो भैया D2C ब्रांड्स हैं वो और तेजी से ग्रो करेंगे और निकल के आएंगे नए प्लेयर, दैट मींस सबको फंडिंग की जरूरत होगी, तो वहां पर ये ब्रांड आ जाता है। और अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ पर, एक पूरा दौर चल रहा है स्टार्टअप्स का। इसके बाद आता है AI एंड डेटा इनोवेशन। यहाँ पर AI पावर्ड क्रेडिट एनालिसिस एक टूल है इनके पास, जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है वानी AI, ठीक है, जो यहाँ पर फाइनेंसिस को आपके थोड़ा फास्ट और स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करता है, डील करता है, जो एनालाइज करता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है अगर फाइनेंस जो है यहाँ पर दिया जाता है तो। तीसरा भैया, किसी भी ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए जरूरी होता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद कि आपको स्ट्रांग फंडिंग मिले। सेम इन्हीं के साथ है, तो इनके पास भी अच्छी खासी एक फंडिंग है, लेट्स नॉट गो देयर। फोर्थ आता है फाउंडर सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि फाउंडर्स जो हैं वो खुद टीम बिल्ड करते हैं, खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो खुद से नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे होते हैं, और खुद बहुत पैशनेट है इस एक चीज़ को लेकर, तो वो ये चीज़ इवेंचुअली एक बहुत बड़ी USP बन जाती है। तो उसके बाद इनका जो मेन फोकस होता है, दैट इज़ द फिफ्थ की ड्राइवर, और वो होता है कि 2024 में जो इन्होंने 400 करोड़ रुपये फेस्टिव सीजन में एलोकेट किया, उससे काफ़ी ब्रांड्स जो हैं उन्होंने ग्रो किया, काफ़ी पीक सेल साइकिल देखी, ब्रांड्स ने बूस्ट किया उनकी इन्वेंट्री, उनकी मार्केटिंग, हर एक चीज पर अच्छा खासा स्पेंड हुआ। और ये इन्होंने अब यहां से आप कह सकते हैं कि फेस्टिव फोकस्ड एक तरीके से एक साइकिल बनानी शुरू करी है। दैट्स व्हाट मेक्स दिस ब्रांड सो स्पेशल। सो या, दीज आर द की ड्राइवर्स, और आप कह सकते हैं कि जो इस ब्रांड को बहुत खास बनाते हैं, ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड वेलोसिटी। सो हाँ, ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक मास्टर क्लास है। अगर आप अभी भी ये कहते हैं कि सारी इंडस्ट्रीज फुल हैं, कहीं पर कोई गैप नहीं है, देन यू शुड रीड दिस स्टोरी ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर तीन ऐसे लोग जिनको इतनी क्लटर्ड मार्केट में, इतना ज़्यादा क्योटिक मार्केट में भी एक गैप नज़र आ गया, जहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहे हैं, उन्हें उसके बावजूद एक और प्रॉब्लम नज़र आई कि भैया ये नहीं देना चाहते इक्विटी और उनको जल्दी चाहिए, तो क्या किया जाए सर? सो दे इन्वेंटेड टूल्स लाइक वानी AI, जिससे क्रेडिट एनालिसिस हो पाए और जल्दी जो है लोन डिस्पर्स हो जाए। आशा करता हूँ अब इतना जो शो आपको बताया है, इतनी जो इंडस्ट्री आपको बताई है, आप लोग समझ पाए हैं। फिलहाल इसी नोट पर इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज RJ सागर साइनिंग ऑफ।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रेडियो सुनने।
2: रेडियो मानव रचना, रेडियो मानव रचना।
3: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ, एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। हमारे शो हर एपिसोड बहुत खास लेकर के आता है, जहां पर हम आपको कुछ वैल्यूज देने की कोशिश करते हैं। सो वी ट्राई टू डिकोड मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स, मल्टीपल स्किल सेट्स, जहां पर आपके लिए एक टेक अवे हो सकता है कि यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स इन अ वन सिंगल शो। आज का शो हमारा अगेन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल टीम यहां पर बैठी हुई है। जो टीम है ये है खरोंच, एक वेब सीरीज आई है जो यूट्यूब पर आ चुकी है ऑलरेडी, और बहुत सुंदर सुंदर कलाकार हैं, बहुत सुंदर काम किया है सभी लोगों ने, उसकी पूरी जो कास्ट है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। खरोंच वेब सीरीज का नाम है, इसको डायरेक्ट किया है रजत शर्मा ने, लिखा भी रजत शर्मा ने है, और प्रोड्यूसर है इसके पंकज पलवलिया। पंकज भाई खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं और अभी यूट्यूब की तरफ उन्होंने रुख लिया है अपना। साथ साथ हमारे बीच मौजूद हैं मोंटी, मोंटी जो कई बार हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, कई दफ़ा आप इनकी आवाज़ हमारे रेडियो के माध्यम से सुन चुके हैं। हरियाणा के बहुत अच्छे कलाकार हैं, पगड़ी के नाम से इन्हें बहुत जाना जाता है क्योंकि पगड़ी बांधने में बहुत मशहूर हैं। साथ साथ दो और कलाकार हैं हमारे साथ, हल्लू भाई जिनका ओरिजिनल नाम हरविंदर है, लेकिन मुझे मना किया गया है हरविंदर नाम ना लूँ क्योंकि हल्लू नाम से लोग जानते हैं, एंड साथ साथ हमारे बीच मौजूद हैं सोनू भाई। सबसे पहले मैं आप चारों का स्वागत करूँगा, शुक्रिया आने के लिए।
4: थैंक यू,
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगा पंकज भाई आपसे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, लोगों को आपके बारे में क्या पता होना चाहिए। इस टाइम पूरा फरीदाबाद और कुछ हिस्सा गुड़गांव का आपको सुन रहा है।
4: जी बेसिकली तो हम एक कंटेंट क्रिएटर ही हैं और फनी कंटेंट हम बनाते हैं, कॉमेडी की रील हमने स्टार्टिंग की थी बनाने की, तो उसको बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। उसके लिए हमने फिर से एक बार टीम जोड़ी, अपनी टीम बढ़ाई, और उसके बाद में हमने ये जो वेब सीरीज है इसमें हमें भाई मिले थे रजत शर्मा जी, जो पहले भी काम कर चुके हैं, बॉलीवुड तक भी वो काम कर चुके हैं, तो उनके साथ उनके सानिध्य में मिलकर और टीम का हमारा अच्छा प्यार बना करके हमें एक बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट लेकर के अभी आए हैं।
3: जी हेलो भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं, अपने शब्दों में बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई।
6: मैं भी एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भाई के साथ रहता हूँ, भाई मेरे बड़े भाई भी कह सकता हूँ, गुरुजी भी है मेरे, जिन्होंने हर चीज़ मुझे सिखाई है, ऐसे ऐसे करना, एक्टिंग वगैरह जो भी। जो आज मैं खरोंच के लिए यहाँ पर आया हूँ तो भाई ने मुझे एक ऐसा अहम किरदार दिया है जो मैं बता नहीं सकता, आप सभी को देखनी पड़ेगी उसके लिए वेब सीरीज खरोंच यूट्यूब पे जाकर। आज के टाइम में हर कोई रील तो बना ही रहा है, तो हमने सोचा कुछ हम अलग दिखाएं आपके लोगों को।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंडी जी आपसे बात करना चाहूंगा, आप बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं।
5: सबसे पहले तो सारे मानव रचना के जितने भी लिसनर हैं सारे ने मेरी राम राम। इसमें हमने खरोंच वेब सीरीज जो कि यूट्यूब चैनल सत्या साचा फिल्म पर आई है, इसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, एपिसोड 1, 2 और 3। अच्छा बीच में से देखोगे तो स्वाद भी नहीं आवेगा, आपने शुरू तो देखोगे जब मेरा लगेगा कि भाई इसका मतलब सिस्टम है क्या, ये स्टोरी क्या है। और जैसे एक बॉलीवुड लेवल पे एक मूवी में वेब सीरीज में काम होता है, उससे भी अप लेवल का काम करने की पंकज भाई, रजत भाई ने, सुभाष भाई ने, देसी भाई ने टीम में काम करने की कोशिश करी है, और इसी में एक छोटी सी अहम भूमिका मेरे को भी निभाने का मौका मिला है।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कुछ कुछ ग्लिम्पसेस देखे थे उसके, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब वो दिखाई दिया वहाँ पर कि प्रोडक्शन कितना अच्छे लेवल का आप लोगों ने किया है, मतलब जनरली बहुत अच्छा था। पंकज भाई मेरे आपसे एक प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को कुछ नहीं पता है खरोंच के बारे में।
4: जी जी जी,
3: आप अगर इस कहानी को समअप करके इस तरीके से हमारे लोगों को बता सकें कि वो देखने पर मजबूर हो जाएं, तो प्लीज़ इस कहानी का थोड़ा बहुत एक ट्रेलर अपने मुंह से बताइए।
4: ये एक जो वेब सीरीज है एक क्राइम के ऊपर आधारित है। इसमें क्या होता है कि ये एक गांव की स्टोरी है, और इसमें जो हमारे जो मेन किरदार है उसके साथ किसी टाइम में कुछ गलत होता है, तो वो चीज़ एक सस्पेंस के तौर पे भी हम लेके चल रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन इसमें क्या है कि इस गांव के अंदर कोई भी अपराध नहीं हो रहा है पिछले 5 साल से, किसी भी प्रकार का कोई अपराध, लेकिन ऐसा कोई स्थान होता नहीं है जहां कुछ ना कुछ अपराध नहीं हो। तो अपराध क्या है कि वहां पर जो एक बाबा हैं और सरपंच हैं उनके अंडर में कोई भी चीज़ें थाने तक नहीं पहुंच पा रही है, प्रशासन के पास नहीं पहुंच पा रही है, वो दबा रहे हैं सारी चीज़ों को जो भी कुछ गांव में हो रहा है। तो उस चीज़ की जो आज के टाइम में रियलिटी भी होती है कहीं कहीं जगह पे, आप देखोगे आप थोड़ा सा बैकवर्ड में जाओगे तो वहाँ पे यही होता है कि पंचायत वगैरह में यहाँ पे दबा के या किसी भी प्रकार से प्यार से भी और उससे भी आदमी को रोक दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे उनको हम त्रुटि बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार की कमी बोल सकते हैं, उनको दिखाने की मेन कोशिश इसमें की गई है। और क्राइम ऐसा है कि इसमें जो मर्डर हो रहे हैं, जितने मर्डर होंगे उसमें सस्पेंस इतना है कि ये ही नहीं समझ में आएगा आपको लास्ट तक कि ये मर्डर कर कौन रहा है। और अभी हम आपको ये बता भी नहीं सकते, उसके लिए आपको अभी स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा वो सारी चीजें।
7: फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें मुझे करनी है, खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स जब यहाँ पर आते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है पर्सनली। विल टॉक अबाउट ऑन सो मेनी थिंग्स, बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइफ।

0: वंस अगेन वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। अगर ये गाने आपको पसंद आए तो हमें बता सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर खरोंश जो सीरीज है उसकी टीम मौजूद है और खासतौर पर कंटेंट क्रिएशन की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन मेरा अगेन पंकज भाई आपसे रहने वाला है। प्लीज हमें बताइए कि कॉन्टेंट क्रिएशन की जो आपकी जर्नी हुई कब शुरुआत हुई, कब आपको ऐसा लगा कि ये मुझे करना है और ऐसे करना है।
1: ये स्टार्टिंग में इसका तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ हमें मतलब इस लाइन में भी जाना है। जो एक्चुअल बात है तो उस टाइम क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था तो छुट्टियां मिल गई थी और गांव में रहने का टाइम मिल गया था, फ्री टाइम था और उस टाइम टिकटॉक चलता था। अभी जो बहन है तो उस टाइम हमने छोटी छोटी रील जो हम बैठते हैं आज के टाइम में जो हमारे मनोरंजन की चीज़ होती हैं गाँव में बैठते हैं तो वो हमने शूट करनी शुरू कर दी थी और वो शूट करके हमने अपलोड की थी तो उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया था, लोग पसंद कर रहे थे उस चीज़ को। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उस चीज़ पे हम आगे बढ़ते चले गए कि यही चीज़ करनी है। तो उसके बाद में हमने अच्छा एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद में हम यहाँ तक पहुँचे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक बार हल्लू भाई से भी बात करना चाहूँगा। आप बताइए आपकी कॉन्टेंट क्रिएशन की जो यात्रा रही कैसे शुरुआत हुई, कब लगा कि ये मुझे करना है।
2: जैसे कि पंकज भाई ने बताया सेम ऐसे ही मेरा सिस्टम है। लॉकडाउन लगो, लॉकडाउन में बहुत सारे क्रिएटर निकाले हैं। उस टाइम हम पबजी खेलते थे और टिकटॉक थी तो वैसे ही नॉर्मली रील बना लेते थे। फिर मुझे पंकज भाई के बारे में पता चला, उनकी भाई भी रील बनाते हैं, क्यों ना मैं भाई गैल टीम में रहने लगूँ। तो मैंने भाई से संपर्क किया, भाई ने बताया कोई दिक्कत नहीं आ जाओ, तो फिर हम साथ में रह के रील बनाने लगे।
0: पंकज भाई बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं क्योंकि अब कंटेंट क्रिएशन एक फुल फ्लेज्ड इकोनॉमी निकल के सामने आई है जहां पर आपको पैसा भी उसका मिलता है, जहां पर आपको काम भी उससे मिलता है। बहुत सारे लोग इस टाइम पर जो हमारी आवाज सुन रहे हैं वो कंटेंट क्रिएट करना भी चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, कैसे शुरुआत की जाए, हाउ टू फिगर इट आउट।
1: ऐसा होता है स्टार्टिंग में तो हमें बहुत आसान सा लगता है कि चीज़ें हमारे पास बहुत सारे इतने कंटेंट है, हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना किसी भी लाइन की, या फनी हो या हमारा कोई व्लॉगिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर लगता है कि अब यार सारा कुछ खत्म हो चुका है इस पृथ्वी पर से, इस चीज़ की कुछ बची नहीं है चीज़ें। तो इसमें क्या है कि सबसे मेन है कि टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए और अगर आप इस चीज़ में कर रहे हो तो साइड में भी अपना कुछ कर रहे हो तो उसको करते रहो। अगर प्रॉपर इस पर डिपेंड हो जाओगे तो फिर उसमें दिक्कत आनी पॉसिबिलिटीज हैं कंटेंट क्रिएशन में। दूसरा ये है कि अगर जैसे हमने स्टार्ट किया था तो हमारा भी यही था कि स्टार्टिंग में हम भी अच्छा कर रहे थे, बाद में हमें लगने लग गया था कि अब कैसे करें आगे। फिर मुझे एक वेब सीरीज थी स्टेज ऐप की मेवात, वहाँ काम करने का मुझे मौका मिला था तो उससे बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी थी वहाँ पर कि किस प्रकार से होता है। कि समझ लो कि थिएटर तो हमने नहीं किया लेकिन उस जैसी चीज़ें बहुत सारी हमें सीखने के लिए मिली थी। तो जो भी भाई इस लाइन में अगर ट्राई कर रहे हैं तो उनसे ही कहूँगा कि अगर अपना जो काम आप कर रहे हो साइड में उसे जरूर करते रहें।
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई काम की शुरुआत करते हो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत आसान है, हो जाएगा। जब आप प्रोसेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आप अब प्रोसेस में घुस चुके हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है हर काम में दुनिया के जब आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। फिर वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, वो एक्चुअल जर्नी होती है। जस्ट परस्यू दैट पर्टिकुलर ड्रीम एंड उस तरीके से आप वहाँ से निकल गए। अगर वहाँ तक आप पहुँच गए उस प्रोसेस तक जहाँ पर आपको ये जादू ही लगने लगता है सब, वहाँ से एक्चुअल एक यात्रा की शुरुआत होती है। चीज दैट पार्ट। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम शो में आगे बात करेंगे और कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, मॉन्टी से जानना चाहेंगे, पंकज भाई से बात करना चाहेंगे। विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस। फील गुड फील लाइव।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,

0: एक और बार अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं आरजे सागर, शो यहाँ पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ एंड राइट नाउ यू लिसन टू रेडियो मानवश्रम 107.8 FM खरोंच। वेब सीरीज की टीम हमारे बीच में मौजूद है, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ। आइए अब आगे अपने इस कर्मा को लेकर के चलते हैं बातचीत के। और अगला प्रश्न मेरा मोंटी से रहने वाला है। मोंटी, आप बताइए थोड़ा सा, आप क्या करते हैं एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम खरोंच?
1: देखिए, खरोंच तो अब हमने अब करी है, उससे पहले से ही आप को मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी टीम को, रेडियो मानवश्रम की टीम को, कि हम शुरू से ही मतलब हरियाणवी चीज़ों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में रहे। तो मैं थिएटर भी करता था कॉलेज टाइम पे। मैंने धीरे धीरे देखा कि थिएटर में मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना डांस में आता था, खासकर फोक डांस में, हरियाणवी फोक डांस। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मज़ा आने लगा, करने लगा, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने भी लगा। फिर पता चला कि इसमें आगे मैं कुछ और अच्छा बड़ा कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने एक टीम बनाई, टीम बना के मैंने अपना एक खुद का एक ग्रुप तैयार करके उसको बाहर लेके जाना, दूसरे जगहों पर जाना, पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में जाना, विदेश में जाना बच्चों के साथ। बड़ा अच्छा लगता है, हमारी टीम के आर्टिस्ट भी खुश होते हैं, घूमना भी मिल जाता है और काम भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। हमें जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े होंगे तब तक हमें ये पता होगा कि माता पिता की सेवा क्या है, बड़े छोटों का आदर सम्मान क्या है। और जो अपनी संस्कृति को छोड़ के उससे परे हो जाता है, तो आपने कई चीज़ें शहरों में सेक्टरों में ये देखी होंगी कि एक ही जगह पे सास ससुर, मतलब बहुत बड़ी से बड़ी फैमिली के मेंबर और छोटे मेंबर, बहू बेटी सब ऐसे रह लेते हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप संस्कृति से जुड़ोगे तो हमारे जो बुजुर्ग कहते आए कि वही बहू, मतलब वही ससुर की खाट वही बहू का पीसना, ऐसे कुछ कहते हैं, तो वो इज्जत नहीं रह जाती। तो उन चीज़ों को हमने हरियाणवी अपनी संस्कृति में जब हम बड़े इसमें घुसे तो समझ में आया कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारा आदर सम्मान करने का तरीका क्या है। उसी के साथ मैं थोड़ी सी दो बातें पंकज भाई ने बताई थी अभी खरोंच के लिए कि मतलब एक ऐसा गांव है जहां पर पुलिस के पास कोई केस जाता ही नहीं है, लेकिन अगर आप आज से मैं कहूंगा आप सन 2000 से अब तक ऐसी बहुत सी चीज़ें रही हैं कि गांवों से लोग शहरों में गए हैं, गांवों में अभी भी रह रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बदली हैं, पंचायतों में फैसले नहीं होते। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। पहले जो पंचायतों में पंच होते थे वो परमेश्वर होते थे, मतलब भगवान का रूप माना जाता था, और वो सही फैसला करते थे। उनको परख करने की बड़ी अच्छी टेक्निक थी कि कौन गलत है और कौन सही। और ये सच है कि आज वो टेक्निक होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। आज हमारे पास तो मतलब पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी ही नहीं, तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ बना दी, AI एक ऐसी चीज़ आई है जिससे बहुत सारी चीज़ों का काम भी ख़त्म हो रहा है। तो अब इतना कुछ होने के बाद भी लोग साफ साफ फैसला नहीं करना चाहते, तो इसलिए अब लोग पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि अब जब आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा तो आप कहां जाओगे? तो इसीलिए कानून बनाया है, कानून के पास जाओ। कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए बहुत सारे लोग शायद सुन के मेरी बात को बुरा भी मान जाएं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस के पास जाने के बाद भी इंसान को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अब सामने कौन बंदा सही है कौन गलत है ये फैसला इंसान नहीं करता, कागज करते हैं। जिसके पास सबूत है वो सही है, चाहे उसके वो गलत हो या सही हो वो सही है। और ऐसे बहुत सारे लोग आज अंदर बैठे हुए हैं, जेल के अंदर भी अपना समय काट रहे हैं बेचारे, जिनकी कोई गलती नहीं है और बिना गलती के भी वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो खरोंच के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें भी इसमें, वही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेंगी। मैंने वो चीज़ महसूस करी है 3 एपिसोड में ही, और अभी तो कारवा बाकी है।
0: बिल्कुल, ज़रूर आपको खरोंच देखनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि आपने संस्कृति का एक मुद्दा छेड़ा है, तो क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग हरियाणा में बैठे हुए हैं और हम सब लोग हैं भी हरियाणवी, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज़रूर जानना चाहूँगा, पंकज भाई आपसे भी, मोंटी भाई आपसे भी, और आप दोनों के लिए भी फ्लोर ओपन है। ऐसा क्यों हुआ है कि बाकी तमाम जो कल्चर्स हैं, गुजराती कल्चर है, मराठी कल्चर है, बंगाली कल्चर है या पंजाबी कल्चर है, हर कल्चर को हमने कमर्शियल लेवल पर देखा है, बट अभी बीते कुछ टाइम से हरियाणा भी थोड़ा सा उठ रहा है हरियाणा कल्चर, मैं इस चीज को अग्री करूंगा। डांडा न्योलियाड़ा सुमित पारता है, ये सारे अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं ये इसको लेकर के जा रहे हैं थोड़ा ऊपर लेवल पे। पहला क्वेश्चन ये है कि हरियाणवी कल्चर को इतना लेट क्यों नवाजा गया है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पंकज भाई आपसे है, खास तौर पे क्योंकि आप पलवल से हैं, मैं खुद पलवल से हूँ, हमारे यहाँ की जो भाषा है पलवल फरीदाबाद की इसको अभी भी नहीं समझा गया है। आज भी अगर आप हरियाणा सुनेंगे तो आपके मुंह में वही आएगा कि केकरा है, कड़ेजा है, लेकिन एक्चुअली
2: हमारी ब्रिज में आ जाता
0: है, हमारा ब्रिज टच है, उसको हरियाणा में नहीं गिना जाता है। तो दो क्वेश्चन है मेरे,
2: पहला तो ये है कि जो अपने हरियाणा की है ये भाषा नहीं है, ये बोली है, और बोली में भी हमारे अंतर है क्योंकि एक साइड में तो बागड़ आ गया जो हमारा महेंद्रगढ़ साइड है, वहाँ की भाषा अलग है, फिर रोहतक की अलग है, फिर थोड़ा सा हम चलेंगे केथल और करनाल की, और फिर हमारा तो बिल्कुल ये गुड़गांव से आधा गुड़गांव लगा लो फरीदाबाद और पलवल का तो पूरा ही बिल्कुल ही भाषा ही अलग है उनकी, फिर भी कहीं ना कहीं टच हो जाता है। और कारण क्या रहा है कि हमारी जो लेट इस चीज़ पे हुई है कि हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा जो ग्रो की है तो उससे हमें भी दिखना शुरू हो गया है, लेकिन हमारा जो सिनेमा है उसने बहुत लेट टाइम से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है कि अभी थोड़ा सा हम जो दिखने लग गए हैं सभी जगह। अब आप देखोगे तो हमारे जो एक्टर हैं, पहले क्या होता था कि कुछ भी जा करके बॉलीवुड में बोल दो भाई के कर रहा है, तो मतलब कि उसमें आपका हरियाणवी टच होना चाहिए, के बोल दो बस, ये होता था। अब जैसे हमारे जयदीप अहलावत भाई हैं वो क्लियर प्योर हरियाणवी बोलते हैं, पहले इनको अलाउड नहीं था। हमारे यहाँ से ही एक एक्टर थे, अभी गदर में भी उन्होंने काम किया था, हमारे गुरुजी भी हैं संदीप शर्मा जी, तो वो बता रहे थे कि ऑडिशन के लिए एक बार खुला था कि हरियाणवी बोली का एक बंदा चाहिए, तो वहाँ पर उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि जो लड़का दिल्ली से था जिसने बस ये बोला था अरे के कर रहा है।

0: हर घाट पे आप जाओगे, किसी कुएं का पानी मीठा है तो उसी के बगल में दूसरे कुएं का पानी खारा भी हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हमारे हरियाणा के साथ है। हम जब किसी भी क्षेत्र में, अब जो हमारे हरियाणा का, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात करें, हमसे पहले बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बना के बैठे हैं, लेकिन समय का दौर ऐसा आता है। देखिए, एक तो हमारी वाणी को, हमारी जो बोली है उसको अब लोग पसंद करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के बाद दबी हैं। भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री डाउन चली गई थी, हॉलीवुड इंडस्ट्री तक डाउन गई, पंजाब इंडस्ट्री गानों के मामले में सबसे आगे चलती थी, धीरे धीरे वो भी डाउन गई। और एक ऐसा दौर आया कि हरियाणा का जो आदमी है ना, वो आप कहीं भी देख लेना, मैं ये नहीं कहता सिर्फ भारत के अंदर, विश्व के अंदर कहीं भी रह रहा होगा ना, उस वो इतना बेहतर से, अंदर से इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब उसको जल्दी से बीमारी नहीं पकड़ती, वो जल्दी से थकता नहीं है, हार नहीं मानता। तो करते तो हम भी आ रहे हैं पीछे से, हमारे जो बहुत पुराने, जो हम जो पैदा भी नहीं हुए थे तब से जो कलाकार काम कर रहे हैं वो भी करते आ रहे हैं। अब हम, हमारे बाद पहले आए, कुछ आए हैं, फिर अब जैसा कि पंकज भाई ने बताया हम भी आए हैं। ये एक ऐसा दौर है कि हर किसी का एक दौर आता है। अब लोगों को जाके समझ में आ रहा है कि यस, भारत के अंदर हरियाणा स्ट्रांग है, हरियाणवी स्ट्रांग है। अब हरियाणा की बोली को बॉलीवुड में भी तवज्जो मिल रहा है, वरना पहले हरियाणा के जितने भी आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम करते हैं उन्होंने अपनी भाषा छोड़ी है। जैसा कि आपने बताया था अभी कि आप भी पलवल से हो और आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका जो रोजगार है, आप बुरा मत मानिएगा, आपका जो रोजगार है वो हिंदी और इंग्लिश की जो भाषा है उसको बोलने से है। और पंकज भाई ने, रजत भाई ने, देसी भाई ने इस चीज की बहुत अच्छी पहल करी है कि वो जो चीजें हमारी होनी चाहिए, अब चाहते तो हम बेशक पलवल में शूट कर रहे हैं, खरौच कोई पर्टिकुलर पलवल का या फरीदाबाद का नाम नहीं है, एक वेब सीरीज का नाम है जिसे आप यहाँ हरियाणा के अंदर भी बैठ के देख सकते हो, पंजाब के अंदर बैठ के भी देख सकते हो, और यूट्यूब तो विश्व में चलता है, विश्व के किसी भी कोने में जाके बैठ के देख सकते हो। लेकिन उन्होंने इस पे अपनी भाषा में काम करा है, आप जब इसको देखोगे तो इसमें जो है हरियाणवी, जो आप रोहतक की तरफ जो पश्चिम बेल्ट है उसकी तरफ चलोगे तो खड़ी बोली जो बोलते हैं, अड़क अड़क जो कई बार मैं भी बोलता हूँ, वो भाषा नहीं है। जो हमारी मातृ बोली है, हम जो बोलते हैं, जो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं, जिनसे हमने जीवन पाया है, जो हमारे माता पिता बोलते हैं हमारे, वो भाषा हम इस खरौच वेब सीरीज में बोल रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे, आप देखोगे कि आसपास का जो हमारा लोकल एरिया है, लाइक पलवल मेवात तक, इधर नुहू मेवात तक, इधर आपका फरीदाबाद तक, गुड़गांवा तक, आपका नवेडा गाजियाबाद तक, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है अकॉर्डिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। तो ये कमी है, हरियाणा का आदमी अपने आप को सर्वप्रिय बताता है तो उसी के बगल में दूसरा भी हरियाणा में बैठा उसको तवज्जो नहीं देना चाहता। यही कारण है कि हमारी इंडस्ट्री नीचे थी, अगर हरियाणवी इंडस्ट्री ऊपर आ रही है तो अब इसका कारण ये है कि धीरे धीरे आप ये चीज नोट करोगे कि हरियाणा के कलाकारों में एकता बढ़ रही है और इसीलिए लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब माँ बाप भी आगे बढ़ के आ रहे हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उसमें उनको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखता था। तो ये कारण है हरियाणा लेट ग्रो कर रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है, और मुझे लगता है कि इसका इतिहास भी बहुत रिच रहा है हरियाणा का, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दादा लक्ष्मीचंद जैसे साहित्यकार हरियाणा में हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस सुरेश वादकर साहब जो बॉलीवुड में इतने सारे गाने गाए हैं, उन्होंने भी हरियाणवी इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी। उनका एक गाना था मेरे पाछा पाछा आवण का, कौन सा मतलब तेरा ऐसा है, वादकर साहब के आवाज में है। इसके अलावा भाल सिंह एक कलाकार हुए थे, दिलराज कौर एक कलाकार हुई हैं, कोशिश की गई है, चंद्रावल जैसी फिल्में बनी हैं, धाकड़ छोरा जैसी फिल्में बनी हैं, बट उसके बाद वो चीज़ें गिनी चुनी ही आपको चीज़ें उंगलियों पर याद होंगी कि ये हुई हैं। आप ऐसे बल्क में चीज़ें नहीं बता सकते हो कि इतना कुछ हुआ है। ठीक है, देर है दुरुस्त है, बट अब लकीली वो टाइम आ रहा है यहाँ पर कि लोग इस बोली को, इस भाषा को अडेप्ट करने लगे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है। लेकिन अभी मैं ये बात बोलूंगा कि जो आप हरियाणवी सुनते हो वो हरियाणवी अभी भी आप वही सुन रहे हो जो खड़ी है। पलवल फरीदाबाद की भाषा ब्रिज टच है, जिसमें प्योरली बोला जाता है कहाँ जा रहो, कहाँ कू जा रहो, उसके वेरिएशन आपको हर जगह पर नजर आएंगे।
0: यस,
1: लाइक दिस। सो आई एम डन विद माय क्वेश्चन, मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ, पंकज भाई, मोंटू भाई, हल्लू भाई, सोनू भाई, आप कहना चाहते हैं?

0: प्लीज फील फ्री।
1: तो हम यही कहना चाहेंगे जितने भी हमारे श्रोतागण इसको सुन रहे हैं तो एक बार जा करके इस वेब सीरीज को जरूर देखें, और ये एक फैमिली वेब सीरीज है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी अपशब्द यूज नहीं किए गए हैं, और इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। हमारा प्रयास यही रहा है कि हम जो ये OTT पे भी कर सकते थे, ये इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे जो लोकल एरिया है तो वो सभी इसको देख पाएँ और बिना किसी सब्सक्रिप्शन के साथ में, और देखें और अपना जो भी आपको लगता है कि हम क्या चीज़ इसमें अलग से कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।
2: आप मतलब अपने अपनी लाइफ के लिए फ्री हैं, आप हमें बता सकते हो। मैं बार बार हम जो वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, उसमें भी ये चीज़ें हम बोलते रहते हैं कि अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो या जिसको हम सुधार सकते हों या कोई भी चीज़ हम अच्छी कर सकते हों, तो सभी रेडियो मानव रचना 107.8 से मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर एक बार जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ पैसे से खरीद के देखने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए फ्री में करी है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि हम जान सकते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी वेब सीरीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अलग अलग आर्टिस्टों के लिए भी बोल सकते हैं किसकी आपको क्या चीज़ बेहतर लगी, किसकी क्या चीज़ बेहतर नहीं लगी और क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गुरुतुल्य आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें सहायता कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। उन सबका स्वागत है और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं पंकज पलवलिया भाई का, देसी सुभाष भाई का, देसी के नाम से उनको जानते हैं, सुभाष बहुत बीमार है वरना वो भी साथ आते, और रजत, स्पेशली रजत शर्मा भाई का, कि इतना अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिला कि हमें भी काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। उसमें मैं मोंटी शर्मा केतन शास्त्री का करेक्टर कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, मतलब मैं एक पत्रकार हूँ उसमें। और स्पेशल थैंक्स रेडियो मानव रचना का सागर भाई का, आरजे सागर का, जो हमें इतना कीमती समय दिया और आपके स्टूडियो में आके हमें लोगों तक अपनी बात और आवाज़ पहुंचाने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मोंटी भाई। मैं भी यहाँ पर आप लोगों से बात बोलना चाहूँगा, जाइए जाकर के खरोंच चेक करिए, आपको अच्छी लगे, आपको अच्छी ना लगे, आपको कोई चीज़ बेहतर लगे, कोई बहुत अच्छी लगे, कुछ बहुत ख़राब भी लग सकती है। अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि देखिए इट टेक्स सो मच करेज टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल। अगर एक पूरी टीम मिली है जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, अपना टाइम दिया है, इतने एफर्ट्स मारे हैं, तो जाकर के मुझे लगता है कि एक बार देखनी ज़रूर चाहिए आपको। आपको अच्छी लगती है बुरी लगती है वो बात आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन एटलीस्ट कलाकारों की रिस्पेक्ट के लिए, उनकी इज्जत के लिए एक बार जा करके चेक ज़रूर करिएगा खरोच।
2: और एक और बात है भाई, देखो अपनी देसी भाषा में कह रहा हूँ, बिल्कुल जा भाषा में मैंने यह फिल्म में काम करे हूँ, तो बात इतनी सी है कि केतन शास्त्री ज़रूर देखिए और बताइए कैसा हिसाब किताब रहे हो, अगर कोई खराबी लगी हो तो आप बताइए सुधारेंगे। बाकी पंकज भाई ने शुरुआत में ही जो धक्का से लगवाए हुए रहता
0: ये लाइन कटवाई है। जी बिल्कुल, गो चेक इट आउट, दिस इज खरोंच ऑन यूट्यूब अवेलेबल, जाकर आप चेक कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर अपने शो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, तो आज हमने खरोंच टीम से बात करी जहाँ पर मोंटी भाई, पंकज पलवलिया भाई, हल्लू भाई और सोनू भाई, चार लोग हमारे बीच मौजूद थे, और हमने कोशिश करी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर टचअप करने की। प्राइमरली हमने बात करी हरियाणवी कल्चर की, हमने बात करी कंटेंट क्रिएशन की, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बात करी इस पर्टिकुलर वेब सीरीज। फिलहाल इसी नोट पर चलते हैं, अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच पंकज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मोंटी भाई, थैंक यू सोनू भाई, थैंक यू हल्लू भाई, शुक्रिया आप सभी का। ऑल राइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज आरजे सागर साइनिंग आउट।

जिसने दूसरों के पाप देखे वो अपने पुण्य गिनता है। चोरी तुम 1000 रुपए की करो तो तुम भुला देते हो, दान तुम 1 पैसे का दो तो तुम याद रखते हो। 1 पैसे का दान भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, 1000 रुपए की चोरी भी छोटी मालूम पड़ती है। शायद 1000 रुपए की चोरी करके तुम 1 पैसे का दान देके उसका निपटारा कर लेना चाहते हो। थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते हैं। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता है? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नरक में भी जगह ना मिलेगी, इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम, तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली है ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, भुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो। दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्राश्चित कर रहे हो। 1,00,000 की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन 1,00,000 की चोरी को 10 रुपए के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया, या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया। अब राम समझे, चदरिया ओढ़ी थी, कहने को अपने पास बात हो गई, मंदिर गए थे, हिसाब रख लिया है। जीवन अंधेरे से भरा रहे और प्रकाश की ज्योति भी नहीं जलती, सिर्फ अंधेरी दीवालों पर तुम प्रकाश शब्द लिख देते हो या दिए के चित्र टांग देते हो। प्यास लगी हो तो पानी शब्द से नहीं बुझती, अंधेरा हो तो दिए शब्द से नहीं बुझता। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। तुम अगर सिर्फ तस्वीर का अवलोकन करते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, तो तुम्हारे दिल की पीड़ा ना मिटेगी तस्वीरों के देखने से। प्रेमी की तस्वीर लिए बैठे रहो, इससे कहीं कोई प्रेमी मिला है? आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं, आईने में कैसी पानी की झलक है, पर उससे तुम्हारी प्यास ना बुझेगी। शास्त्र शब्द दे सकते हैं सत्य नहीं, अंधेरे की दीवारों पर बनाई गई दिए की तस्वीरें धोखा दे सकती हैं, रोशनी नहीं। और जो व्यक्ति दूसरों के दोस्त पर ध्यान देता है वो अपने दोस्त पर तो ध्यान देता नहीं। जो छोटे मोटे, जिनको तुम पुण्य कहते हो, जिनको पुण्य कहना फिजूल ही है, जिनको पुण्य केवल ना समझ कह सकते, जो तुम्हारे पाप के ही सजावटों से ज्यादा नहीं है, पाप का ही श्रृंगार है, जो पाप के ही माथे पे लगी बिंदी, पाप के ही हाथों में पड़ी चूड़ी, पाप के ही पैरों में बंधे घूंघर, उन्हें तुम पुण्य कहते हो, उनका हिसाब रखते हो। बुद्ध ने कहा, छोड़ो ये बात, दूसरों के दोष पर ध्यान ना दो, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हारा प्रयोजन केवल तुमसे है। दूसरों के कृत्याकृत्य मत देखो, केवल अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करो, सिर्फ अपना ही ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ये शब्द समझ लेने जैसा है, अवलोकन। अवलोकन बुद्ध की प्रक्रिया है जीवन के अंधकार से मुक्त होने के लिए। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने पाप को देखो और दुखी हो, पश्चाताप करो कि मैं पापी हूं, और न बुद्ध कहते हैं तुम अपने पुण्य को देखो और बड़े फूले न समाओ और उछल के चलो कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं।
बुद्ध कहते हैं तुम अवलोकन करो। अवलोकन का अर्थ होता है तथस्थ दर्शन, बिना किसी निर्णय के, न ये कहना कि ठीक, न ये कहना कि बुरा, न भला, न पाप, न पुण्य। तुम कोई निर्णय मत लेना, तुम कोई मूल्यांकन मत करना, तुम सिर्फ देखना। जिससे कोई आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हो जाए, भीड़ चलती है, देखता है, अच्छे लोग निकलते हैं, बुरे लोग निकलते हैं, उससे कुछ प्रयोजन नहीं। साधु निकलते हैं, असाधु निकलते हैं, प्रयोजन नहीं। या जैसे कोई लेट गया है घास पर, क्षण भर आकाश में चलते बादलों को देखता है, उनके रूप रंग अलग अलग, काले बादल हैं, शुभ्र बादल हैं, कोई हिसाब नहीं रखता, चुपचाप देखता रहता है। अवलोकन का अर्थ है एक वैज्ञानिक दृष्टि, तथस्थ भाव। मात्र देखने पर ध्यान रखो, जोर देखने पर है, जो तुम देख रहे हो उसके निर्णय करने पर नहीं कि वो ठीक है या गलत। तुम न्यायाधीश मत बनो, तुम तराजू लेके तौलने मत लगो, तुम मात्र दृष्टा रहो। जिसको उपनिषद साक्षी कहते हैं, उसी को बुद्ध अवलोकन कहते हैं। बस देखो, जैसे अपना कुछ लेना देना नहीं, एक तथस्थ भाव, एक फासले पर खड़े हुए चुपचाप, और एक अद्भुत क्रांति घटती। जितने तुम तथस्थ होते जाते हो, उतना ही तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने कृत्यों से अलग हो, पाप से भी अलग, पुण्य से भी अलग। और ये जो अलगपन है, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष। जो पाप के साथ अपने को एक समझता है, वो भ्रांति में है। जो पुण्य के साथ अपने को एक समझता है, वो भी भ्रांति में, उसने कृत्य के साथ अपने को एक समझ लिया, उसने अपने को कर्ता समझ लिया। अवलोकन करने वाला इस नतीजे पर आता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, कर्ता नहीं। फिर पाप और पुण्य दोनों ही मिट जाते, जैसे स्वप्न में किए हो कभी, जैसे किसी उपन्यास में पढ़े हो कभी, जैसे कभी अफवाह सुनी हो, स्वयं से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। यही शुद्ध बुद्धत्व है। कभी कभी तुम्हें भी अचानक क्षण भर को इसकी झलक मिल जाएगी, और क्षण भर को भी बिजली कौन जाए, तो जिंदगी फिर वही नहीं होती जो पहले थी। अवलोकन करो, तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दूसरों को संबंध में सोचते विचारते, बाजार में भटकते, संसार की लंबी परिक्रमा करते, अपने तक आए। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। अन्यथा जरा गर्दन झुकाने की बात थी। अवलोकन से तुम सीधे स्वयं में पहुंच जाओगे। हाँ, दूसरे के कृत अकृत्य का विचार करते रहे तो बड़ी परिक्रमा है, अनंत परिक्रमा है। अनंत जन्मों तक भी तुम ये विचार चुकता न कर पाओगे। कितने हैं दूसरे, किस किस का हिसाब करोगे, किस किस के लिए रोओगे, हंसोगे, किसकी प्रशंसा, किसकी निंदा करोगे। अगर ऐसे तुम चल पड़े, मैंने सुना है कि एक आदमी भागा जा रहा था, राह के पास बैठे आदमी से उसने पूछा कि भाई दिल्ली कितने दूर है। उस आदमी ने कहा, जिस तरफ तुम जा रहे हो बहुत दूर, क्योंकि दिल्ली तुम 8 मील पीछे छोड़ा है। अगर इसी रास्ते से जाने की जिद हो, तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब आओगे, अगर बच गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर लौटने की तैयारी हो तो ज्यादा दूर नहीं। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दिल्ली बिल्कुल पीछे, 8 मील का फासला भी नहीं। अवलोकन की बात है, निरीक्षण की बात है, जागृति की बात है, अप्रमाद की बात है, जरा होश साधना है। पहली बात, दूसरों का विचार मत करो, अपना ही विचार करने योग्य काफी है। आंख बंद करो, अपने ही कृत्यों को देखो, और अपने कृत्यों के भी निर्णायक मत बनो, अन्यथा अवलोकन समाप्त हो गया। तुम आसक्त हो गए, तुमने कहा ये ठीक तो प्रीति बनी, तुमने कहा ये ठीक नहीं तो अप्रीति बनी। किसी कृत्य से घृणा हुई, किसी कृत्य से प्रेम हुआ, आसक्ति अनासक्ति।
राग द्वेष पैदा हुआ तो कृत्य तो दूर रहे, राग द्वेष के भाव जाल में तुम खो गए। बस कृत्य को देखते रहो। अगर घड़ी भर भी तुम रोज कृत्य का अवलोकन करते रहो तो तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा जैसे आत्मा ने स्नान कर लिया, दिन भर उसकी ताजगी रहेगी और दिन भर रह रह के लहरें आती रहेंगी आनंद की, लहर रह के झोंके आ जाएंगे, पुलक आ जाएगी, एक मस्ती छा जाएगी, तुम झूम झूम उठोगे किसी भीतरी रस से। और ये जो भीतरी रस है ये बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। जब तुम सोचते हो और निर्णय करते हो बुद्धि सक्रिय हो जाती, जब तुम मात्र देखते हो तब हृदय का फूल खिलता है। जैसे ही तुमने निर्णय लेना शुरू किया बुद्धि बीच में आई, क्योंकि निर्णय विचार का काम है। जैसे ही तुमने तौला तराजू आया, तराजू बुद्धि का प्रतीक है। तुमने नहीं तौला बस देखते रहे तो बुद्धि को बीच में आने की कोई जरूरत ही ना रही। मात्र देखने की अवस्था में साक्षी भाव में बुद्धि हट जाती और जीवन के जो गहरे रहस्य उन्हें हृदय जानता है। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। और हृदय ने कोई राज प्रेम का, परमात्मा का, बुद्धि को कभी बताया नहीं। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। पराये को कहीं कोई भेद की बातें बताता है। बुद्धि पराई है, उधार है, हृदय तुम्हारा है, इसे थोड़ा समझो। जब तुम पैदा हुए तो हृदय लेके पैदा होते हो, बुद्धि समाज देता है, संस्कार देते हैं, शिक्षा देती है, घर परिवार सभ्यता देती है। तो हिंदू के पास एक तरह की बुद्धि होती, मुसलमान के पास दूसरी तरह की बुद्धि होती, जैन के पास तीसरी तरह की बुद्धि होती, क्योंकि तीनों के संस्कार अलग, शास्त्र अलग, सिद्धांत अलग, लेकिन तीनों के पास दिल एक ही होता है। दिल परमात्मा का है, बुद्धियां समाजों की है। रूस में कोई पैदा होता है तो उसके पास कम्युनिस्ट बुद्धि होगी। ईसाई घर में कोई पैदा होता है तो उसके पास ईसाई बुद्धि होगी। बुद्धि तो धूल है बाहर से इकट्ठी की हुई, जैसे हृदय के दर्पण पर धूल जम जाए। दर्पण तो तुम लेके आते हो, धूल तुम्हें मिलती है, इस धूल को झाड़ देना जरूरी है। समस्त धर्म की गहनतम प्रक्रिया धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है कि दर्पण फिर स्वच्छ हो जाए, तुम फिर से बालक हो जाओ, तुम फिर हृदय में जीने लगो, तुम फिर वहां से देखने लगो जहां से तुमने पहली बार देखा था। जब तुमने आंख खोली थी तब बीच में कोई बुद्धि ना खड़ी थी, तब तुमने सिर्फ देखा था, वह था अवलोकन। जैसे कोई सुंदर फूल वर्ण युक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। दूसरा सूत्र, जैसे कोई सुंदर फूल रंग बिरंगा है, बहुत वर्ण युक्त है, लेकिन फिर भी गंध सुन, ऐसा ही पांडित्य है। रंग बहुत है उसमें, सुगंध बिल्कुल नहीं। जीवन में सुगंध तो आती है आचरण से, तुम जो जानते हो उससे जीवन में सुगंध नहीं आती, वो तो मौसमी फूल है, दूर से लुभावना लग सकता है, पास आने पे तुम उसे कागजी पाओगे। आदमी भला धोखे में आ जाए, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तितलियां धोखे में नहीं आती, भौरे धोखे में नहीं आते, भौरे धोखे में नहीं आते, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। तितलियां धोखे में नहीं आती, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। सम्राट सोलोमन के जीवन में कथा है, एक रानी उसके प्रेम में थी और उसकी परीक्षा करना चाहती थी कि सच में वो इतना बुद्धिमान है जितना लोग कहते, अगर है तो ही उससे विवाह करना है।
तो वो आई, उसने कई परीक्षाएं ली, वो परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें एक परीक्षा ये भी थी, वो आई एक दिन राज दरबार में दूर खड़ी हो गई, हाथ में उसने दो गुलदस्ते के फूलों के गुलदस्ते लाई थी, और उसने सोलमन से कहा दूर से कि इनमें कौन से असली फूल हैं बता दो। बड़ा मुश्किल था, फासला काफी था, वो उस छोर पर खड़ी थी राज दरबार के, फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। सोलमन ने अपने दरबारियों को कहा सारी खिड़कियां और द्वार खोल दो। खिड़कियां और द्वार खोल दिए गए, न तो दरबारी समझे न वो रानी समझी कि द्वार दरवाजे खोलने से क्या संबंध। रानी ने सोचा कि शायद रोशनी कम है इसलिए रोशनी की फिक्र कर रहा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन सोलमन कुछ और फिक्र कर रहा था। जल्दी ही उसने बता दिया कि कौन से असली फूल हैं कौन से नकली, क्योंकि एक मधुमक्खी भीतर आ गई बगीचे से और वो जो असली फूल थे उन पे जाके बैठ गई। न दरबारियों को पता चला न उस रानी को पता चला। वो कहने लगी कैसे आपने पहचाना। सोलमन ने कहा तुम मुझे धोखा दे सकती हो लेकिन एक मधुमक्खी को नहीं। मधुमक्खी को धोखा देना मुश्किल है, परमात्मा को कैसे दोगे। बुद्ध कहते हैं जैसे कोई सुंदर फूल वर्ण युक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। तुम्हें जीवन के सत्यों का पता है, सोचने से न लगेगा, उन सत्यों को जीने से लगेगा। जियोगे तो ही पता चलेगा। जो ठीक लगे उसे देर मत करना, उसे कल के लिए स्थगित मत करना। जो ठीक लगे उसमें आज ही डुबकी लगाना। अगर तुम्हें अवलोकन की बात ठीक लग जाए तो सोचते मत रहना कि कल करेंगे, ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी सुगंध ना आएगी। ऐसे ये हो सकता है कि अवलोकन के संबंध में तुम बातें करने में कुशल हो जाओ और ध्यान के संबंध में तुम शास्त्रकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुगंध ना आएगी। प्रार्थना के संबंध में जान लेना प्रार्थना को जानना नहीं, प्रार्थना को तो वही जानता है जो करता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो डूबता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो प्रार्थना में मिट जाता है। जब प्रार्थना तुम्हारा अस्तित्व बनती, आचरण का अर्थ है तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अस्तित्व हो, तुम जो जानते हो वो सिर्फ ऊपर से चिपकी हुई बात न रह जाए, उसकी जड़ें तुम्हारे जीवन में फैले, तुम्हारे भीतर से वो बात उठे, वो तुम्हारी अपनी हो। ऊपर से इकट्ठा ज्ञान ऐसा है जैसे तुमने भोजन तो बहुत कर लिया हो लेकिन पचा ना सके, उससे तुम बीमार पड़ोगे, उससे शरीर रुग्ण होगा। पचा हुआ भोजन जीवन देता है, ऊर्जा देता है, अनपचा भोजन जीवन को नष्ट करने लगता है। भूखे भी बच सकते हैं लोग ज्यादा देर तक, ज्यादा भोजन से जल्दी मर जाते हैं, बोझ हो जाता है पूरी व्यवस्था पर, और ज्ञान का तो भारी बोझ है। तुम्हारा चैतन्य अगर दब गया है तो तुम्हारे ज्ञान के बोझ से तुम जानते ज्यादा हो जिए कम हो, एक असंतुलन हो गया है। बुद्ध कहते हैं थोड़ा जानो लेकिन उसे जीने में बदलते जाओ, थोड़ा भोजन करो लेकिन ठीक से चबाओ, ठीक से पचाओ, रक्त मांस मज्जा बन जाए। होश के बंदे

जो समझा है वो समझी ना हो कि समाधि बन जाएगी, जो सुना है वो सुना ही नहीं पी लिया है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। थोड़ा जानो जियो ज्यादा और तुम पहुंच जाओगे, ज्यादा तुमने जाना और जिया कुछ भी नहीं तो तुम न पहुंच पाओगे। तब तुम दूसरों की गायों का ही हिसाब रखते रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई गाय नहीं, तुम गायों के रखवाले ही रह जाओगे, मालिक न हो पाओगे। पंडित मत बनना, पापी भी पहुंच जाते हैं पंडित नहीं पहुंचते, क्योंकि पापी भी आज नहीं कल जग जाएगा, दुख जगाता है। पंडित एक सुख का सपना देख रहा है कि जानता है बिना जाने। शास्त्र से बचना, शास्त्र जंजीर हो सकता है। सुभाषित सुंदर वचन जहर हो सकते हैं। जिस चीज को भी तुम जीवन में रूपांतरित न कर लोगे वही जहर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की व्यवस्था में जो भी चीज पड़ी रह जाएगी बिना रूपांतरित हुए, बिना लहू मांस मज्जा बने, वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम करने लगेगी। पंडित का अस्तित्व विषाक्त हो जाता है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती। तो ध्यान इस पर हो कि मेरा आचरण क्या है, मेरा होने का ढंग क्या है, मेरे जीवन की शैली क्या है। परमात्मा को मानो या न मानो, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है घर लौटने वाले का, संसार की तरफ जाने वाले का नहीं, प्रत्याहार करने वाले का, अपनी चेतना के केंद्र की तरफ आने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है व्यर्थ का कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले का नहीं, सिर्फ हीरे ही चुनने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण हंस जैसा है कि मोती चुन लेता है, कि दूध और पानी में दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है। हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है, तुमने कभी समझा क्यों? दो कारणों से। एक तो हंस सार को असार से अलग कर लेता है, और दूसरा हंस सभी दिशाओं में गतिवान है। वो जल में तैर सकता है, जमीन पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है, उसके स्वातंत्र पर कहीं कोई सीमा नहीं। जमीन हो तो चल लेता है, सागर हो तो तैर लेता है, आकाश हो तो उड़ लेता है। तीनों आयामों में, तीनों डायमेंशंस में उसके कहीं कोई रुकावट नहीं। जिस दिन तुम सार और असार को पहचानने लगोगे, उस दिन तुम्हारा स्वातंत्र भी इतना ही अपरसीम हो जाएगा जैसा हंस का। इसलिए हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है। न जानने से ही बंधे हो, जमीन पर ही ठीक से रहना नहीं आता, पानी पे चलने की तो बात अलग, आकाश में उड़ना तो बहुत दूर। शरीर में ही ठीक से रहना नहीं आता, मन की तो बात अलग, आत्मा की तो बात बहुत दूर। शरीर यानी जमीन, मन यानी जल, आत्मा यानी आकाश। इसलिए मन जल की तरह तरंगायत, शरीर स्थिर है पृथ्वी की तरह, 70 साल तक डटा रहता है, गिर जाता है उसी पृथ्वी में जिससे बनता है। मन बिल्कुल पानी की तरह, पारे की तरह कहो, छितर छितर जाता है। आत्मा आकाश की तरह निर्मल है, कितने ही बादल घिरे कोई बादल धुएं की एक रेखा भी पीछे नहीं छोड़ गया। कितनी ही पृथ्वियां बनी और खो गई, कितने ही चांद तारे निर्मित हुए और विलीन हो गए, आकाश कूटस्थ है, अपनी जगह हिलता डुलता नहीं। शरीर में ही रहना तुमसे नहीं हो पाता, मन की तो बात अलग, मन में जाते ही चिंता पकड़ती है, विचारों का उहापोह पकड़ता है। आत्मा तो फिर बहुत दूर है, क्योंकि आत्मा यानी निर्विचार ध्यान, आत्मा यानी समाधि, आकाश मुक्त असीम। परमहंस कहा है ज्ञानियों को,

लेकिन ज्ञान को आचरण में बदलने की कीमिया, बदलने का रहस्य समझ लेना चाहिए। तुम समझ भी लेते हो कभी कोई बात, इस स्फटिक मणि की भांति साफ दिखाई पड़ती है कि समझ में आ गई। अगर तुम उसी क्षण उसका उपयोग करने लगो तो और निखरती जाए। तुम कहते हो कल उपयोग कर लेंगे, परसों उपयोग कर लेंगे, अभी समझ में आ गई संभाल के रख ले। एक मित्र यहाँ सुनने आते थे, डॉक्टर से पढ़े लिखे, मैंने उनको देखा कि जब भी वो सुनते तो बैठ के बस नोट ले रहे, फिर मुझे मिलने आए तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कहते आप इतनी अद्भुत बातें कह रहे हैं फिर नोट कर लेना जरूरी है, पीछे काम पड़ेंगे। जब मैं समझा रहा हूं तब वो समझ नहीं रहे, वो कल पे टाल रहे हैं, समझ तक को कल पे टाल रहे हैं, करने की तो बात अलग, वो नोट ले रहे हैं अभी, फिर पीछे कभी जब जरूरत होगी काम पड़ जाएगी। तुम अभी मौजूद थे, मैं अभी मौजूद था, अभी ही उतर जाने देते हृदय में, लेकिन वो सोचते हैं कि वो बड़ा कीमती काम कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ये बचाव है समझने से, समझना नहीं। सामने एक घटना घट सकती थी अभी और यही, मैं तुम्हारी आंख में झांकने को राजी था, तुम आंख बचा लिए, नोट करने लगे। मैंने हाथ फैलाया था तुम्हें उठा लूं बाहर तुम्हारे गड्ढे से, तुम्हारा हाथ तुमने व्यस्त कर लिया, तुम नोट लेने लगे। मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने पुकार न सुनी, तुमने अपनी किताब में कुछ शब्द अंकित कर लिए, तुम बड़े प्रसन्न हुए। तुम अभी जीवित सत्य को न समझ पाए, कल के लिए टाल दिया, करोगे कब? टालना मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जो समझ में आ जाए उसे उसी क्षण करना, क्योंकि करने से स्वाद आएगा, स्वाद आते से करने की और भावना जगेगी, और करने से और स्वाद आएगा। अचानक एक दिन तुम पाओगे जिसे तुमने ज्ञान की तरह सोचा था वो ज्ञान नहीं रहा, आचरण बन गया। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। और ध्यान रखना, जो भी जाना जा सकता है वो जीकर ही जाना जा सकता है, नाहक की बहस में मत पड़ना, क्योंकि बहस भी अक्सर बचने का ही उपाय है। और व्यर्थ के तर्क जाल में मत उलझना, क्योंकि तुम्हें बहुत मिल जाएंगे कहने वाले कि इसमें क्या रखा है, लेकिन गौर से देख लेना कि जो कह रहा है उसने कुछ अनुभव लिया है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, कोई हर्षा नहीं, तर्क करें, लेकिन पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है, उनके पास भी कुछ स्वाद होता है। तुम उसी की बात सुनना जिसके पास कुछ स्वाद हो, अन्यथा इस जगत में आलोचक बहुत है, निंदक बहुत है। किसी भी चीज को गलत कह देना जितना आसान है, उतनी आसान और कोई बात नहीं। ईश्वर को कह देना नहीं है कितना आसान है कहना बहुत कठिन, क्योंकि जो है कहे उसे सिद्ध करना पड़े, जो नहीं कहे उसे तो सिद्ध करने का सवाल ही नहीं रहा, जब है ही नहीं तो सिद्ध क्या करना है। प्रेम को इनकार कर देना कितना आसान है, लेकिन प्रेम को हां करना कितना कठिन है, क्योंकि प्रेम का अर्थ होगा फिर एक आंख से गुजरना। नहीं बहुत आसान है, इसलिए कायर हमेशा नहीं कहते थे जिंदगी चला लेते, हालांकि वो दिखते बड़े बहादुर। कोई आदमी कहता ईश्वर नहीं, लगता है बड़ी हिम्मत का आदमी, अपनी इतनी हिम्मत नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूं कायर नहीं कह के काम चला लेते, क्योंकि जिस चीज को नहीं कह दिया उसे न सिद्ध करने की जरूरत, न जीवन में उतारने की जरूरत, न दांव लगाने की जरूरत, न मार्ग चलने की जरूरत। जिसने हाँ कहा वही बहादुर है, वही साहसी है, लेकिन हाँ भी नपुंसक हो सकती है। अगर तुमने सिर्फ बहाने के लिए हाँ कहती हो, अगर किसी ने कहा ईश्वर है, तुमने कहा होगा भाई जरूर होगा, सिर्फ झंझट छुटाने को, कि इतनी भी किसको फुर्सत है कि बकवास करे, इतना भी किसके पास समय है कि विवाद करे, अब कौन झंझट करे कि है या नहीं,
कि बिल्कुल ठीक जरूर होगा। अगर तुमने हां भी सिर्फ बचाव के लिए कही तो तुम्हारी हां नहीं ही है, उस हां में हां नहीं, नहीं ही है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। उसी के पास पूछना जिसके जीवन में कोई सुगंध हो और सुवास, और जिसके जीवन में कोई स्वाद, जिसके ओठों से जिसकी सांसों से शराब की थोड़ी गंध आती हो, उसी से शराब की बात पूछना। जिसके आसपास थोड़े मस्ती की हवा हो, जिसकी आंखों में खुमार हो, उसी से पूछना। हर किसी से मत पूछने बैठ जाना और हर किसी की बात मत सुन लेना, नहीं तो जिंदगी को ऐसे ही गंवा दोगे। ना समझ बहुत है, कायर बहुत है, आलोचक बहुत है, उनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये सब बचाव की तरकीबें हैं। जिंदगी को जानने वाले बहुत कम हैं, और तुम भी कहीं इसी भीड़ में न खो जाना। खो ही जाओगे अगर जीवन में कोई सूत्र तुम्हारे पास आए और तुमने उनका जल्दी उपयोग न कर लिया, वे जंग खा जाते। सत्य बड़ी नाजुक चीज है, वो बीज की तरह है। तुम उसे हृदय में ले जाओ तक क्षण तो वो अंकुरित हो जाता है। बीज को रखे रहो तिजोरियों में संभाल के, वो सड़ जाएगा। सारे सत्य तुम्हारे शास्त्रों की तिजोरियों में सड़ गए। ऐसा नहीं है कि सत्यों की कोई कमी है, सत्य बहुत है, शास्त्र भरे पड़े लेकिन किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे जीवन के शास्त्र में जब तक कोई सत्य उतर कर खून मांस मज्जाना बन जाए, पच न जाए, तुम्हारे रग रेसे में न दौड़ने लगे, तब तक किसी काम का नहीं। इसे स्मरण रखना। जैसे फूलों से मालाएं बनती हैं, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को बहुत पुण्य करने चाहिए। जीवन दो ढंग का हो सकता है, बुद्ध ने बड़ा ठीक प्रतीक चुना है। एक तो जीवन ऐसा होता है जिसको तुम ज्यादा से ज्यादा फूलों का ढेर कह सकते हो, और एक जीवन ऐसा होता है जिसे तुम फूलों की माला कह सकते हो। माला और ढेर में बड़ा फर्क है। माला में एक संयोजन है, एक तारतम्य है, एक संगीत है, एक लयबद्धता है। माला में एक जुटता है, एक श्रृंखला है, एक सिलसिला है। फूलों का एक ढेर है, उसमें कोई श्रृंखला नहीं, उसमें कोई संगीत नहीं, उसमें दो फूल जुड़े नहीं है किसी अन्य संयुक्त धागे से। सब फूल अलग अलग है, बिखरे पड़े। तो या तो जीवन ऐसा हो सकता है कि जीवन के सब क्षण बिखरे पड़े, एक क्षण से दूसरे क्षण के भीतर दौड़ती हुई कोई जीवन धारा नहीं, कोई धागा नहीं जो सबको जोड़ता हो। अधिक लोगों का जीवन क्षणों का ढेर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तुम्हें भी उतने ही क्षण मिलते हैं जितने बुद्ध को, लेकिन बुद्ध का जीवन एक माला है, हर क्षण परोया हुआ है, हर क्षण अपने पीछे क्षण से जुड़ा है, आगे क्षण से जुड़ा है। जन्म मृत्यु एक श्रृंखला में बंधे, एक अनसयुत संगीत है। इसे थोड़ा समझो, तुम ऐसे हो जैसे वर्णमाला के अक्षर, बुद्ध ऐसे है जैसे उन्हीं अक्षरों से बना एक गीत। गीत में और वर्णमाला के अक्षरों में कोई फर्क नहीं है, वही अक्षर है। वर्णमाला में जितना है उतना ही सभी गीतों में। मार्क ट्वेन के जीवन में घटना है, उसके मित्र ने उसे निमंत्रित किया। मित्र एक बहुत बड़ा उपदेष्टा था, मार्क ट्वेन कभी उसे सुनने नहीं गया था। कुछ ईर्ष्या रही होगी मन में मार्क ट्वेन के। मार्क ट्वेन खुद बड़ा साहित्यकार था, लेकिन उपदेष्टा की बड़ी ख्याति थी। मित्र ने कई दफा निमंत्रित किया तो एक बार गया, सामने की कुर्सी पर बैठा था। उस दिन मित्र ने जो सृष्टम उसके जीवन में भाव में था कहा, क्योंकि मार्क ट्वेन सुनने आया था, लेकिन मार्क ट्वेन के चेहरे पर कोई भाव दशा नहीं बदली। वैसे ही बैठा रहा आकड़ा, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे क्या कचरा बकवास कर रहे हो। मित्र भी चकित हुआ। जब दोनों लौटने लगे गाड़ी में वापस, रास्ते में उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें मेरी बातें कैसी लगी? मार्क ट्वेन ने कहा, बातें सब उधार, मेरे पास एक किताब है जिसमें सब लिखा है, तुमने उसी को पढ़ के बोला है। उस आदमी ने कहा, चकित कर रहे हो, कोई एक आध वाक्य, कोई एक टुकड़ा कहीं लिखा हो सकता है,
लेकिन जो मैंने बोला है वो मैंने किसी किताब से लिया नहीं। मार्क टुवेन का शर्त बकते हो, $100 की शर्त लग गई। उपदेश था, सोचता था निश्चित ही शर्त में जीत जाऊंगा, ये पागल किस बात की शर्त लगा रहा है, जो मैं बोला हूं ये पूरा का पूरा एक किताब में हो ही नहीं सकता, संयोग नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन उसे पता नहीं था। मार्क टुवेन ने दूसरे दिन एक डिक्शनरी बेच दी और लिखा इसमें सब है जो भी तुम बोले हो, एक एक शब्द जो तुम बोले हो सब इसमें है, शब्द सा। पर डिक्शनरी और शेक्सपियर में कुछ फर्क है, शब्दकोश में और कालिदास में कुछ फर्क है, शब्दकोश और उपनिषद में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? वही फर्क तुम में और बुद्ध में। तुम केवल शब्दकोश, फूल की भीर एक ढेर, अनसयुत नहीं हो, जुड़े नहीं हो, तारतम्य नहीं है। सब फूल अलग अलग पड़े हैं, माला नहीं बनता है। माला उसी का जीवन बनता है जो अपने जीवन को एक साधना देता है, एक अनुशासन देता है, जो अपने जीवन को होश पूर्वक एक लयबद्धता देता है। तब जीवन न केवल गद्य बन जाता है, अगर धीरे धीरे तुम जीवन को निखारते ही जाओ तो गद्य पद्य हो जाता है। जीवन तुम्हारा गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, तुम्हारे भीतर से अहिर्निश संगीत की एक धारा छूटने लगती है, तुम बजने लगते हो। जब तक तुम बजो ना, तब तक तुम परमात्मा के चरणों के योग्य न हो सकोगे। और ध्यान रखना, व्यर्थ की शिकायतें सिकवे मत करना, उनसे सिकवा फजूल है, सीमाव काबले इल्फात तू ही नहीं। परमात्मा से क्या शिकायत करनी कि आनंद नहीं है जीवन में? काबले इल्तिफात तू ही नहीं, परमात्मा की कृपा के योग्य तू ही नहीं। इसलिए किसी और से शिकवा मत कर। तुम जैसे अभी हो ऐसे ही तुम परमात्मा पर चढ़ने योग्य नहीं हो। तुम माला बनो, तुम जीवन को एक दिशा दो। तुम ऐसे ही सब दिशाओं में मत भागते फिरो पागलों की तरह। तुम एक भीड़ मत रहो, तुम्हारे भीतर एक स्वरता है। और बुद्ध इसी को पुण्य कहते हैं। तुम चकित होगे, बुद्ध कहते हैं जिसके जीवन में एक स्वरता है वही पुण्य धर्मा है। पापी एक भीड़ है, पुण्य धर्मा एक माला है। पापी असंगत है, कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ है। पापी के भीतर एक स्वरता नहीं, बोलता कुछ है, आंखें कुछ और कहती हैं, हाथ कुछ और करते हैं। पापी एक साथ बहुत है, पुण्यात्मा एक है, योगस्थ है, जुड़ा है, इंटीग्रेटेड है। वो जो भी करता है वो सब संयोजित है, वो सभी एक दिशा में गतिमान है। उसके पैर भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसकी आंखें जा रही हैं, उसके हाथ भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका हृदय जा रहा है, उसकी सांसें भी उसी तरफ जा रही जिस तरफ उसकी धड़कनें जा रही। वो इकट्ठा है, उसके जीवन में एक दिशा है, एक गति है, विक्षिप्तता नहीं है। जैसे फूलों से मालाएं बनती है, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को पुण्य अर्जन करना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन एक माला बन जाए। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, बड़ी मीठी बात बुद्ध कहते हैं, खूब हृदय भर के सुनना। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही हो तो चंदन कोई उपाय नहीं चंदन के पास की अपनी सुगंध को पश्चिम की तरफ भेजते। हवा के विपरीत नहीं जाती, न तगर की, न चमेली की, न चंदन की, न बेला की। लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। एक ही सुगंध है इस जगत में जो विपरीत दिशा में भी चली जाती है, वह है सत्पुरुष की, वह है संत पुरुष की, वह है जागृत पुरुष की सुगंध। मनुष्य भी एक फूल है, और जो कली ही रह गए खिल ना पाए उनके दुख का अंत नहीं। कलियों से पूछो
जो खिलने में असमर्थ हो गई, जिनमें गंध भरी थी और लुटा ना पाई। ऐसे ही जैसे किसी स्त्री को गर्भ रह गया और फिर बच्चे का जन्म ना हो तो उसका संताप समझो, गर्भ बड़ा होता जाए और बेटे का जन्म ना हो तो उस स्त्री की पीड़ा समझो। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य पीड़ा में, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बड़ा हो रहा है वो जन्म नहीं पा रहा, तुम एक गर्भ लेके चल रहे हो। गर्भ बड़ा होता जाता है लेकिन तुम्हारे जन्म की दिशा खो गई, तुम भूल ही गए हो, तुम एक कली हो, उसके भीतर गंध इकट्ठी होती जा रही है, बोझिल हो गई है, कली अपने ही बोझ से दबी जा रही। मेरे देखे तुम्हारी पीड़ा ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारी असली पीड़ा यही है कि जो सुख हो सकता था वो नहीं हो पा रहा। ये दुख की मौजूदगी नहीं है जो तुम्हें पीड़ित कर रही है, ये उस सुख की मौजूदगी का अभाव है जो हो सकता था और नहीं हो पा रहा। तुम्हारी गरीबी तुम्हें पीड़ा नहीं दे रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो अमीरी का झरना फूट सकता था, फूटने को तत्पर खड़ा है, उस पर चट्टान पड़ी, वो झरना फूट नहीं पा रहा है। ये विकास की छटपटाहट है आदमी का संताप, ये आदमी की पीड़ा जन्म लेने की छटपटाहट है। सारा अस्तित्व खिलने में भरोसा रखता है, जब भी कोई चीज खिल जाती तो निर्भर हो जाती। आदमी भी एक फूल है और बुद्ध कहते हैं बड़ा अनूठा फूल है, और बुद्ध जान के कहते हैं उनका फूल खिला। तब उन्होंने एक अनूठी बात जानी कि विपरीत दिशाओं में भी जहां हवा नहीं भी जा रही हो वहां भी संत की गंध चली जाती। संत की गंध कोई सीमाएं नहीं मानती, फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की सुगंध, न तगर की, न चमेली की, न बेला की, लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सज्जन की सुगंध एकमात्र सुगंध है जो संसार के नियम नहीं मानती, जो संसार के साधारण नियमों के पार है, जो अतिक्रमण कर जाती। सीख ले फूलों से गाफिल, मुद्द आए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। इतना ही काफी नहीं कि खुद महको, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। इसलिए बुद्ध ने कहा है समाधि फिर प्रज्ञा, समाधि फिर करुणा। बुद्ध ने कहा है वो ध्यान ध्यान ही नहीं जो करुणा तक न पहुंचाते। खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी, उसी समाधि को बुद्ध ने परिपूर्ण समाधि कहा है, जो लुट जाए सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बह जाए। लेकिन ये समझ लेने की बात है, ये बड़ी विरोधाभासी बात है, तुम साधारण अवस्था में सभी दिशाओं में दौड़ते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्धत्व की तरफ चलने वाला व्यक्ति एक दिशा में चलता है और जिस दिन पहुंचता है उस दिन सभी दिशाओं में बहने में समर्थ हो जाता है। तुम सभी दिशाओं में बहने की कोशिश करते हो, थोड़ा धन भी कमा लें, थोड़ा धर्म भी कमा लें, थोड़ी प्रतिष्ठा भी बना लें, थोड़ी समाधि भी कमा लें, थोड़ा दुकान भी बचा लें, थोड़ा मंदिर भी। तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाते हो और आखिर में पाते हो भिखारी के भिखारी विदा हो गए, जैसे आए थे खाली हाथ वैसे खाली हाथ गए, बहुत पकड़ना चाहा कुछ पकड़ने ना आया। तुम्हारी हालत करीब करीब वैसी है जैसे तुमने बहुत प्रसिद्ध गधे की सुनी हो कि एक मजाकिया आदमी ने एक गधे के पास दोनों तरफ घास के दो ढेर लगा दिए बराबर दूरी पर, और गधा बीच में खड़ा था, उसे भूख तो लगी तो वो बाएं तरफ जाना चाहा, तब मन ने कहा कि दाएं, उस तरफ भी घास था, दाएं तरफ जाना चाहा तो मन ने कहा बाएं। कहते हैं गधा भूखा बीच में खड़ा खड़ा मर गया, क्योंकि न वो बाएं जा सका न दाएं। जब दाएं जाना चाहा तब मन ने कहा बाया, जब बाएं जाना चाहा तो मन ने कहा दाया। तुम्हारा मन यही कर रहा है, जब तुम मंदिर की तरफ जाना चाहते हो तब मन कहता दुकान, जब तुम दुकान पर बैठे हो मन को भजन याद आता मंदिर। ऐसे ही मर जाओगे, और दोनों तरफ तृप्ति के साधन मौजूद थे, कहीं भी गए होते। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम दुकान पर ही पूरी तरह से चले जाओ तो वहीं ध्यान हो जाएगा।

आधे आधे मंदिर जाने की बजाय दुकान पर पूरे चले जाना बेहतर है, क्योंकि पूरे चला जाना ध्यान है। ग्राहक से बात करते वक्त भीतर राम राम गुनगुनाना गलत है, ग्राहक को ही पूरा राम मान लेना उचित है। आधे आधे कुछ सार न होगा, आधा यहाँ आधा वहाँ। तुम दो नाव पर सवार हो, तुम बड़ी मुश्किल में पड़े हो, तुम सब दिशाओं में पहुंचना चाहते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्ध पुरुष एक दिशा में जाते हैं और जिस दिन मंजिल पर पहुंचते हैं सब दिशाओं में उनकी गंध फैल जाती। तुम सब पाने की कोशिश में सब गंवा देते हो, बुद्ध पुरुष एक को पा लेते हैं और सब पा लेते हैं। महावीर ने कहा जिसने एक को पा लिया उसने सब पा लिया, जिसने एक को जान लिया उसने सब जान लिया। जीसस ने कहा सीक ए फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। अकेली तुम परमात्मा की खोज कर लो, प्रभु का राज्य खोज लो, ये सब अपने से आ जाएगा, तुम उसकी फिक्र ही मत करो। एक को जिसने गमाया वो सब गमा देता है और एक को जिसने पाया वो सब पा लेता है। लेकिन तुम्हारा सब अधूरा अधूरा है, अधूरे अधूरे के कारण तुम खंड खंड हो गए हो, तुम्हारे भीतर बड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा कहीं जा रहा, दूसरा टुकड़ा कहीं जा रहा। तुम एक टूटी हुई नाव जिसके तख्ते अलग अलग बह रहे हैं, तुम कैसे पहुंच पाओगे? तुम कहां पहुंच पाओगे? तुम हो ही नहीं, तुम इतने खंड खंड हो गए हो कि तुम हो ये कहना भी उचित नहीं है। होने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी दिशा बने, एक अनुशासन हो, एक श्रृंखला हो। तुम फूलों को पुरोना सीखो, फूलों की माला बनाना सीखो। जीवन में सत्य का आविष्कार करना है, प्रेम का आविष्कार करना है। जीवन में तुम कौन हो इसका आविष्कार करना है, इसे ऐसे ही नहीं गंवा देना है। तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे अनुशासन होना शुरू हो जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी थोड़ी सी भी दृष्टि हो, दिशा हो, कहां पहुंचना है, तो एक तारतम्य आ जाए। उस तारतम्य के साथ ही साथ तुम्हारे भीतर एकता का जन्म होगा। इस एकता के माध्यम से ही किसी दिन तुम माला बन सकते हो, और जिस दिन तुम माला बन जाते हो उस दिन परमात्मा के गले में चढ़ाने नहीं जाना होता, परमात्मा का गला खुद तुम्हारी माला में आ जाता, आ ही जाएगा। तुम काबिल हो गए, काबिले इल्तिफात तो ही नहीं, तभी तक अर्चन थी। उनसे सिकवा फजूल है, सीमा शिकायत बेकार है। इतना ही जानना कि अभी हम तैयार नहीं हुए। अब ये फूलों की गठरी को तुम किसी के गले में डालना चाहोगे तो माला कैसे बनेगी? गिर जाएंगे फूल नीचे, धूल में पड़ जाएंगे। ये माला किसी के गले में डालनी हो तो माला होनी चाहिए। फूलों के ढेर को माला मत समझ लेना, थोड़ा देखो माला और ढेर में क्या फर्क है। ढेर में संगठन नहीं है, अर्थात आत्मा नहीं है। माला में एक संगठन है, एक व्यक्तित्व है, एक आत्मा है। धागा दिखाई नहीं पड़ता, एक फूल से दूसरे फूल में चुपचाप अदृश्य में पिरोया हुआ है। जीवन के लक्ष्य भी दिखाई नहीं पड़ते, एक क्षण से दूसरे क्षण में अदृश्य पिरोए होते हैं। बुद्ध उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं तो हर घड़ी के भीतर ध्यान का धागा पिरोया हुआ है। जो भी करते हैं एक बात ध्यान रखते हैं कि उस करने में से ध्यान का धागा न छूटे, वो धागा बना रहे। फूल से भी ज्यादा मूल्य धागे का है, लक्ष्य का है, दिशा का है। और जिस दिन ये घड़ी घट जाती कि तुम संगठित हो जाते हो, तुम एक हो जाते हो, उसी दिन परमात्मा की कृपा तुम पर बरस उठती। उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसलिए बुद्ध उस संबंध में चुप रहे। जो कहा जा सकता था उन्होंने कहा, जो नहीं कहा जा सकता था उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सारा जोर इस पर दिया है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे एक हो जाए, तुम्हारा ज्ञान कैसे आचरण बन जाए,
तुम्हारे बिखरे फूल कैसे माला बन जाए। इससे ज्यादा उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि इसके बाद बात करनी ठीक ही नहीं। इसके बाद जो होना है वो होता ही, वो हो ही जाता है, उसमें कभी कोई अड़चन नहीं पड़ती। इसलिए परमात्मा को तुम भूल जाओ तो अड़चन नहीं, अपने को मत भूल जाना। अपने को भूला तो सब गया, सब डूबा। खुद की याद रखी और सियादास को रोज रोज संभालते गए, रोज रोज हर तरह से वो याददाश्त सघन होती चली जाए। जैसे जल गिरता है पहाड़ से, चट्टान मजबूत है, जल बिल्कुल नाजुक है, लेकिन रोज गिरता ही चला जाता है। एक दिन चट्टान तो रेत होकर बह जाती, जल की धार अपनी जगह बनी रहती। कठोर से कठोर भी टूट जाता है सातत्य के सामने। इसलिए घबराना मत। अगर आज तुम्हें अपनी दशा चट्टान जैसी लगे, तुम कहो कि कैसे ये अहंकार बहेगा, ये चट्टान बड़ी मजबूत है, कैसे ये दिल झुकेगा, ये झुकना जानता नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करना। तुम सिर्फ सातत्य रखना, ध्यान का, अवलोकन का, साक्षी का, से सब अपने से हो जाता है। बुद्ध ने मनुष्य के व्यक्तित्व का विज्ञान दिया, उन्होंने मनोविज्ञान दिया, मेटाफिजिक्स, परलोक के शास्त्र की बात नहीं की। बुद्ध बड़े यथार्थवादी हैं। वे कहते हैं जो करना जरूरी है वही, और ज्यादा व्यर्थ की विस्तार की बातों में तुम्हें भटकाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही तुम काफी भटके हुए हो, थोड़े से तुम्हें सूत्र दिए, अगर तुम उन्हें कर लो तो उन सूत्रों में बड़ी आग है, वो अंधकार को जला डालेंगे, वो व्यर्थ को राख कर देंगे, और उन सूत्रों की आग से तुम्हारे भीतर का स्वर्ण निखर के बाहर आ जाएगा। बुद्ध ने बहुत थोड़ी सी बातें कही, उन्हीं को दोहरा के कहा है, क्योंकि बुद्ध को कोई रस दर्शन शास्त्र में नहीं है। बुद्ध को रस है मनुष्य की आंतरिक क्रांति में, रूपांतरण में। बुद्ध को जिन लोगों ने गौर से अध्ययन किया है, उन सबको हैरानी होती है कि बुद्ध एक ही बात को कितनी बार दोहराए चले जाते। वो हैरानी इसलिए होती है कि बुद्ध व्यर्थ की बात को कभी बीच में नहीं लाते, बस सार्थक को ही दोहराते ताकि सतत चोट पड़ती रहे। और तुम ऐसे हो, तुम्हारी नींद ऐसी है, तुम्हारी तंद्रा ऐसी है कि बहुत बार दोहराने पर भी तुम सुन लो, वो भी आश्चर्य है। बुद्ध से कोई पूछता था तो वो तीन बार दोहरा के जवाब देते थे, उसी वक्त तीन दफा दोहरा के जवाब देते थे। क्यों तीन बार? क्योंकि बुद्ध से कोई पूछने लगा कि क्यों तीन बार, क्या आप सोचते हम बहरे? बुद्ध ने कहा नहीं, अगर तुम बहरे होते तो इतनी अड़चन न थी। तुम बहरे नहीं हो और फिर भी सुनते नहीं हो, तुम सोए नहीं हो, यही तो अड़चन है। सोए होते तो जगाना आसान हो जाता, तुम बन के लेटे हो, तुम सोने का ढोंग कर रहे हो, उठना भी नहीं चाहते, जागती गए हो। तुम सुनते हुए मालूम पड़ते हो और सुनते भी नहीं, इसलिए तीन बार दोहरा दो। ये जो बुद्ध का दोहराना है धम्मपद में, इस पूरी चर्चा में बहुत बार आएगा, अलग अलग द्वारों से वो फिर वहीं लौट आते, कैसे तुम्हारा रूपांतरण हो। बुद्ध की सारी आकांक्षा अभीप्सा मनुष्य केंद्रित है, महावीर मोक्ष केंद्रित है, वो मोक्ष की चर्चा करते। जीसस ईश्वर केंद्रित है, वो ईश्वर की चर्चा करते। बुद्ध मनुष्य केंद्रित है, जैसे मनुष्य से ऊपर कोई सत्य नहीं है बुद्ध के लिए। साधार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं, सबके ऊपर मनुष्य का सत्य है और उसके ऊपर कोई सत्य नहीं। क्योंकि जिसने मनुष्य के सत्य को समझ लिया उसे कुंजी मिल गई, सारे सत्यों के द्वार उसके लिए फिर खुले। बुद्ध को भोजन बनाओ, पियो, पचाओ, तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण होने लगा। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध की प्रतिमा उभरने लगी। हर चट्टान छिपाए है बुद्ध की प्रतिमा अपने में, जरा छेनी की जरूरत है, हथौड़ी की जरूरत है, व्यर्थ को छांट के अलग कर देना है।
किसी ने माइकलेंजेलो से पूछा, क्योंकि चर्च के बाहर एक पत्थर बहुत दिन से पड़ा था, उसे अस्वीकार कर दिया गया था, चर्च के बनाने वालों ने उपयोग में नहीं लिया था, वो बड़ा अनगढ़ था। माइकलेंजेलो ने उस पर मेहनत की और उससे एक अपूर्व क्राइस्ट की प्रतिमा निर्मित की। किसी ने पूछा कि ये पत्थर तो बिल्कुल व्यर्थ था, इसे तो फेंक दिया गया था, इस तो राह का रोड़ा समझा जाता था, तुमने इसे रूपांतरित कर दिया, तुम अनूठे कलाकार हो। माइकलेंजेलो ने कहा, नहीं, तुम गलती कर रहे हो, जो मैंने पत्थर से प्रकट किया वो पत्थर में छिपा ही था, सिर्फ मैंने पहचाना और जो व्यर्थ टुकड़े पत्थर के आसपास थे उनको छांट के अलग कर दिया। ये प्रतिमा तो मौजूद ही थी, मैंने बनाई नहीं, मैंने सिर्फ सुनी आवाज। मैं गुजरता था यहां से, पत्थर चिल्लाया और उसने कहा कि कब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, कोई पहचान ही नहीं रहा है, तुम मुझे उठा लो, जगा दो। बस मैंने छेनी उठा के इस पर मेहनत की, जो सोया था उसे जगाया। बुद्धत्व को कहीं पाने नहीं जाना है, हर एक के भीतर आज जो चट्टान की तरह मालूम हो रहा है अनगढ़, बस जरा से छेनी हथौड़े की जरूरत है। सबके भीतर से पुकार रहा है कि कब तक पड़ा रहूंगा, उघाड़ो मुझे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो तुम सुनो, जो सुभाषित तुम्हारे कानों में पड़ जाए, उन्हें तुम स्मृति में संग्रहित मत करते जाना, उन्हें उतारना आचरण में, उन्हें जीवन की शैली बनाना। धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ उनकी हवा तुम्हें घेरे रहे, उनके मौसम में तुम जीना, जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का बुद्धत्व उभरना शुरू हो गया, फूल माला बन गए। और तब एक ऐसी घटना घटती है जो संसार के नियमों के पार है। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशा में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की, लेकिन जिनके भीतर का बुद्ध पुरुष जाग गया, बुद्ध चैतन्य जाग गया, उनकी सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती है, सभी दिशाओं में उनकी सुगंध फैल जाती है। और जब तक तुम ऐसे अपने को लुटा ना सकोगे, तब तक तुम पीड़ित रहोगे। एक ही नरक है अपने को प्रकट न कर पाना, और एक ही स्वर्ग है अपनी अभिव्यक्ति खोज लेना। जो गीत तुम्हारे भीतर अनगाया पड़ा है उसे गाओ, जो वीणा तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है उसे छेड़ो, उसके तारों को, जो नाच तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है उसे तुम बोझ की तरह मत ठो, उसे प्रकट हो जाने दो। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर बुद्धत्व को लेकर चल रहा है, जब तक वो फूल न खिले तब तक बेचैनी रहेगी, अशांति रहेगी, पीला रहेगी, संताप रहेगा। वो फूल खिल जाए, निर्वाण है, सच्चिदानंद है, मोक्ष।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हटके।
4: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत।
5: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
4: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
6: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें, चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
4: मतलब ओके पूरी पहचान के साथ
6: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, I will start experiencing those qualities जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, I will start experiencing them in myself and the result of that will be कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मैं से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी
4: डिप्लीटेड
6: वीक हो गई हैं तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही तुम, और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहे लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children, but parents are in a lot of pain.
4: खुद किस situation में है तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा pain में जाएंगे?
6: That's the point. तो जैसे ही आपका रिलेशनशिप उसके साथ जुड़ता है जो इतना पावरफुल है तो उससे आपको वाइब्रेशन कौन सी आएगी? आज एक पेरेंट भी एक बच्चे के साथ ये रिलेशनशिप जोड़ सकता है, नॉट लाइक गॉड, बट इफ अ पेरेंट हैज द पावर कि वो अनकंडीशनल लव दे स्टेबिलिटी के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। नाउ दैट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर सो व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप इज देयर लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसे होती जा रही है? We all love each other, we say, but so many conditions we apply and that's why we are getting disempowered. लेकिन जैसे ही हमारा connection एक ऐसी आत्मा से जुड़ता है, you know, just look at him just as another soul, we are looking at him just as another soul, इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता,
4: जिसका अपना कोई दर्द नहीं, wonderful,
6: no pain, right, no anger, no stress, none of all these things, ever powerful, ever pure, ever peaceful, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर? That I will start experiencing कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं, भगवान हमें चेंज नहीं करता, he doesn't do like this magic, लेकिन भगवान से जो वो unconditional power, love, purity मिलती है that helps me to overcome my pain and overcome my old संस्कार, and that's why relationship with God का जो सबसे फंडामेंटल रिजल्ट निकलता है दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड डज नॉट ट्रांसफॉर्म मी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम भगवान को अगर ये भी कहते रहे ना मेरा ये संस्कार ठीक कर दो, मेरा ये संस्कार, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं तो भगवान ऐसे करे और सबके संस्कार ठीक हो जाए, इट डजंट हैपन। हम खुद ठीक करते हैं। हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यस, बीइंग इन द कंपनी ऑफ दैट एवर प्योर, मुझे वो इतनी वाइब्रेशन, इतनी पावर मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ।
4: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है। वंडरफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट द रिलेशनशिप। अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है। मेरे जैसे आप हैं, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में। कोई भी है, मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है। तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं, उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन भर, दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल?
6: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते हैं, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से, एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है। एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं है, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन। हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है तो रिलेशनशिप किसके बीच है? तो आत्माओं के बीच।

0: पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच, अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है। लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी, और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ। मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज प्रॉब्ली इट्स जस्ट टू पर्सनल। एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ़ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन। यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए। लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में हैं, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं, तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन? अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई कैन शेयर बट आई डोंट गेट द पावर, जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊँ। अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है। नाउ आई शेयर, शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ। रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने, आपको पता है, कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन
1: होना ही था,
0: या आपने ऐसा कर दिया,
1: ये आप इस हद तक,
0: यू नो, सो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए, तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या व्हाटएवर, तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता। लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता,
1: कभी भी नेगेटिव नहीं होगा,
0: वो चेंज नहीं होता, भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया, अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूँ अपनी बात, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? एंड जब हम दर्द में होते हैं, हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है, वी नीड लॉट ऑफ लव। I need a soul who will give me so much love that I will be able to come out of that pain. लेकिन आज हम किसी से भी अपना pain share करें तो हमें return में कोई, you know, we still getting pain. So when I share my problem, my conflict, my pain with him, it is not that, you know, just the sharing does the work. एक तो sharing करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो in return मुझे फिर भी unconditional acceptance मिलती कि आप जो हो जैसे हो, I still love you. This helps me to build my self-confidence all over again. तो परमात्मा के साथ relationship मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो हम शेयर कर सकते हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं पढ़नी पड़ती। पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, माई एवरी कर्मा स्टार्ट्स विद माई थॉट, बट वॉट अबाउट वॉट थॉट टू क्रिएट? ये तो मुझे क्रिएट करना है, आई क्रिएट द थॉट। लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है, तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जाते हैं।
1: और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है।
0: वो तो क्लियर है, लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने, नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वॉइस थॉट क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है. तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है? परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को, मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ. परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान, हम रोज सेंटर पे जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती. तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई. और सबसे ईजी जो पावर मिलती है गॉड से, वो है सोल कॉन्शियस होने की. जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है. तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टैक्ट में आती, तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है. तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है, तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवरपावर करता है. अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवरपावर करती है. एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है. कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं,
1: उनका फोन आ जाता
0: है, तो वो कब होता है? जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहां से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई. अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है. सो बेसिकली ही इज एवर रेडी.
1: अच्छा, ही इज रेडी. आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड. यू नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो, कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू You are there personally. But if I want to get connected to my daughter or
0: see,
1: like anyone else,
0: I may not be there personally. Sometimes I could be sitting here, but I'm not here. If my mind is there. Mera man ho sakta na, main aapse baat kar rahi hoon, lekin man kahin aur hai. To aapko wo exchange ka anubhav nahi hoga. Kyunki har atma apne apne bahut sare disturbance se guzar rahi hai. Lekin ab hum kisse connect kar rahe hain?
1: To main hi janna chahti hoon, log bhi yehi janna chahenge ki when I get connected to him, matlab jab main unko yaad karun, to kya wo connected mujhse hai hamesha? This is what I
0: actually
1: think some reassurance.
0: Wo to hamesha hi connected hai. You know, it's like a transmitter जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है. अब सिर्फ रोल किसका बचा है?
1: मेरा,
0: रिसीवर. कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए. अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है, लेकिन मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी. तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ तो कौन याद आया? बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी. मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूँ तो कौन याद आया? ऑफिस याद आया. अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा?
1: परमात्मा.
0: क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी. आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे. तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया
1: था. अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही,
0: वो तो है ही है. ही इज नॉट गॉन एनीवेयर. वो तो है ही है, लेकिन आई वॉज नॉट फर्स्ट इन दैट सेम कॉन्शियसनेस, एंड सेकेंड आई डेंट नो हु आई वॉज कनेक्टिंग टू. अब नॉलेज के आधार पर ये दोनों चीजें मिल गई, कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस कि ये सब बातों की विस्मृति करके आई एम अ प्योर सोल. तो सोल को याद कौन आएगा? सुप्रीम सोल. फिर वो अनुभव करना, ही इज ऑलरेडी देयर. लेकिन द मिनट आई ट्यून इन, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द फ्लो. तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते, तो क्योंकि ये शुरू का हमारा नया नया रिश्ता है, तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं. पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज माई कर्मा. अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम अब उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं। तो जो मॉर्निंग का टाइम है, जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें, सब कॉन्शियस लेयर पे जाएं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारे थॉट्स को पुट असाइड करें, सब कॉन्शियस माइंड में जाएं, जहां बहुत सारे पुराने बिलीफ्स, पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं, और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सबकॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए। फिर परमात्मा की वो शक्ति, वो एक एक जो पावर है, हम उसको थॉट से अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं। वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम। फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी, गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार है। नाउ आई एम चेंजिंग इट, आई एम अ प्योर सोल, चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ। आई वॉन्ट के ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको एम्बेड कहाँ करना पड़ेगा?
1: सबकॉन्शियस,
0: यहाँ सबकॉन्शियस में। तो मॉर्निंग में साइलेंट में बैठकर, कॉन्शियस थॉट साइड पे कर, सबकॉन्शियस लेयर को, जैसे यू नो ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते हैं, उसमें से पुराने बिलीव्स के बदले ये नया जो सत्यता है, अभी वो बिलीफ ही है, उसको एम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते हैं। तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना, और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन, आई कैन गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद हिम। अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें, फिर माइंड को साइलेंट करें, उसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें। कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई डिसीशन आपको लेना है, कुछ भी करना है, कनेक्ट टू हिम। कोई बात बोझ है, शेयर विद हिम। तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा, आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी
1: बाकी सब,
0: और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ, वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माय रिलेशनशिप। फिर जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना, तो वो करना
1: आसान
0: हो जाएगा। एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन, लव, एंड बिकॉज आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, आई विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आई गिव, एंड व्हेन आई गिव माय रिलेशनशिप्स बिकम वेरी क्लोज। जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो तीन आत्मा की जो तीन फैकल्टीज हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड एक्सपीरियंस, संस्कार, ये तीनों फैकल्टीज अपना अपना रोल प्ले करते हैं। माइंड क्रिएट्स अ थॉट, इंटेलेक्ट उसको तुरंत विजुअलाइज करता है, जैसे आपने थॉट क्रिएट किया बेटी, तुरंत पिक्चर आ जाएगी। तो इसी तरह आत्मा ने थॉट क्रिएट किया, गॉड, परमात्मा, सुप्रीम सोल, तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट। आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा, वो भी कहाँ पर है, क्या कर रही है। तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो कहाँ पर है, तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता। तो घर याद आता कि घर हमारा, द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट, complete purity, and there this ocean of purity. तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं, जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं, वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं, वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं। तो mind और intellect दोनों साथ साथ चलेगा, मन thought create करेगा, intellect उसको हल्के से, do not again pressurize yourself, do not try to see something, it is not seeing like this with these eyes, it is just trying to visualize it. किस लिए? क्योंकि अगर वो visualize करते तो intellect कहीं और नहीं चले जाते, क्योंकि अगर intellect कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है। You know, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर intellect ने वो picture नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा,
1: बस फिर
0: वो मन वहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देमसेल्फ, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा, तो इट्स नॉट अ पिक्चर। एज लॉन्ग एज आपकी इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, you're on the right track. Just visualize it very lightly. मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं।

0: shining in the center of the forehead. Prikuti ke beech mein ek sundar sa chamakta hua sitara. Tiny star, consciousness. Yahan se baithkar main sharir ko chalati hu. Main hi hu jo har atma se संबंध अनुभव करती हूँ. ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है संबंध अनुभव करने वाली. मैं शक्ति हूँ. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. I am a pure soul. Purity, divinity, ये तो मेरी अपनी नेचर है. See myself अपने घर की तरफ चलते हुए. अपने आप को देखें, वो पॉइंट ऑफ लाइट. इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है. धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है. और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ. गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस. आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी. आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूँ. अपने आप को देखें, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा. इस आत्माओं की दुनिया में मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा, सूक्ष्म बट पावर वाइब्रेटिंग ऑल ओवर. मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूँ. आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था. मैं उनके सामने आकर बैठा हूँ. मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं. मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा हूँ. देखने का प्रयास करें पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है. और मैं आत्मा अंदर भरती जा रही हूँ. ओम शांति,
1: ओम शांति. सुसा शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनामिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है, वो कायम हो सकता है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है. थोड़ा सा खुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है, बाकी रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनेमिक हो सकता है. वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम, जिसको हम अभी तक तलाश रहे हैं. थैंक यू सो मच. ओम शांति. हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है. सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए, खुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. आज की इस पूरी बातचीत के लिए सुसा शिवानी, थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे ऐसे प्रसंगों, कथाओं की बात करते हैं जो बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें देते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, हमने पिछले एपिसोड में शुरुआत कर दी थी एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, और वो है महर्षि व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत, जिसे उन्होंने गणेश जी को लिखवाया था। और हम पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से बहुत सारी कथाएं प्रसंग जान रहे थे, और हमने जाना था पिछले एपिसोड में कि किस तरह से जो आरुणी की कथा थी, उपमन्यु, वेद, ये जो आचार्य जी के शिष्य थे इनकी कथा जानी थी, और आस्तिक ऋषि जी की कथा पर हमने शुरुआत की थी। इसकी कथा को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी, इस कथा के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, सतयुग में दक्ष प्रजापति जी की दो कन्याएं थी, कद्रुव और वनिता
0: जी।
1: उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप ऋषि अपनी धर्म पत्नियों से बड़े प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रुव ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर का बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। कश्यप जी ने एवं अस्तु कहा, दोनों प्रसन्न हो गयी। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा लेकर कश्यप ऋषि वन में चले गए।